فاستبشروا

इसलिए उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लबैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पा लें। सामीन, मौलाना इदरीस अबकर साहब दुआगो हैं अल्लाह ताला के हुजूर। आइए हम भी इन दुआओं में शरीक हो जाएं। ऐ अल्लाह, तू हमारी सब दुआएं कबूल फरमा ले।

وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

और किरदार की सबसे बड़ी निशानियों में से एक चीज है अपने वादे पूरे करना। जी जरा सोचिए, अगर कोई शख्स बार बार वादा करे लेकिन पूरा ना करे तो आहिस्ता आहिस्ता लोग उस पर एतमाद करना छोड़ देते हैं, उसकी बात की अहमियत खत्म होने लगती है, लोग उसके लफ्जों पर यकीन नहीं करते। और सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि उस शख्स के दिल और शख्सियत को होता है। इस्लाम ने हमें सिर्फ इबादत ही नहीं सिखाई बल्कि इखलाक भी सिखाए हैं। नमाज, रोजा, ज़कात अपनी जगह बहुत अहम है, लेकिन इस्लाम ये भी सिखाता है कि इंसान सच्चा हो, दयानतदार हो, अपने वादे का पक्का हो। इसीलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से पहले भी लोग अल सादिक और अल अमीन कहते थे, यानी सच्चा और अमानतदार। सोचिए, अभी नबूवत का ऐलान भी नहीं हुआ था लेकिन पूरा मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और वादा पूरा करने की आदत को जानता था। लोग अपनी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी धोखा नहीं देंगे। आज के दौर में एक अजीब मसला पैदा हो गया है, लोग वादे बहुत जल्दी कर लेते हैं। कल आ जाऊंगा, कल कर दूंगा ये काम, हाँ हाँ हो जाएगा, मैं जरूर मदद करूंगा, वक्त पे काम मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन फिर या तो वो भूल जाते हैं या टाल देते हैं या फिर संजीदगी से लेते ही नहीं। और कभी कभी हम सिर्फ सामने वाले को खुश करने के लिए हाँ कह देते हैं, हालांकि दिल में हमें मालूम होता है कि शायद ये काम हम ना कर सकें। क्या आदत आहिस्ता आहिस्ता हमारी शख्सियत को कमजोर कर देती है। लिस्टर्स, वादा सिर्फ बड़ी चीजों का नहीं होता, बच्चे से किया हुआ वादा भी वादा है, दोस्त से किया हुआ वादा भी वादा है, अपने वालदेन से किया गया वादा भी वादा है, हत्ता कि अल्लाह से किया हुआ वादा वादा है। कभी हम कहते हैं मैं रोज कुरान पढ़ूंगा, मैं गुस्सा कम करूंगा, मैं फजर वक्त पे पढ़ूंगा, लेकिन चंद ही दिन बाद हम खुद ही अपने वादे भूल जाते हैं। इसलिए आज का टॉपिक सिर्फ दूसरों के साथ वादों का नहीं बल्कि खुद अपने नफ्स के साथ किए गए वादों का भी है। लिस्टर्स, एतमाद एक ऐसा खजाना है जो एक दिन में नहीं बनता, इसके लिए वक्त लगता है, लेकिन एक झूठ, एक धोखा या एक टूटा हुआ वादा इस एतमाद को बहुत जल्द खत्म कर सकते हैं। एक घर में अगर वादे पूरे ना हो तो रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। वालदेन अगर बच्चों से वादा करें और पूरा ना करें तो बच्चे दिल से मायूस होने लगते हैं। दोस्त अगर एक दूसरे पर एतमाद ना करें तो दोस्ती कमजोर होने जाती है। कारोबार में वादा खिलाफी हो तो बरकत खत्म हो जाती है। इसीलिए इस्लाम में वादा पूरा करना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं बल्कि ईमान की निशानी है। और याद रखिए, वादा पूरा करने का मतलब ये नहीं है कि इंसान कभी मुश्किल में नहीं आएगा। कभी हालात वाकई मुश्किल होते हैं, कभी इंसान बीमार हो जाता है, कभी कोई मजबूरी आपको अचानक से पेश आ जाती है। इस्लाम हरगिज हमें ये नहीं कहता कि आप नामुमकिन चीजों का बोझ उठाएं, लेकिन इस्लाम ये जरूर सिखाता है कि अगर आप वादा पूरा ना कर सकें तो सच्चाई और अदब के साथ माजरत कर लें, वक्त पर इतला दें और सामने वाले के जज्बात का ख्याल रखें। आजकल एक और बड़ा मसला आम है, डिजिटल वादे। हम मैसेज देखकर जवाब नहीं देते, किसी को कहते हैं मैं अभी भेजता हूं लेकिन फिर भूल जाते हैं, ऑनलाइन काम वक्त पर मुकम्मल नहीं करते, मीटिंग्स में देर से पहुंचते हैं। हमें लगता है कि ये छोटी चीजें, लेकिन यही छोटी चीजें इंसान की शख्सियत बनाती है। एक सच्चा मुसलमान वो होता है

0: बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ये सीखता है कि वादा करना और तोड़ देना आम सी बात है। इसी तरह अगर उस्ताद तालबा से स्टूडेंट से वादा करे और पूरा ना करे, अगर दोस्त दोस्त से वादा करे और भूल जाए, अगर कारोबारी शख्स वक्त पे काम ना दे, तो माशरे में एतमाद कमजोर होने लगता है। इस्लाम चाहता है कि मुसलमान ऐसा हो जिसकी जबान और जिसके अमल एक जैसे हों। एक और खूबसूरत हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो उसे अदा करो, और जो तुम्हारे साथ खयानत करे तुम उसके साथ खयानत ना करो। ये हदीस हमें एक बहुत बड़ा इखलाकी सबक देती है। अगर कोई शख्स हमारे साथ गलती करे फिर भी हमें अपना किरदार खराब नहीं करना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं, उसने मेरे साथ वादा नहीं निभाया तो मैं क्यों निभाऊं, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो मैं क्यों अच्छा करूं। लेकिन इस्लाम हमें लोगों के रवैयों के मुताबिक नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के मुताबिक जीना सिखाता है। एक सच्चा मुसलमान वो है जो मुश्किल हालात में भी अपना अखलाक नहीं छोड़ता। वादा पूरा करने की एक और बड़ी मिसाल सुलह हुदैबिया में नजर आती है। जब मुसलमानों और कुरैश के दरमियान मुहायदा हुआ तो कुछ शराइत बज़ाहिर मुसलमानों के लिए मुश्किल थी। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हों को हैरत भी हुई, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहायदा पूरा किया, क्योंकि इस्लाम वादों और मुहायदों की पासदारी सिखाता है। इससे हमें यह सबक मिलता है कि मुसलमान वक्ती फायदे के लिए अपना उसूल नहीं छोड़ता। आजकल लोग बहुत जल्दी में बड़े बड़े दावे कर लेते हैं, मैं हमेशा साथ हूँ, मैं कल तक सब मुकम्मल कर दूंगा, मैं कभी नहीं बदलूंगा, लेकिन बाद में या तो भूल जाते हैं या फिर उन चीजों को सीरियस ही नहीं लेते। हमें अपनी जबान को हमेशा जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना सीखना होगा। हर हाँ कहने से पहले सोचना चाहिए, क्या मैं वाकई ये काम कर सकूंगा। इस्लाम हमें हकीकत पसंद बनाता है। अगर आप किसी काम के बारे में यकीन नहीं रखते तो नरमी से कहें, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, ये बेहतर है बजाय इसके कि हम वादा करें और फिर पूरा ना कर सकें। यह एक और अहम बात भी है कि अल्लाह ताला खुद वादा पूरा करने वालों को पसंद फरमाते हैं। कुरान पाक में बार बार अहले ईमान की सफात बयान की गई हैं और इनमें अहदो पैमा पूरा करना भी शामिल है। जब इंसान वादा करता है तो उसके दिल में सुकून पैदा होता है, उसे खुद पर एतमाद आता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसके ताल्लुकात मजबूत होते हैं, उसके बाद की कदर की जाती है। और जब इंसान बार बार वादे तोड़ता है तो दिल में बेचैनी, शर्मिंदगी और कमजोरी पैदा होती है। लोग आहिस्ता आहिस्ता उस पर एतमाद करना छोड़ देते हैं। इसलिए आज हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए, क्या मैं वक्त का पाबंद हूँ, क्या मैं दूसरों को इंतजार करवाती हूँ या करवाता हूँ, क्या मैं बच्चों से जो किए गए वादे हैं उनको पूरा करता हूँ या करती हूँ, क्या मैं अल्लाह से किए गए वादे निभा रहा हूँ, क्या मेरी जबान और मेरा अमल एक जैसे हैं। याद रखिए, वादा पूरा करना सिर्फ एक समाजी खूबी नहीं बल्कि इबादत है। जब आप अल्लाह की रजा के लिए अपना वादा पूरा करते हैं तो यह आपके अखलाक, ईमान और शख्सियत को मजबूत बनाता है। तो चले कोशिश करते हैं इस हफ्ते से कि हम कम बोलें लेकिन सच बोलें, कम वादे करें लेकिन पूरे करें, और ऐसे मुसलमान बने जिन्हें देखकर लोगों को इस्लाम की खूबसूरती नजर आए।
1: आप सुन रहे हैं हदीथ टू हैबिट,
2: हदीथ टू हैबिट
1: आरजे महविश के साथ, ओनली ऑन एफएम 107।
0: अब वक्त है हमारे शो के उस हिस्से का जिसे हम कहते हैं हदीस टू हैबिट, यानी हदीस को आदत में बदलने का सफर।

सिर्फ अच्छी बात सुन लेना कभी काफी नहीं होता, असल तब्दीली तब आती है जब हम इन बातों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। और यही इस शो का मकसद है कि हम छोटे छोटे अमली कदम उठाएं और अपने किरदार को बेहतर बनाएं। इस हफ्ते की हमारी आदत यकीनन है कि वादा पूरा करना, चाहे छोटा हो या बड़ा। अच्छी आदतें एक दिन में नहीं बनती, इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपने नफ्स को तरबियत देता है। इसीलिए इस पूरे हफ्ते का प्लान हम शेयर करते हैं आपसे। आज का काम बहुत सादा है, आज जल्दी में किसी चीज का वादा मत कीजिएगा। अक्सर सिर्फ सामने वाले को खुश करने के लिए हम फौरन हाँ कह देते हैं, बाद में या तो वक्त नहीं मिलता या भूल जाते हैं। आज जब भी कोई आपसे कुछ कहे तो फौरन जवाब देने के बजाय चंद सेकंड सोचें। अगर वाकई कर सकते हैं तो वादा करें, अगर नहीं तो नरमी से कहें मैं कोशिश करूंगा, या फिर पहले अपना शेड्यूल देख लूं फिर बताता हूं। ये सच्चाई और समझदारी दोनों है। याद रखिए, कम बातें करना बेहतर है लेकिन उन्हें पूरा करना जरूरी है। यहाँ अच्छा एक चीज और भी होती है, बाज़ औक़ात कोई शख्स वादा नहीं करना चाह रहा होता और अगला बंदा उसे इंसिस्ट करता है, नहीं वादा करो तुम करोगे, वादा करो ना, अभी बोलो ना, बोलो पक्का बोलो। लेकिन इस तरह से किसी के ऊपर भी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इस तरह आप दूसरे को खुद मजबूर कर रहे हैं कि वो आपके कहने पे झूठा वादा तो कर ले और बाद में मुकर जाए। फिर अगले दिन आपने अपने घर में गौर करना है, क्या आपने किसी से कोई वादा किया था? शायद कभी अपनी वालदा से कहा हो कि कोई काम कर देंगे, किसी भाई बहन से कहा हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कहीं ले जाऊंगा, या किसी बच्चे से कोई वादा किया हो। आज खास तौर पर वो वादे पूरे कीजिए। घर वो जगह है जहां हमारा असल इखलाक जाहिर होता है। बाहर अच्छा बनना आसान है लेकिन घर में मुस्तकिल अच्छा इखलाक रखना असल इम्तिहान है। बच्चों के दिल खास तौर पे बहुत नरम होते हैं, अगर हम उनसे किए गए वादे पूरे करते हैं तो उनके दिल में एतमाद और मोहब्बत पैदा होती है। अगले दिन आपके जिम्मे जो भी काम है उसे वक्त पे मुकम्मल करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो असाइनमेंट्स को अपने वक्त पर मुकम्मल करें। अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी दयानतदारी से पूरी करें। अगर आपने किसी को कॉल या मैसेज का कहा था तो वो वक्त पे करें। कभी कभी इंसान सोचता है कुछ चेक नहीं कर रहा, बाद में कर लूंगा, लेकिन एक मजबूत स्ट्रॉन्ग करेक्टर वाला बंदा जब भी लोगों की मतलब ये देखता है कि लोग उसके सामने नहीं है तो लोगों की निगरानी से नहीं बल्कि अल्लाह के खौफ और अपनी जिम्मेदारी के एहसास से काम करता है। वक्त की पाबंदी भी वादा पूरा करने का हिस्सा है। सिस्टर्स, हम इंसान हैं, कभी ना कभी वाकई कोई मजबूरी आ सकती है। इस्लाम हमें कामिल इंसान बनने का नहीं कहता बल्कि सच्चा इंसान बनने की तालीम देता है। अगर आज आप किसी वादे को पूरा नहीं कर पा रहे तो खामोश ना रहें, सामने वाले को पहले इतला दे दें, माजरत करें और एहतराम से बात करें। मसलन, मुझे अफसोस है मैं वक्त पे नहीं पहुंच सकूंगा, माफ कीजिए मेरी एक मजबूरी हो गई है। ये छोटी सी बात ताल्लुकात को बचा लेती है। अक्सर लोग वादा पूरा ना होने से ज्यादा इस बात से दुखी होते हैं कि उन्हें बताया ही नहीं गया। अपनी रूहानी जिंदगी पे तवज्जो देंगे। क्या कभी आपने अपने दिल में नियत की थी, रोज कुरान पढ़ूंगा, फजर वक्त पे अदा करूंगा, रोजाना अज़कार करूंगा, गुस्सा कम करूंगा? इनमें से कोई एक वादा चुन लीजिए और पूरा कीजिए। सबसे अहम ताल्लुक हमारा अल्लाह ताला के साथ है। जब इंसान अल्लाह से किए गए वादे पूरे करता है तो उसके दिल में सुकून और बरकत आती है। छोटे अमाल भी बहुत कीमती होते हैं अगर मुस्तकिल मिजाजी से किए जाएं। आज कुछ वक्त तन्हाई में बैठ के सोचिए, क्या लोग मुझ पर एतमाद करते हैं? क्या मैं अक्सर चीजें भूल जाता हूँ? क्या मैं जल्दी में वादे कर लेता हूँ? क्या मैं दूसरों को इंतजार करवाता हूँ? मेरी एक कमजोरी क्या है जिसे मुझे बेहतर बनाना चाहिए? अपने आप को बुरा महसूस करवाने के लिए नहीं बल्कि बेहतरी के लिए।

सोचें, एक अच्छा मुसलमान वो है जो अपनी इस्लाह करता रहता है। अगर आप महसूस करें कि आप माजी में कुछ वादे पूरे नहीं कर सके तो दिल छोटा ना करें, आज नई नियत करें। अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है। फिर पूरे हफ्ते का जायजा लीजिएगा, क्या फर्क महसूस हुआ, क्या आप खुद को ज्यादा जिम्मेदार महसूस कर रहे हैं, क्या आपके ताल्लुकात में बेहतरी आई। अच्छी आदतें बार बार दोहराए गए छोटे अमल से बनती हैं। अगर आप मुसलसल सच्चाई और जिम्मेदारी इख्तियार करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वादा पूरा करना आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएगा। लोग आपके बारे में कहेंगे, अगर उन्होंने कहा है तो जरूर करेंगे, और इससे बड़ी इज्जत क्या हो सकती है। हमेशा याद रखिए, इंशाल्लाह सिर्फ आदतन ना कहें, जब इंशाल्लाह कहें तो दिल में सच्ची नियत करें क्या वाकई कोशिश करेंगे। और अगर आपको मालूम है कि आप काम नहीं कर सकेंगे तो साफ और सॉफ्टली अगले से माजरत कर लें, ये झूठे वादे से बहुत बेहतर है। इस हफ्ते हम कामिल बनने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ एक कदम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही छोटे छोटे कदम इंसान को अल्लाह के करीब ले जाते हैं। तो आइए नियत करते हैं कि हमारी जबान सच्ची होगी, हमारा किरदार मजबूत होगा, और हमारे वादे काबिले एतमाद होंगे, ऐसे कि लोग हम पे भरोसा करने लगे। जब इंसान बार बार अपने ही वादे तोड़ता है तो खुद अपनी नजर में भी कमजोर होने लगता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई कहे कि मैं कल से जल्दी उठूंगा, रोज कुरान पढ़ूंगा, मैं गुस्सा कम करूंगा, अगर हम हर बार खुद से किया वादा तोड़ दें तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा अपने आप पर भी एतमाद कम हो सकता है। इसलिए छोटे वादों से आगाज करें, छोटे लेकिन मुस्तकिल कदम। अगर आप रोज एक घंटा नहीं दे सकते तो 10 मिनट दे दें। अगर आप हर काम नहीं कर सकते तो एक काम जिम्मेदारी से करें, लेकिन जो कहें सच कहें। दुनिया में लोग जहानत से मुतासर होते हैं, लेकिन दिल से एहतराम उस शख्स को देते हैं जिस पर एतमाद किया जा सके। आपने देखा होगा कि बास लोग बहुत सादा होते हैं, लेकिन सब उन पे भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जबान सच्ची होती है, उनके वादे मजबूत होते हैं, और यही असल इज्जत है। आज के दौर में जहां हर चीज तेजी से बदल रही है, वहां एक काबिले एतमाद इंसान बहुत कीमती बन गया है। ऐसे लोग खानदान को मजबूत करते हैं, दोस्तियों को खूबसूरत बनाते हैं, और माशरे में सुकून पैदा करते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अल्लाह ताला भी सच्चे और ईमानदार लोगों को पसंद करते हैं। लिसनर्स, अब वक्त आ गया है कि आपसे इजाजत लेनी है, लेकिन उससे पहले एक दफा हम फिर से चीजों की एक तरह से याद दहानी करते हैं कि हमने क्या क्या करना है, हमने आज के शो में क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो हम ये याद रखेंगे कि अब से हमने कोई झूठे वादे नहीं करने, किसी के भी इमोशनल ब्लैकमेल करने पे, या फिर खुद से आदतन जो हम कह दिया करते थे कि हाँ ये काम हो जाएगा, भाई पे यकीन रखो, हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ ना तो फिर फिक्र किस बात की है, इस तरह के जुमले हमने अपनी जिंदगी से कम करने। हमने कोशिश करनी है कि हम जो बात कहें खुद अच्छी तरह से सोच समझ कर पूरी तरीके से उस बात को पहले समझें कि क्या ये मुमकिन हो सकता है, उसके बाद ही हम वो बात करें। अगर हमें कहीं पे भी थोड़ा सा डाउट है तो बजाय इसके कि आप वादा कर लें, आप पहले खुद से अच्छी तरीके से उस बात को सोचिए, और अगले से सोचने के लिए वक्त भी मांग लीजिए कि बताऊंगा ये काम हो सकता है कि नहीं, लेकिन पहले मैं जरा सोच समझ के तुम्हें जवाब दूंगा कि कैसे मुमकिन है, प्लान करते हैं लेकिन वादा मैं नहीं करता। आज के पूरे शो में हमने यही कोशिश की है कि एक मुसलमान की असल जो पहचान है वो सिर्फ उसकी इबादत नहीं बल्कि उसका किरदार भी है, और किरदार में सबसे नुमाया चीज ये है कि इंसान अपनी जबान का सच्चा हो, अपने वादों का पाबंद हो, और दूसरों के साथ दयानतदारी से पेश आए। अगर एक माशरे में हर शख्स अपने वादे पूरा करे तो वहां सोचिए कि कितना सुकून होगा।

ना किसी को इंतजार की तकलीफ होगी, ना किसी को मायूसी होगी, ना किसी के दिल में शक पैदा होगा। जितने भी घर वाले हैं वो एक दूसरे पे एतमाद करेंगे, दोस्त एक दूसरे पे एतमाद करेंगे, कारोबार में बरकत होगी और दिलों में अजीब सा सुकून होगा। लेकिन अगर वादे तोड़ दिए जाएं तो फिर रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगते हैं, लोग एक दूसरे की बात पर यकीन करना छोड़ देते हैं, दिलों में दूरियां पैदा हो जाती हैं। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान अपने ही अंदर एक बेचैनी महसूस करता है। इस्लाम हमें एक ऐसा इंसान बनाना चाहता है जिस पर लोग एतमाद कर सकें, जिसकी बात सच्ची हो, जिसका अमल साफ हो और जिसका वादा मजबूत हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ इबादत नहीं सिखाई बल्कि ये भी सिखाया कि एक सच्चा इंसान कैसे बनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कौल, हर अमल और हर वादा सच्चाई पे मबनी था। आज हम अपनी जिंदगी में बेहद मसरूफ हैं, कभी काम, कभी पढ़ाई, कभी घर की जिम्मेदारियां। इस मसरूफ जिंदगी में कभी कभी हम छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बाद में कर लेंगे, कुछ नहीं होता। लेकिन हकीकत यह है कि जिंदगी इन्हीं छोटी बातों से बनती है। वक्त पर पहुंचना एक छोटी बात है लेकिन क्या एतमाद बनाती है। मैसेज का जवाब देना एक छोटी बात है लेकिन ये रिश्ते मजबूत करती है। वादा पूरा करना छोटी बात है लेकिन ये किरदार बनाता है, और किरदार ही इंसान की असल पहचान होता है। लिसनर्स, अगर आप महसूस करें कि माजी में आपसे कुछ वादे पूरे नहीं हुए थे तो दिल छोटा ना करें। इस्लाम हमें हमेशा उम्मीद देता है। अल्लाह ताला बहुत रहीम है, वो तौबा को पसंद फरमाते हैं और बेहतरी की कोशिश को भी पसंद फरमाते हैं। आज से हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हम फैसले कर सकते हैं कि हम कम वादे करेंगे लेकिन पूरा करेंगे, हम सच बोलेंगे, हम वक्त की कदर करेंगे, हम लोगों को इंतजार नहीं करवाएंगे और हम अपनी जबान को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करेंगे। ये छोटे छोटे फैसले हमारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। एक खूबसूरत बात यह भी है कि जब इंसान सच्चाई इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते आसान कर देता है, उसके दिल में सुकून आ जाता है, उसकी जिंदगी में बरकत आती है और लोग उस पर एतमाद करने लगते हैं। और सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि इंसान अल्लाह के नजदीक भी महबूब बन जाए और लोगों के दिलों में भी इज्जत हासिल करे। अब आखिर में हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह हमें अपने कौल फैल में सच्चा बना दे, हमें अपने वादे पूरा करने की तौफीक अता फरमा, हमें अमानत की हिफाजत करने वाला बना दे और हमारी जिंदगियों में झूठ, गफलत और वादा खिलाफी को दूर फरमा दे। या अल्लाह हमारे दिलों को नरम फरमा, हमारी जबानों को सच्चाई अता फरमा, हमारे अमाल में इखलास पैदा कर। या अल्लाह हमारे घरों में मोहब्बत और एतमाद पैदा फरमा, हमारे रिश्तों को मजबूत बना और हमें एक दूसरे के लिए बाइस रहमत बना। हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर दे, हमें अपनी इसलाह करने की हिम्मत अता फरमा और हमें हर दिन पहले से बेहतर इंसान बनने की तौफीक अता फरमा। विजिटर्स, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा पूरे शो में साथ दिया, हमें सुनने का शुक्रिया और उम्मीद है कि आपने आज के शो से कुछ ना कुछ सीखा जरूर होगा और अपनी जिंदगी में एक छोटी सी बेहतरी लाने की नीयत भी की होगी। अगर आपको आज का शो पसंद आया हो तो जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों से जो कुछ मैंने इसमें बताया शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम एक दूसरे को ही बेहतर इंसान बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सभी इकराम प्रोग्राम कुरान के मोती में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हूँ। मैं तलहा अशरफुल जमान। रोजाना की तरह आज भी हम कुरानी मोती पर गुफ्तगू करेंगे। ये वो कुरानी मोती हैं जो हमारे जिंदगी को बदल सकते हैं। तो जिंदगी को बदलना, सवाल ये कि कुरान के कलाम में ऐसी कौन सी खसूसियात हैं जो इंसान को अंदर से बदलने की सलाहियत रखती हैं। क्यों एक शख्स कुरान के साथ हकीकी तौर पर जुड़ता है तो उसकी निगाह भी बदल जाती है, या निगाह बदलनी चाहिए, सिर्फ मालूमात नहीं, हाँ तसव्वुर बदल जाता है, दुनिया को पहले जैसा नहीं देखता, मौत का मफहूम बदल जाता है, कामयाबी का मफहूम, खैर और शर का मेयार बदल जाता है, वो अपने आप को भी एक नई नज़र से देखने लगता है। आज हम कुरान की उन्हीं खसूसियात में से बाज़ खसूसियात को समझने की कोशिश करेंगे। पहली खसूसियत शायद ये इंसान की पूरी फिक्र जिंदगी की बुनियाद से मुतालिक है कि कुरान जिंदगी के सबसे बड़े सवालों का जवाब देता है। सर इकराम, आपने कभी गौर किया है कि इंसान दुनिया के किसी भी खित्ते में पैदा हो, मशरक में या मगरब में, शुमाल में या जनूब में, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनसे वो मुकम्मल तौर पर फरार नहीं कर सकता। वो सवालात ये हैं कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, जिंदगी का मकसद क्या है, मौत के बाद क्या होगा, क्या मेरे अमाल का कोई हिसाब है, खैर क्या है और शर क्या है, दुनिया में दुख और आजमाइश क्यों है, क्या कोई खालिक है, क्या इंसान आजाद है, ये सब कुछ पहले से तय है। ये इंसान होने के सवाल हैं। एक वक्त आता है जब कब्रिस्तान में किसी अपने को दफन करके इंसान ये सवाल करता है। एक वक्त आता है जब जुल्म देखकर पूछता है। एक वक्त आता है जब अपने कामयाबी के उरूज पर भी अंदर से ये सवाल उठता है, इस सब के बाद क्या। और कुरान की एक अजीम खसूसियत ये है, वो इंसान को इन सवालात के सामने अकेला नहीं छोड़ता। हाँ जी, वो जवाबात में भी उसका साथ देता है। सबसे पहला सवाल है, मैं इस जमीन पर आया क्यों हूँ। कुरान जवाब देता है, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور। वो ज़ात जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाएं कि तुम में अमल के एतबार से कौन बेहतर है। गोया कुरान ये बता रहा है कि आप जिंदगी में बेमाना पैदा नहीं हुए। आप महज खाने कमाने, खानदान बनाने, बुढ़ापे तक पहुंचने और फिर मर जाने के लिए नहीं आए। आपकी जिंदगी एक इम्तिहान है और इम्तिहान का सवाल है, अय्युकुम अहसनु अमला, किसका अमल बेहतर है। ये जवाब इंसान की पूरी जिंदगी का जाविया बदल देता है।

0: क्योंकि अब खुशहाली भी इम्तिहान है, तंगी भी, सलाहियत भी, कमजोरी भी, मौके भी, महरूमी भी। फिर इंसान सिर्फ ये नहीं पूछता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो ये भी पूछता है कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है इसमें अल्लाह मुझसे किस तर्ज अमल का मुतालबा करता है। फिर एक और सवाल है, ये दुनिया आखिर है क्या, क्या यही सब कुछ है? कुरान जवाब देता है, اعلموا انما الحياه الدنيا لعب وله وزينه, और दूसरी जगह दुनिया के धोखे से खबरदार करता है, यानी दुनिया हकीकत तो है मगर आखिरी हकीकत नहीं, इसमें जीना है मगर उसे मंजिल नहीं समझना, इसमें घर बनाना है मगर ये भूलना नहीं कि मुस्तकिल घर कहीं और है, इसमें कमाना है मगर इतना नहीं कि कमाने में खुद को खो दें। कुरान दुनिया को उसकी सही जगह पर रखता है, और शायद हमारी बहुत सी बेचैनियों की वजह यही है कि हमने किसी आरजी चीज से मुस्तकिल सुकून मांग लिया है, हमें परमानेंट सुकून हमने इस दुनिया से मांग लिया है। फिर इंसान पूछता है, क्या मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी? कुरान सवाल करता है,
1: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ,
0: क्या तुमने समझ रखा था कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया है, तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे? नहीं नहीं, मौत तो एक दरवाजा है, उसके बाद आखिरत है, हिसाब है, जजा है, जन्नत है, जहन्नम है, और ये जवाब सिर्फ एक थियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन नहीं रहता, यानी ये आपके गम के मफहूम को बदल देता है। आप किसी अपने को कब्र में उतारते हैं, रोते हैं, जुदाई अपनी जगह हकीकी है, मगर मोमिन के तस्वुर में कब्र का मतलब ये नहीं कि कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। उसे मालूम है कि इंसानी सफर मौत पर खत्म नहीं होता, यही वजह है कि आखिरत का अकीदा सिर्फ मरने के बाद की खबर नहीं, ये जिंदा इंसान के गम को भी एक नया माना देता है। सभी कलाम दुनिया में मुख्तलिफ तहजीबों और मजाहिब ने मौत के बाद के वजूद के बारे में मुख्तलिफ तसव्वुरात पेश किए हैं, जिनमें तनासुख़ अरवाह जैसे नज़रियात भी शामिल हैं। यहाँ असल काबिल गौर बात यह है कि मौत के बाद क्या होगा। इंसान तो अपने महबूब को खोना नहीं चाहता, दिल कहता है कि क्या मैं उसे फिर कभी नहीं देखूँगा। कुरान यहाँ एक वाज़ह आपको आखिरत के हवाले से तसव्वुर देता है कि मौत ये आखिरी मरहला नहीं और इंसान अपने रब के हुजूर लौटने वाला है। मोमिन के लिए जवाब एक अजीम नेमत है, जिस जवाब को हम बचपन से सुनते आए हैं, कभी उसकी कदर इसलिए कम महसूस होती है कि हमें वो हमेशा से मिला हुआ है। अच्छा, फिर एक और मुश्किल सवाल ये है कि अगर अल्लाह है तो दुनिया में दुख क्यों है, बच्चों को तकलीफ क्यों पहुँचती है, बीमारी क्यों है, मौत क्यों है, जुल्म क्यों है, इंसान दूसरे इंसान पर ज्यादती क्यों करता है? ये सवाल हर दौर में इंसान को परेशान करता आया है। कुरान ये नहीं कहता कि ईमान लाने के बाद दुनिया से दर्द खत्म हो जाएगा, सही है ना? कुरान तो कहता है, वलनब्लुअन्नकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम तुम्हें खैर और शर दोनों के जरिए आजमाते हैं, और वजअलना बअदकुम लिबअदिन फितना अतसबिरून, हमने तुम में से बास को बास के लिए आजमाइश बनाया, क्या तुम सब्र करते हो? हाँ जी, तो हर मखसूस जुल्म, बीमारी या सानहे के बारे में हम अपनी तरफ से यह तय नहीं कर सकते कि अल्लाह ने उस खास पोशीदा मकसद के लिए उसे वाकई किया है। वही के बगैर हम गैब के मखसूस मकासद मुतय्यन नहीं करते, लेकिन कुरान हमें मजमूई फ्रेमवर्क जरूर देता है कि दुनिया दारुल इब्तला है, यहाँ हर जालिम को फौरी सजा मिलना जरूरी नहीं, हर मजलूम को दुनिया ही में मुकम्मल इंसाफ मिलना जरूरी नहीं, क्योंकि आखिरी अदालत अभी बाकी है, और इसीलिए आखिरत के बगैर दुनिया के बहुत से सवाल अधूरे रह जाते हैं। अब आगे जाकर कोई पूछता है कि मैं मजबूर हूँ या मुख्तार, अगर अल्लाह सब कुछ जानता है तो अगर तकदीर है तो मेरी मर्जी कहाँ है, और अगर मेरी मर्जी है तो अल्लाह की मशीयत कहाँ है? कुरान दोनों हकीकतों को एक साथ रखता है, लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम, तुम में से जो सीधी राय अख्तियार करना चाहे, यानी आपके पास इरादा है, आप इंतखाब करते हैं, इसीलिए जिम्मेदारी और हिसाब ये माना रखते हैं। लेकिन अगली आयत, उमा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, और तुम नहीं चाह सकते मगर ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे, गोया इंसान साहिब इरादा है मगर खुदा नहीं, उसकी मशीयत है मगर एक बड़ी मशीयत के तहत, उसके इख्तियार हकीकी है मगर मुतलक नहीं, आप इरादा रखने वाले बंदे हैं, खुद मुख्तार रब नहीं, ये तवाजुन कुरान देता है। तो सामने कराम, ये हैं जिंदगी के बड़े बड़े सवालात जिनके जवाब आपको कुरान में मिलेंगे। आप किसी इंसानी फलसफे को पढ़ सकते हैं, वो जिंदगी के बाद पहलू बहुत खूबसूरती से समझा

0: FM 107. Time check. Time
1: check. ने मैंने ये बस बस बस बस आ गए. कभी अंकल आए. भाई साहब ये संभालिएगा इसे थोड़ा सा. नहीं मैं रोते नहीं अंकल देख लेंगे अंकल चुप करा देंगे. यूल भाई तो मैं शो कर लूँ है तब तक संभाल लेना से. थोड़ी सी बेबी सिटिंग है.

0: सिक्योरिटी गार्ड हाजिर है सर जी, लठ गाड़ देंगे भाई साहब, किधर भी एंटरटेनमेंट को भागने को नहीं देंगे। बाकी आपका मैसेज बड़ा जरूरी है वरना गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इग्निशन आपका मैसेज ही है, तो 6622107 नंबर है, 6622107। बहुत छोटा सा काम है, इतना तो मैं कोई भारी काम किया भी नहीं था, तो इतना तो भाई सारे में हो ही जाता भाई। तो मैसेज कर दीजिएगा सबसे पहले तो। और भाई मैं आज जो है ना म्यूजिक रोक के बताऊँ आपको एक सच्ची बात, आज ऐसी कहानी ना, ऐसी कहानी है आपको मजा आ जाएगा भाई साहब। प्योर सिनेमा, समझ रहे हैं आप, प्योर सिनेमा ऐसी कहानी है। और इस कहानी में बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ी है मुझे, तो जो आप सुनेंगे ना आज, अरे रे रे रे रे, ऐसे ना जहन में अटक जाएगी ये कहानी, और ऐसी अटकेगी जैसे अब मैं कल भी परसों भी कुछ भी सुना दूँ ना, बोलेंगे भाई वो वाली कहानी यार अभी भी याद है। तो आज आप तैयार हो जाइए, आज बहुत बहुत बढ़िया कहानी है, थोड़ी लंबी कहानी भी है, एंड आई एम प्रीटी श्योर मजे आ जाएंगे आपके, मौज करा देंगे भाई, जमा जहज बना देंगे आज। तो कुछ मैसेज आ चुके हैं मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, अल्लाह आपको खुश रखे, जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए दिशान भाई। इनके बाद सुभाष भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, कब से नैनी बनने मैं क्या करूं सुभाष भाई, आसपास जो दिखता हूं वही मैं शो में ले आता हूं, यही काम है भाई। और आसिफ भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग भाई, आपका पहला कस्टमर भाई, क्या हाल है भाई के, देखते हैं रेडियो के फूफा हमारे एंजॉयमेंट सिक्योरिटी गार्ड भाई, बहुत प्यार बहुत प्यार। ये जो है ना ये जो लाइन है रेडियो के फूफा, ये लोगों ने कैच नहीं करी, लिखी थी मैंने कैच करने के लिए, लेकिन अच्छा हुआ कैच नहीं करी, उन लोग बोलते देखो गरूर तो देखो। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम जब्बार भाई, वकरा से मैसेज कर रहे हैं जब्बार भाई, वालेकुम अस्सलाम क्या जब्बार भाई, कदम से फील आती है जब्बार भाई, भाई के लिए काम कर रहे हैं भाई जब्बार, क्या ले वल बकरा में। और भाई एक और मैसेज आया है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, फैज़ अहमद की तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्या हाल हैं फैज़ की और आपकी, हैं अहमद साहब सब बढ़िया चल रहा है। बाकी जो क्या है मैं सामान में नहीं अनपैक कर दिया है, आप 10 मिनट 33 सेकंड के बाद मिलिए, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे बढ़िया तरीके से, आज भी मौज करेंगे भाई। तो सुबह के अधिकार तला भाई की आवाज़ में 6622107 नंबर है, 6622107 मैसेज कर देना है भाई आपको प्लीज़, जैसे मोहसिन भाई ने किया अच्छे बच्चों की तरह, रोल नंबर 2 मोहसिन भाई आ गए, मोहसिन भाई बहुत सारा प्यार एंड गुड मॉर्निंग, मिलते हैं 10 मिनट 30 सेकंड के बाद, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर।
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है, इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है, और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अज़कार FM 107 पर।

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آمین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم, میں دعا والا کبیر ایف ایم 107 پہ کیا کہنے والا تھا میں, ارے یار دماغ سے سلپ ہو گیا بھائی. کوئی بات ابھی آ جائے گا, آ جائے گا. شاباش شاباش شاید بھائی آئے گا آئے گا. السلام علیکم, 6:15 میں دعا والا کبیر اور میسیجز میرے پاس آ چکے ہیں. ویری گڈ سمی بھائی کہتے ہیں السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام سمی بھائی, ایک دم بڑھیا بھائی. میں آپ سنائیے کیا حال ہیں. شاہد بھائی کہتے ہیں السلام علیکم, گڈ مارننگ بھائی. گڈ مارننگ میری جان, کیا حال ہیں آپ کے. رضوان بھائی کہتے ہیں السلام علیکم کبیر بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اور محسن بھائی کہہ رہے ہیں کہ ویکینڈ آ گیا. ہاں جی ویکینڈ آ لیا, بس ایک دن اور ہے بھائی. ایک میسج, السلام علیکم کبیر بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یہ جو ہمارے بھائی ہیں عزیز بھائی, بھائی عزیز کیا حال ہے. میں بڑھیا بھائی. ایک اور میسج, السلام علیکم سمی بھائی, کیا حال ہیں سمی بھائی. ان کا میسج میں نے پڑھ دیا. اوکے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک سوال ہے, لیکن میں آپ کو پہلے میں کہانی آج میں شروعات سے بیچنا شروع کر دوں بھائی, کیونکہ بڑا ضروری ہوتا ہے ایک آرٹسٹ کے لیے اپنے سامان کو لگاتار بیچتے رہنا. اور آج جو کہانی ہے ایک تو بڑی کہانی ہے اور اوپر سب کو مزہ بھی بہت آئے گا. اٹس اے ویری ویری انٹریگنگ اسٹوری. آئی ایم پریٹی شیور کہ آپ کو بہت اچھی لگے گی. آج کی کہانی بہت بہت خاص ہے اور بہت بڑی کہانی ہے. تو کیا ہے کہ ایسے پتہ نہیں آپ نے شاید نہیں سنا ہوگا ان کے بارے میں یا اس پورے قصے کے بارے میں, کیونکہ یہ ہے ہی الگ اور یہ ذہن میں اٹکنے والی کہانی ہے. تو وہ اس پہ تو میں آ جاؤں گا 7:30 کے قریب. ہو سکتا ہے کہ 5-10 منٹ آگے پیچھے ہو جائے کہانی. پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کا ہڈن ٹیلنٹ کیا ہے بھائی؟ ہڈن ٹیلنٹ ہے کیا آپ کا؟ آپ کے اندر کوئی ہے ہڈن ٹیلنٹ؟ دیکھو میں اپنا ہڈن ٹیلنٹ آپ کو بتاتا ہوں. میں بالکل بھائی موبائل فون کی طرح ہوں میں, ٹھیک ہے. مطلب میں اگر سوئچ آف ہو جاؤں تو سوئچ آف ہوں, آن ہو جاؤں تو آن ہوں. بیٹری کے مطابق کام کرتا ہوں بھائی میں. اگر میری بیٹری جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے ابھی تو بھائی کام ہو جائے گا. برا برا نہیں ہوگا تو میں زور نہیں دیتا بھائی, زور کو نہیں دیتا میں. اگر آلس والس آ رہا تو آ رہا ہے, پھر اس میں فورس کچھ نہیں ہے. پہلے کرتے تھے فورسفلی, لیکن ابھی کیا ہے کہ الحمدللہ تھوڑا سا ہو گیا تو پھر ایسا رہتا ہے کہ نہیں یار اتنا پوش نہیں کرنا ہے. آرام ہے تو پھر آرام ہے. یہ ٹیلنٹ ہے, اس کے لیے بہت ٹیلنٹ لگتا ہے. تو آپ کا ہڈن ٹیلنٹ کیا ہے؟ واٹ از یور سیکرٹ ریسیپی؟ واٹ از یور ہڈن ٹیلنٹ؟ چھپا ہوا کیا ہے آپ کے پاس ٹیلنٹ, یہ بتائیے. کہ میں سے السلام علیکم, گڈ مارننگ ٹو ایوری ون. آئی ایم سارا. وعلیکم السلام سارا جی, گڈ مارننگ. ویسے سارا بچی ہیں بڑی ہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے. محمد سلیم بھائی نے میسج کیا اور سلیم بھائی نے ڈی پی بھی ایک دم ریٹرو لگائیے, ایک دم بڑھیا بھائی. اور وعلیکم السلام ایک بھائی نے میسج کیا ہے, تھینک یو سو مچ میسج کرنے کے لیے. ایک اور میسج, السلام علیکم بھائی, میری بیٹی تیار ہوتے ہوئے ہمیشہ آپ کا شو سنتی ہے, اینڈ اس کو سلام کہہ دیجیے. آپ نام بتا دیجیے ایک باری, مجھے نام نہیں بتایا آپ نے, پر وعلیکم السلام آپ کی بٹیا کو. آپ مجھے نہیں پتا نام تو نام بتا دیجیے گا. زارا نام ہے. اچھا تو زارا کو میری طرف سے بہت سارا پیار, تھینک یو سو مچ. اچھا سارا از 10 years old ناؤ آئی نو سارا. سویٹ ہارٹ تھینک یو سو مچ فار ٹیکسٹنگ. اینڈ ابھی اسکول کی تیاری چل رہی, کیا سسٹم چل رہا ہے ابھی؟ ایک میسج ہے سواج بھائی, کہہ رہے ہیں بھائی میرا ہڈن ٹیلنٹ ہے, زبان سے نوز چھو سکتا ہوں. کیا بات کر رہے ہو؟ ارے یار سواج بھائی نہیں یار, نہیں کرو بھائی. میں ٹرائی کروں نہیں بھائی. ارے کتنی لمبی زبان ہے بھائی یہ کیا؟ صحیح بتاؤ سواج بھائی, اب یہ صرف کہنے بھر کے لیے کہہ رہے ہو کہ سچ بات ہے؟ یہ یقین نہیں ہو رہا مجھے. سنا آپ نے سبھاش بھائی کی؟ سبھاش بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہڈن ٹیلنٹ ہے کہ زبان سے وہ زبان اپنی ناک تک پہنچا لیتے ہیں. بھائی نہیں, میں نہیں مان سکتا سبھاش بھائی. یہ تو آپ یار خامہ خام بول رہے ہو کیونکہ میں پتہ نہیں کر سکتا نا. اور رضوان بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام رضوان بھائی. اور ایک بھائی نے میسج کیا السلام علیکم بھائی, بھائی میرا ہڈن ٹیلنٹ میں آپ کو بتا نہیں پاؤں. ارے بتا دوں. ایک میسج کبیر بھائی کیم چھو مجھا مجھا مچھو. ایک میسج ہے ہاں انیا پانڈے کی ایکٹنگ کرے آپ, یہ بولیے نا یا مجھے کہہ رہے ہیں آپ؟ آئی کی ناٹ ڈیسائڈ ایٹ دس مومنٹ سواج بھائی, لیکن اپنا بتاؤ یہ جو آپ نے لکھا ہے سچ لکھا نہیں لکھا, بیکاز آئی ایم کنفیوزڈ رائٹ ناؤ. ایک اور میسج آیا السلام علیکم بھائی, میرا ہڈن ٹیلنٹ ہے کہ میں تقریباً 2 راتیں جاگ لیتا ہوں ایک ساتھ. یہ ٹیلنٹ بھائی آپ چھپا کے رکھیے, और इस पे ज्यादा अमल मत कीजिए, ये ये ये क्या नाम है हमका, इफ्तिकार आलम भाई ऐसा मत करो। ये दो दिन जो आपको जगने का टैलेंट है, ये कितने टाइम से यूज़ कर रहे हैं आप, इसको ज़्यादा यूज़ ना करें, इस टैलेंट को छुपा के रखें आप, वेरी इंपॉर्टेंट। और सारा जो है उन्होंने मैसेज किया, वो लिखती है मेरा टैलेंट है बिल्डिंग एंड पेंटिंग। बिल्डिंग एज इन व्हाट, मतलब लेगो शेगो या क्या, बिल्डिंग में क्या, एंड पेंटिंग। मैं सारा प्लीज़ मुझे शेयर करना अपनी पेंटिंग बच्चे, जब भी आपको टाइम मिले आज कल, वुड लव टू सी योर पेंटिंग्स। एंड ये बहुत बड़ा टैलेंट है, अच्छे अच्छों में नहीं होता है टैलेंट ये, एनीथिंग वेरी गुड। सारा इज एन आर्टिस्ट, आज हमें एक आर्टिस्ट बच्चे ने संपर्क किया है, थैंक यू सो मच सारा। और एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरी बिटिया आयशा जो है वो क्ले से काफ़ी अच्छे आर्ट्स बना लेती है। अरे माशाल्लाह भाई, बच्चों के हिडन टैलेंट पता लगा, ये हिडन टैलेंट नहीं है भाई, ये तो टैलेंट है, ये असली रॉ रियल टैलेंट है ये। तो कुछ ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे, अगर कुछ बनाए हुए हो किसी के फोटोज़ वोटोज़ हों फ़ोन में, तो डू लेट मी नो कि क्ले से क्या क्या बनाया है। आजकल तो बच्चे, सारे बच्चे आर्टिस्ट है भाई, किसी से पूछ लो आप, बेटा क्या करते हो, पेंटिंग कर लेते हैं जी, ऐसी हवा में निकल जाता है उनके, पेंटिंग कर लेते हैं। हमसे तो होते नहीं यार, ये क्या, ये सारे बच्चे आर्टिस्ट कैसे हो रहे हैं माशाल्लाह, आई एम जस्ट रियली कन्फ्यूज्ड। बता हमारी तो ड्राइंग इतनी बुरी है भाई, हमसे कोई बात ना करे ड्राइंग देख के। एक मैसेज है, हाँ भाई सच में जुबान से नोज छू सकता हूँ भाई, मैं आईब्रो सेपरेटली अप डाउन कर सकता हूँ। क्या बात कर रहे हो भाई, अरे सुभाष भाई तो बहुत बढ़िया निकले। सुभाष भाई कह रहे हैं कि वो अपनी आईब्रोज जो हैं दोनों भवें अलग से सेपरेटली अप एंड डाउन कर लेते हैं और साथ में जुबान से नाक को छू भी लेते हैं। भाई क्या बात है भाई, अरे यार आप तो कहीं जाइए, आप इस टैलेंट को ऐसे छुपा के मत रखिए। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा टैलेंट है मुझे जितना बोलो जब बोलो सो जाता हूँ। अदिल भाई, अदिल भाई हाई फाई, अदिल भाई हाई फाई, हाई फाई हाई फाई भाई, ये मेरा भी इतना टैलेंट है भाई, मिनट ही नहीं लगते भाई, दो मिनट ही लगते। और सारा स्कूल की तरफ जा रही है, बाय बाय सारा, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। और एक भाई ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, जितना भी शोर हो मैं सो जाता हूँ। मेरा भाई, ये मेरे क्लोज कज़न है भाई, मेरे साथ भी यही है, कितना भी शोर कर लो अगर नींद आ रही है ना तो फिर आ रही है भाई, आप उसमें JCB लगा दो कानों के पास में, बैल को कुछ भी करा लो, मैं सो जाऊंगा। दैट इज़ माई हिडन टैलेंट, प्योर टैलेंट है ये, बहुत कम लोगों में पाया जाता है और ऐसे परेशान नहीं होता भाई मैं आवाज़ों से। सुम्बुल बहन गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप। एंड एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा भी हिडन टैलेंट है, मैं भी जबान से नाक को छू लेता हूँ। क्या बात कर रहे हो यार, इतने सारे लोग हैं क्या ये करने वाले। सुभाष भाई आपको कंपटीशन मिल गया भाई, पर इस कंपटीशन में जीता हूँ कैसे मैं, ये मेजर नहीं कर पाऊंगा ना मैं, कि इसमें से कौन अच्छी तरह नाक को छू रहा है, ये कैसी बात हुई। पर सुभाष भाई आपको आज एक कंपटीशन मिल गया भाई, सुबह सुबह कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा भी हिडन टैलेंट आप सुन लीजिए। अच्छा बताइए, अभी टाइपिंग कर रहे हैं, इनका नाम क्या है, आलम भाई, आलम भाई क्या आ रहे हैं भाई, आलम भाई कह रहे हैं कि भाई मैं तबला गिटार हारमोनियम वायलिन, क्या है, है? क्या भाई 6 इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं ये, क्या बात है भाई। अरे यार देख रहे हैं आप, ये सवाल पूछने का फायदा, सवेरे सवेरे क्या क्या मिल रहा है मुझे खजाना भाई साहब। तो आप इस टैलेंट का कर क्या रही है, ये छुपा हुआ टैलेंट क्यों है पहली बात तो, ना तो हिडन टैलेंट पूछ रहा हूँ, बट वाई इज इट हिडन, ये तो सामने आना चाहिए मेरा भाई। आलम भाई व्हाट इज दिस यार, 6 इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं, वो मजाक बात है क्या, और उसमें भी वायलिन। मैंने, मुझे एक मरतबा मौका मिला था सीखने का वायलिन, मैंने हाथ जोड़ लिए और टीचर ने मेरे हाथ जोड़ लिए, कहा भाई तू कर जा। तो मैं ये एक तो हजम नहीं कर पा रहा हूँ, आई प्योरली बिलीव यू भाई जस्ट बाय योर मैसेजेस, पर इसका डेमो देना पड़ेगा भाई आपको, क्योंकि अगर आप 6 इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं और उस टैलेंट को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत है, और छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत है। तो हैरान कर रहे हैं लोग यार मेरे को, दिस इज़ टू मच। एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम भाई, कह रहे हैं मैं बहुत बड़ा मल्टीटास्कर हूं, मैं बहुत सारे काम एक साथ कर सकता हूं और मैं साथ में पेंटिंग भी कर लेता हूं। इनफैक्ट मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखकर अपनी गाड़ी को पेंट किया और मैं इसमें अभी एक्सपर्ट हो चुका हूँ, हालांकि मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। हैं, अरे क्या हो रहा है, ये अनस भाई का मैसेज, अनस आदिल साहब हैं और ये आदिल, अनस, अच्छा नहीं दोनों नाम है आपके, अनस और आदिल, ओके जो भी है, पर अनस भाई, ये अनस भाई कह रहे हैं कि वीडियो देख के उन्होंने अपनी गाड़ी को पेंट किया, पहली बात तो ये रिस्क क्यों लिया, ठीक है, और दूसरी बात ये सब हो रहा है क्या, यहाँ तक बात पहुँची, बड़ा टैलेंट जमा है भाई साहब कतर में, ये तो बहुत कमाल की बात है। तौफीक साहब वालेकुम अस्सलाम, ईशान भाई वालेकुम अस्सलाम, अजीज़ भाई वालेकुम अस्सलाम। जब भाई मैं घर का फुल मेंटेनेंस कर लेता हूँ इंक्लूडिंग मैकेनिकल, काम कर सकता हूँ, अच्छा कुक भी हूँ, मेरे पैसे से सिविल इंजीनियर भी हूँ। कह रहा मेरे पैसे से सिविल इंजीनियर भी हूँ मेरा भाई। लव्ड द लाइन भाई, ये लाइन में चुराऊंगा, मेरे पैसे से मैं रेडियो जॉके भी हूँ, बहुत बढ़िया। क्या अरे ये भाई साहब इनको पिंक ट्रक। समी भाई पता नहीं समी भाई की कुंडली में ये पिंक ट्रक क्यों लिखा, बार बार ये मिड ट्रक सिर्फ समी भाई को दिखता है और मेरे ख्याल में ये चौथी मरतबा दिखाया आपको ये पिंक ट्रक। ये मुझे लग रहा है समी भाई आपका दिन डिसाइड करता है कि आज के दिन में कुछ बहुत ही बढ़िया या एक्स्ट्रा होने वाला है आज तो। मुझे भी दिख रहा है ये कौन से रोड पे दिख रहा है आपको हर रोज़, ये मुझे बताएगा समी भाई, मैं उसी तरफ जो है गाड़ी डेली निकालूंगा मैं ताकि मुझे भी ये पिंक ट्रक दिखे। जलन हो रही मेरे को यार, सिर्फ आपको क्यों दिख रहा है, ये आपका हिडन टैलेंट तो नहीं है कि आप तलाश लेते हैं इसको। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं भी घर के सारे काम कर लेता हूँ, चाहे वो मोटर का काम हो, चाहे प्लम्बिंग का काम हो, चाहे कोई भी चीज़ फिक्स करनी हो, मैं इसमें माहिर हूँ। हैं ये क्या नाम है इनका, MM खान लिखा हुआ इन्होंने। सो MM भाई, ये पहली बात तो आपके नाम का फुल फॉर्म बताइएगा और दूसरी बात सारे काम आप पेशे से इंजीनियर हैं, क्या करते हैं आप ये मुझे ज़रूर बताएं भाई। ऐसा बंदा ना होना चाहिए आपके साथ, मतलब अगर आप क्या कहते हैं रूममेट्स बन के रह रहे हैं और एक बंदा ऐसा ना सारी चीज़ें फिक्स कर लेता है, हीरा हीरा भाई, उससे किराया मत लो, उसके हिस्से का आप ही दे दो, ये तो बहुत बड़ी बात है भाई, अचीवमेंट है, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, मेरा हिडन टैलेंट है बिना कुछ बोले सामने वाले का खून जला देता हूँ और कभी कभी बहुत हैंडी होता है। क्या होता है ये मैं ये तो मैं भी कर लेता हूँ जो आप कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: हां शहजादा सलीम, क्या हाल है तुम्हारे?
2: अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा हिडन टैलेंट दो बारे और मैंने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ।
1: क्या है?
2: एक तो है ना बाइक स्टैंड करना है, बाइक मैंने प्लेटफॉर्म से ना उड़ाया था, तो अपना ये लगा के लकड़ी का प्लेटफॉर्म है ना, दूर से नीचे आके जंप किया था ऊपर, और बाइक अलग मैं अलग, मेरा पूरा हाथ भी देना सब बहुत सा मतलब मार ज्यादा लग गई थी। और एक बार मैं हम लोग स्कूल के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे, तो बॉल है ना चौथे माले पे गया था, तो मैंने ग्रिल पकड़ कर है ना चार माला चढ़ा था, मैंने ग्रिल से चढ़ के बॉल लेकर आया था
1: भाई। मुझे तो लगता था मोगली फिक्शनल कहानी है, आप पे बनी है। अरे पर ये एक बात बताओ, पिछले वाला जो आपने की हरकत ये कि बाइक को आपने लकड़ी के फट्टे पे चढ़ा के कूद गए, ये क्यों किया भाई, किसके कहने पर किया ये?
2: वो असल में क्या था ना, हमारे जो सबके दोस्त लोग थे ना, तो ये मतलब वही चने के झाड़ पे चढ़ाने वाली बात, और मैं चढ़ भी जाता था ना चने के झाड़ पे एकदम जल्दी से, तो अभी वो बिचारे किसी की खड़ी थी यार, वो भी क्या थी पता है आपको, बाइक वाले को पहले ना TVS 50 लूना आती थी, लूना।
1: अरे उसको कौन कूदाता है यार।
2: अच्छा उसको मैंने प्लेटफॉर्म कैसा खड़ा किया, मतलब वो बेचारे मजदूर लोग जो वो ठेला बिला डालकर है ना वो लेकर जाते हैं ना घसीटते हुए अपने शोल्डर में बेल्ट डाल के, हाथ गाड़ी बोलते हैं उसको, तो उसको मैंने ना ऐसा रखा था, एक नीचे और एक फ्लोर थी ऊपर, एकदम सीधा एकदम ऐसा उस तरफ से, और दूर से आया था। हाँ तो बाइक तो वो तो ये तो जंप तो किया मैंने ऊपर है ना, जब नीचे जब अराइव हुआ ना, लैंडिंग हुआ ना, तो वो किधर और मैं किधर, वो बेचारा सुबह बोलता है यार मेरी गाड़ी चल क्यों नहीं रही, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है
1: भाई यार। अरे बापरे, जिस बाइक का आपने नाम लिया उसको कुदाने से पहले दिमाग नहीं चला के भाई ये तो मतलब उतनी स्पीड भी नहीं पकड़ेगी यार, मतलब सलीम ये कैसे स्टंट किया भाई।
2: हाँ बहुत जबरदस्त, और नहीं मेरे को मतलब पहला शौक भी बहुत जबरदस्त है ना इसका जो बाइक का, और पहले उससे पहले मैंने शुरुआत की थी ना साइकिल से, साइकिल एक टायर पे लेके चल।
1: अरे तो साइकिल एक अलग चीज होती है मेरा भाई, क्या लॉजिक है यार, मतलब बद्दू की हमें भी शौक है बाइक का, कम दे थोड़ी कुदा देंगे फट्टे पे से।
2: वो बाइक का, हाँ बाइक का मेरा है ना बड़ा ये था, शौक भी था और मतलब मैं करता था। हाँ तो अभी तो काफी टाइम हो गया गाड़ी बाइक छोड़े हुए मेरे को, लेकिन मतलब इतना कॉन्फिडेंट टैलेंट है कि मैं ना उठा सकता हूँ ना बाइक को, है ना
1: भाई। रहने दो तुम भाई, तुम रहने दो भाई, तुम क्रिकेट खेलो शहजाद सलीम भाई, ठीक है बाइक बाइक मत कुदाओ भाई तुम।
2: अच्छा कभी एक मजे की बात है ना, कल मैंने शाहनिया गया था, वहाँ तो कभी चाचा नजर ही नहीं आए, सारे ऊंट ही ऊंट नजर आ रहे।
1: अरे मत ढूंढो भाई, उन्हें क्यों ढूंढने निकल गए। ये एक्सपेरिमेंट, ये भाई ये सर्च और यहीं रोक दो आप, मैं बता रहा हूँ शहजाद सलीम आपकी सेहत के लिए कह रहा हूँ मैं, ये मत करो भाई।
2: हाँ मैं मतलब ये सब है ना, मेरा अपना एक मतलब जिसे बोल देना हॉबी और शौक है ना, तो मैं बहुत इंजॉय करता है ऐसा कुछ स्टंट वगैरह करने में ना, बहुत जबरदस्त
1: भाई आपके एंजॉयमेंट के चक्कर में ना मेरे को डर लग गया, ऐसे स्टंट मत करा करो।
2: हम लोग है ना लोनावाला भी हम लोग घूमने गए थे ना, तो बरगद का झाड़ होता है ना, लंबी लंबी बेले होती है, देखो
1: हाँ पता है बरगद का झाड़,
2: तो वो मैंने तकरीबन ना 20 फुट है ना उसको पकड़ के ऊपर चढ़ गया था मैं सीधा सीधा उसी से उसी।
1: अरे मेरे लायन किंग ये सब छोड़ दो, मुफासा को बुलाऊंगा मुफासा। अच्छा ठीक है शहजाद सलीम भाई, मैं बड़ा भाई इम्प्रेस्ड और हैरान दोनों चीजों, स्टंट मत करो भाई, अपना ख्याल रखो हैं, हड्डियां क्यों चरमरा जाएंगी, खामखा जाड़े का सीजन आ रहा है, मुझे भी ठंड लग गई आपके इस ख्याल से।
2: मौके मिले तो ये तो कुछ है ना, कुछ कर जाए जिंदगी।
1: भाई थैंक यू भाई, कुछ तूफानी कर दिया आपने, थैंक यू सो मच शहजाद सलीम भाई, बहुत प्यार भाई, ओके भाई अल्लाह हाफिज। तो शहजादा सलीम जो है वो अपना हिडन टैलेंट जब बता रहे थे तो मैं नर्वस हो गया इनका हिडन टैलेंट सुन के। सुन रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, ये कोई हलवा है? अच्छा एक मैसेज आया मेरे पास, बड़ा प्यारा मैसेज है, इन्होंने भेजा, माय सन अहमद फाउंड दिस ओल्ड कैसेट इन अ कार बॉक्स एंड आस्क्ड मी व्हाट इट इज, आई टोल्ड हिम इट्स अ कैसेट, नाउ इज टॉकिंग व्हाट इज अ कैसेट, व्हाट इज द इंग्लिश फॉर इट। अब इसकी अंग्रेजी कैसे बताएं, अब पुरानी कैसेट मिली है ये इनके बेटे को अहमद भाई के, अहमद ही उनका नाम है, अच्छा बच्चे का नाम है अहमद, उसे कैसेट मिली है, वो पूछ रहा है व्हाट इज़ कैसेट, कैसे समझाएं उन्हें बेटा ये क्या बोले इसको, बेटा ये आज ये पुराने ज़माने की सीडी है बच्चे, ये तो ठीक रहेगा इस भाई, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस टू अ चाइल्ड राइट, मेरा टेस्ट ले लिया भाई आपने। हसन भाई मैं पहले सवाल दोहरा दूं, मैं कह रहा था कि आपका हिडन टैलेंट क्या है, कोई है ऐसा छुपा हुआ टैलेंट आपके अंदर? हसन भाई कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, इंस्ट्रूमेंट्स तो मैं 10 बजा लेता हूं, लोगों का टैलेंट कम है, सुनते ही नहीं है। कह रहे हैं मैं तो खुद बजा लूं इतने सारे इंस्ट्रूमेंट, प्रॉब्लम ही है ऑडियंस नहीं है, ये तो मेरे साथ भी हसन भाई ऑडियंस नहीं है, नहीं तो भाई आपका भाई कोई कम है क्या? यार रहमान के बाद मेरे नंबर है। अफसर बहन लिखती हैं गुड मॉर्निंग बॉस, गुम गए थे एफएम पे, मिल नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल ढूंढा आज, मेरा हिडन टैलेंट इतना हिडन है कि मुझे भी नहीं पता। बहन ये तलाशना पड़ेगा, ये तो आप ये दिल की किसी गुफा में जाइए, इसको निकाल के लाइए अफसर बहन, कहीं ना कहीं होगा, आप या तो बताना नहीं चाहती हैं। मुबीन उखारी साहब वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत सारा प्यार। और एक और मैसेज है फराज भाई का, अस्सलाम वालेकुम, माय हिडन टैलेंट इज़ फोर हेड पे कॉइन को बिठाना, कर लेते हैं आप? अरे मेरा भाई सेम टैलेंट, हाई फाइव, माथे में सिक्के को चिपका लेते हैं फराज भाई, फराज भाई मैं आपके साथ हूँ भाई, यो ये भाई अपना टैलेंट। अलीना ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम कबीर अंकल, हाउ आर यू, माय हिडन टैलेंट इज दैट आई कैन टॉक बाय ओनली शोइंग माय टीथ, वेलेंकुड क्या कहते हैं उसको, वेलेंकुड, अरे तो ये वर्ड मुझसे बोला नहीं जाता, अरे भाई यार वो पुतला अलग बोलता और इंसान बुलवाता, समझ गए ना आप। ये पिंक ट्रक का नंबर प्लेट कुवैत की है क्या? पता नहीं बच्चे, आई डोंट नो, आई रियली हैव नो क्लू, होगा शायद, वाई इज दैट अ क्वेश्चन, मतलब आपको भी दिखा क्या? एक मैसेज है समीर भाई कह रहे हैं, हर किसी का राज रखता हो यानी फ्रेंड्स कज़न वगैरह, फिर हिडन टैलेंट ये है कि किसी को नहीं बताता किसी का भी राज, बचपन से लेकर अभी तक के राज, इतना राज इतना सीक्रेट है कि भाई बिल्कुल अपने साथ सब ले जाओगे कि समीर भाई मुझे भी कोई गॉसिप दे दो भाई, मैं तड़प रहा हूँ आपके गॉसिप के लिए भाई, थोड़ी गॉसिप दो समीर भाई, मत करो ऐसा। उमर भाई कह रहे हैं, उमर खान आफरीदी की तरफ से सलाम, लोग कहते हैं कि अपना टैलेंट पहचानो, मैंने पहचान लिया मेरा टैलेंट, सही वक्त पर क्या हो जाना, सो जाना और गलत वक्त पर जागना। समझ गया, 4 घंटे की नींद वाले हो हैं, समझ गया। सुम्बुल बहन कहती हैं, मैं भाई मैं सोच रही हूँ कौन सा टैलेंट है, मैं आपका सुम्बुल बहन, आपका मुझे टैलेंट ऐसा लगता है कि आप किसी भी बहस को अपनी तरफ पलट सकती हैं, ये मैंने आपको नोटिस किया, मुझे लगता है कि सुम्बुल बहन में वो टैलेंट है कि कोई भी बहस चल रही हो वो अपनी तरफ सारी लहर ले जाएंगी कि मैं ही सही हूँ, बोला कैसे तूने। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मेरा टैलेंट है कि हर सिचुएशन को हैंडल कर लेता हूँ, ये टैलेंट नहीं है भाई, ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है। इश्तियाक अंसारी साहब, दिस इज़ द परेशानी के वक्त एक्शन, दिस इज़ नॉट टैलेंट। सुभाष भाई कह रहे हैं, सलीम भाई ने कुछ ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही तूफानी कर रहे, ये अगर मुझे, मैं पूछना भूल गया शहजादा सलीम से कि पता नहीं कौन सी उम्र में ये बाइक के कुदा रहे थे, भाई इस उम्र में मत कुदाना, वैसे भी जाड़े का सीजन आ रहा है भाई, आपकी बातें सुन के मेरा दिल खोल गया कसम से। आदमी बाइक कुदा रहा है, और बाइक भी वो हो जो थोड़ी भागे तो सही, ये लकड़ी के भट्टे लगा के कुदा रहा है। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, हिडन टैलेंट इज हिडन फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड बिकॉज लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम माय फेथ, एल्स आई वुड बी अ सिंगर। अच्छा आप ये बोलिए ना ख्वाजा साहब, आपके पास सुर हैं, वेरी नाइस माशाल्लाह, आई थिंक आपको सैंपल देना चाहिए मुझे भाई। तौफीक भाई जो है अपना हिडन टैलेंट नहीं दिखा रहे, परांठे खा रहे हैं, वो बढ़िया पिंक कलर का उनका थर्मा से चाय का, बढ़िया भाई। एक मैसेज आया, आई कैन स्लीप फॉर 30 seconds। ताहिर भाई आई कैन स्लीप फॉर 45 seconds भाई, और जब मैं 45 seconds सोता हूँ 2 घंटे बीत जाते हैं भाई। ये मैथ्स की इक्वेशन है भाई, आप सॉल्व नहीं कर पाते। आप 30 सेकंड की बात कर रहे हैं, मैं 45 सेकंड सोऊंगा 2 घंटे बीत जाएंगे। ये है आप में टैलेंट, मुझसे ज़्यादा नहीं होगा। ताहिर भाई कहाँ यार, आप कैसी बातें कर रहे हो। और वो अलीना ने जो पूछा था कि वो जो पिंक ट्रक की नंबर प्लेट है वो कहाँ की, वो कतर की ही है। समी भाई ने 4 बार देख ली, तो उनसे तो कौन जानता है। समी भाई थैंक यू फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हाँ एग्जाम में आएगा तो मैं लिख पाऊंगा आप, थैंक यू। नहीं समी भाई, सो स्वीट ऑफ यू भाई, बहुत प्यार, बहुत प्यार। अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि

0: आपका जो है हिडन टैलेंट क्या है? व्हाट इज योर हिडन टैलेंट?
1: ये क्या मैसेज आया मेरे पास?
0: अरे भाई एक कमाल का मैसेज आया मेरे पास। हाँ, ये कह रहे हैं कि भाई मेरा हिडन टैलेंट तो नहीं है लेकिन मेरे बारे में एक हिडन सीक्रेट है। मैं तमिलनाडु से हूँ और मेरी अम्मी पाकिस्तान है।
1: क्या बात कर रहे हो? अबे यार
0: कह रहे हैं कि अम्मी जो है वो पाकिस्तान से हैं, कराची से, और ये तमिलनाडु के हैं। चश्मा उतारो भाई, मेरा दिमाग ग्लिच कर गया।
1: क्या बात कर रहे हो यार?
0: ये भाई तो बफरिंग शुरू हो गया भाई। सीधा 5G से 2G भी ले गई मेरे दिमाग को। आप कहाँ रहते हैं मतलब बेसिकली? ये आप मुझे बताइए, ये कैसा कॉम्बिनेशन है यार? बहुत ही अलग कॉम्बिनेशन है ये, मैंने आज तक सोचा भी नहीं था भाई। तो ये हैव टू टेल मी आप रहते कहाँ पर हैं। मास भाई कह रहे हैं ये जो बोल रहे हैं राज छुपा के रखता हूँ, उनका हिडन टैलेंट मेमोरी लॉस है क्योंकि लोग राज बताते हैं और ये भूल जाते हैं। मास भाई सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, प्यार आपको बहुत सारा मास भाई। और हम जो है जिस सर्कल का हिस्सा है वहाँ पर आप कुछ भी बात छेड़ दीजिए, वो बात जो है वो टहल टोल के इतनी बड़ी हो जाएगी कि राज तो कुछ और था, बात कुछ और हो जाएगी। अग्री करते हैं हम? क्यों मासूम शर्मा हो नहीं, बता दो, आजकल बहुत तारे देख रहे हो। पर कमिंग बैक टू दिस गाय यार, भाई आपका नाम क्या है यार? ये मुझसे कह रहे हैं इनकी अम्मी जो है वो पाकिस्तान से, ये तमिलनाडु से। यार ये तो मेरा भाई दिमाग घूम गया भाई, मैं कुछ बात नहीं कर पा रहा हूं। ये तो वो हो गया ना रजनी खान। अरे यार ये जो यहाँ पे एकदम फिट हो गया, रजनी खान। माई तमिलनाडु से लेकिन अम्मी जो है वो सीधा कराची से। ओके अब उन्होंने मैसेज किया कि कह रहे हैं कि आई लिव मोस्टली इन कैनेडा एंड या दैट इज़ ट्रू, माई नेम इज़ जेसन। आपका नाम जेसन है? अच्छा ओके भाई, तो ये तीन कैटेगरी चल रही है मेरा तो। आप मेरे से मजाक तो नहीं कर रहे भाई, सीरियसली बताना, अगर ये मजाक है ना तो बहुत खतरनाक मजाक है भाई। दिस इज टू मच टू हैंडल, मेरा दिल कमजोर है भाई। क्या बात है यार, कमाल की पब्लिक है ये। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक तमिलियन और पाकिस्तानी के बीच में कनेक्शन मिलेगा भाई। आपके लिए तो बनता है भाई, रजनी खान है भाई। बहुत बढ़िया भाई, आज मेरे जहन में ही बात अटक गई है। बाकी अपना हिडन टैलेंट बता रहे हैं लोग। सुम्बुल बहन कहती है आई एम अ गुड डिजाइनर, फैशन डिजाइनर। अच्छा नहीं, आई बिलीव सो, मैंने देखा है आपका यार्ड जो बच्चों पे आप ट्राई करती रहती हैं। इश्तियाक उस्मानी भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मेरा टैलेंट है कि मैं अपनी वाइफ से भी सॉरी बुलवा लेता हूं और मैं ये फेक। क्या बात कर रहे हो, हम म्यूजिक रोको भाई। इश्तियाक उस्मानी भाई कह रहे हैं अपनी बीवी से मैं सॉरी बुलवा लेता हूं। भाई नींद में होंगे आप, नींद में होंगे। नहीं नहीं, इश्ताक उस्मानी भाई नहीं, ऐसा नहीं करो यार। यू आप लोगों को होप दे रहे हैं भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। इश्ताक कुछ भी करो यार, होप मत दो यार, दिस इज रॉन्ग ऑन एवरी लेवल भाई। एक मैसेज है पिंक ट्रक इन कतर हिडन टैलेंट। अच्छा भाई ऐसा ही है। एक मैसेज हिडन टैलेंट अभी तक हाइड कर रखा है, इसको फिर बाहर लाइए फैजान भाई। एक मैसेज है कमाल भाई का, वालेकुम सलाम कमाल भाई। और ये कह रहे हैं कराची भी है तमिल कम्युनिटी एक पूरा एरिया, वो तो ठीक है लेकिन ये इंडिया वाले तमिलनाडु की बात कर रहे हैं भाई। एक मैसेज सलाम वालेकुम जावेद साहब। अच्छा वालेकुम सलाम जावेद साहब। एक और मैसेज है सलाम वालेकुम बेस्ड ऑन देयर क्या आपका जो सवाल है आज का, दिस इज रिलेटेड टू यस्टरडे शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कंटेस्टेंट्स ऑफ बिग बॉस, बेस्ड ऑन द हिडन टैलेंट यू विल शॉर्ट लिस्ट देम फॉर बिग बॉस, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए माजू बच्चे। एक मैसेज है शहजाद सलीम का, कबीर भाई डेट टाइम, आई एम अ बैचलर अंडर 19, अभी भी मौका मिले तो आई विल ट्राई। हेलो भाई साहब भाई की मत कुदाओ, अभी मौका मिले तो आई विल ट्राई। एक मैसेज रजनी खान, ये भी सही था करो, वो तो रजनी खान ही हुए। एक मैसेज है कराची भी एक तमिल कम्युनिटी अवेलेबल है सर। अच्छा मुझे नहीं पता था भाई, ऑनेस्टली मैं उस तरह भाई इतना गया नहीं है तो मुझे पता नहीं है, बट जो उन्होंने मैंशन किया मैं उसको देख के हैरान हूँ, बिकॉज ही मैंशनड इंडिया का तमिलनाडु भाई, तो वो इसलिए मैं थोड़ा सा समझ रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा हिल गया। और एक मैसेज है अबोली साहब का, अबोली वाले अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, के मैं नाम सुनकर बता सकता हूँ कि क्या अच्छा आदमी है औरत, मर्द है औरत है, मैं नाम पढ़ के बता सकता हूँ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे से बहस करोगे इसमें तुम। एक और मैसेज आया, लिखते हैं अच्छा प्लीज़ की बटन आए छुपा के रखेंगे।

0: वैसे अस्सलाम वालेकुम भाई, बीच बीच में टॉपिक क्या है रिपीट कर दिया करो। नहीं सोनू भाई, मेरी मर्जी भाई, नहीं करो, मैं कर दूंगा भाई, ऐसी क्या बात कर दी भाई। मोहब्बत मैंने रिपीट किया तो अभी मैंने बोला आपका हिडन टैलेंट क्या है, छुपा हुआ टैलेंट क्या है, ये है। एक मैसेज है भाई, काम कर रहा हूँ मैं भी आपकी तरह सुबह सुबह। ये क्या ग्राफिक्स है भाई, ये किस पे काम कर रहे हैं, क्या चल रहा है ये? अच्छा ऑटो कैड, डर गया मैं ठीक है, मैं दो मिनट के लिए टेंशन में आ गया। हमारा भी ऐसे एक सॉफ्टवेयर है भाई, आपको पता है, जो आपने मुझे भेजा है, बट वो दिखता है ऐसा है, सिर्फ काम दूसरा है उसका। एक मैसेज है, मेरा हिडन टैलेंट है, मैं मेरे घर वालों के हिसाब से आई एम गुड फॉर नथिंग। वेरी गुड, आप जरा कॉल उठा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: हाँ जी भाई, क्या हाल है?
2: क्या हो?
0: अरे स्टार ऑफ द डे, क्या हाल है?
2: आज का टॉपिक सुन लिया मैं, आज
0: बताओ
2: का टॉपिक है ना टैलेंट क्या है।
0: हाँ क्या टैलेंट है तुम्हारा, हिडन टैलेंट बताओ।
2: मेरा टैलेंट है कि दीदी को मारने का।
0: ये कोई हिडन टैलेंट अच्छी बात थोड़ी है ये।
2: और ये तो टैलेंट रहता ना मारने का,
0: पता है मैं तुम्हारी साइड हुआ करता था एक टाइम पे। आई यूज्ड टू रियली बी ऑन योर साइड, लेकिन अभी मेरे को साइड बदलनी पड़ेगी। पता है मैं फैन था तुम्हारा, लेकिन इस बात पे मैं तुम्हारा फैन नहीं बन पाऊंगा। आई एम रियली सॉरी, गलत बात है। देखो तुम्हारी बहन की मैंने बात करी थी उस दिन ना, इतनी अच्छी प्यारी बात है, माशाल्लाह छोटी है तुमसे। हाँ वो सही करती है, वो सही करती है, उसका बनता है, छोटी है ना तुमसे, उसका बनता है, तुम्हारा नहीं बनता।
2: छोटी थोड़ी है, वो तो बड़ी है।
0: तुमसे बड़ी है फिर भी बनता है
2: नहीं बनता है
0: बनता है बनता है, मैं उसी की साइड हूँ, मैं तुम्हारी साइड नहीं हूँ अभी हाँ क्या सीन है फिर, आज क्या है स्कूल में?
2: और एक टैलेंट है मेरा।
0: क्या टैलेंट है बताओ?
2: मेरी बहन से ज्यादा मार्क्स लाने का।
0: अच्छा तुम्हारे नंबर ज्यादा आते हैं क्या?
2: हाँ, हर रोज ज्यादा ही चाहते हैं मेरे।
0: यार ये तो मैं देख के,
2: उनके 40 आते तो मेरे 50 आते, 10 नंबर अच्छे आते मेरे।
0: अरे वेरी नाइस यार, ये तो अच्छी बात है, ये कंपटीशन हेल्दी है, ये कंपटीशन रखो।
2: हर बार सुनो हर बार जब भी एग्जाम देते दोनों इक्वल ही पढ़ते, सब इक्वल ही पढ़ते, पर मार्क्स आते अच्छे मेरे को, क्योंकि मैं अपने खुद से बना के लिखता हूँ।
0: शाबाश शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू।
2: सोशल में आपको बोला था ना कितने के हार्ड सब्जेक्ट है बोल के, उसमें से एक हार्ड आंसर दे दिया, मैं तो अपने खुद से बना के लिख दिया, खली बल्ली बोल के,
0: खली बल्ली बोल के बहुत बढ़िया यार। क्या क्या क्या,
2: मुझे नहीं पता क्या हो यार, बन के ऐसा लिख दिया, मैं वो सही हूँ क्या, मैं सोच रहा हूँ कैसे सही हो गया।
0: कुछ भी लिखा है तुम्हें, मतलब जो मन में आया उस छाप दिया वहाँ पे। सवाल क्या था याद है तुम्हें? सवाल क्या था, सवाल क्या था कुछ याद है? तुमने क्या लिखा?
2: चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्टेट गवर्नमेंट एंड हेल्प द प्राइम मिनिस्टर।
0: एक तरीके से सही लिखा है सही है सही है सही है
2: और वो कितना के लंबा चला गया था वो, उसके अंदर नोट्स के अंदर कितना की लंबा है वो।
0: अरे नहीं सही, अच्छी बात है, तुमने ये टैलेंट है, पता है ये टैलेंट है, छोटे छोटे जो चीजें याद है उनको बड़ा करके लिख देना इज अ टैलेंट, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ये अच्छा टैलेंट है। देखो ये अच्छी बात की तुमने, मुबारक हो। अभी तो पीटीएम का इंतजार हो रहा होगा, आज कब है पीटीएम? अभी अगले हफ्ते है ना, 10th को है, ओके
2: दिन बाद में।
0: हाँ ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हाँ मुझे, मैं रिपोर्ट कार्ड लूंगा तुम्हारी, बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है?
2: ठीक है,
0: चलो ख्याल रखो अपना, एंड सुनते रहो बस हमें, बहुत प्यार है।
2: तुम्हारा टैलेंट है ना, तुम्हारे पास एक एक टैलेंट बोला ना, वो वाला टैलेंट
0: कौन सा?
2: वो वाला टैलेंट इंग्लिश बोल दे तुमने।
0: किसका टैलेंट?
2: उनका टैलेंट है, इनका टैलेंट है कि इन्हों अपने खुद से बना के नहीं लिखते, ये इनका टैलेंट है, सबके पास रहता है ये तो।
0: ये तो तुम्हारे पास है टैलेंट, ये तो तुम्हारा टैलेंट है, ये तो अच्छी बात है।
2: नहीं लिखते, बना के नहीं लिखते,
0: नहीं लिखते, ये किसका है?
2: मेरी बहन का, माहिरा,
0: माहिरा। अच्छा ठीक है,
2: मुझे भी लिखते था, अलग लिखते, उनको क्वेश्चन भी नहीं देखते।
0: अरे तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी एक टैलेंट है ना, तुम्हारे पास अलग टैलेंट है, उसके पास अलग टैलेंट है ना। हाँ तो बस ठीक है, बट देखो मैं क्लास जरूर लूंगा, एक बार पीटीएम हो जाने तो फिर बात करेंगे, ठीक है?
2: और एक कूदने का भी टैलेंट है इनके पास।
0: किसका टैलेंट है?
2: मेरे से 100 मीटर ज्यादा कूद लेते।
0: अच्छी बात है, तुम डिजर्व करते हो, पता है जो तुमने स्टार्ट किया ना उस पे तुम डिजर्व करते हो, अच्छी बात है। मैंने जैसे कहा उस मामले में माहिरा के साइड हूँ मैं पूरी तरह से।
2: ये जंपिंग रोप खेलते ना हम लड़का, हाँ। तो क्या करते कि फिफ्टी के ऊपर कर लेते हैं,
0: हाँ।
2: मैं तो 30 के ऊपर जा पाता
0: यार,
2: बहुत मुश्किल से। इन्हों मेरे को चिढ़ाते, बोलते कि देखो तुम्हारे पास ये वाला टैलेंट नहीं है, देखो।
0: तो जंपिंग रोप पे तुम 30 कर लेते हो?
2: हाँ कर लेता हूँ, 55 करे अभी तक है।
0: क्या बात है यार, वेरी गुड, ये तुम्हारे लिए सायरन बजाएंगे हम। वेरी गुड यार, ग्रेट टैलेंट, सही है, ये करते रहना, फिटनेस के लिए बहुत बढ़िया है। चलो ठीक है, फिर अभी हम बाद में बात करेंगे, स्कूल पहुँचो एंड फिर हम बाकियों को भी जवाब देने का मौका देते हैं, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। तो इन सब के बाद मैसेज आए हैं, अपने हिडन टैलेंट बताते हैं। माय रिलेटिव नेम इज अनीस, बताओ मेल है या फीमेल? ये क्या बात हुई। और आगे लिखते हैं, बट्टा वाकई हैदराबाद है, जबरदस्त दम चले लगा के लंबी लंबी फेंका आता पट्टे को। सही पढ़ दिया ना मैंने, मजाक में कहते मेरे सीएम को क्या बोल रहता है, बोले तो मेरे को भी नहीं मालूम इसका करेक्ट आंसर। सिविल इंजीनियर साहब, अभी भी ध्यान दें, ठीक है? आप इनकी बातों में ना आए। तला भाई लिखते हैं, गौर से आवाज़, घोड़े की आवाज़ हो जाए आपका, ये मेरे हिडन टैलेंट है। वालेकुम अस्सलाम तला भाई, कह रहा पार्टी कैसे में, बढ़िया भाई, अभी सुनाता हूँ अपने हिडन टैलेंट को। भाई का सवाल क्या है, आसिफ भाई में कह रहा था हिडन टैलेंट क्या आपका, छुपा हुआ टैलेंट। तब उस समय लिखते हैं, क्यूट हैदराबादी एक्सेंट, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जैस भाई आए, वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, बहुत सारा प्यार आपको। और हिडन टैलेंट अपना डिस्कस करते हुए यहाँ भाई लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, मेरा हिडन टैलेंट है कि मैं ज्ञान एक कान से सुनेंगे अनसुना कर देता हूँ। ओके, एक मैसेज है रमेश भाई का। भाई रमेश कह रहे हैं, भाई काफ़ी दिन बाद गाड़ी मिली है, एक्सीडेंट की वजह से ब्लॉक हो गया था, कल से गाड़ी मिली है भाई। भाई बहुत बढ़िया भाई, अब सुन पा रहे हो ना भाई। एक और मैसेज आया है कबीर भाई, एक पिंक वैन की है, ये टहल रही है भाई। पिंक वैन मिल गई भाई को, अरे क्या बात है भाई। सुबह से पिंक गाड़ियाँ नजर आ रही हैं लोगों को, दिन अच्छा जाएगा आज, फिलावरी। एक मैसेज है, अली हैज सीन अ कुवैती पिंक ट्रक मेनी टाइम्स, दिस कार हैज एन अकाउंट, दिस इज अ हिडन टैलेंट, ही विल सी कार्स अराउंड, ही विल रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट द कार। क्या बात है यार। तो अलीना के भाई जो है अली, उनका टैलेंट ये है कि वो जो चीज़ देख ली जहन में ऐसे पिक्चर परफेक्ट मेमोरी बन जाती है। और आगे उन्होंने लिखा है, द कलर स्पेक्स एंड समटाइम्स इवन द ड्राइवर, इफ ही फाइंड्स द सेम कार ही विल रिकग्नाइज एंड टेल वेयर ही हैड सीन एंड इवन इट वाज ड्रोव बाय समवन एल्स। ये तो आपके घर में शर्लोक होम्स है भाई साहब, इसको तो जासूस बनाइए, ये तो बहुत बढ़िया टैलेंट है। एक मैसेज है, भाई मेरे अंदर छुपा हुआ टैलेंट कितना मालूम, 6 में 6 वॉइस में बात कर सकता हूँ आपसे, सैंपल भेजो, अभी कॉल लगाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, हिडन टैलेंट तो है, मुझे कैसे पता चलेगा? आपके लिए अस्सलाम वालेकुम, एक मैसेज आया है, मेरे हिडन टैलेंट ये है कि मैं बिना अलार्म के उठ जाता हूँ। हकीम भाई ये सच में टैलेंट है, भाई ये हल्के मत लेना भाई, ये सच में टैलेंट है। और फरहत भाई कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम खैरियत भाई, आज जो सोया हूँ 4:30 को, उठना था लेकिन 5:45 कैसे हो गए पता ही नहीं चला, ऐसे ही हो गए बस, अच्छे ख्वाब आ रहे होंगे। वैसे भाई अब हिडन टैलेंट नहीं रहे, सबको पता चल गया है कि क्या क्या कर सकते हैं फरहत, क्या कर सकते हैं फरहत भाई, ये धमकी उमकी दे रहे हो क्या? करें ये टैलेंट तो क्या होता है, सबको पता है फरहत क्या क्या कर सकते हैं। सुभाष भाई कह रहे हैं, किरण नाम मेल है या फीमेल? भाई दोनों देखे हैं मैंने, किरण मैंने मेल भी देखे हैं और फीमेल भी देखे हैं भाई। तो ये तो जैसे एमन नाम है, अब एमन नाम जो है वो आपको फीमेल भी मिलेगा और मेल भी मिलेगा भाई, ठीक है? तो ये मेरे साथ खेल नहीं खेलो, कन्फ्यूज़ मत करो सवेरे सवेरे मुझे, मैं वैसे ही कन्फ्यूज़ हो गया हूँ। हमारे ये जेसन भाई जो है इतना बड़ा शौक दे के चले गए हैं, और जेसन भाई ने अपना हिडन टैलेंट नहीं बताया, वो कह रहे हैं मेरे हिडन टैलेंट छोड़ो तुम, ये जान लो मेरी हिस्ट्री क्या है। वो खुद तमिलियन है, वो भी इंडिया के तमिलनाडु से हैं, और उनकी जो अम्मी हैं वो कराची से हैं। ये मैंने कभी, ये कॉम्बिनेशन भाई मैं सच बता रहा हूँ मैंने नहीं सोचा था, ये टैलेंट तो नहीं है ऑफकोर्स। मगर जो भी है ये बहुत खतरनाक है भाई, ये कॉम्बिनेशन मैंने नहीं सोचा था। और रियाज भाई कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरा हिडन टैलेंट है कि मैं वाइफ को बहस में हरा देता हूँ, वो मुझसे कही के तुम कैसे इंसान हो, कुछ असर ही नहीं होता तुम पे, मैं कहता हूँ मेरी

0: मैं काफी सारी आवाजें निकाल लेता हूँ, उसमें घोड़े की आवाज भी है। दो तीन भाई ने बोले तो निकाल देता हूँ। ओके रेडी आप? ये एक चैलेंज है मेरा, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट वॉइसेस दैट आई डू। अभी चाय नहीं पिए ना मैंने, चाय पिए तो और बढ़िया भाई, एकदम नेचुरल। घोड़ा भी बोले है ये कौन था उसको समझ, मैं घोड़े को कंफ्यूज करता हूँ कई मरता हूँ, मैं घोड़ों के साइड में जाके ऐसी आवाज़ निकाल देता हूँ, एंड द हॉर्स इज काइंड ऑफ कंफ्यूज, क्या मेरे अलावा तो यहाँ कोई खड़ा नहीं है, दूसरी आवाज़ आई कहाँ से, मैं उनके लिए हॉरर मूवी की तरह नहीं बच जाता हूँ। कहते हाँ रियाज भाई तो हवा, हाँ उनके लिए गाना वही जो कल मैंने चलाया था, मैं हवा में हूँ। तो भाई ये मेरा टैलेंट है, थोड़े बहुत टैलेंट है मेरे में। वैसे मैं आइसक्रीम वाले की आवाज़ भी निकाल लेता हूँ, आइसक्रीम वाली आवाज़ मेरी फेवरेट है, जिस आप उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती ना। आप आपको बताइए जहाँ भी आइसक्रीम वाले होते हैं वो आइसक्रीम, वो वाली आवाज़ मेरी फेवरेट है, आई जस्ट लव इट मैन, वो मेरा बचपन याद दिला देती है एंड आई प्योरली लव इट। वो आते कि आइसक्रीम, एक मैं ये जेसन का पप्पा का टैलेंट है भाई। तला भाई आप शॉक्ड नहीं है, मैं तो हूँ भाई। आप शॉक्ड नहीं, मैं बहुत खतरनाक शॉक्ड हूँ। एक कॉल आ रही है हमें सीधा बहरीन से, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कबीर भाई?
0: मैं बढ़िया हूँ भाई, आप बताइए क्या हाल है आपके?
1: बस बस बस बढ़िया बढ़िया जी, अल्लाह का शुक्र है
0: जी। कौन सा हिडन टैलेंट लेके बैठे हुए आप बहरीन में?
1: हिडन टैलेंट बोले तो मेरे अंदर क्या है, जैसे कोई चीज खराब हो जाती है घर में तो मैं उसको उसको खोल के देखता हूँ।
0: अरे वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस, अच्छी बात है।
1: हाँ उसको खोल के देखते हैं, कई बार क्या होता है सही भी हो जाता है और कई बार जो है वो खराब भी हो जाता है। तो जैसे जैसे पंखा आवाज करने लगा तो अम्मी कहेंगी यार पंखा आवाज कर रहा है, मैं उसको खोलूंगा। कई कई बार क्या होता है सही हो गया, तेल वेल डाला कुछ किया सही हो गया, कई बार क्या होता था कि वो जो चल भी रहा था वो भी बंद हो जाता है।
0: अम्मी कह रही है पंखे से आवाज नहीं आ रही, ये तो बंद हो गया। हाँ तो आप ही तो कह रही थी आवाज आ रही है।
1: तो ये मेरे अंदर पता नहीं क्या है, मतलब कोई भी चीज खराब होगी ना मुझे उसके बारे में मालूम हो ना हो, लेकिन मैं उसको जो है खोल के जरूर देखूं।
0: भाई भाई भाई आई रियली लाइक यू ऑन दिस भाई, भाई के लिए हूटर बजेगा भाई, वेरी गुड यार। ऐसे लोग मुझे बहुत सही लगते हैं, जिज्ञासु लोग एकदम क्यूरियोसिटी से भरे हुए। कभी कोई चीज ठीक करी है वैसे आपने या खराब ही करी है?
1: नहीं नहीं, कई बार सही भी हो जाती है, नहीं समझ में आ रहा तो YouTube पे देख लिए कि भाई कैसे सही होगा, तो कई बार सही भी हो जाती थी।
0: भाई ऐसे ही रहना भाई, मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ ऐसे लोग, बहुत सही जा रहे हो आप, ऐसे ही सही है भाई। मैं तो मैं पता आपको, मैं हीटर का एलिमेंट ठीक कर लेता था भाई एक टाइम पे, भूल गया मैं, मेरा हिडन टैलेंट था वो।
1: मैं भी वो सब हीटर का एलिमेंट है, कई बार वो कंडेंसर लगाना होता था पंखों में, वो लगा देता था मैं, तो कई बार सही हो जाता था।
0: और बड़ी

0: हमारे सामने खोल खाल के ठीक भी कर दिया।
1: और हमने जो है घर पे जो है सारा रखा हुआ है, मतलब औजार जो है।
0: वेरी नाइस यार, वेरी नाइस भाई, आई एम रियली इम्प्रेस्ड भाई। ये रखिएगा ऐसे, करिए, करता करते रहा करें।
1: कभी जैसे बाइक में वो ब्रेक नहीं लग रही है तो हम लोग देखते थे ना कि वो मैकेनिक कैसे टाइट करता है, तो अपने हाथ से थोड़ा टाइट कर दिए। ऐसे ऐसे मतलब जो है छोटी छोटी चीजें जो है ये मतलब खुद से करने का वो रहता है।
0: अच्छी बात है भाई,
1: क्या लेके जाए मैकेनिक के पास, खुद ही कर लो।
0: पर बड़ी बड़ी चीजों के साथ पंगा मत लेना भाई, जो चीज सही हो सकती है वो भी गई काम से।
1: इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है तो वो तो चढ़ना ही मुश्किल है।
0: फिर ठीक है, नहीं पर अच्छी आदत है भाई, ये अच्छी आदत है, ये बना के रखे आप। बाकी बहरीन में क्या मौसम है अभी, गर्मी तापमान कैसा है? क्या
1: मौसम अभी, कल से गर्म हो रहा है।
0: अरे ठीक ठीक,
1: आज भी गर्म है।
0: उधर बादल है तो थोड़ा भिजवा दीजिएगा बहरीन में, अगर आए हमारी तरफ आएंगे हम भिजवा देंगे, ठीक है भाई?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: बहुत प्यार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने के लिए, थैंक यू भाई।
1: ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज।
0: तो ये अच्छी ऐसे जिज्ञासु बच्चे बहुत आगे जाते हैं भाई, रियली रियली इम्प्रेस्ड भाई। और तब उसमें मैंने कह रही खाला की आवाज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट आवाज़, जो मेरी बेबी खाला है, मैं पता उनकी आवाज़ रिकॉर्ड करके लेके आऊँगा इंशाल्लाह। अरे मैं यूँ ना कह रही थी, ये तबसम तो पूछे जाए चैना, ये रिदम में बात करनी पड़ेगी बहन आपको। इफ़ यू वांट टू बिकम माय खाला टाइप वॉइस, यू वांट टू टेक दैट वॉइस, यू हैव टू फॉलो द रिदम। अरे कह रहा हूँ ये दिस इज द फ्लो। एक टैलेंट ये भी कि हर बात भूल जाता हूँ। हाथ मिलाइए समी भाई, सेम हाल है भाई। एक मैसेज है फरहत भाई, नेशनल ज्योग्राफी के पास वो मैं एक टाइम में बहुत निकलता था भाई। और अब मादा शेरनी गुफा से बाहर आ रही है, मैसेज करने वाले लोग मुझे क्या कह रहे हैं। हाँ ये भाई ताहिर भाई ने अपना हिडन टैलेंट बताया, हिडन टैलेंट इनका मुझे भी रिसेंटली डिस्कवर किया, मैं हिल गया। कह रहे हैं कि बिना चाय और कॉफी के फंक्शन कर पाते हैं भाई। आप तो भाई आप इलेक्शन में खड़े होइए, कहाँ हैं आप? ताहिर भाई ये बहुत बड़ी बात है, बिना चाय बिना कॉफी के आदमी फंक्शन कर पा रहे हैं यार, क्या बात है। और एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आई कैन कॉपी सिग्नेचर्स। हैं अरे अरे ये हमारी बहन समीरा कह रही है कि आई कैन कॉपी सिग्नेचर्स और मुझे बातें वर्ड टू वर्ड विद फेस एक्सप्रेशंस याद रहती हैं। बहन सॉरी अगर पहले कुछ कहा होगा भी तो भाई बड़ा खतरनाक टैलेंट है बहन। इसका शिकार कौन कौन हुआ है सच्ची बताना मेरे को, आई वुड लव टू नो, स्पेशली हमारे भाई साहब, उनका क्या सीन है यार? ये तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है, एक्सप्रेशन के साथ आवाज़ याद रहना। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब क्या खैरियत से? लोगों के टैलेंट सुन के मेरा दिल इतना भारी होगा भाई, आप बताइए क्या हाल है आपके?
2: अरे भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब कि अपना खाला वाला टैलेंट मत निकालो भाई।
0: क्यों?
2: खाला परेशान हो जाएंगी अगर सुन लिया तो।
0: मेरी खाला को परेशान करने के लिए तो मैं इस धरती पर आया हूँ मेरे भाई। मेरा तो जन्म सिद्ध अधिकार है।
2: खाला तो इतनी अच्छी होती है, इतनी स्वीट होती है, वो सबसे ज्यादा केयरिंग होती है।
0: आपकी तरफ की होती होंगी भाई, हमारी वाली तो कसम से बैकग्राउंड में चलता है निका। अरे आपको पता नहीं भाई, हमारे घर पे तो बस क्या ही कहें। वो तो चाकू होता है ना, दिखता है कि इसे तो कुछ नहीं कटेगा भाई, लेकिन पूरा का पूरा एकदम बकरा उतार दे वैसी वाली चुरी है। हाँ भैया क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप। और बताइए आपका हिडन टैलेंट क्या है भाई साहब?
2: भाई साहब अपना तो एक ही हिडन टैलेंट है।
0: क्या हिडन टैलेंट है भाई?
2: बिना अलार्म के 5 मिनट और सोने का बहाना बनाना, और वो 5 मिनट कब 2 घंटे में निकल जाता पता नहीं चलता।
0: ये तो मेरे साथ भी भाई, मैं कोशिश करता हूँ 2 मिनट तो मैं ऐसी नींद खींचूंगा, वो 2 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं, इसलिए मैं रिस्क लेना छोड़ चुका
2: हूँ। बिल्कुल भी
0: मैं नहीं लेता भाई रिस्क, मैं बिल्कुल अब रिस्क लेना मैंने छोड़ दिया है। अब मैं 7 अलार्म लगाता हूँ और 5वें पे उठ जाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे 6ठे 7वें अलार्म पे कोई भरोसा नहीं है भाई, तो 5वें तक उठ जाता हूँ मैं।
2: तो भाई कभी कभी जब देख लेते हैं ना कि नहीं उठना है ना, अलार्म बजता रहेगा 5 मिनट बाद में हाँ साइलेंट करा फिर सो गए, फिर 5 मिनट बाद बजेगा फिर साइलेंट करा फिर सो गए।
0: ये जो आप नहीं, ये आप जो ये खेल खेल रहे हैं, ये कभी खेल ने आपके साथ खेल दिया ना जैस भाई, तो मजा ही आ जाएगा आपको, सोच रहे हैं आप? ध्यान रखिए भाई, ये
2: पहले शुरू में चीज से प्रॉब्लम हुई थी, मगर अब नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह, सब सब नॉर्मल है।
0: रिक्सी मामला है थोड़ा सा, समझ रहे हैं?
2: रिस्की है, पहले था भाई, पहले ये होता था रिस्की। हाँ। मैं कई बार डांट पड़ी है इस चीज पे मेरे पर।
0: हाँ।
2: मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं है, अब कोई कुछ नहीं कह
0: पता। ऐसे में एक सिपाही रखना चाहिए जो आपको कॉल करके उठा सके भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, ये बड़ा जरूरी है। मैंने भी भाई बहुत सारे सिपाही रखे हुए हैं कि भाई कॉल कर देना चेक करने के लिए, ये बंदा धरती पे है कि नहीं, तो सही रहता भाई। सही रहता।

0: ठीक है जैसे भाई, बहुत बहुत प्यार आपको, और देखते हैं लोग क्या बोलते हैं। चलो ओके भाई, अल्लाह हाफिज। प्रिंस भाई कह रहे हैं भाई ये क्या था, सांभर विद भटूरा, ये कैसा कॉम्बिनेशन है भाई? मैं खुद हैरान हूँ, आप क्या बात कर रहे हैं, मैं खुद हैरान हूँ प्रिंस भाई। वो जो भाई बता के गए जेसन भाई कि वो खुद तमिलनाडु से हैं, उनकी अम्मी कराची से, मैं तो डर गया, म्यूजिक रुक गया भाई, मेरा दिल रुक गया, क्या बात कर रहे हो आप। एक मैसेज है भाई, थ्री डेट वाला आमिर खान है, फ्रिज का डोर लगा के छोड़ता है और वो गिर जाते हैं। एक मैसेज है बहरीन वाले भाई ने, सामने का कोई ना बोले कि तबीयत ख़राब है, कुछ की ख़राब उसको ओपन कर। लेकिन अच्छी बात है ना भाई, बहरीन वाले भाई की, हमारे कासिम भाई अच्छी आदत है ये। एक कॉल आ रही है, ज़रा कॉल उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी। अरे भाई बढ़िया भाई, आप सुनाइए क्या हाल है भाई के?
1: क्या बात है, लोगों के जो है ना राज निकाल रहे हैं आप, टैलेंट।
0: पर टैलेंट देख रहे हैं आप, कितनी खतरनाक टैलेंट है भाई।
1: अपना भी एक टैलेंट है भाई,
0: बताइए।
1: कोई भी काम अगर जो है आधा घंटा एक घंटा देख लिए तो कर लेंगे।
0: हैं, बड़े ज्यादा स्पीड वाले लर्नर है भाई, ज्यादा स्पीड से नहीं सीखते आप, क्या बात है यार कमाल भाई।
1: हाँ भाई।
0: अच्छा,
1: टीवी में अपने हाथ से बनाता हूँ, मोबाइल ज्यादातर अपने हाथ से बनाता हूँ।
0: क्या बात है यार,
1: फ्रिज भी अपने हाथ से करता हूँ,
0: ये सारे काम आप कर लेते हैं, ये तो बेहतरीन।
1: हाँ कर लेता हूँ भाई।
0: भाई अब तो फिर
1: सबसे सबसे बड़ी खासियत क्या है मालूम है? एक टैलेंट और है।
0: क्या?
1: कोई कुछ बोलता है ना, जैसे कि झगड़े हुए कुछ बेरे, टून याद रहती है, अल्फाज भूल जाता हूँ।
0: ये आपके लिए लड़ाई जो है स्पेनिश गाना है, मुझे इतना याद है कि देस पस, आगे कुछ नहीं पता, गाना बढ़िया है। है ना, ये वाला सीन है।
1: ये बहुत बार होता है भाई, कभी कभी वाइफ से भी झगड़ा होता है, क्या बोली बताओ, खाली टून याद है
0: मुझे, टून याद है बस। अरे भाई यार, ये आ तो मतलब एकदम ये डायलॉग हो सकता है किसी पिक्चर का, मुझे सिर्फ उसका टून याद है, साउथ की पिक्चर का डायलॉग हो सकता है। वेरी नाइस कमाल भाई। पर ये जो आप इतना सब कुछ ठीक कर लेते हैं भाई, इस टैलेंट का थोड़ा यूटिलाइज करें। मैं तो कह रहा हूँ मुंबई में 3-4 दुकानें डाल दो भाई, आप तो नहाओगे पैसों में भाई, क्या बात कर रहे हैं आप।
1: बीच मोबाइल की दुकान डाला था भाई।
0: हाँ तो फिर क्या हुआ?
1: बहुत वक्त पहले की बात है, जब कीपैड मोबाइल चलता था।
0: तो इस वक्त में भी डालिए भाई, इस वक्त में भी कुछ
1: करिए। करेंगे इंशाल्लाह,
0: करिए भाई,
1: थोड़ा जमा कर लिया जाए।
0: हाय क्या बात है,
1: इंडिया में कुछ करने के लिए बैलेंस चाहिए, पहले
0: बैलेंस चाहिए। सही बात है,
1: लगा रहे दुकान में उतना बैलेंस एडवांस में होना चाहिए।
0: नहीं भाई, आपको बहुत सारा प्यार भाई, ऑल द बेस्ट कमाल भाई, मेरा पूरा प्यार आपकी तरफ भाई, खुश रहे, मुझे पता है आप कर लेंगे इंशाल्लाह, बहुत दुआएं भाई आपके लिए। ये तो टैलेंटेड आदमी को मिलना चाहिए मदद।
1: बहुत भाई, कितना 4 या 5 साल दुकान चलाया मैंने,
0: अभी दोबारा खोलिए आप, इंशाल्लाह बढ़िया चलेगी, अब लाइफ टाइम चलेगी इंशाल्लाह,
1: चलेगी। इतने इलेक्ट्रॉनिक सामान आ गए हैं ना कि मतलब कोई भी चीज करने के लिए सब मशीन चाहिए, डिस्प्ले खोलने के लिए भी मशीन। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा
0: तो हो जाएगा। नियत रखिए, हो जाएगा इंशाल्लाह।
1: नियत है, बैलेंस जमा कर रहे हैं इंशाल्लाह।
0: और घड़ी में हो रहे हैं 7:02, और आप भी मेरा 7:02, as you know and jingle।

0: FM 107. Time check.
1: चेक 7:04 में दुहावाला कबीर एफएम 107 पे एक कॉल आ रही है। कॉल हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ी हुई है लेकिन कॉल जब उठ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।
2: क्या हाल है कबीर भाई?
1: बढ़िया भाई, आप सुनाइए क्या हाल है भाई के?
2: अल्हम्दुलिल्लाह
1: जी। मेरा भाई क्या कहना चाह रहे हैं?
2: हिडन टैलेंट के बारे में बात कर रहे हैं।
1: हाँ जी मेरा भाई, क्या छुपा हुआ टैलेंट है आपके अंदर, क्या कलाकारी है?
2: टैलेंट तो है, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ। जब तहफ़्फ़ुज़ में पढ़ता था उस वक्त अब्बू के पास हफ्ज़ किया मैं।
1: पर ये तो हिडन टैलेंट नहीं होना है, तो ये तो बहुत अच्छा टैलेंट है भाई। हिडन थोड़ी है ये।
2: आवाज से मैं तिलावत कर सकता था, जैसे कि
1: अच्छा
2: मक्का में कुछ इमाम था, मदीना में कुछ इमाम था, इन लोगों के आवाज से मैं मुल्क के मस्जिद में हर वक्त में अलग अलग स्टाइल में तलावत करता था। वो अब्बू जाके घर में बोल दिया कि ये तो नकलबाज है, उसके बाद से मैं छोड़ दिया।
1: अरे क्यों छोड़ दिया? ये तो अच्छी चीज की नकल कर रहा है ना, इसमें क्या बुराई है? तो अच्छी बात है मेरा भाई, नथिंग रॉन्ग विद इट।
2: अब्बू का बात है, जो अपना वाला आवाज है
1: वो तो चलो वो ठीक है, उनकी बात भी सही है, लेकिन इसमें कुछ हर्ज नहीं है। मतलब ये तो अच्छी चीज कॉपी कर रहे हैं आप।
2: अब सोपो आकर आएगा ना बड़ा वाला मस्जिद में, तो अभी जिस आवाज में पढ़ता हूँ वो भी सुन सकता है।
1: अरे इंशाल्लाह भाई, जरूर जरूर जरूर मेरा भाई, ये तो डेफिनेटली ये मैं आपसे मिलना चाहूंगा। ये सुख वाकिफ में बड़ी मस्जिद की मस्जिद में इमाम है आप?
2: ये दानतुल बहार के साथ में जो मस्जिद है।
1: अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके ओके, हाँ समझा। बट भाई आप तो अच्छी चीज कॉपी कर रहे थे भाई, नथिंग रॉन्ग इन दैट, आई डोंट थिंक कोई इसमें बुरी बात है, अच्छी बात है भाई। ये तो आपने टैलेंट को हिडन रखा ही नहीं भाई, अच्छे टैलेंट को बाहर निकाला आपने। वेरी नाइस, इंप्रेसिव भाई, इंप्रेसिव, बहुत बहुत प्यार भाई को। और क्या नाश्ता पानी सब हो गया? ठीक है भाई, आप बिस्मिल्लाह करें और इंशाल्लाह कहानी सुनिएगा कुछ देर में, ठीक है? और अपने हिडन टैलेंट को शेयर करते हुए फराज भाई कह रहे हैं कि टैलेंट ऑफ द डे जेसन भाई का टैलेंट, भाई सच में टैलेंट है वो। और जैस भाई का हिडन टैलेंट है हिल ड्राइविंग। फराज भाई कुछ कह रहे हैं, उन्होंने इमोजीज भेजे हैं, फिर कह रहे हैं पूरा 17 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है आपका भाई। हैं मोइन भाई, मौत को छू के टक चबा भी जाते हैं। मजाक करने का छोटा टैलेंट है भाई, किसी को भी हंसा देता हूं। पर एक बात बताओ, ये 17 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूं, ये आप है? ये विद्युत जामवाल असली आईडी से आओ। ये क्या चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम कबीर भाई, क्या हाल है?
1: बढ़िया भाई, आप सुनाइए क्या हाल है भाई के?
3: जी बहुत बढ़िया
1: जी भाई, क्या छुपा हुआ टैलेंट है आपके अंदर?
3: टैलेंट तो सर हमारा ये है कि पहले तो जब मैं दिल्ली में रहता था तो आपको मालूम है लाल किले पे मार्केट लगता था चोर बाजार।
1: बिल्कुल भाई, बेहतरीन सबसे फेवरेट मार्केट है मेरी वो।
3: जी जी जी, हाँ। वहाँ से सामान लेना बहुत सस्ते फॉक्स हो गया अभी।
1: क्या बात है यार, गजब का टैलेंट है।
3: उसमें से मैं अपनी गाड़ी में लगाता हूँ, कुछ लोगों को भी चाहिए तो उनको भी बेचता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि तुमने क्या कचरा रख रखा है।
1: हाँ।
3: मैं बोला भाई हम लोग अमीर आदमी है, हम लोग तो भाई बक्सा लेकर के चलते राजा महाराजों के जैसा।
1: भाई सही बात है, ये कोई कचरा नहीं है भाई, आपका ये टैलेंट है। और ये तो भाई अच्छा, वो जो आप दिल्ली में कर रहे थे, ये आइडिया आया कहाँ से आपको? कैसे क्लिक हुआ कि ये मैं कर सकता हूँ? किसी ने
3: ऐसा था कि मैं कानपुर की जो ट्रोला चलाता था ना, वो हाँ, तो मैं रोड से जाना था, बस अड्डे वाले रोड से थे। ऐसे संडे का दिन था, मैं निकल देखा बहुत सारा भीड़ लगा हुआ यहाँ पे। क्या भाई, तो बोले भाई ये तो चोर बाजार है, यहाँ पे हर संडे को सामान मिलता है। अच्छा मैं गया पानीपत से, जब वापस आया फिर दूसरे संडे को, मैं बोला भाई आज हम मॉर्निंग में हमारी ड्यूटी नहीं रहेगी, रात में लगा हमारी ड्यूटी।
1: तो आप शुरू
3: सुबह सुबह समझे 6 बजे मैं पहुंच गया वहाँ पे। भाई साहब वहाँ जो हमने देखा जो नजारा, वो दादा परदादा के जमाने का कैमरा जी, और काफी सामान जूते जो मार्केट में उस जमाने में 1500-1800 होते थे, वहां पे 200-300 के मिल जाते।
1: भाई यार वो तो मुझे अच्छे से याद है, लेकिन आप इस मार्केट में जिस तरीके से उतरे वो सबसे ज्यादा शॉकिंग है मेरे लिए। ये तो बहुत कमाल की जर्नी है। तो 10-12 साल में ठीक ठाक कमा लिया होगा, मगर इतना तो कर लिया होगा।
3: आज भी हमारे पास काफी सामान होंगे घर पे, काफी जो लाल किला वहाँ के लिया हुआ सामान आज भी हमारे पास में है।
1: अरे यार बेहतरीन भाई, बेहतरीन माशाल्लाह। तो अभी आप दिल्ली में रहते हैं? किधर रहते हैं? सोनीपत?
3: जी जी दिल्ली में रहते हैं।
1: अच्छा ओके,
3: पहलादपुर।
1: हाँ अच्छा ओके ओके, नाइस। मेरा भाई यार क्या बात है भाई, आपके लिए तो भाई हूटर बनता है भाई। गजब भाई क्या ये तो यूनिकनेस बताइए आज अपने बारे में आपने, इम्प्रेसिव भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
3: हाँ क्या, मैं कहीं भी जाता हूँ जैसे हाँ? मैं तो जैसे सनिया में हूँ, कहीं पे भी हम हाँ? हमें ये पता होता है कि भाई कौन से दिन में कौन से टाइम में कहाँ पे कचरा मार्केट लगने वाला है।
1: अच्छा तो ये इसके लिए आपने लोग रखे हुए हैं?
3: जी जी जी
1: अच्छा ओके,
3: यहाँ पे भी एक से एक सामान, एक से एक टूल्स मिलते हैं कचरा मार्केट में, बस आदमी को पहचानने का वो होना चाहिए हुनर।
1: भाई सलूट सलूट भाई, आपसे तो दोस्ती करनी पड़ेगी।
3: वो यहाँ पे एक मॉनिटर हमने लिया था अभी कुछ दिन पहले 10 रुपए का, जिसमें लोकेशन बताते हैं ना बगैर जीपीएस के, हाँ तो वो हमने खरीदा, फिर हमने उसको 10 रियाल का लिया और 60 रियाल का हमने बेचा उसको।
1: यार भाई कमाल के हो भाई।

0: बहुत तेज तर्रार आदमी भाई, आपका नाम रफ्तार तो नहीं है बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, बड़ी ये मेहनत वाला काम है भाई, ये हर कोई नहीं कर सकता।
1: सर बस एक काम में मैं फंस गया, मैं एक काम में मैं फंस गया, इसका हमें बहुत अफसोस है।
0: क्या
1: जी?
0: क्या काम में फंस
1: गया? लड़की के लिए मैं लड़का देखने गया था, उस जमाने में वो हीरो मजिस्टिक मांग रहा था, एक आंख का कहना था, लास्ट में उस लड़की से हमारी शादी हो गई।
0: एक सेकंड पीछे जाओ, पीछे जाओ। क्या क्या क्या क्या क्या क्या
1: जिस लड़की से हमारी शादी हुई उसके लिए लड़का देखने में खुद गया था जी, और उस जमाने में वो हीरो मजिस्टिक मांग रहा था जबकि वो एक आंख का कहना था,
0: अच्छा,
1: और शादी हमारी उससे हो गई।
0: अरे भाई पर ये कैसे हुआ? लाइक मतलब आप ओके, जिनकी आप शादी कराने जा रहे थे उनसे आपकी शादी हो गई, ठीक है, पर ये हुई कैसे?
1: जी मसला ये ऐसे हो गया कि उसको कोई माँ बाप कोई नहीं था,
0: ठीक है
1: जी। उसके बाद में हम लोग जो लड़का देख रहे थे हमारे रिलेटिव में ही था, तो बाद में घर में हमारे फादर ने ये बोल दिया कि भाई ऐसा है तो अपने खानदान की लड़की है, शमशाद से ही शादी करा देते हैं। मैं भी हाँ भर दिया, हमें क्या पता था कि ये मुसीबत हमारे ही गले आएगा, हम जिसके पीछे इतना भाग रहे कर रहे हैं जिसकी शादी के लिए। बाद में हमसे ही शादी हो गई, और शादी भी इतनी आनंद फानंद में हुई, सुबह में बात हुई, दूसरे दिन निकाह हो गया। हमारे चाचा ने जो है तो कपड़े दिए, दूसरे चाचा ने वो जूता दिया, वो भी एक 7 नंबर एक 8 नंबर
0: यार
1: जी
0: भाई आप कुछ अलग ही दुनिया में जिए हैं भाई, तो मतलब बहुत अलग किस्म की कहानी है भाई आपकी तो। तो फिर जूते का जी। मैं बताऊं, जूते में इंटरेस्टेड हूँ, इतनी बढ़िया कहानी सुना दी भाई ने। तो ये जो जूता आपको दोनों अलग अलग, उसके लिए फिर क्या किया?
1: वो अभी तक है रखा हुआ अभी भी कोई सा बात होता हमने देख लो अपने खानदान वाले को एक जूता देने की औकात नहीं, दिए भी तो 7 नंबर 8 नंबर
0: तो ये इतनी जल्दी शादी करने की याद थी, मतलब तय तो हो गई होगी, तो अगले ही दिन मतलब आज सुबह
1: नहीं, बात ये हो गया था कि कहीं ये मना ना कर दे फिर।
0: आप मना ना कर दें?
1: हाँ जी जी जी जी
0: यार। तो भाई फिर अभी कैसा है रिश्ता, मतलब सब बढ़िया चल रहा है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ठीक है, हमारी एक लड़की की शादी हो गई। अरे ये कि हमारी लड़की अभी जो है वो कमांडो की तैयारी कर रही है।
0: अरे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई जी, भाई जी, आपकी तो कहानी लिखी जानी चाहिए यार, चलती फिरती बायोपिक हो भाई आप, क्या बात है यार। भाई आपको एक और हूटर मिलेगा भाई,
1: लेकिन मैं एक मैसेज ये देना चाहूंगा सर कि जब भी कोई आदमी शादी करे ना तो इतनी भी जाहिल लड़की से शादी न करे जो आपके स्कूल के पेपर से वो आग जला दे, और आप इतनी भी पढ़ी लिखी से शादी न करे जो वो आपके घर में आग लगा दे।
0: यार ये तो अरे जावेद अख्तर साहब क्या डायलॉग बोल गए किसने किधर आग लगा?
1: ऐसा हुआ है मेरे पास में पुराने पेपर थे हमारे स्कूल से, हमारी वाइफ ने एक बार ठंडी का टाइम था बच्चों को ठंडा उंडा ला रहे, पेपर तो काफी दिन से ऐसे रखा कोई काम करनी है, जला दिए पूरा स्कूल का सर्टिफिकेट, जला दिए
0: स्कूल के सर्टिफिकेट, जला दिए ठंड में गर्मी के चक्कर।
1: पढ़ी लिखी नहीं उसे मालूम नहीं एबीसीडी क्या है।
0: अरे बाप रे भाई, फिर क्या किया आपने? फिर जुगाड़ किए होंगे सर्टिफिकेट?
1: क्या करूं सर, वो उसमें हमारे पास वो भी सर्टिफिकेट था, दिल्ली में हमने जो TRI का जो एग्जाम दिया था ट्रांसपोर्ट रोड एजुकेशनल का,
0: वो भी थे उसमें,
1: की वजह से हमें उसको भी जला दिया उसने।
0: फिर आगे क्या हुआ पिक्चर में बताना चाहेंगे मालिक अगले एपिसोड?
1: क्या बताया सर
0: कि क्या
1: मेरे हालात मत पूछिए, मैं हंस के भी बोलूंगा तो आप रो देंगे।
0: अरे रे रे रे मेरा भाई हीरो यार आप पिक्चर के भाई, छोटी मोटी कहानी नहीं है आपकी भाई, भारी आदमी हो। लेकिन फिर अच्छा मैं सच्ची में दिल से जानना चाहता हूँ, फिर आगे क्या मतलब जुगाड़ किया सर्टिफिकेट का, क्या किया?
1: नहीं किया, क्या जुगाड़ करें सर, नहीं हुआ जुगाड़। फिर तो मैं इधर कतर आ गया, मैं 2006 में कतर आ गया था, मैं इधर लेबर कम में आया था, बस आप लोगों की दुआ से मेरी, मैं आपको पहले भी बताया कि मेरी खुद की कंपनी है, शायद उसी की दुआ से हो
0: भाई। ये बात भी है माशाल्लाह भाई, हम भाई आपकी तो जर्नी का आर की कमाल का है भाई, आप अलग सीन है भाई, हम मैं सुन के बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ भाई, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ आपको हमेशा ऐसे कामयाब रखे, चलती फिरती भाइयों के भाई आप पे तो पिक्चर बननी चाहिए।
1: मैं एक बात में सोचता कभी भी कि आपके आपके कोई भी अगर आप बिजनेस है कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें एक बार जो है आपको लॉस होना बहुत जरूरी है, और जिंदगी में एक बार खराब टाइम आना बहुत जरूरी है, इसमें आप पहचान जाएंगे कौन आपके साथ है कौन आपके खिलाफ।
0: अग्री करता हूँ भाई, अग्री करता हूँ मैं 10,000% अग्री करता हूँ, मेरा भी एक बुरा टाइम 2020 में
1: जब हमने कंपनी खोला था तो हमारे रिश्तेदार क्या बोल रहे थे हमें, अरे जाके लाल किले पे बैलून बेच लेता वो डंडे में बांध करके, तुम्हारे बस की बात है यहाँ पे कंपनी खोलना, जी, लेकिन अल्लाह ने हमें कामयाब किया,
0: झंडा गाड़ दिया भाई ने। भाई क्या बात है यार, क्या बात है, हीरो भाई यार, बहुत बढ़िया भाई। थैंक यू सो मच भाई कि आपने अपनी कहानी शेयर करी। मतलब ये लोगों को सुन के मैं ब्रिटिश और मजा आ गया होगा।
1: अरे सर, ऐसा ऐसा हमारे जिंदगी में हुआ है। ऑफलाइन अगर आप बात करते हैं, मैं आपकी अगर सारी कहानी मैं आपको अपनी बताऊं तो आप एक कहानी आप रेडियो पे बोल देंगे।
0: भाई आप मुझे बताओ यार, मैं सच्ची दिल से बता रहा हूँ, जस्ट टेल मी भाई, आप मैसेज करो मुझे, बताओ यार, मैं जानना चाहूंगा सही में। ठीक है, मैसेज करना मुझे।
1: बहुत एक सर एक ऐसी कहानी मैं बोलूंगा आपको, आप सुनना, आप उसको रिकॉर्डिंग कर लेना, फिर आप सुनना कि देखना ये क्या है। लेकिन जब मैं 2006 में आया था तो हमारे दिमाग में ये था कि जिस हालात से मैं गुजरा हूँ और न गुजरे, क्या समझे, उसके लिए गांव में हमने एक सिस्टम बनाया कि आप ये पैसा लो, आप इससे विदेश जाओ, फिर वो पैसा वापस करो, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, और कई चीज हमने लाया अपने गाँव में।
0: कौन सा गाँव है?
1: लोगों को ये चीज पसंद नहीं आया।
0: कौन सा गाँव है
1: जी?
0: कौन सा गाँव है?
1: मैं बिहार से हूँ, दरभंगा।
0: अच्छा, दरभंगा से। तो यार ये तो अच्छा सिस्टम है गाँव का, तो फिर लोगों को पसंद क्यों नहीं आया?
1: लोगों को अच्छी चीज पसंद नहीं आते। मैं वॉल्वो बस चला रहा था, आपको पता है आज के दिन में B11 आज जो है ना वो आपको करीब 1.5 करोड़ का, और बिहार में मैं उसकी हमारी सर्विस हुई थी।
0: हाँ।
1: और वो भी इत्तफाकन हुआ था, जैसे हमारी शादी इत्तफाकन हुई थी ना, सेम वैसे हमारी नौकरी भी इत्तफाकन हो गई थी। और हमने रिजाइन दे दिया। क्यों? अरे इतनी अच्छी गाड़ी जा रही है, बस में पत्थर मारो उसी से तोड़ दो। जब बताइए लोग क्यों का मेंटेलिटी
0: भाई। मैं
1: अंदर कारपेट बिछा हुआ है, कारपेट में थूक देना, क्या समझे? अब लोगों को बोले भाई अंदर क्यों जा रहे, हम कहाँ जाए थूकने के लिए, अंदर कुछ है ही नहीं।
0: भाई एक काम करो आप, ठीक है, अभी हमारे पास शो में तो टाइम कम है, लेकिन आपका नंबर मेरे पास है भाई, जरा बात करते हैं भाई, मैं जानना चाहूंगा आपकी कहानी। ठीक है, मैं मुझे जरूर बताना
1: आपको। मैं ऐसी मैं अपनी जिंदगी बताऊंगा तो आप ये कहेंगे कि शहजाद में आप जिंदा कैसे हो।
0: डन डन डन डन। मैं भाई मेरे से बात करो भाई, आप मैसेज करो भाई, मैंने अभी आपका नंबर नोट कर लिया, बात करेंगे भाई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई टाइम देने के लिए भाई। थैंक यू, थैंक यू।
1: ओके,
0: अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज भाई। मैं बोलने के लिए बाकी कुछ रहा नहीं है यार, ये तो कमाल हो गया। ओके, कुछ मैसेज पढ़ देता हूँ, फिर गाने की तरफ बढ़ना है क्योंकि आई हैव टू टेक अ ब्रेक नाउ। एक मैसेज है, मेरे टैलेंट है भाई कपड़े में बहुत अच्छे से प्रेस कर लेता हूँ, ये उमर शहजाद साहब, काश मेरे पास ये टैलेंट होता भाई, आई विश आई कुड डू दैट। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम जाफर दिस साइड, मेरा टैलेंट है भाई मैं सोते हुए भी बात सुन लेता हूँ, मेरे कान नहीं सोता, बड़ा मज़ा आता है, 2-3 दिन के बाद उन्हीं लोगों को वही बात पूछता हूँ। लिखते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं कि इसे कैसे पता, जाफर सो नहीं रहा है, जाफर जागा हुआ है। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, अभी तो मैं शौक में हूँ। मोहसिन भाई कह रहे हैं 5 मिनट सोया, 1 घंटे सोया रहेगा और ऑर्डर लेट हो गया। अरे रे, जागते रहो। कमाल भाई से पूछना मुंबई में कहाँ से हो। कमाल भाई बता दो कहाँ से हो। और एक मैसेज है, इमरजेंसी में अच्छा काम ले सकते हैं क्या? पायलट बनना चाहिए। कैसे हैं भाई को? पायलट बनना चाहिए, आधे घंटे में सीख जाएंगे भाई, हैं टैलेंटेड हैं। पूछना था कि खास मुंबई से आप मुझे लखनऊ से लग रहे हैं। भाई मैं दिल्ली से हूं भाई, दिल्ली का टैलेंट है भाई, हम दिल्ली के गबरू हैं। एक मैसेज है, अच्छा तो है ये टैलेंट भाई के अंदर। और क्या है, मेरे पास सोने का टैलेंट है, ये तो चलो ठीक है। फरद भाई वालेकुम अस्सलाम। माज भाई कह रहे हैं इनके डिटेल्स निकाल कर अच्छे से स्टोरी सुनाओ, वही करूँगा भाई मैं। मलिक वकास साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कबीर भाई क्या हाल है, लॉन्ग टाइम नो मैसेज फ्रॉम यू भाई, फ्रॉम यू। और एक मैसेज है, बीवी ने सर्टिफिकेट को जला दिया लेकिन बेटी की तरबियत की कमांडो तक पहुंच गई। फाद भाई सोच रहे हैं, ये चलती फिरती कहानी है ये। तबसुम बहन लिखती हैं, दिस इज़ वाई आई लिसन टू योर शो डिस्पाइट बींग वेरी स्लीपी। बहन थैंक यू सो मच, दैट्स अ ह्यूज ह्यूज कॉम्प्लीमेंट बहन। बहन कह रही इसीलिए तो मैं सुनती हूँ तुम्हारा शो, थैंक यू सो मच। नसीम भाई थैंक यू सो मच, तला भाई ने फोटो भेजा है फाइंडिंग ओरिजिनल नेम, मतलब वो अलग लेवल का बंदा था, ये अलग लेवल का बंदा नहीं था। इसिया गुस्मानी भाई कहते हैं, कबीर भाई मेरा हिडन टैलेंट ये है कि मैं किसी भी काम को कल कर लूँगा बोलकर इतना आगे टाल देता हूँ कि वो काम अपना इरादा बदल कर खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। बहुत बढ़िया चीते। मैं भी बिहार से भाई, समस्तीपुर से, दरभंगा से जस्ट बाजू में है। ग्रेट इश्तियाक उस्मानी भाई आपके बिहार से ही। एक मैसेज है, वाह मेरे मोहन भार्गव। ये प्रिंस भाई कह रहे हैं। और अरसलान भट्ट साहब कहते हैं, भाई भाई डायलॉग राइटर है भाई, पर सच्चा प्यार मिला है भाई को। ये बात तो माननी पड़ेगी इनको भी, सच्चा प्यार मिला ही नहीं कि आज यहाँ पे बिजनेस वजनेस सब चल रहा है इनका। एक मैसेज है, ये मेरा हिडन टैलेंट है कि मैंने बनाया था बड़े, मैं क्या, मेरे स्पॉन्सर की बातों को लेकर फिर बाद में कतर म्यूजियम में रखा गया। माशाल्लाह ये तो बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है मेरा भाई, ये टीवी के अंदर आपने जो आर्टिस्टिक किया ये भेजेगा मुझे। ओफ दिस इज टू मच टू टेक भाई, आई हैव टू टेक अ ब्रेक नाउ। भाई तो बहुत ही अलग किस्म के निकले यार। मिलते हैं भाई गाने के बाद। आई रियली नीड अ ब्रेक नाउ। मैं कह रहा था आपका हिडन टैलेंट क्या है भाई, ये जो बिहार के हमारे भाई थे, भाई बाजी करो भाई तुम।

0: बाजीगर।
1: हाँ जी, क्या क्या क्या क्या क्या, मैं ये एक मैसेज आया था, ये मुझसे इरफान भाई कह रहे हैं मैसेज पढ़ोगे, प्लीज बिलाऊ भाई पढ़ रहा हूँ, सॉरी। अपना टैलेंट बताते हुए मैसेज किया है हमारे इरफान भाई ने, क्योंकि मैं पूछ रहा था आपका हिडन टैलेंट क्या है। भाई मैं तो शौक हो चुका हूँ इतनी सारी बातें सुन के ना, अलग अलग लोग जो अपनी कहानियाँ शेयर करते हैं, मैं भाई इम्प्रेस्ड भी हूँ, आई एम हैप्पी कि सुबह लोग इतनी अच्छे से रॉ तरीके से अपनी कहानी बता देते हैं, एंड आई एम ऑल्सो शॉक्ड। मुझे पता नहीं होता कि कहाँ तक बात चली जाएगी। इरफान भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, बहुत प्यार भाई को, लिखते हैं मेरा हिडन टैलेंट ये है कि मैं किसी को भी बेवकूफ़ बना सकता हूँ, वाह मेरे चीते। कहते हैं मैं पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर को भी बेवकूफ़ बना चुका हूँ, ये लो जिसका जिक्र उन्होंने खुद की लिखी हुई बुक में मौजूद है। बाय द वे इरफान भाई ने एक्चुअली में किया है, और वो क्रिकेटर साहब जो है उन्होंने अपनी किताब में मेंशन भी किया है इरफान भाई को, दैट इज़ अ ट्रू फैक्ट। आगे लिखते हैं मैं खड़ूस रिश्तेदारों की मिमिक्री भी अच्छी कर लेता हूँ, हाई फाइव। लिखते हैं यस आई कॉपी सिग्नेचर एज वेल एज इवन आई टुक 2000 कतरी रियाल फ्रॉम कैशियर एज आई ओ यू कीपिंग इन लूप माय मैनेजर एंड आफ्टर रिवीलिंग द होल केस आई हैड ट्रीट फ्रॉम देम दैट कैशियर वर्थ ऑफ 200 कतरी रियाल एंड रिटर्न हिज मनी लेटर कैशियर ब्लैकमेल्ड मी एंड दैट ही विल स्पीक टू जीएम एंड देन आई अपोलोजाइज बट 200 का खाना तो खाया। आगे कहते हैं मैं बहुत बहुत शैतान आदमी था, ऑफिस में जो लोग वॉशरूम जाते थे आउटसाइड डोर पे मॉप रख देता था, वेन एवर ही ओपन द डोर देन मॉप ऑन हिज बॉडी। आज तक नहीं पता चला कि ये टैलेंटेड शख्स कौन है, अब पता चल जाएगा, अब पता चल चुका है इरफान, कहाँ तक भागोगे। ये कह रहे हैं जावेद अख्तर हैं या कुछ भी कह सकते हैं, पर देखिए बात तो भाई आप स्टोरी तो है भाई, ये तो यू कैन नॉट डिनाई मेरा भाई। हमजा भाई कहते हैं कबीर भाई सोने का टैलेंट बस क्या बताएं, कहते हैं मोहब्बत में नींद उड़ जाती है, कोई हमसे भी मोहब्बत करे मखन हमें तो नींद ही आती है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी सुभाष भाई ने उनकी कहानी बोला है, तला भाई अभी कॉल लगा रहा हूँ, एक और भाई ने बोला मुझे कॉल लगाने के लिए, एंड इतने टैलेंटेड लोग हैं कि अब हम क्या बोलें, काम पर जाओ सो जाओ। ये करम भाई दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू नाउ, मैं खुद हार मान चुका हूँ, मेरा मैसेज भी देख लो क्या कह रहे हैं भाई, मेरे अंदर अनेक टैलेंट हैं, बताओ क्या मैं हवा में पतंग उड़ा के दूसरे की पतंग काट सकता हूँ और गोटी खेल सकता हूँ और गिल्ली डंडा खेल सकता हूँ। गिल्ली डंडे में कॉम्पिटिशन करके देखो आसिफ भाई, ऐसा हराऊंगा ना भाई रोते हुए घर जाओगे, भाई रोते हुए चीख पुकार में जाते हुए घर जाओगे, ऐसा कर दूंगा मैं, खेल के देखो अभी गिल्ली डंडा मेरे साथ कभी इंडिया।

0: घर आओगे रोते हुए कि आज के बाद नहीं करूंगा इससे मुकाबला। एक मैसेज माजिद भाई का, एक क्या कहते हैं, मेरा टैलेंट है कि मैं खराब से खराब सिचुएशन में पॉजिटिव आउटकम निकाल लेता हूँ। ये तो जरूरत है भाई, टैलेंट नहीं है ये, जरूरत है। और एक और टैलेंट है कि स्टे काम इन पैनिक सिचुएशन, वो तो आपने ऊपर उर्दू में बताया मेरा भाई। होने वाले हैं 7:32, निकाल लो अपनी 32। ये अच्छा टैलेंट है आपका, वेरी गुड माजिद भाई, यू आर अ रैपर ऑल्सो। आपकी हिम्मत को सलाम। क्यों नसीम भाई, मैंने क्या, मैंने तो कुछ भी नहीं किया भाई, उनकी हिम्मत को सलाम भाई, उनका बिजनेस चल रहा है, मैंने क्या कर लिया। और जो पूछ रहे थे कमाल भाई कहाँ से, कमाल भाई कुरला से हैं। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है भाई, क्या ट्रेनिंग सेंटर NCC दरभंगा है, और भाई प्लीज़ कॉल। ओके आई विल कॉल भाई, उस्मान भाई को कॉल कर लें, फिर तला भाई को कॉल कर लें, फिर सीधा हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। ओके कॉल मैंने ला दी है उस्मान भाई को। अस्सलाम वालेकुम भाई।
1: वालेकुम सलाम, कैसे
0: भाई? बढ़िया भाई, एकदम शानदार। उस्मान बताइए क्या हाल है आपके?
1: अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है।
0: जी भाई साहब, का छिपा हुआ टैलेंट क्या है?
1: छुपा हुआ टाइप नहीं है, बस मेरा सोने का ही है, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का है।
0: अलग टाइप का?
1: नॉर्मल, मतलब जैसे आप रूटीन में सुबह 6 बजे उठते हो, छुट्टी के दिन 12 बजे उठते हैं, जुम्मे से पूरा पहले एक वो बॉडी ऑटो पे है, जुम्मा के उस टाइम से उठता हूँ, 15-20 मिनट नहा के फौरन में। तो अभी मैं छुट्टी के दिन ज्यादा भी सो लिया हूँ, ठीक है।
0: ओके।
1: और जैसे जुम्मा पढ़ के आऊंगा, कुछ हल्का फुल्का खा के सोफे पे बैठा बैठा सो जाऊंगा।
0: रिकॉर्ड बनाने का इरादा है क्या भाई? कितने कितने घंटे नाप लेते हैं?
1: किधर भी सो सकता हूँ, हाँ, कोई कुछ भी। तो ये तो इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा आपको। मुझे ये जो पिछले भाई ने कॉल की, उनके बारे में मैं थोड़ा सा
0: क्या कहेंगे?
1: एक तो जिन्होंने बोला वो 17 मिनट की सांस रोकते हैं।
0: नहीं, वो तो कह रहे थे मजाक कर रहा हूँ, 2 मिनट रोक सकता हूँ, बाद में उन्होंने क्लियर कर दिया मुझे।
1: गलत आपसे पढ़ा नहीं गया, वो हवा रोकते होंगे।
0: मैं वही कहने वाला था, पर उससे पहले उन्होंने करेक्ट कर दिया, कह रहा नहीं नहीं भाई, मैं 2 मिनट ही रुक सकता हूँ, ज्यादा नहीं।
1: तो, और ये जो दूसरे भाई साहब थे जो बड़ी लंबी, मुझे तो लगता है वो आपकी जॉब खा जाएंगे, जितनी कहानियों की
0: भाई क्या मैं समझ रहे हैं भाई की, मतलब लिटरल कहानी बड़ी कमाल की है, मतलब बंदे ने सब कुछ देख लिया। वो कह सकते हैं कि मैंने घाट घाट का पानी पिया है, हक से बुका।
1: मुझे अंदाजा हो गया जो उनकी स्टोरी थी ना, जो उन्होंने एक तो एक टैलेंट मुझे ये वाला चाहिए कि रिश्ता किसी का देखने जाऊं, अपनी शादी करके आ जाऊं।
0: आपकी शादी में सोच रही है?
1: हाँ, हो चुकी, मेरे बच्चे भी हैं, कल भी।
0: तो फिर ये तो फिर आपका स्कोप खत्म हो गया ना भाई। पैरेलल यूनिवर्स में हो सकता है, अब तो इधर तो नहीं हो पाएगा भाई। लेकिन ये सच बात है, पता है लोग जिनकी शादी की कहानी बड़ी यूनिक होती है ना, वो बहुत चौड़े में बताते हैं भाई। और भाई की कहानी है यूनिक। ये बड़ी यूनिक कहानी है।
1: और वो जो जिनसे शादी हुई भाभी मारी, उनको भी पता चल गया, इसीलिए इनकी डिग्रियां जला दी उन्होंने।
0: ये हाथ से निकल जाए, हाथ से निकल जाएगा। लेकिन आप समझ रहे हैं, एक आदमी जो चोर बाजार को पूरा हैंडल कर रहा है, वहां से वो यहाँ पे कंपनी खोल के बैठा हुआ है, ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। ये तो अपने आप में करियर ग्राफ है। मैं तो मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया भाई इनकी वजह से। मैं बड़ा खुश हूँ कि इन्होंने अपनी कहानी शेयर करके इसे बिल्कुल एंड दे दिया, क्लाइमेक्स दे दिया भाई ने। तो ये है सीन।
1: मैं तो सोच रहा था ये आपकी आपके जो अभी आपकी जॉब है, ये का जो स्टोरी वाला एक छोटा सा उसमें है, वो पोर्शन मुझे लगता है वो ले जाएंगे।
0: भाई आज तो ले गए भाई, आज ले गया मेरा भाई।
1: आपके आगे भी वो कह रहे, मैं सेपरेटली बताता हूँ, मेरे पास बहुत है। वो इतने में उन्होंने 3-4 कहानियां बता दी, और इनको अगर आप एडिट करते जैसे आप
0: नहीं, मैं
1: जानबूझ के
0: मैंने जानबूझ के पॉज लिया। मैंने कहा नहीं भाई, अभी बाकी कहानियां मुझे बता दो, मैं खुद बता दूंगा। तो वो मैं उनसे सच में बात करूंगा, उनसे पूछूंगा मैं डेफिनेटली। ये तो बड़ी बात है। पर आपका भाई सोने का जारी रखिए, सुकून की नींद बहुत मुश्किल से लोगों को मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिल रही है, तो बरकरार रखे भाई।
1: हाँ जी, ठीक है। दूसरा एक, मैं तो अक्सर आपकी कहानी सुनते हुए अक्सर सामान पैक कर लेता हूँ अपना, जब आप बोलते ना इतने वो सीरियस हो गए, अब मैं आपको लिए चलता हूँ।
0: सामान पैक कर लेता हूँ, अरे अच्छा था भाई, जोक अच्छा था भाई, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया पहले? अब मैं जब भी ये बोलूंगा ना मुझे आपकी याद आएगी, इसके लिए शुक्रिया भाई।
1: भाई तो
0: थोड़ा ड्रामेटिक तो करना पड़ेगा ना भाई मेरे को, थोड़ा मिर्च मसाला तो मैं भी डालूंगा भाई।
1: मैं चाहता हूँ मैं किसी तरह आपको वो फील करा सकूं जो तकलीफ हमें, मुझे तो होती, बाकी सुनने वालों को भी हो रही होती। कहानी में हम सोच रहे थे अभी कोई वो आएगी ये लाइन, तो उसमें आप लेते हैं 30 सेकंड का पॉज।
0: अरे यार आई एम रियली हैप्पी भाई, ये तो तकलीफ मैं जारी रखूंगा भाई, ये चीज खत्म नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच भाई, बहुत मजा दिला दिया भाई, थैंक यू सो मच भाई, बहुत प्यार भाई को, थैंक यू सो मच भाई। और भाई ने मेरे पॉज पे जो कमेंट किया मैं अग्री करता हूँ और ये मैं जारी रखूंगा भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा अब जरा एक लास्ट कॉल, उसके बाद सीधा हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे मैंने आज की कहानी बहुत भाई चटपटी कहानी है, बहुत मजेदार कहानी है एंड डेफिनेटली लाइव सुनने वाली कहानी है। और मैं बस एक कॉल और कर रहा हूँ, इनको कॉल लग नहीं रही है। आई जस्ट ट्राइड, लेट मी ट्राई वंस मोर। लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो नहीं लगी भाई, आई कांट हेल्प इट। एक मैसेज क्या कह रहा ना थोड़े, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू भाई, क्या हाल है आप?
0: भाई तला मैं तो बढ़िया, भाई तला क्या चल रहा
1: भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कॉल का वेट हो रहा था बस।
0: भाई आप तो सुन ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है मार्केट में, देख रहे हैं ना?
1: भाई आज तो खा गए लोग, शो खा गए भाई, वो स्टोरी वाले भाई तो शो खा गए। फिर ये जो उस्मान मैंने वक्फे वाली बात करी, ये तो वाकई मेरे दिमाग में थी लेकिन इस तरह नहीं थी, इस तरह उस्मान को तो
0: उस्मान मैंने बहुत आर्टिस्टिक वे में बयां किया है, समझ रहे हैं आप, बहुत आर्टिस्टिक वे में बताया।
1: आखिर करा दिया उस्मान मैंने, आखिर करा दिया
0: सच में। अच्छा तो चला भाई, आपका क्या हिडन टैलेंट है भाई?
1: यार हिडन टैलेंट क्या है राम मालिक, क्या क्या सुनाऊं तुम्हें मैं,
0: एक एक तो पता है, एक आधा बता दो यार, मतलब आपका भी चोर बाजार से कुछ रिश्ता।
1: अपन से सीरियस नहीं हो जाता मालिक, क्या करे।
0: हाँ ये
1: सिचुएशन कैसी भी हो, हाँ बड़ा मुश्किल हो जाता मालिक, और ऐसी सिचुएशन में जहाँ बंदा रो रहा होता है ना, मेरी हंसी निकल जाती है, बड़ा मुश्किल होता है उसको दबाना।
0: पर बीइंग फ्रॉम कराची मेरा भाई, आपको पता था कि एक ऐसा भी बंदा हो सकता है? क्योंकि मैं आज हैरान हूँ ऐसा मिक्स देखने के बाद कि इंडिया का वो तमिलनाडु से है और उनके जो अम्मी है वो कराची से, ये कॉम्बिनेशन इससे पहले कभी सुना था आपने?
1: भाई जेसन का टैलेंट नहीं ये, सब बोल रहे हैं जेसन का टैलेंट, भाई जेसन के पापा का टैलेंट
0: वो है, तो पापा का टैलेंट है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन कभी आपने सुना था इससे पहले? नॉर्मल बात तो नहीं है भाई, मैंने कभी नहीं सुना था ये तो।
1: छोड़ो जेसन जो निकला है, जेसन के ऊपर जो है ना पूरी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्या चल रहा है इसके अंदर। ये जो मिक्स प्लेट है
0: जेसन भाई ने बता क्या बोला, जेसन भाई बोले कि मैं उर्दू, अच्छा उनका टैलेंट बड़ा कमाल का है, वो उर्दू छोड़ के हिंदी छोड़ के वो तमिल में बात कर लेते हैं, ठीक है अंग्रेजी में बात कर लेते हैं, वो स्पेनिश जानते हैं, और वो बोले कि वो इसके अलावा मलयालम भी बोल लेते हैं, तो ये उनका टैलेंट अलग है भाई, समझ रहे हैं, डेडली कॉम्बिनेशन।
1: लेकिन भाई आपको एक बात बताऊं मैं, कराची के अंदर तमिल कम्युनिटी एग्जिस्ट करती रहती है,
0: अग्री मुझे भी पता लगा।
1: उर्दू भी जानते हैं बोलना, लेकिन मतलब अपनी कम्युनिटी के अंदर जो प्रीमिसेस एरिया बना हुआ उनका पूरा बड़ा एरिया है, वो तमिल बोलते हैं भाई।
0: वेरी नाइस, तभी कॉम्बिनेशन मुझे शायद देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन मैंने नहीं
1: सोचा था। आपको ज्यादा नहीं है तो मैं बता रहा हूँ कि ये चीज है वहाँ पे है, आप सर्च करो गूगल पे मिल जाएगा, उसके भी डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनी नहीं है।
0: क्या बात है यार, ये तो पढ़ने वाला सब्जेक्ट दे दिया आपने, ये तभी आप लोग इतने शॉक्ड नहीं हुए, मैं हो गया शॉक्ड क्योंकि मुझे नहीं पता था भाई।
1: तो मसला नहीं है राजा, वीजा लगा लो भाभी तुम्हारी।
0: हाय क्या बात है, ये आपकी बातें तो इधर उधर जाती है ना, ये क्या बताएं, अलग किस्म के तीर।
1: देखो अपना जो है ना, मुझे मेरी बेगम कहती है ये आप हिडन टैलेंट नहीं है, एक्सपोज हो चुका है 10 साल के अंदर ना, कि मैं टेंशन नहीं लेता, मतलब एक्सप्रेस नहीं करता।
0: हाँ ये तो अच्छी बात है, मैं भी नहीं कर पाता, पता नहीं अच्छी बात है बुरी बात है, पर ऐसा है
1: यार, आप तो हो जाएगा कर लेंगे। अबे भाई कैसे कर लेंगे, मतलब भाई हो जाएगा ना और हो जाता अल्हम्दुलिल्लाह,
0: ये मेरे साथ भी है भाई, यही मेरा एटीट्यूड है तला भाई, मैं बता रहा हो जाएगा इतना तो कर ही लेंगे
1: भाई, मैं नहीं लेता टेंशन खुदा की कसम, मैं मतलब ले अंदर से मुझे पता है मेरी क्या कौन कौन से धागे खुले, मैं मुझे पता है, क्योंकि मैं सामने वाले को बताऊंगा ना, वो जो मेरा कपड़ा फाड़ देगा ना तो धागे बचेंगे नहीं। अंदर क्या चल रही है मालिक?
0: नहीं भाई, हाई फाइव भाई, मैं आपके साथ हूँ। मैं भी ऐसे ही हूँ भाई, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही हूँ। लेता ही कोई नहीं भाई टेंशन में, बिल्कुल नहीं लेनी नहीं है तला भाई। वेरी गुड
1: भाई, हमने लेके देखी था भाई, हम अपनी यकीन करो टेंशन लेके ना। हाँ। वो जो थी, जो जिसकी टेंशन थी वो तो साइड कर लो, एक नया हम जो ना कक्का खोल के बैठ जाते। अभी ये क्या हो गया?
0: हाँ
1: ये क्या कर लिया मैंने? ये मुझसे हुआ? हाँ। सवाल हो, ये मुझसे हुआ, ये मैंने कैसे कर लिया?
0: हाँ, जवाब मिलता नहीं है टेंशन लेने से, सवाल दो तीन और खड़े हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है
1: भाई, बर्दाश्त नहीं हो पाता भाई मेरे, वो तो बर्दाश्त नहीं हो पाता ना, मसला ही है। सोने का तो टैलेंट दुनिया के सबसे हमारे पास भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो पतंग से पतंग पकड़ के वाला भी हमारा है। गोलगप्पे भाई, गोलगप्पे का चैलेंज कर लो कोई भी बंदा।
0: नहीं आप भाई मेरे से कर लो कंपटीशन भाई, मैं दो मिनट में बना दूंगा आपको, रोते हुए भागेंगे आप घर पे। क्या बात कर रहे हो भाई, क्या बात करो तला भाई, गोलगप्पे का कंपटीशन करोगे? हैं,
1: आ जाओ तुम,
0: अब तो मैं जाऊं। ललकार रहे हो आप, मैं बता रहा हूँ आपको, ये भाई साहब फिर आप रोते हुए भागेंगे। डन, ये तो करना,
1: जो जो जो जो जो जो जीतेगा वो पेमेंट करेगा।
0: डन हो गया भाई, डन हो गया तला भाई, ये तो डन हो गया।
1: जो जीतेगा वो पेमेंट करेगा।
0: ठीक है, डन हो गया भाई। ये तो करना पड़ेगा। हाँ, ये करना पड़ेगा। आई एम विद यू मेरा भाई,
1: जो जीतेगा बस सही है बेटा। अब तो मैं जान के हारूंगा। समझ में
0: यार, ये ईगो, अब मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं जीतना है कि नहीं जीतना है। मैं जानबूझ के स्लो गाऊंगा। पर
1: मालिक,
0: मैं इससे पहले एक गोलगप्पे का कंपटीशन और मोमो खाने का कंपटीशन दोनों में जीत चुका हूं, तो इसलिए मेरे से आप डरिए इस मामले में। समझ में आ रही है आपको बात?
1: देखो पेमेंट की बात हो रही थी ना, तो अब देखो जो जीतेगा वो पेमेंट करेगा। अब तू जीत के दिखा मुझसे।
0: अच्छा ऐसा है, ईगो पे ले ली
1: फेफड़े पे ले ली मैंने।
0: डन हो गया था ना भाई, वी विल डेफिनेटली डू इट। और
1: मैंने ना सीखना लोगों से कि ना वो जो सीरियस सिचुएशन है, जो वाकई सीरियस सिचुएशन है ना, उसमें सीरियस कैसे हुआ है। टेंशन नहीं लेने की बात कर रहा हूँ मैं।
0: हाँ।
1: मैं सीरियस होने की बात कर रहा हूँ, मतलब उसमें सीरियस कैसे होना है।
0: मैं आपको उसकी सलाह मैसेज में देता हूँ, क्योंकि मैं ऑन एयर बता नहीं पाऊंगा। मैं आपको मैसेज में सलाह देता हूँ।
1: दुनिया का आखिरी बंदा भी होगा ना भाई, मैं आँख बंद करके भरोसा करने वाली बात होगी नहीं करूंगा। तुम पे तो कभी भरोसा मर के ना करूंगा।
0: फिर भी मैं सलाह तो दूंगा तलहा, कहाँ तक भागोगे?
1: नहीं चाहिए सर, काम भाई
0: और मैं जल्दी से मैसेज पढ़ दूं, कह रहे हैं कि आई कैन कॉपी सिग्नेचर्स इजीली, इवन आई डू सिग्नेचर कॉपी ऑफ माय वाइफ एंड डैड मॉम, सबके सिग्नेचर कॉपी करते फिर रहे हैं अमन भाई। और कह रहे हैं मैं माहिर हूं इसमें, प्रिंसिपल का भी कॉपी करके सिक लीव भाई। ज्यादा आगे निकल गए आप, कहते हैं करती बात हाथ में तलहा मला नहीं। अच्छा वो जो कल वाले थे, वो क्या सिचुएशन को समझने की ट्राई करेंगे तो शायद थोड़ा सीरियस हो जाए, बट अगर नहीं होते तो बेस्ट है, ये ज़्यादा बेहतर है। मैं भी नहीं पाता माजिद भाई, गोलगप्पे के कंपटीशन में मुझे भी करना है। आई एम प्रिटी श्योर आप मुझे कभी हरा नहीं पाएंगे इंशाल्लाह। इरफान कासमी साहब ने, इरफान भाई हो गया भाई गोलगप्पा कंपटीशन। इरफान अली भाई लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, तमिल कम्युनिटी की डॉक्यूमेंट्री शेयर कीजिए। मैं ज़रूर देखूंगा भाई, आई विल डेफिनेटली वॉच इट। जमाल भाई लेट आए हैं, और एक मैसेज है, जो भी धनिया बोता है मैं उसे कटवा देता हूँ। ये प्रिंस भाई का एटीट्यूड वाला बढ़िया मैसेज आया है। अगर थोड़ा सीरियस हो जाएगा जब सब मिडिल क्लास एंड बिलो जो इसे क्या सोफे पर सोने की बात कर रहे हैं, हम तो गाड़ी चलाते सो जाते हैं। हमजा भाई कह रहे हैं मुमताज भाई गुड मॉर्निंग, मेरा टैलेंट है कि जिस जिस से मोहब्बत हुई उससे शादी नहीं हुई। कल आइएगा आप इंशाल्लाह, कल इस बारे में बात करेंगे। कह रहा भाई वाज लिटिल लो टुडे मॉर्निंग बिकॉज ऑफ योर शो, यू मेड चेयरफुल एनर्जेटिक, कुडोज ब्रदर, कीप रॉकिंग। बहुत सारा प्यार भाई, थैंक यू सो मच एहसान कमाल भाई। मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप शो सुने और आपको ऐसा लगे कि भाई आज जो है सवेरे सवेरे को हकीम भाई ने बैठ के नुस्खा दे दिया है, बढ़िया। रिजवान भाई इस्लामाबाद वाले को सलाम दे दें मेरी तरफ से, आपके साइलेंट लिसनर और फैन हैं रिजवान, बैडमिंटन वाला। रिजवान भाई बैडमिंटन वाले, आपको बहुत सारा प्यार भाई, बहुत सारा प्यार और सलाम माजिद भाई की तरफ से, मेरी तरफ से भी। ओके कलीम भाई वालेकुम सलाम। ओके तो अब जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ना आज, इतनी चटपटी कहानी है कि आपका वीकेंड क्या वीक सेट हो जाएगा आपका। तो बस एक बहुत छोटा सा ब्रेक और फिर हम मिल रहे हैं। और अगर आप लाइव सुनने वाले हैं ना भाई, ये कहानी आपके जहन में ऐसी अटक जाएगी ना, बस देखो आप आज क्या होता है। वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज बाय द वे। अरे बस तीन मिनट रेडी हो जाओ भाई अपनी गाड़ी के साथ वॉल्यूम बढ़ाने के लिए और चाय वाय जो भी आपको थामनी है। तीन मिनट दे रहे हैं हम आपको, वक्त शुरू होता है अब। अरे भाई साहब कहानी है सीखे, आग लग जाए आग।

0: और भाई एकदम क्लासिक स्टोरी के लिए तैयार हो जाइए, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, बिकॉज आई एम ऑल सेट। आज की कहानी बहुत बहुत खास है। सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किसी एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है। एफएम 97 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है एंड इसीलिए ये और भी ज़्यादा फैसिनेटिंग हो जाता है। ठीक है, तो जैसे पॉजेस के बारे में बात करेंगे उस्मान भाई, मज़ा आने वाला है आपको। वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, गेट सेट एंड गो। तो आज का जो किस्सा है इसे सुनाने के लिए तो मुझे लिटरली बहुत साल पीछे जाना पड़ेगा। आइए आपको ले चलता हूं मैं 1876 में। समझ रहे हैं वक्त के पहिए को कितना पीछे घुमाना पड़ा है। 1876, 4 जनवरी, जगह ऑस्ट्रिया। एक वर्किंग क्लास फैमिली में एक लड़के का जन्म हुआ। इसका नाम था एमेरिक। एमेरिक जो था, इसके 4 भाई बहन थे टोटल इसे मिला के, और ये सबसे बड़ा था, भाई और बहन, और ये सबसे बड़ा उनमें से, द मोस्ट क्या, एल्डेस्ट। नॉर्मल फैमिली, वर्किंग क्लास फैमिली, ठीक ठाक चल रहा था। मतलब महीने के आखिर में होता ना कि लास्ट जब वीक आता है महीने का तो थोड़ा स्ट्रगल होता है लेकिन कट जाता है मामला, वैसा वाला हाल था इसकी फैमिली का। अब 14 साल की उम्र में कोई इसके पास आया, इनके अब्बा के पास आया और बोला कि लड़के को भेज दो न्यूयॉर्क में, ये काम कर सकता है, बहुत बढ़िया वहाँ पे चीज़ें निकल रही हैं और फ्यूचर वहीं है। अब कंसिडरिंग द फैक्ट कि 1800s की बात हो रही, तो यू कैन जस्ट इमेजिन, क्योंकि हम उस वक्त थे नहीं लेकिन हमें इतना पता है कि वो दौर बहुत अलग था आज से, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया गया। 14 साल की उम्र में घर वालों ने कहा बेटा तुम न्यूयॉर्क चले जाओ, और काम सीखने के लिए, काम करने के लिए एमेरिक सीधा पहुँच गया न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में आने के बाद पिक्चर फ्रेम बनाने के तौर तरीकों को उसने समझा, सीखा कि कैसे क्या बनता है, ठीक ठाक काम करता था, इतना कोई बड़ा आर्टिस्ट नहीं था, मगर ये था कि रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो सीख तो लिया। अब काम जब पटरी पे आ गया तो मोहब्बत की रेलगाड़ी भी तो उस पर चलनी है, तो एमेरिक को मोहब्बत हो गई उसी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की से जिसका नाम था फ्लोरेंस, और फ्लोरेंस से उन्होंने शादी कर ली 1902 में। उस वक्त वो 26 साल के थे। एमेरिक और फ्लोरेंस, इन दोनों के 2 बच्चे हुए। एक बच्चा हुआ वॉल्टर नाम का, एक लड़का, 1903 में, और उसके बाद एक बेटी हुई। फैमिली को फुल सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो उन्होंने अपना ये वाला काम छोड़ के, क्योंकि ज़्यादा कमाई नहीं हो रही थी, उन्होंने फुल मेंटेनेंस मैन बनने के लिए नौकरी ढूंढी, उन्हें मिल भी गई, और उसके बाद एक मेन काम मिला, बिल्डिंग का सुपरिटेंडेंट बनने का मौका, जो उन्होंने फौरन पकड़ लिया न्यूयॉर्क के वेस्ट साइड, अपर वेस्ट एरिया में। अब काम ठीक ठाक चल रहा था। फिर आया 1918, स्पेनिश फ्लू, ये पैंडेमिक बहुत लोगों के घर उजाड़ गया, और स्पेनिश फ्लू का शिकार हुई अमेरिक की बीवी फ्लोरेंस, और वो नहीं सह पाई, बर्दाश्त नहीं कर पाई, और दुनिया को अलविदा कह के चली गई। डिप्रेशन में आ गया अमेरिक, उनसे काम नहीं हो पा रहा था। जैसे तैसे उन्होंने दोनों बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, और फिर वो अपने अपने रास्ते चले गए। अमेरिक अकेले पड़ गए, उनसे काम नहीं हो पा रहा था, नौकरी भी चली गई, लेकिन पापी पेट का सवाल है, खाना तो पड़ेगा, भूख तो हर किसी को लगती है, और इस भूख ने उनसे वो काम करवाया जो कभी वो सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने कबाड़ जमा करने का काम शुरू किया, वो सड़कों पे निकलते थे और कबाड़ इकट्ठा करते थे। उनके पास एक ट्रोली थी, इसमें वो कबाड़ को रखते रहते थे, और बस उस कबाड़ को हफ्ते के एंड में बेच देते थे। एक नॉर्मल, बेहद नॉर्मल जिंदगी। एक जगह पे जो वहां पे वो रह रहे थे, उसका रेंट था $25। बहुत छोटा सा अपार्टमेंट था ये। उन्होंने अपने बच्चों से कभी कुछ नहीं मांगा, ना उन्हें बताया कि वो कैसे जी रहे हैं। वो हर संडे अपने बच्चों से मिलते थे एक साफ सुथरा कोट पहनकर, ताकि उनके बच्चों को ये ना लगे कि हमारा बाप तकलीफ में है। उनसे जाके मौसम की बात करते थे, इधर उधर की बातें करते थे, टाल देते थे अगर कोई सवाल भी पूछे, और फिर अपने रास्ते चले जाते थे। बच्चों को कोई अंदाजा नहीं था कि उनका बाप कैसी हालत में है।
1: और ना जाने क्यों उन्होंने कभी इंटरेस्ट दिखाया भी नहीं, मगर अमेरिक यही करते थे, उठते थे कबाड़ उठाते थे, कहीं पे कोई स्क्रैप कुछ भी मिले और उसको बेचकर अपना काम चला रहे थे। 1938 में ये वाला काम कबाड़ बेचने का ये बहुत मेन काम हुआ करता था, मतलब ये जोरों शोरों से चल रहा था, लिटरली इसकी दुकानें तक बहुत सारी थी उस वक्त पे। और ऐसे ही कबाड़ इकट्ठा करते हुए सड़कों पे घूमते हुए एक मैले कुचैले कोट में अमेरिक जा रहे थे और उनको एक छोटा सा एक कुत्ता नज़र आया और वो भी बहुत बुरी हालत में था, मैला कुचैला सा था और अमेरिक को एक साथी चाहिए था, तो उन्होंने इस कुत्ते को अपने पास रख लिया और उसको नाम दे दिया हेनरी। इस एयर में अमेरिक 62 साल के हो चुके थे, 62 years। हफ्ते में बेचारे बस वही $12-15 कमाते थे और उसी में अपने आप का भी खाना करना है, अपना खाना भी करना है और जो उन्होंने कुत्ता भी घर ले आए हैं ये पेट उनका, इसके लिए भी खाना करना है और कहीं कोई हायर उन्हें करने नहीं वाला, क्योंकि वो दौर था जहाँ पे लोग उम्र देखते थे, अरे 62 हो चुकी है अब तो हायर कर नहीं सकते। और पूरे कंप्लीटली एक अलग किस्म के डिप्रेशन में चल रहे थे अमेरिक, ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद लाइफ। और अंदर 19 साल से ये डिप्रेशन उनकी पल रहा था। अब आपको लगेगा कि यहां से कहानी बहुत क्रेजी होने वाली है, जैसे कबीर ने इतनी सारी कहानी सुनाई है, एकदम पलट जाएगी कहानी, इट विल टेक अ ड्रास्टिक चेंज, स्पोर्ट्स कार की तरह 0 to 100 इन सेकंड्स। पर नहीं, ये अलग है, ये अलग है। उन्हें कुछ नहीं आता था अमेरिक को, ना कोई स्किल कभी सीखने की जहमत उठाई, एक ही चीज सीखी थी उसमें, वो अच्छे थे भी नहीं बट ठीक ठाक थे। अपने टॉप फ्लोर के अपार्टमेंट में रहते थे, छोटे से अपार्टमेंट में 1938 में अमेरिक ऐसे बैठे हुए थे। ये अपार्टमेंट ऐसा था, यूं समझ लीजिए कि बस एक छोटा सा बेड है, पैर तक उनके बेड के बिल्कुल साइड में जाते थे, दीवार से चिपका के सोने की कोशिश करते थे वो, इतना छोटा बेड और एक खिड़की थी और उसके खिड़की के पास एक टेबल लगी हुई थी। वो एक दिन बैठे हुए थे और बहुत थके हुए थे और अब उनकी उम्र, उनका जिसम उनका जवाब दे चुका था, उनके बस की नहीं हो रही थी कि वो हर रोज इतना टहल टोल के कबाड़ इकट्ठा करें, पर बेचारे मरते क्या ना करते। तो ऐसे में एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं अपने आप को आराम देता हूं। वो बैठे हुए थे, सिगरेट पी रहे थे और अमेरिक ने अपनी जेब से $1 का नोट निकाला, उसे ऐसे घूरते रहे देखते रहे और शौक शौक में ना वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आए थे, ऐसी उनके लिए कोई मायने नहीं।

ये फाइबर्स हैं जो इम्पॉसिबल है प्रिंट करना, कोई नहीं कर सकता। मतलब जब तक आप इस नोट को, एक डॉलर के नोट को हाथों से फील ना करें, यू वुड नॉट नो। और एमरिक जो थे वो जानते थे कि ये कागज भी ऑफिस बॉन्ड पेपर की तरह नहीं है, मतलब ये बहुत महंगा कागज है। और इसी ख्याल के साथ नोट को देख परख के वो निकल गए ऐसी बाहर। इनकी एक ही आदत थी, जो थोड़ा सा खाना खाते थे, अपने डॉग को खिलाते थे, सिगरेट पीते हुए कबाड़ इकट्ठा करते थे, बेच देते थे, यही काम वो करने निकले थे। अचानक से कबाड़ इकट्ठा करते करते करते करते वो एक स्टेशनरी के पास रुके। न जाने उनके मन में क्या आया, वो स्टेशनरी के अंदर गए, उनके पास ज़्यादा डॉलर्स थे भी नहीं, एक्स्ट्रा खर्चा उनके पास नहीं होता था, वो सिर्फ एक ब्रेड के लिए रखते थे या थोड़ा बहुत इधर उधर खाने के लिए। मगर न जाने क्यों उनका मन किया कि वो स्टेशनरी के अंदर जाएं और कुछ अलग ट्राई करें। वो स्टेशनरी के अंदर गए और बॉन्ड पेपर्स खरीद के ले आए, इंक भी उठा ली लगे हाथों, और ये इंक कमर्शियल इंक थी, मतलब जो नोटों पे ग्रीन होती है वो वाली इंक नहीं थी, बहुत खराब क्वालिटी की ग्रीन इंक थी। और फिर उन्हें याद आया अपना वो टैलेंट जो जवानी में इस्तेमाल करते थे, वो इंग्रेविंग्स का, स्टील की शीट, जिंक की शीट्स पे वो आर्ट बनाते थे, वो टैलेंट उनके अंदर अभी भी था। एंड ही वांटेड टू सी कि क्या वो टैलेंट अभी भी है। तो उन्होंने कबाड़ से ही एक प्रेस मशीन उठाई जो कि बिक रही थी, बाकायदा मार्केट में बिक रही थी, लेकिन सामने वालों ने बिल्कुल कूड़े के भाव उन्हें वो छोटी सी प्रेस मशीन दे दी। अब सामान उनके पास था और वो घर गए कुछ कुछ करने के लिए, ट्राई करने के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले इंक देखी जो उठा के ले गए हैं, क्या वो एक डॉलर के ऊपर जो इंक है ग्रीन उससे मैच करती है? नहीं करती, बेहद खराब लग रही है। इनफैक्ट इंग्रेविंग जो होती है नॉर्मल, वो स्टील पे कट की जाती है, मशीन्स करती हैं, लेकिन इनके पास क्या था? कुछ नहीं। तो ये जिंक की प्लेट एक लेकर आए थे, किचन टेबल पे रख दी लाके, साइड में एक मैग्नीफाइंग ग्लास रख दिया, और फिर पैटर्न बनाने लगे। नोटों को देख रहे थे और पैटर्न्स बना रहे थे, और ये पैटर्न जो बना रहे थे, अमेरिका का दिमाग उन्हें ये नहीं बता रहा था कि भाई ये मशीनों से बनता है, हाथों से नहीं बनता है। मगर ये 62 साल का आदमी लगा हुआ था, हाथ कांप रहे हैं बुरी तरह से, बॉर्डर तक नहीं बन रहा है, लेकिन ही वॉज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट एंड फेल हो गए। नोट पे पोर्ट्रेट जो जो तस्वीर बनी होती है वो जॉर्ज वॉशिंगटन की है, उनका चेहरा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए नोट पे, एकदम परफेक्ट, जो उनका जॉ लाइन है एकदम आनी चाहिए परफेक्ट। लेकिन जो जो जिंक के प्लेट पर एमरिक ने बनाया वो कार्टून कैरेक्टर लग रहा था, यहां भी फेल। फिर नोट का सीरियल नंबर भी तो होता है, उसका क्या करें? बस मन में जो आया एक सीरियल नंबर उन्होंने लिख दिया, क्योंकि यूनिक होता है ना, स्पेसिफिक फॉन्ट होता है, एक पर्टिकुलर जगह पे होता है। चलो जगह समझ में आ गई, फॉन्ट कहां से लेके आए? तो हल्का फुल्का कॉपी किया, नंबर छाप दिया अपने मन से जो आया। उसके बाद नोट पे क्या होता है, ट्रेजरी सील लगती है उस पर, है ना, गवर्नर साहब का साइन वोन होता है, ये कहां से ले गए? तो उन्होंने एक सील तैयार करी, एकदम फेल, एकदम ऐसा लग रहा था वो खराब मेकअप नहीं होता, स्मज खराब हो जाता, स्मज हो जाता वैसा वाला, यहां भी फेल। फिर बेचारे लिखने जा रहे थे जॉर्ज वॉशिंगटन का वॉशिंगटन, लेकिन उसमें भी उनसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, वॉशिंगटन में WASH की जगह WAHS लिख दिया, तो H की जगह S हो गया, S की जगह H हो गया, यहां पर भी फेल। एंड क्या करें वो, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बना रहा हूं मैं क्यों कर रहा हूं, बस कर रहे थे वो। ये ऐसा था कि अगर कोई नोट इनका बनाया हुआ, जो ये नकली नोट बना रहे थे, कोई अगर पकड़ेगा ना बिना लैंप की लाइट से, बस हाथ में लेकर बता देगा नकली नोट है ये, तो एकदम नकली है, इतनी खराब कॉपी बनाई थी इन्होंने। तो जितने मैंने आपको बताया कि नोट को चेक करने के तरीके होते हैं, वो सारे के सारे टेस्ट जो है वो तब काम करते हैं ना जब कोई देखे हाथ से, जब नोट को पकड़ के कोई अच्छे से देखना चाहेगा तभी तो फाइबर नजर आएंगे, ऐसे थोड़ी नजर आ जाएंगे। और बात रही सीरियल नंबर की, तो आप और मैं कितने लोगों को सीरियल नंबर याद रहते हैं, अनटिल और अनलेस कोई बहुत ही यूनिक चीज आपको नोट पे दिख गई, वरना कैसे याद है सीरियल नंबर।
तो जो लोग नकली छाप भी रहे थे उस टाइम पर या इस टाइम पे, कोई भी किधर भी कर रहा हो, तो उसको लालच होता है, वो एक डॉलर का थोड़ी छापेगा, $100 का छापेगा, $50 का छापेगा, एक का कौन छापता है, कोई लॉजिक ही नहीं है। मगर लॉजिक है, लॉजिक है।

लॉजिक था अमेरिका के दिमाग में कि एक डॉलर कोई क्यों ही छापेगा, एक डॉलर के लिए कोई मुझे जेल भेजेगा क्या, ऐसा थोड़ी होता है। तो अमेरिक को ये आइडिया नहीं था कि क्या उनकी किस्मत में आगे लिखा हुआ है, और वैसे भी वो कहां बेचारे सोचते थे इतना, उन्होंने एक ही डॉलर था वो जैसे तैसे बना दिया और एकदम कचरा बनाया, मतलब बहुत ही खराब कॉपी, और अपनी जेब में रख लिया क्योंकि उनका खर्चा कुछ है भी नहीं, एक डॉलर से ज्यादा क्या है उनका खर्चा उस जमाने में, तो बहुत था एक डॉलर, उन्हें क्या चाहिए, ब्रेड चाहिए, डॉग फूड चाहिए, सिगरेट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और वो जब नोट बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक और अटेम्प्ट लिया उन्होंने, अभी क्या प्रॉब्लम थी ना कि जिस कमरे में वो काम कर रहे थे छोटा सा कमरा था, अब बेचारे के पास पैसे नहीं थे कि वो 100 वोल्ट का बल्ब लगा ले, 100 वोल्ट का बल्ब जो है ज्यादा बिजली खींचेगा, तो वो 40 वोल्ट का जो बल्ब आता है वो लगाए हुए थे और उसी में काम करने की कोशिश कर रहे थे। ऊपर से सब कुछ तो नोट में गलत बन ही चुका था, स्पेलिंग पे तो उनका ध्यान भी नहीं गया, फ्री हैंड वो ड्रॉ कर रहे थे, ऊपर से खिड़की नहीं खोल सकते थे, तपती गर्मी अगस्त की, बुरी गर्मी, और वो खिड़की खोल नहीं सकते क्योंकि जो इंक की महक है, जो स्मेल है, वो बाहर चली जाएगी, पकड़े जाएंगे। तो बिल्कुल आजाब गर्मी में ये बंदा नोट बनाने की कोशिश कर रहा था। खैर उन्होंने जैसे तैसे उसको ड्रॉ करने की कोशिश करी, बिल्कुल स्कूल प्रोजेक्ट की तरह, एजेस जो नोट किए बना रहे थे बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी, मगर जैसे तैसे इन्होंने 3-4 अटेम्प्ट में ठीक ठाक कर लिया। और नोट जो थे, क्योंकि काटने होते हैं, जब आप देखते हैं नोट जब कटते हैं तो मशीन्स होती हैं, गिलेटिन होता है या ट्रिमर होता है, ये घर की कैंची से काट रहे थे, जिससे लोग मुझे काटते हैं कई मरतबा, तो ये उससे पेपर काट रहे थे, लिटरली एक टॉडलर की तरह जैसे कोई पेपर काट रहा हो। एंड हर नोट जो ये इन्होंने बनाया एक दूसरे से छोटा या बड़ा हो रहा था, मतलब अगर आप कोई भी नॉर्मल आदमी के हाथ में दोनों नोट दे तो बता देगा भाई ये दोनों नकली हैं, और वो खुद जानते हैं ऐसा, इस आदमी को कोई उस बात का वो भी नहीं है कि गुमान में जी रहे ना, इन्हें पता है, इन्हें पता है कि जो ठप्पा लगा है वो ग्रीन बहुत ही गलत ग्रीन है, इन्हें पता है कि इन्होंने नोट की जो कॉपी करी वो लिटरल कचरा है, पर मन में एक बात आई कि यार ट्राई करके देखते हैं ना क्या जाएगा। वही बात, एक डॉलर के लिए मुझे कौन पकड़ रहा है, एक डॉलर लेकर वो गए और वो जानते थे कि भीड़ में ही ये नोट चल सकता है, क्योंकि एक डॉलर जो ले रहा होगा भीड़ में वो पहली बार तो जानता है कि एक डॉलर ही ले रहा है, उसका ध्यान इधर उधर होगा, वो कुछ और सोच रहा होगा, एक डॉलर के सामान के लिए कहां कौन दिमाग लगाता है, और कोई नहीं लगा रहा था। मेथड बड़ा सिंपल था, रूल एकदम सख्त था कि हमेशा वो एक ही डॉलर यूज करेंगे, कभी भी सेम दुकान पर एक महीने में दो बार नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, और हफ्ते में 2-5-6 डॉलर ही छापेंगे, ज्यादा नहीं, और जाहिर सी बात है किसी को नहीं बताएंगे, अपने बच्चों को भी नहीं बताएंगे, दोस्त तो है ही नहीं, तो कोई चलाकी नहीं, कुछ नहीं, सिंपल, क्योंकि जो छापते हैं उस जमाने में छाप रहे थे जो क्रिमिनल्स थे वो पगला जाते थे, दीवाने जाते थे, अरे भाई साहब अब तो ये करेंगे वो करेंगे, मगर अमेरिक वॉज टोटली डिफरेंट, उन्हें कोई नेटवर्क नहीं बनाना है ना, कोई बड़ा एम्बिशन नहीं है, कोई बड़ा सपना नहीं है, उन्हें अमीर होना ही नहीं है, अंपायर बनाना ही नहीं है, उन्हें बस खाना चाहिए, दो वक्त की रोटी मिल जाए, वो जो पेट लेके आए उसको खाना मिल जाए, दैट्स इट। थोड़ा सा उन्होंने अमाउंट बढ़ा दिया कि भाई 12-15 डॉलर कर लूंगा हफ्ते के, बस इतना मेरा चल जाना चाहिए। पूरी दुनिया के लिए अमेरिक एक बैकग्राउंड नॉइस थे, नोबडी केयर्स अबाउट हिम। लेट 1938 में अमेरिक गए सिगरेट खरीदने के लिए, जिस जगह वो एंटर कर रहे थे उस जगह पे काफ़ी सारे लोग थे। अब एक बुजुर्ग आदमी मैले कुचले कोट में, ब्राउन कोट था उनका, उनके साथ में उनका पेट था, वो अंदर गए, उन्होंने कहा कि एक सिगरेट का पैकेट चाहिए। सामने वाला जो कैशियर था वो इधर उधर बात कर रहा था, इन्होंने अपना बनाया वो एक डॉलर का नोट उसके पास रखा, मौसम की बात करने लगे। अब एक बुजुर्ग आदमी मौसम की बात कर रहा है, हालत ख़राब है, सामने वाले ने नोट लिया और रख के रजिस्टर में 90 सेंट्स वापस कर दिए। 4 सेकंड के अंदर 90 सेंट असली करेंसी मिली उस एक नकली डॉलर के बदले और अ पैक ऑफ सिगरेट। स्पेलिंग गलत है नोट पे, नोट लिटरली सबसे खराब कॉपी है, मगर इट वर्क्ड। वो जानते थे कि जिस जगह पे कोई ना हो वहां पे ये नोट नहीं चलेगा। लोग सोचते ना कि भाई विटनेस नहीं होनी चाहिए, पर अमेरिक जानते थे कि भीड़ चाहिए, खतरा उन्हें विटनेस से नहीं है, खतरा है नोटिस होने का।

और वैसे भी कौन दिख रहा है मेरे को, वो बस बातें कर रहे हैं मौसम की, और कौन एक बुजुर्ग आदमी से मौसम की बातें सुनना चाहता है। वो यही सोच के आगे बढ़ रहे थे, सबसे लीस्ट इंटरेस्टेड आदमी। क्या चाहिए? ब्रेड चाहिए, सिगरेट चाहिए, डॉग फूड चाहिए। उनकी कोई इच्छा नहीं है कि सूट चाहिए, गाड़ी चाहिए, घड़ी चाहिए, कुछ नहीं खरीदना है। 1941 जब आया तो ऑफकोर्स वॉर शुरू हो गई, पर्ल हार्बर, पूरी कंट्री टेंशन में आ गई, हालत खराब सबकी। लेकिन अमेरिक भाई कबाड़ उठाते, $10-12 छापते, घर चल रहा है, टहल रहे हैं। पर 1944 आ गया, उस टाइम तो कंट्री में ये हो गया वहां पे कि राशनिंग करो, ब्लैकआउट ड्रिल्स हो रही हैं, बत्ती जा रही है, मगर भाई $1 स्प्रिंट करके खाना खाया, घर गए, कबाड़ उठाया, बेच दिया, बढ़िया चल रहा है। फिर 1945 आ गया, जश्न मनाया जा रहा है, वहां पे जीत हो गई है, पूरी कंट्री खुश है, टाइम स्क्वायर में भीड़ लगी हुई है, अमेरिका वहीं के वहीं है, $1 छाप रहे हैं, $1 से कबाड़ उठाया, अपना काम किया, खाना खाया, घर चले गए। 1947 में लोग टीवी देख रहे थे, टीवी आ चुके थे, लेकिन इनकी कोई इच्छा नहीं थी, इनके दिल में था कि यार एक टीवी खरीद दूं क्या, मगर ये दुकानों के बाहर खड़े होते थे, बस वहीं से टीवी देखते रहते थे, अपने डॉग को हाथ में लिए हुए सिगरेट फूंकते हुए और टीवी देखते रहते थे। पूरी दुनिया इनके इर्द गिर्द इधर की उधर हो गई थी, ये उस वक्त 71 ईयर्स के हो चुके थे, 71 साल के, एक पूरा नया दौर अमेरिका का शुरू हो चुका था। लेकिन एमरिक यूटना जैसे थे वैसे के वैसे ही रहे। एक बार तो क्या हुआ कि इनका दिया हुआ जो नोट था वो दुकानदार जमा करने के लिए गया, दुकानदार को तब नहीं पता था, और वो नोट जा पहुंचा एक बैंक टेलर के हाथों में। अब जानते क्या हुआ, उस बैंक टेलर के पास ये नोट पहुंचा, उसने देखा, उठाया, परखा, और उसे फौरन समझ में आ गया कि ये नोट तो नकली है। मगर उसने नोट के साथ क्या किया, उसने नोट को साइड वाले जे ड्रॉर में डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि ये सिर्फ $1 का नोट था, लाइन में आगे 200 लोग लगे हुए हैं, अब इसकी शिकायत करने के लिए फॉर्म भरो, कॉल करो, फेडरल ऑफिसर आएंगे, पूरा दिन खाएंगे, पूछताछ करेंगे, $1 के चक्कर में कौन करे इतना। तो सिस्टम ने पकड़ लिया है ये $1, लेकिन सिस्टम इसे काबिल नहीं समझ रहा, इस काबिल नहीं समझ रहा कि इस पर टाइम जाया किया जाए। मगर दूसरी ओर डाउनटाउन एरिया में एक ऑफिसर थोड़ा परेशान है, उसे ये पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं $1 वाला सीन चल रहा है, और ये क्या सीन है वो समझने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट हुआ ये कि एक बार एक नोट जो था एक लेडी ने एक दुकानदार को दिया कुछ चीज़ें खरीद के, और उसको लगा कि औरत जो है मेरे साथ स्कैम कर रही। उसने बोला मैडम ये क्या दिया है, तो उसने बोला कि ये तो मुझे कहीं से मिला, ये मुझे नहीं पता। ऐसे ना जाने कितने लोग अरेस्ट हुए और 15-20 मिनट में छूट भी गए, क्योंकि जिन्होंने भी ये नोट दिए ये उनके पास आया नोट, ये उन्होंने बनाया नहीं था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि $1 का क्या चक्कर है भाई, किधर से आ रहा है ये। और ये ऑफिसर साहब जो थे मैप लगा के अपने सामने पिंस लगा रहे थे उस पर कि ये $1 यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, वो मैप पूरा भर गया क्योंकि एक ही जगह पे सब कुछ हो रहा था। 10 साल बीत चुके थे, 10 साल। पुलिस स्टेशन में एक फाइल खुली थी जिसका नंबर था फाइल नंबर 880, आसपास उसके जितनी फाइलें थी वो सॉल्व हो रही थी, लेकिन फाइल 880 सालों से सड़ रही थी। रिपोर्ट्स लिखी जा रही हैं, बताया भी जा रहा है, लोग हंस भी रहे हैं कि कितनी बुरी कॉपी बनाई है, कितनी घटिया कॉपी है $1 की, स्पेलिंग तक गलत है। पर ये बंदा है कौन, किसी के समझ नहीं आ रहा। दे ऑल आर फेलिंग, एविडेंस है पर एविडेंस नहीं भी है। वो देख रहे थे कि सारे के सारे सीरियल नंबर, मतलब एक ही सीरियल नंबर सारे के सारे नोट पर है, सब पे सेम टू सेम छपा हुआ है, जीरो मेहनत। और पुलिस क्या सोच रही है, वो सोच रही है कि भाई कोई बहुत बड़ी गैंग है, हाँ बहुत बड़ी गैंग है, इनका वेयर हाउस होगा और बहुत सारे लोग होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होगा, क्रू होगा, इन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन होगी, बॉस होगा, पेरोल पे होगा, हथियार होंगे, ना जाने क्या क्या थ्योरीज उन्होंने बना दी। उन्हें क्या पता कि एक 71-72 साल का एक आदमी है अमेरिक, वो जो पिंस मैप पे लगा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वो उसकी हिम्मत ही

नहीं चल के कहीं जाने की। पुलिस समझ रही है कोई नेटवर्क है, लेकिन वो नेटवर्क नहीं है, वो अपने मोहल्ले में ही टहल रहे हैं। वो एक बुजुर्ग जिसकी कमर में दर्द रहता है, उनके साथ उनका एक डॉगी है इतने सालों से, ना अब उस कुत्ते की हिम्मत है कि वो 20 घर दूर जा सके और ना उनकी हिम्मत बाकी रह गई है, और पुलिस ना जाने क्या क्या सोच रही है। केस 880 एक ही जगह पर सालों से पड़ा रहा, लेकिन एक हादसा हुआ। दिसंबर 1947 सर्द रात में कुछ अलग हुआ। आग लग गई उस बिल्डिंग में जिसका एड्रेस था वेस्ट 96 स्ट्रीट। सर्द रात में फायरमैन आए, फायर ब्रिगेड वाले वहां पर पहुंचे और उस वक्त उस अपार्टमेंट तक आग पहुंची जो आखिरी फ्लोर था, यानी कि एमरिक वाला फ्लोर। और उस जमाने में फायर ब्रिगेड वाले वही करते थे जो शायद आपने कहीं पढ़ा हो, सबसे पहले सामान को बचाने के लिए उन्होंने बाहर फेंका, खिड़की से सारा सामान फेंकने लगे। और क्योंकि ये वो घर था जिसमें कबाड़ बहुत था, तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, सब कुछ बाहर फेंकते रहे। और बाहर फेंकने में वो जिंक की प्लेट, जॉर्ज वॉशिंगटन की फोटो जिसपे थी, और कुछ $1 का पूरे की पूरी गड्डी, सब कुछ बाहर फेंक दिया कचरे की तरह। अब ये सब कुछ ओपन एयर में मिडल ऑफ द सिटी पड़ा हुआ है, बिल्कुल बीचों बीच, और पूरे शहर में ढिंढोरा है। फेडरल ऑफिसर्स ढूंढ रहे हैं और वो वहीं बीच सड़क पे कचरे में जला हुआ पड़ा है। काफी टाइम तक वो वहीं पे पड़ा रहा। अमेरिका का दिल टूट चुका था, उनका घर जल चुका था। उन्हें फेडरल ऑफिसर्स ने कहा कि आप कुछ टाइम कहीं जुगाड़ कर लीजिए, हम इसको एक दो दिन में ठीक कर देते हैं, आपके रहने लायक बना देते हैं। एमरिक ने सड़क पे बैठे बैठे सोचा कि मैं क्या करूं। उन्हें नहीं पता कि बीच सड़क पे वो सामान पड़ा हुआ है, मगर वहीं रहे जैसे तैसे दिन काट रहे थे। पर उनका वो जो सामान था, वो जिंक वाली प्लेट, वो किसी के हाथ नहीं लगी, ना किसी ने उस पर ध्यान दिया। ध्यान किसने दिया? कुछ बच्चों ने जो वहां पे खेलने के लिए आए। उन बच्चों ने वो देखा कबाड़ के साथ खेलते हुए, ये क्या है, जिंक की प्लेट और उस पर जॉर्ज वॉशिंगटन का चेहरा, उनके लिए तो ये खिलौना था, वो खिलौना समझ के। और वो जो नोट थे एक एक डॉलर के, बच्चों को समझ में आ रहे थे कि ये नकली हैं। बच्चों ने नोटों को देखा, उन्हें लगा जैसे याद है आपको चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया आता था, बच्चे समझ गए नोट नकली है क्योंकि उन्होंने ध्यान दिया। वो उसे खेलने के लिए अपने घर पे ले गए, बहुत दिनों तक खेले, एक दूसरे के साथ बांटते रहे इसे। एक दिन एक बच्चे के वालिद साहब आए और उन्होंने उस जिंक की प्लेट देखी जिसपे जॉर्ज वॉशिंगटन का चेहरा बना हुआ था। उन्हें ये खिलौना नहीं लगा और उन्होंने पुलिस को कॉल करी। पुलिस ने ये इन्फॉर्मेशन सीक्रेट सर्विस वालों को दी और फिर एजेंट लग गए अपने काम पे। 10 साल हो चुके थे, इतनी सारी थ्योरी थी, वेयर हाउस होगा, बॉस होगा, सब कुछ होगा, पर बच्चों ने ये पूरी बात को बदल दिया पुलिस वालों के लिए। जनवरी 1948 एजेंट्स पहुंचे उस फ्लोर पे जिसके बारे में उन्हें पता लगा था कि यहां से ये सामान गिराया गया है, वेस्ट 96 स्ट्रीट। दरवाजे पे नॉक नॉक, दरवाजा खुला, उन्हें लगा अंदर न जाने कितने लोग होंगे। अंदर से एक बिल्कुल कमजोर पतला सा आदमी, 72 साल का, 72 ईयर ओल्ड एमरिक। उन्होंने दरवाजा खोला, उनके कदमों के पास खेल रहा था उनका वो पेट, वो कुत्ता, और उनके चेहरे पर था कि वो भागना नहीं चाहते। उन्होंने पुलिस वालों को कहा प्लीज अंदर आइए, ना कोई वकील मांगा ना कुछ, अपनी कहानी बयां कर दी, जैसे तैसे जो भी थी सब बता दी। और वो कोने में जाके खड़े हो गए और सब कुछ एक्सप्लेन किया कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ। कोने में खड़े होकर सारी मशीन जो उनके पास नहीं थी उसके बारे में बता रहे थे, और पुलिस वाले ये सुनकर इतने हैरान थे कि सबके रोंगटे खड़े हो चुके थे। 40 वाट का वो बल्ब टंगा हुआ था जो वो दोबारा लेकर आए थे इस उम्मीद में कि दोबारा कुछ करेंगे, कोई वेयर हाउस कुछ भी नहीं था। पुलिस वाले बहुत ज्यादा हैरान थे। ये केस कोर्ट में जा पहुंचा। 10 साल तक काउंटरफीट, इतने सालों की इन्वेस्टिगेशन, खर्चा, फेडरल ऑफिसर्स, एक्सपर्ट सब लगे हुए थे, लेकिन टोटल अमाउंट जो 10 सालों में एमरिक ने किया वो था $5,000 सिर्फ, यानी $500 हर साल। यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट उस शख्स को ढूंढ रही थी जिसके क्राइम की जो सैलरी थी साल भर की, वो ऑफिसर्स के महीनों की सैलरी थी। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है इस कहानी का। जज के पास ये फाइल पहुंची और जज ने कहा कि पेश किया जाए। अब जज साहब बैठे हुए थे, क्लैंसी नाम था उनका, और सामने 72 साल के अमेरिक खड़े हुए थे, कोई हथियार नहीं, कोई वायलेंस

इंश्योरेंस नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाया, चोट नहीं पहुंचाई, सिर्फ $1 का नुकसान किया उन्होंने। उनके साथ कोई नहीं था, उनके बच्चे जो थे हालांकि कोर्ट रूम में थे, मगर वो भी हैरान थे क्योंकि उन्हें अखबारों से अपने बाप के बारे में पता लगा था। उन्हें सजा सुनाई गई, जज साहब ने पहले उन्हें सजा सुनाई 9 महीनों की। जो प्रोसिक्यूटर थे वो बोलते रहे, साहब छोड़ दीजिए इस आदमी को, 72 साल का आदमी है, जाने दीजिए सर, जाने दीजिए। सब यही कह रहे थे, जाने दीजिए सर, छोड़ दीजिए ना, क्या होता है। जज साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, 9 महीने की सजा मिलेगी और जुर्माना देना पड़ेगा। और जानते हैं जुर्माना कितना? $1 का जुर्माना। वो $1 जो 10 सालों तक छापा है अमेरिका ने, वो $1 असली जुर्माने के तौर पर देना था। वो जाने लगे सजा सुनने के बाद, लेकिन जज साहब को ना जाने दिल में क्या आया, उन्होंने कहा अमेरिक वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। ये बुजुर्ग आदमी पलटा और अब हाथ में लाठी थी, ये पलट के गए जज साहब के सामने खड़े हुए थे। जज साहब ने कहा कि सुनो, सजा तुम्हारी बढ़ा रहा हूं मैं, 1 साल 1 दिन, ठीक है तुम्हारे लिए? अमेरिक ने बोला जी साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों किया जज साहब ने, 9 महीने से क्यों सजा बढ़ा दी बेचारे की? इसके पीछे है बहुत बड़ी ट्रिक। जज साहब खुले तौर पर ये नहीं कह सकते थे कि मैं इसको जाने देना चाहता हूँ, वो पब्लिक के सामने ये एग्जांपल नहीं सेट करना चाहते थे कि मैंने सजा नहीं दी। उस टाइम पे लॉ पे ये था कि अगर किसी को 1 साल से कम सजा मिलती है, जैसे 9 महीने उन्होंने पहले सजा सुनाई थी, तो पूरे के पूरे 9 महीने सर्व करने पड़ेंगे। और जज साहब ये नहीं चाहते थे। फैसला सुनाने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मैं इसको 9 महीने जेल में नहीं डाल सकता। उन्होंने 1 साल 1 दिन कर दिया, तो 1 साल 1 दिन होने की वजह से उस टाइम पे लॉ ये कहता है कि बंदा 4 महीने में पैरोल पे बाहर आ सकता है, इसलिए उन्होंने 1 साल 1 दिन की सजा दी और मुस्कुरा के अपनी कानून की किताब पलट दी, कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। 4 महीने के अंदर बाहर आ गए वो अमेरिका। 1950 आया, 1950 हॉलीवुड को यह कहानी पता लग गई थी। भागते दौड़ते हुए 20th Century Fox वालों ने ढूंढा और उन्हें मिले अमेरिक। उन्होंने कहा सर ये लीजिए $1,000, टेबल पे रखे और बोला आपकी कहानी हमें चाहिए। और फिर एक मूवी बनी मिस्टर 880। इसके एक्टर को एकेडमी अवार्ड भी मिला। आप समझ रहे हैं, 10 साल का क्राइम, $5,000, 90 मिनट की फिल्म और चंद सेकंड्स में $1,000। काउंटरफीट, ये नकली नोटों का बिजनेस मेन बात नहीं है, उनकी कहानी मेन है, उसकी कीमत है। किसी ने उन्हें देखा ही नहीं कभी, और जब देखा तो फिल्म बन गई। 1955 में अमेरिक ने दुनिया को अलविदा कह दिया, वो 79 के थे उस टाइम पे। और एक ऑफिसर, इनफैक्ट बहुत सारे ऑफिसर उनके फैन थे, उनमें से एक था जिन्होंने उनके बनाए वो नकली नोट, जो बहुत ही खराब कॉपी थी, वो अपने पास रख लिया। वो बहुत इंप्रेस थे और जब वो ऊंचे पद पे पहुंचे तो उन्होंने वही नोट अपने पुलिस स्टेशन में लगाया हुआ है, लिटरली एक सबक के तौर पर दीवार पर आज भी लगा हुआ है वो खराब कॉपी, ये बताने के लिए कि कई मरतबा चीज बड़ी सिंपल होती है। तो ये थी कहानी अमेरिक यूटनर की। आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। 666-222-107 नंबर है, 666-222-107। स्टे ट्यून्ड।

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: चेक चेक चेक। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आज तो जानना चाहूंगा कि आपका क्या कहना है आज के स्टूडियो, बिकॉज मैंने जब ये कहानी पढ़ी और तैयार करी ना, आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स भाई। मतलब मैं ये पिक्चर देखूंगा। मिस्टर एडिटी, आज ये कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम कबीर भाई।
2: आ रहे नदीम भाई, क्या हाल है भाई के, बताइए।
3: अल्हम्दुलिल्लाह,
2: बढ़िया भाई, एकदम शानदार जी भाई।
3: कबीर भाई, पहले तो 40-45 मिनट स्टोरी एक एक लाइन याद रख के विद एवरी डिटेल सुनाना
2: जी भाई,
3: मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं चलता है, बट बहुत मुश्किल काम है।
2: बहुत प्यारा मेरे।
3: और उसके बाद वो 40 मिनट इतना इंटरेस्टिंग रखना कि बंदर कुछ काम के लिए भी उठे नहीं।
2: थैंक यू सो मच भाई, आपके
3: लिए बहुत डिफिकल्ट।
2: जज़ाकअल्लाह भाई, बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद भाई।
3: अगर वो कोई भी बड़ा नोट बनाता तो वो फंस जाता।
2: हाँ डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली। मतलब और वो पता है, वो ऐसा भी नहीं कि उनको लालच उन्होंने दबा लिया, था ही नहीं लालच। आप डिसिप्लिन समझ रहे बंदे का, कौन से लेवल का डिसिप्लिन है। हाँ एग्जैक्टली तो इनके बारे में कभी पढ़ा था?
3: जैसे वो बचे भी हर चीज में सब।
2: आपने कभी सुना था इनके बारे में पहले?
3: नहीं नहीं, मैंने नहीं सुना। मैं पहली बार आपकी स्टोरी सुन के मेरे को पता लगा।
2: अच्छा ओके।
3: बहुत जबरदस्त और मजा यार, पहले सुना होता तो शायद इतना मजा नहीं आता जितना ऐसे सुनने में आया।
2: थैंक यू भाई, बहुत जबरदस्त। नहीं आप मूवी देखिएगा इन पे जो बनी है, मिस्टर 880।
3: हाँ मैंने सर्च किया, मैं देखूंगा वो।
2: हाँ बहुत बढ़िया भाई, मतलब अकेडमी अवार्ड तक पहुंच गई थी मूवी, इतनी शानदार मूवी बनी हुई है। तो मैं आज देखने जा रहा
3: हूं, सुन के इतना मजा आ रहा है। तो फिर सिनेमा में तो अलग लेवल हुआ।
2: मैं तो उस दौर के लोगों, मुझे लगता है अलग ही चलता था दिमाग भाई, या तो मतलब वो सोचते ही कुछ अलग मेथड से, मेथड अलग था लोगों का सोचने का। अभी क्या अप्रोच अलग है
3: उनकी? उनकी तो चलो कहानी है, लेकिन जो डिटेलिंग आप देते हो ना, वो तो एक छोटी छोटी डिटेल, बल्ब की डिटेल, गर्मी की डिटेल
2: भाई, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है मुझे इसके लिए। पर मैं समझ गया भाई।
3: वो तो ये 40 मिनट के लिए 10 पेज को छोटा बनाना, वो बहुत सबसे मुश्किल काम है। मेरे को पता है, हम लोग भी करते हैं ना कि पूरा बड़ा अकाउंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक बैलेंस शीट में लाना है, वो काम है ये।
2: हाँ वैसे ही काम है भाई। मैं इसको अभी अगर मैं इसको पूरे खुल के बताऊँ ना, अगर मेरे पास अगर टाइम होता तो बहुत कुछ है इस गाने में और भी, जो मैं बीच में मुझे थोड़ा ओमिट करना पड़ता है। बट
3: वो उसके बाद मतलब इतना मसाला निकालने के बाद भी इतनी डिटेलिंग लाना, बहुत
2: थैंक यू भाई, आपने दिन बना दिया भाई मेरा, भूल गए भाई, थैंक यू सो मच। मेहनत सफल हो गया नदीम भाई, बहुत प्यार भाई, बहुत प्यार नदीम भाई, जज़ाकअल्लाह
3: भाई,
2: थैंक यू भाई, अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए। तो नदीम भाई ने तो भाई हमारे हमें सफल कर दिया, ये बोल के थैंक यू सो मच, दिस इज़ व्हाट आई कॉल टैलेंट विदाउट नसीब। हाँ ये तो है, मतलब नसीब की मैं पता नहीं कैसे तला भाई इसमें बात करूँ यार, ये कुछ अलग ही किस्म की स्टोरी थी। मैं खुद कन्फ्यूजिंग में से, स्टोरी तो बहुत बढ़िया थी कबीर भाई, लाजवाब। ये फिल्म तो मेरे भाई का भाई ही करा सकता है। स्टोरी का मतलब, कभी कभी छोटी गलती इग्नोर करना काफ़ी भारी पड़ सकती है भाई। देख रहे हो, मैं वही तो कह रहा हूँ, इन्होंने वही फ़ायदा उठाया कि छोटी चीज़ों को लोग देखते ही नहीं है, इग्नोर कर दिया करते हैं। और ये वॉशिंगटन की गलत स्पेलिंग थी भाई, अमन भाई तब से मैंने मैसेज किया, जितनी ज़रूरत उतना ही प्रिंट, ही वॉज अ हम्बल पर्सन, आई ट्रूली ट्रूली बिलीव सो। ऐसा नहीं उस आदमी को लालच नहीं आया होगा, लेकिन उसे पता है मेरी ज़रूरत ही इतनी है, मैं क्या करूँगा ये घड़ी वड़ी ये सब लेके, मेरी ज़रूरत ही छोटी है भाई, मेरे को क्या करना है ये सब करके। एक मैसेज है, वाह भाई क्या स्टोरी थी, मजा आ गया, दिन बना दिया अपनी स्टोरी टेलिंग, इज टू ऑसम, आपका भी कोई मुकाबला नहीं, थैंक यू सो मच, हिडन टैलेंट प्रिंस भाई, बहुत प्यार, बहुत प्यार भाई, थैंक यू सो मच। वाशिंगटन हो गया, वाशिंगटन वाह। और एक मैसेज आया मेरे पास, अस्सलाम वालेकुम हुसैन।

बहुत लाजवाब थी, सुपर, थैंक यू सो मच मोहम्मद हुसैन भाई। और एक सऊदी अरब से मुझे कॉल कर रहे हैं, भाई रुक जाओ, व्हाट्सएप पे कॉल करने का कोई फायदा नहीं, हमारा कॉलिंग का नंबर है 4434377 4434377 ये है नंबर भाई। ओके तो यस, एमरिक यूटनर इनका नाम है, आप ढूंढ भी सकते हैं इनको, और मतलब ऑब्वियसली पुरानी कहानी इनके पर, लेकिन मूवी भी बनी है मिस्टर 880। बाकी स्टोरी पे आपके रिस्पॉन्सेज का मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज़ बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। इन इन स्टोरीज में बहुत मेहनत और बहुत पढ़ाई लग जाती है, और उस पर आपके जब रिस्पॉन्सेज आते हैं तो मेरा दिन बन जाता है भाई। सो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर बताइएगा। एक गाने के उस पार मिल रहे हैं ओ जलेदा गाना, और साथ मैंने यहाँ ककड़ 8:22। एमरिक भाई, भाई धुआं धार दे, एमरिक भाई धुआं ला दिया भाई ने कती।

હંમેશા વધે હું ના ઓર 7 મહિને આ કકર 825 ધ ક્લોક 825 એન્ડ થેન્ક યુ સો મચ યાર આપ લોકોને કાને પર રિસ્પોન્સ કરકે દિન સેટ કર દિયા લેટ્સ ગો મુજે એસા લગતા આજ કી કહાની वीकेंड पे सुनानी चाहिए थी नहीं वीकेंड स्पेशल कहानी थी पर तला भाई बहुत मोहब्बत भाई तला भाई ने बहुत ही प्यार से बोला है भाई लव यू एंड अल्लाह आपको कामयाब करे आमीन बहुत बहुत शुक्रिया भाई अल्लाह तला आपको भी कामयाब रखे हमेशा आपके काम बरकत रखे ऐसे खुश रखे तला भाई टेंशन को नहीं भाई को बहुत प्यार और एक मैसेज आया है मेरे पास इसलिए हिडन टैलेंट पूछ रहे थे क्या भाई इसलिए पूछ रहा था हिडन टैलेंट बिल्कुल सही पकड़ा आपने आज पता लगा कि कौन एमरिक बनने लायक है ये फिरोज भाई ने मैसेज किया भाई इसलिए मैंने सवाल पूछा था ये इसलिए पूछा था मैंने और अमन भाई बहुत तेज हो भाई अब आगे जाओगे बहुत आगे एक मैसेज आया अस्सलाम वालेकुम कब्बू भाई वी लव यू स्टोरी कीप रॉकिंग बहुत प्यार भाई को थैंक यू सो मच कैम भाई मैं आपको चार दिल भेजता जी तीन दिल भेजता जी कबूल फरमाओ एक और मैसेज है अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई हाउ आर यू वाओ क्या स्टोरी थी स्टोरी सुनाई आपने अमेजिंग अब तो मूवी देखनी पड़ेगी देखिए भाई मिस्टर 880 हरीश भाई मिस्टर 880 कह दी नंबर 880 और एक मैसेज है भाई सर्वर भाई का रिपीट डायलॉग मेरा भाई कैसा कबीर भाई जैसा बेहतरीन स्टोरी इज ऑलवेज हेड्स ऑफ टू यू भाई थैंक यू सो मच बहुत प्यार भाई जरा कॉल आ रही है भाई हमें अस्सलाम वालेकुम

0: अल्हम्दुलिल्लाह एकदम शानदार जमाल भाई, आप सुनाइए आप कैसे हैं?
1: यार भाइयों आपने तो दिन बना लिया आज।
0: कैसी लगी
1: आपको? मजा आ गया बिल्कुल।
0: कैसी लगी कहानी?
1: तो भाई बिल्कुल मतलब रोज से हटके तो थी लेकिन इस अछूतेपन में मजा बड़ा था,
0: है ना? ये मुझे मतलब मुझे दिल से बहुत अच्छी लगी कहानी, मुझे बहुत अच्छी लगी।
1: किसी ने कहा था भाई की गरीबे शहर तो फाके से मर गया लेकिन अमीर शहर ने हीरो से खुदकुशी कर ली।
0: अरे रे रे भाई, ये भी स्टोरी के लिए परफेक्ट है भाई। काश मेरे पास ये शेर पहले होता, आखिरी में मैं यही शेर मारता भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जमाल भाई, क्या सबसे अच्छी बात क्या लगी वो कहानी, ये बताइए।
1: सबसे अच्छी एक बात देखे भाई, मतलब वो जो हालात इंसान को किसी जगह पर बहुत सारी चीजें सोच से हटकर कुछ और सोचने पर जो मजबूर करती है वो दर्शाया गया है इसमें। जो एक मतलब अक्स मिलता है इसमें वो यही कि इंसान की जिंदगी में कभी कभार ऐसे बहुत पेचीदा दौर आता है, बहुत वक्त खराब ऐसा आ जाता है कि जब वो सोच पर मजबूर होता है तो कुछ ऐसे यूनिक चीजें सोच लेता है। भाई बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम। नॉर्मली तौर पर इंसान ये सोचेगा कि इतनी बड़ी क्राइम करने वाला इंसान या तो बहुत मजबूत होगा, है ना, या तो बहुत उसके पीछे पावर होगा, बहुत सारे लोगों का
0: यही सोच रहे थे, यही सोच रहे थे, यही सोच रहे थे लोग।
1: लेकिन एक इस तरह का भी इंसान इतना बड़ा क्राइम कर सकता है या तो मतलब भाई देखो कहते हैं ना कि आप चाहे एक रियाल करो, एक रियाल एक डॉलर करो, या 100, 500, 2000 का करो, है तो बड़ा क्राइम।
0: हाँ वो तो है।
1: लेकिन इस बंदे को क्राइम ने मजबूर किया है वो उसके पेट की वजह से।
0: हाँ पेट की वजह। और भाई इन्होंने
1: गरीबी ने
0: बेसिकली, और इन्होंने कभी भी मतलब मैंने आगे भी पूरा पढ़ा इनके बारे में, कभी कोई शौक पानी पूरा नहीं किया भाई। इस आदमी ने कॉन्स्टेंटली, मैं आपको बताऊं, एक अलग लेवल का डिसिप्लिन है। इन्होंने ब्रेड खाई है और जो राइस होते थे ना, वो जो स्टिकी राइस होते हैं वो सब खाते थे, और सदा कुछ एक्स्ट्रा खाया भी नहीं है। कभी इस बंदे ने कोई फैंसी रेस्टोरेंट नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, जबकि ये कर सकता था। ये तो ये बड़ी बात है।
1: सही है। एक उसकी सोच के अंदर सादगी तो थी लेकिन अचानक से कहीं ना कहीं उसको एक अपना हुनर ये लगा कि जो मेरा अपना पुख्ता हुनर है उसी लाइन पर आगे चल के कुछ करके देखता हूँ।
0: और कमाल क्या होता है, इनका हुनर भी अच्छा नहीं था, मतलब वो उसमें भी अच्छे नहीं थे। इतना कोई टैलेंट नहीं था वो।
1: भाई,
0: काम चलाओ था।
1: मैं सुनते सुनते हंस रहा था ये कि वो आप जो बता नहीं रहे थे कि पुलिस वाले इतने सारे एजेंट है ना, बहुत सारी मतलब उसके पीछे दिमाग अपना खपा रहे थे और लोगों के दिमाग में ये आने वाली बात है भाई कि इतना बड़ा क्राइम करने के पीछे कोई बहुत बड़ी पार्टी होगी, कोई बहुत बड़ा गेम होगा, है ना, हथियार बंद गेम हो सकता है, या ये कि उस पर बहुत मजबूत अहले सर्वत लोग होंगे जिनकी पकड़ होगी उस पे, है ना। ये सारी चीजें सोची जा सकती है और सोचने का मनहज भी है। लेकिन अब ये क्या पता कि वो पूरा पहाड़ जब खोद के खत्म हो गया तो उसमें से सिर्फ एक छोटी सी चूहिया निकली।
0: भाई बहुत हैरान थे। और मैं आखिरी में बताऊं, इस कहानी में दे बिकेम फैन, वो उसके फैन हो गए भाई, फैन हो गए लोग।
1: लेकिन ये है कि मैंने कहा ना कि आज की कहानी थोड़ी सी क्या कहते हैं हटके भली थी लेकिन कुछ सबक खामोश थी, और जाते जाते इस कहानी ने कहीं ना कहीं इस कहानी के कई एक एंगल अगर निकल कर आते हैं तो इसमें एक जो मजबूत पहलू मुझे दिखता है अपने मतलब नजरे में वो यही दिखता है ना कि अमीरी की बदन कमरे की एसी काट लेती है, गरीबी
0: अरे रे रे रे रे यार जमाल भाई, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल करी और बहुत बढ़िया शेर दिया आपने। आप अब मैं ना कहानी पहले आपको बता दिया करूंगा, आप मुझे शेर बता दिया करो, मैं भी थोड़ा कूल बन लूंगा भाई, बहुत जरूरी हो गया अभी। थैंक यू जमाल भाई, बहुत प्यार भाई, थैंक यू सो मच,
1: बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया आपकी मेहनत को सलाम और आपका बहुत शुक्रिया,
0: बहुत शुक्रिया भाई,
1: बहुत ढेरों
0: जजाकला,
1: मजा ही आ जाता है बिल्कुल एकदम,
0: भाई ख्याल रखिए अपना,
1: ठीक है, बहुत शुक्रिया,
0: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज भाई। मैं पहले ही जमाल भाई को कॉल कर लिया करूंगा, ये बिल्कुल कहानी के हिसाब से शेयर दे देते हैं, मजा ही आ जाता है। भाई मैंने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अच्छी थी स्टोरी कबीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई मुर्शिद भाई का। इनके बाद यूसुफ भाई ने मैसेज किया है, वो कहते हैं आज पूरी कहानी सुनी, हमेशा की तरह बहुत अच्छी लगी, सिंपल बट इंटरेस्टिंग। वो बेचारे की कोई औलाद सहारा देती तो शायद वो ऐसा नहीं करता, वो खुद ही औलाद से सहारा मांग नहीं रहते, मतलब जाके वो दिखा रहे थे मैं तो बहुत

0: बढ़िया जी रहा हूँ, और ऑफेंस है चाहे $1 हो या 1 मिलियन, पनिशमेंट तो मिलनी ही थी, और जज ने बहुत अच्छा काम किया उस दौर में, बहुत दिमाग लगाया उस टाइम में जज ने, अच्छे लोग होते थे, फिल्म भी बनी और एक्टर को अवार्ड भी मिल गया, बहुत खूब जी। और वो जेल पीरियड कंप्लीट करने के बाद की जिंदगी कैसी रही? 4 महीने काटे उन्होंने, फिर वो बाहर आ गए थे, एंड ही डाइड एट 79। लिखते हैं अच्छी स्टोरी थी, मज़ा आया, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार। एंड फरहत भाई कहते हैं भाई दुनिया में हर कोई स्मार्ट है, दुनिया में हर कोई स्मार्ट होता है, लेकिन एक ऐसा होता है जो सबको उल्लू बना देता है, ये तो है खास बात। लिखते हैं $1 की कीमत तुम क्या जानो कबीर बाबू, मुझे समझ में आ गई भाई $1 की कीमत बिल्कुल समझ में आ गई, एकदम क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। बैकबोन जट दी होए, हाडी सांधू की आवाज, 8:32 ऑन द क्लॉक।
1: तू मेरे वाल तक दी रवे, ना मेरी तेरे ते नजर हट दी,
0: मैं कहा जी गाने दे उस पार न्यूज आएगी, बैकबोन जट दी, हाँ जी आप हो बैकबोन शो की तो मैसेज मुसेज करते रहा करो 666-221-07 पे, लेट्स गो।

0: रूम कर शेक अप, आंखों में फायर लेवल मेकअप, कल जो ख्वाब थे आज चेज अप, दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो, वेक अप। ए दोहा वाला मैं कबीर,
1: यही कहूंगा सुबह सुबह,
0: वेक अप।
2: भाई बात सारी ऐसी है कि मोहसिन भाई अगर मुझे सुन रहे हो सऊदी अरब से, वो कॉल कर रहे हैं भाई, आप व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं, उधर मैं उठा को नहीं पाऊंगा भाई। मेरे प्यारे भाई छोटा बाबू सुनो, 444-344-377 नंबर है, दोबारा बोल रहा हूँ, 444-344-377 इस पे करनी है कॉल। रॉन्ग नंबर मिला रही हैं आप, मैं उठा नहीं पाऊंगा, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आपका नंबर फ्लैश हो रहा है, तकलीफ होता है हमको, तो इस नंबर पे कॉल करनी है मेरी जान। अब जरा मैं पहले खबरें बता देता हूँ, जब तक ये कॉल कर लेंगे हो सकता है तो

0: लोग कहां से शुरू करूं, तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा सिक्स्थ साइक्लिंग की तरफ से, क्योंकि भाई सिक्स्थ रिसाइक्लिंग का मामला शुरू हो गया है कॉन्फ्रेंस के जरिए, एक सस्टेनेबल कॉन्फ्रेंस की गई है, उसकी शुरुआत हुई है एक एग्जीबिशन के जरिए 2026 दोहा को मंगलवार को। एक कॉल आ रही है, पहले कॉल उठा लेते हैं भाई, फिर बीच में प्रॉब्लम हो जाएगी वरना। अस्सलाम वालेकुम
1: जी। वालेकुम सलाम कबीर भाई, क्या हाल है, खैरियत?
0: बस बढ़िया बढ़िया, सुनाइए क्या हाल है आपके?
1: बहुत बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब आपका कहानी तो कसम से पता नहीं आप कहाँ से लाते हैं।
0: जी भाई शुक्रिया भाई, बहुत बहुत
1: ये तो खमीस वाले दिन का कहानी था ये।
0: थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, भाई बहुत पापड़ बेले पड़ते हैं भाई इन कहानियों के लिए, पर
1: जी जी जी जी जी
0: अच्छी लगनी चाहिए बस आपको कहानी, अच्छी लगी ये
1: जी, जी बहुत बहुत अच्छी लगी कि आज पता चला एक डॉलर का कीमत क्या है।
0: आज पता लग गया ना भाई, है बहुत
1: आज पता लग गया।
0: तो कौन सा पार्ट आपको कहानी का अच्छा लगा भाई, वैसे कौन सा हिस्सा आपको लगा यार ये तो मजेदार चीज है ये?
1: भाई ऐसे मैनुअली कोई आदमी नोट बना ले रहा है तो इसमें हर चीज तो अच्छा ही है,
0: हर चीज अच्छी है,
1: बगैर मशीन का, बगैर प्रिंटर का
0: भाई, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए यार, किसी के बस का नहीं है भाई, जिन्होंने काम कर देना
1: उस टाइम में। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते।
0: हां तो थैंक यू मेरा भाई, आपको कहानी अच्छी लगी, बस मेरा काम हो गया पूरा। थैंक यू भाई, बहुत
1: सर फोन कीजिएगा, आप मेरा नंबर रखें। ओके
0: डन भाई, अभी का अभी मतलब मैं कॉल करूंगा, समझा नहीं। अच्छा उस चीज ना कहानी के लिए मैं कॉल करूंगा, डोंट वरी, उसके लिए कॉल करूंगा मैं। डन डन डन भाई, बहुत प्यार भाई, थैंक यू। ओके भाई, लाफिस लाफिस। तो भाई की बात जो है, मैं नू कह रहा था भाई, और जो लोग कह रहे हैं कहानी कहानी कहानी, मैं उनको बताता हूँ कुछ एक जगह है जहाँ पे आपको कहानी मिल जाएगी। बाकी मैं जल्दी से ज़रा खबरों की तरफ बढ़ जाऊँ और आपको कुछ बता दूँ जो बड़ा ज़रूरी है। तो कतर फाउंडेशन का जो लोहवा कलम है, एम एफ हुसैन म्यूजियम, उसमें शोकेस किया गया है टू एन इंटरनेशनल ऑडियंस। ये न्यूयॉर्क में हुआ है एट टाइम्स इनॉग्रल टाइम्स 100 आर्ट इवेंट में। दे आर सेलिब्रेटिंग इन्फ्लुएंशियल फिगर्स अक्रॉस ग्लोबल आर्ट इकोसिस्टम। इसके अलावा सेलिब्रेशन जारी ऑफ क्राफ्टमैनशिप हेरिटेज एंड क्रॉस बॉर्डर रिटेल सिनर्जी। ये 8th एडिशन है ऑफ द फेस्टिव एग्जीबिशन जो कि बीते फ्राइडे को हुआ मैरियट मार्कस में सिटी सेंटर दोहा, काफ़ी फैंसी नाम है। इसके अलावा टेक्निकल सेमिनार ऑन डिजिटल एंड मैनेजमेंट इनोवेशन इन सोसाइटी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, इसकी ओपनिंग हो चुकी है दोहा में बीते ट्यूजडे को। इट वॉज ऑर्गेनाइज बाई इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन यानी ISSA। दिस वॉज इन कोऑपरेशन विद ISSA लाइसेंस ऑफिस फॉर अरब कंट्रीज। और इसका ये जो सेमिनार का मकसद था वो बेसिकली एक बड़े स्टेज पर डिजिटल दुनिया को सबसे पहले तो मॉनिटर करने का, और किस तरीके से सिक्योरिटी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग की जा सकती है और क्या क्या उसमें ऐड ऑन किया जा सकता है उसके लिए काम किया जा रहा है, और कितनी चीज़ें हैं जो डिजिटली आसान की जा सकती हैं लोगों के लिए। सो वेरी गुड स्टेप टूवर्ड्स द थिंग दैट इज़ द फ्यूचर अपेरेंटली। एंड स्टेट ऑफ कतर, हमारे कतर ने 2.614 मिलियन विजिटर्स देखे हैं थ्रू आउट लैंड एयर एंड सी। कितने महीनों में? पिछले 9 महीनों में 2026 के भाई, ये समझ रहे हैं 2.614 मिलियन, बहुत जनता है ये तो। एक टाइम पे तो यही पॉपुलेशन थी एग्जैक्ट जब मैं आया था, और इतने लोग आगे चले, तो टूरिज्म डेफिनेटली इज ग्रोइंग एंड इट्स अ ह्यूज थिंग। एक पूरी स्टेटमेंट जारी की गई है कतर टूरिज्म ने, ये जो नंबर ऑफ विजिटर्स हैं कतर के इसके बारे में बात करी है। एंड ईयर टू ईयर वो लोग हर साल बताते हैं, एंड सितंबर में उन्होंने बताया कि 2,76,000 लोग आके गए हैं, और पिछले साल के मुकाबले सेम ईयर मतलब सॉरी सेम मंथ की बात की जाए तो पिछले साल 2,73,000 थे, अभी 2,76,000 है, 3,000 लोग और आगे गए हैं। सो दैट इज द होल ब्यूटी ऑफ प्रमोटिंग टूरिज्म इन द राइट वे। 8:40 हो रहे हैं, बाकी 666-22107 नंबर है। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई, क्या हाल है?
0: बढ़िया भाई, हम तो एकदम शानदार हैं, आप सुनाए भाई क्या हाल है भाई के?
2: बस अल्लाह का एहसान, मैं बोला अभी लास्ट में मेरा नंबर लग गया भाई
0: लोटरी लग गया भाई की। बताओ भाई,
2: इसमें मैंने किया था एक बार, वो भाई ने फोन किया था ना,
0: हाँ
2: जूते वाले ने, उसका मिलने का जरूर कबीर भाई से।
0: जूते वाले
2: कमाल का बंदा था।
0: अच्छा वो, हाँ ठीक है, मैं कहूँ जूते वाले किसने कॉल करी? अच्छा सारी कहानी में आपको जूता ही समझ में आया उसमें, वाह मेरे शेर क्या बात है।
2: नहीं नहीं और भी उसने सारी बातें सुनी मैंने, लेकिन अभी थोड़ा याद नहीं है, लेकिन कमाल की बात दी थी।
0: चलो बढ़िया है बढ़िया। और बताओ भाई क्या सुना आपने, कहानी सुनी आपने?
2: कहानी कबीर भाई मैंने कल सुनी, कल वाली जबरदस्त स्टोरी थी।
0: वाह वाह वाह, आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत है भाई, आज की कहानी भी सुन लेते हैं।
2: नहीं आज की तो देखो लाइव थोड़ा मसला है थोड़ा सा।
0: अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात
2: अभी
0: नहीं।
2: मैं सुनूंगा फुर्सत में आराम से, कल वाली मैंने पूरी सुनी।
0: अच्छा
2: वाकई में अच्छी स्टोरी थी, देखो अल्लाह ताला जिंदगी देता है तो देखो वापस देखो कैसे 20 साल और जी गए हैं।
0: आज आज जो आप कहानी सुनेंगे ना वो आपको ज्यादा याद रहेगी, कल वाली से भी ज्यादा आपको आज वाली कहानी याद रहने वाली है।
2: इंशाल्लाह मैं फुर्सत में बराबर सुनता हूं, बीच में क्या है थोड़ा मसला आ जाता है वो फिर मजा नहीं आता है।
0: कोई बात नहीं, पूरे मजे दिलाएंगे आपको, टेंशन मत लो।
2: अभी आपका ये व्हाट्सएप पे आता है ना वो ग्रुप में, उसमें बढ़िया से अभी
0: थैंक यू सो मच
2: से सुनेंगे पूरी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत प्यार, बहुत प्यार भाई को। थैंक यू सो मच भाई, हमसे साथ देने के लिए, थैंक यू। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो यस, जिन्होंने आज की कहानी सुनी है वो अभी रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कुछ देर में जहाँ पे आप कहानी हर रोज़ सुनते हैं वहीं पर पहुँच जाएगी। और अभी एक भाई आसिफ कॉल कर रहे हैं। भाई आसिफ, अस्सलाम वालेकुम। भाई आसिफ।
3: वालेकुम अस्सलाम भाई कबीर।
0: जी भाई बताइए।
3: भाई क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो?
0: कैसी लगी तुमको कहानी? है
3: जबरदस्त भाई, जबरदस्त। मतलब एक बात बोलना चाहता हूँ, मतलब जो आप टैलेंट कर रहे हो ना, सबसे पूछ रहे हो भाई टैलेंट बताओ अपना छुपा हुआ। आपकी कहानी में है वो टैलेंट।
0: थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तभी मैंने हिडन टैलेंट के बारे में पूछा था इस कहानी की वजह से।
3: वही मैं समझ गया, मैं कहानी सुन के समझ गया। मतलब देखो ये पब्लिक का
0: इसलिए ही ये बोल रहा है।
3: मैं बोला ये भाई पब्लिक बता रही है मेरे अंदर ये टैलेंट है, ये टैलेंट है, असली का टैलेंट तो इधर छुपा हुआ है।
0: थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि बस कहानी अच्छी लग जाए मेरा काम हो जाता भाई। मैं बिल्कुल खुश दिल के साथ घर जाता हूँ फिर, यही मेरी उम्मीद है।
3: हमारा कबीर भाई अक्षय कुमार है, सिंग स्क्रीन का कहानी तो मैं सुना तो अच्छी अपने आप लग जाती है।
0: थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।
3: क्या
0: बस भाई बढ़िया भाई, आप सुनो आसिफ भाई क्या चल रहा है मार्केट में? समझ गया, छुट्टी बजाने की जरूरत है भाई, मार्केट में ही चल रहा
3: है।
0: नहीं आपको भाई, आपको जरूरत है मुंबई सफर करने की, जल्दी छुट्टी लो, मुझे लग रहा है याद बहुत आ रही है भाई के अंदर, तड़प हो रही है।
3: नहीं नहीं भाई जल्दी क्यों भगा रहे हो, साथ में चलते ना भाई, फिर तुम भी साथ में चलो
0: ना। ठीक है आसिफ भाई।
3: ओ भाई नहीं नहीं वापिस करो भाई एक बार वॉइस।
0: ना ना ना दीदी ये वो है।
3: लेकिन नहीं भाई, घोड़ा वोड़ा सब फेल हो गया तुम्हारा आगे, ये अच्छा लगा मेरे को।
0: थैंक यू भाई। नहीं उस आवाज के मैं पैसे लेना चालू कर दूंगा, ये जो लोग बोलते हैं ना पहले घोड़े के पास सुनाओ, पैसे चार्ज करूंगा भाई, फ्री फंड में तो करता कुछ
3: नहीं। बहुत दिन हो गया भाई, तुमने हॉर्न ने वो क्या बोलते हैं वो नहीं बजाए भाई, जो तुम बजाते हो सबके लिए।
0: ये भाई आसिफ भाई के लिए क्या बात है।
3: काम हो गया अपना, चलो चांद तक।
0: ठीक है भाई आसिफ भाई, बहुत प्यार भाई को, थैंक यू भाई।
3: डन मेरी जान, डन बाय बाय, टेक केयर
0: भाई, टेक केयर,
3: बेहद बेहद जरूरी है।
0: ओके भाई, आप भी बेहद जरूरी भाई,
3: ऑक्सीजन है भाई, तो ऑक्सीजन है,
0: बहुत प्यार भाई, अल्लाह हाफिज़ भाई।
3: बोले कट ही नहीं कर रहा है फोन।
0: नहीं नहीं भाई, ये मैं नहीं कह रहा, कोई और कह देगा इससे पहले, आपको पता ही हमसे लड़ने के लिए लोग बैठे रहते। ठीक है भाई, ख्याल रखो आसिफ भाई। और भाई साहब आसिफ भाई के बाद मैसेज आए हैं, भाई पैसों की बात मत करो चचा, मैं जब ही तो डर गया मैं, क्या आसिफ भाई रुलाना है क्या? अब एक और मैसेज है, वाह कबीर भाई क्या कहानी थी, बहुत मज़ा आया, मैं लड़की होता तो आपको अच्छा मुझसे शादी ब्याह कर लेते, क्यों भाई? ये कैसी बात है? अरे अरे अरे, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी टेलिंग भाई। भाई बहुत बहुत प्यार, बहुत प्यार अली मकसूद भाई, इसी कॉम्प्लीमेंट के लिए तो जी रहा हूँ मैं। एक लास्ट को ले लेते हैं क्योंकि मुझे पता है कमाल भाई है हमारे। कमाल भाई
4: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम कमाल भाई, कैसे कमाल भाई?
4: भाई आपकी बदौलत जो है कार्टून वाले नोट भी मार्केट में चल गए।
0: बताइए, चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया।
4: इंडिया
0: कैसी लगी कहानी कमाल भाई को?
4: क्या कहानी जबरदस्त भाई, लेकिन आदमी खुददार था।
0: हाँ डेफिनेटली,
4: कुछ भी कहो,
0: अलग किस्म का भाई। हाँ,
4: बेटे तो सपोर्ट लिया ना ही ज्यादा नोट छापा, बस जरूरत जितनी थी उसकी।
0: हाँ।
4: जितनी भूख मिटाने की जरूरत थी उतनी उसने किया।
0: ये कितना चिल मोड में है, ये डिसिप्लिन अगर जिंदगी में आ जाए ना लोगों के भाई, कहाँ से कहाँ पहुंच जाए लोग, अलग लेवल का डिसिप्लिन था भाई का।
4: भाई अब वो डिसिप्लिन खत्म हो गया, पहले के लोग और थे भाई। आप पहले देखते थे किसी के इधर जाओगे तो गाँव में, किसी के यहाँ जाते थे तो जो रिश्तेदारों के क्या गांव वालों के पास भी रहता था, जैसे गन्ना है कुछ भी है तोड़ के ला के दे देते, ले बेटा तुम लोग आए हो शहर से खा लो।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
4: अब तुम एक तोड़ो 10 लोग दौड़ाएंगे सोच के देखो
0: हां भाई मेरे सामने पिक्चर बना दी इस चीज की भाई आई कैन इमेजिन भाई नहीं पर अभी कोई बोलेगा ना मुझसे पहले लोग ऐसे थे तो अब मैं मान सकता हूं कि भाई गजब थे क्योंकि इतनी कहानियां जो मैंने 1900s और 1800s की निकाली हैं भाई बिजली सब कुछ भी नहीं था इन लोगों के लिए बहुत अलग किस्म के

0: दुनिया थी और तब ये सब सोच पा रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है भाई। This is different भाई।
1: हम लोग ऊपर देखते हैं भाई, हाँ। नीचे नहीं।
0: हाँ, अरे रे रे रे डायलॉग मार दिए यार आप तो यार कमाल भाई, ये लो यार। अरे यार कमाल भाई, जावेद अख्तर निकल आया आपके अंदर, क्या बात है। बहुत सही बहुत सही
1: भाई। अभी जमाल भाई को सुनते सुनते थोड़ा थोड़ा याद आ,
0: इंस्पिरेशन ना, ये सही। मैं जमाल भाई को पहले ही कॉन्टेक्ट कर लिया करूंगा, जमाल भाई पहले मुझे शेयर दे दो।
1: नहीं कर लेने का भाई,
0: है ना,
1: कि ये कहानी का ये टाइटल है, ये वो
0: टाइटल है, कहानी
1: एंडिंग है।
0: हाँ, आप मुझे शेयर दे दो एक बढ़िया।
1: बीच का नहीं बताना भाई, टाइटल और एंडिंग।
0: हाँ, ये बीच की कहानी नहीं बता सकते, बिल्कुल एंडिंग बताऊंगा। क्योंकि जमाल भाई लाओ एक शेर फेंक के मारो जरा व्हाट्सएप पे। ये करूंगा मैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कमाल भाई। कुछ पिक्चर देखिएगा, पिक्चर देखिएगा इस पे, मिस्टर 880 डन। ओके भाई, अल्लाह
1: हाफिज़।
0: एक मैसेज आया है, ये कैसी तारीफ है कि लड़का होता तो शादी कर लेते, या अल्लाह भाई ऐसी, मुझे आपको पता नहीं है जनता यूसुफ भाई हमारी तरफ कैसी। अरे मोहब्बत जताने के अलग अलग तरीके हैं। भाभी अगर सुन रही हैं तो आप घर पे खैर, भाभी सुन रही हैं और भाभी भी अब आदत हो चुकी है उनको, मंद मंद मुस्कुरा लेती हैं वो कि ये कैसा आदमी है। हाँ जी, करण निकिता गांधी और ऋषि और अर्जुन। मैगा जी व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, बाय बाय कहने में ऐसा नहीं रहती है। तू है कर दे, क्यों तू है कर दे, कल करनी है। गुड मॉर्निंग।

हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया है। मैं ये कह रहा था, एक भाई ने मुझे मैसेज किया, उन्हें इंट्रो भी अच्छा लगा। भाई थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार भाई को। ये कह रहे हैं कबीर भाई, और एंट्री सॉन्ग हिटिंग अनदर लेवल, बेस्ट है। तो आरिफ भाई बहुत सारा प्यार भाई, थैंक यू सो मच भाई फॉर लविंग द इंट्रो। मेहनत सफल हो गई भाई, बहुत प्यार। अच्छा अभी क्योंकि इजाजत लेने का वक्त आ गया, 8:51 ऑलरेडी। एंड यूसुफ भाई कह रहे हैं भाई आप यूसुफ भाई कह रहे हैं यार लोग ऐसे मोहब्बत जताते। जी भाई अपनी ऑडियंस ही अलग गोले की, यूसुफ भाई एकदम ट्रेजिक्ट्री अलग है अपनी, समझ रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत मजा आया भाई आज यूसुफ में, लिटरली बहुत मजा करा दिया आपने। एंड ऑन दैट नोट इजाजत लेने का वक्त आ गया, कल वीकेंड में मिलेंगे। बढ़िया एकदम भाई, ऐसी कहानी लेके आएंगे ना, ओए होए सोच नहीं सकते आप। वादा तो कर रहा हूँ, देखनी पड़ेगी पहले तो 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन। और आपको पता ही कि आज

सर और भाई एमरिक हैं, उनसे बोलिएगा भाई $50 का भी छाप लेते, $1 का क्यों छापा भाई, थोड़ा ऊपर भी छाप लेते भाई। खैर आप लोगों से ज़्यादा चाहता हूँ, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 का।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामीन, आज की दुआ उन मजलूमों की दुआ है जो जुल्म और सितम के नीचे दबे हुए अल्लाह से रिहाई और नुसरत मांगते हैं। मतने दुआ यूं है जिसका जिक्र कुरान करीम की सूरत النساء में आया है। ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا। ए हमारे परवरदिगार, हमें इस बस्ती से निकाल ले जा जिसके लोग जालिम हैं और अपनी ही तरफ से कोई मददगार बना दे। तो इस तरह सामीन, इस दुआ से हमें कई सबक मिलते हैं। एक तो ये कि जुल्म के खिलाफ दुआ एक हथियार है। मजलूम की आह अर्श तक पहुंचती है और अल्लाह कभी उसको रद्द नहीं करता। और दूसरा सबक यह है कि असल हामी और मददगार अल्लाह है। बंदा असबाब से हटकर अल्लाह ही से वली और नसीर मांगता है। तो समीन, आज की दुआ का खुलासा यह है कि जब हम जुल्म, नाइंसाफी या कमजोरी का शिकार हों

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कतर के एक ऐसे शूटर की जिन्होंने हालिया सालों में इंटरनेशनल शूटिंग के अरीना में अपनी एक खास पहचान बनाई है। नाम है राशिद सालेह अल अथवा और 2026 एशियन गेम्स में उनकी लेटेस्ट परफॉर्मेंस ने कतर के स्पोर्ट्स फैंस को जश्न मनाने का एक मौका दिया। राशिद अल अथवा का नाम कतर के स्कीट शूटिंग में काफी अहम है, काफी फेमस है। उन्होंने कतर को इंटरनेशनल और कॉन्टिनेंटल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है और पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स में भी कतर की तरफ से शूटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था। एशियन गेम्स से पहले भी उनकी फॉर्म काफी स्ट्रांग थी। सितंबर 2026 में जापान के आईची नागोवा शहर में एशियन गेम्स के लिए कतर की शूटिंग टीम में राशिद को मेंस स्की टीम में शामिल किया गया था और वे जापान में अल अथवा ने वो परफॉर्मेंस दी जो कतर के एशियन गेम्स कैंपेन की सबसे अहम शूटिंग अचीवमेंट्स में शामिल हो गई। 23 सितंबर 2026 को राशिद ने मेंस इंडिविजुअल स्कीट कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता, यानी इंडिविजुअल गोल्ड। सिर्फ गोल्ड मेडल ही नहीं बल्कि उन्होंने 34 टारगेट्स हिट करके नया एशियन रिकॉर्ड भी एस्टैब्लिश किया। चीन के ल्यू जियानरी ने 33 हिट्स के साथ सिल्वर मेडल जीता जबकि चाइनीज ताइपे के ली मेंग युआन ने 29 हिट्स के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। लेकिन राशिद अल अथवा के लिए ये दिन अभी मुकम्मल नहीं हुआ। इंडिविजुअल गोल्ड से पहले वो कतर के मेंस टीम स्कीट स्क्वाड का भी हिस्सा थे। राशिद अल अथवा ने नासिर सालेह अल अथिया और अली अहमद अल इसाख के साथ मिलकर टीम कंपटीशन में 353 टारगेट्स का स्कोर बनाया और कतर को गोल्ड मेडल दिलाया। कुवैत 348 टारगेट्स के साथ सिल्वर और इंडिया 346 टारगेट्स के साथ ब्रॉन्ज मेडल पर रहा। यानी एक ही एशियन गेम्स में राशिद अल अथवा ने टीम गोल्ड और इंडिविजुअल गोल्ड दोनों मेडल्स अपने नाम किए। उनकी इंडिविजुअल फाइनल परफॉर्मेंस खास तौर पर इम्प्रेसिव थी। अल अथवा ने 34 टारगेट्स हिट किए और प्रीवियस एशियन रिकॉर्ड को बेहतर बनाया। इस अचीवमेंट के बाद उन्होंने कहा कि कंपटीशन का लेवल बहुत हाई था और एशियन गेम्स दुनिया के मुश्किल स्पोर्टिंग कंपटीशंस में से एक हैं। उन्होंने अपनी कामयाबी को बहुत कड़ी मेहनत और इंटेंस कंसंट्रेशन का नतीजा करार दिया। वाकई आई एम शूटिंग इज नॉट एन ईजी यू नो गेम एंड नॉट एन ईजी स्पोर्ट टू कैरी फॉरवर्ड टू योर इंटरनेशनल सक्सेस। और राशिद अल अथवा की रीसेंट फॉर्म सिर्फ एशियन गेम्स तक महदूद नहीं है। एशियन गेम्स से पहले जुलाई 2026 में हैंगजू ISSF वर्ल्ड कप में भी राशिद अल अथवा मेडल जीता था, वो भी गोल्ड मेडल। कतर के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक और इम्पोर्टेंट अचीवमेंट थी और इस परफॉर्मेंस ने एशियन गेम्स से पहले उनकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म को हाईलाइट किया। एशियन गेम्स में उनका कैंपेन भी यहीं ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों। 25 सितंबर को राशिद अल अथवा और रीमाल शाशानी ने मिक्स्ड टीम स्कीट कंपटीशन में क्वालिफिकेशन में टॉप पोजीशन हासिल करके फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में कतरी पेयर पोडियम तक नहीं पहुंच सका और चौथे पोजीशन पर रहा जबकि चीन ने गोल्ड, साउथ कोरिया ने सिल्वर और इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। लेकिन इस फोर्थ प्लेस फिनिश से पहले ही राशिद अल अथवा अपना नाम आईची नागोवा 2026 के रिकॉर्ड बुक्स में लिखवा चुके थे, दो गोल्ड मेडल्स और एक एशियन रिकॉर्ड के साथ। दोस्तों राशिद अल अथवा की कहानी कतर की शूटिंग में मेहनत, कंसिस्टेंसी और इंटरनेशनल कंपटीशन में परफॉर्मेंस की कहानी है। उनका लेटेस्ट एशियन गेम्स डबल्स गोल्ड कतर के लिए भी एक मेमोरेबल अचीवमेंट बन गया है। राशिद अल अथवा फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि कतर का चैंपियन शूटर है, एशियन गेम्स का डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 2026 का एशियन रिकॉर्ड होल्डर। आपको कैसा लगा आज का हमारा ये स्पोर्ट्स सेगमेंट, जरूर बताइएगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: एब्सोल्यूट सिनेमा,
1: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर थर्सडे रात 9 बजे से RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू टेक अपडेट। आज बहुत काम की चीज है, हर रोज होती है। आप बोलेंगे हर रोज आता ही बोलता है। आज भी आई डोंट नो व्हाट टू से स्टार्टिंग में। यही है ना, मैं बता तो रहा हूँ, वो काम का बंदा है यार कबीर। चलिए मैं आपको तीनों वेबसाइट जल्दी से बता देता हूँ। तो ये तीनों वेबसाइट्स आपके काम आएंगी, कुछ फॉर फन है और कुछ बड़ी काम की है। लेट्स बिगिन। सो नंबर वन वेबसाइट ऑन द लिस्ट, इसका नाम है mrfreetools.com। मिस्टर

हाँ मिस्टर, वो वाला मिस्टर, freetools.com आप इस पे जाइए, आपको वेबसाइट्स भी मिलेंगी, एआई टूल्स भी मिलेंगे, वो वाले टूल्स जो आपको स्पेसिफिकली काम बताएंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे मार्केटिंग, तो मार्केटिंग टूल आ जाएगा, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया वाले टूल बताएंगे, फिर उन टूल की तरफ आपको ले जाएंगे, वो सारे टूल्स आप यूज भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत बहुत काम का है। और नाम में क्या है, myfreetools.com। तो आपको जितने भी टूल्स मिलेंगे ये सारे के सारे एकदम फ्री हैं। तो आप अगर सीरियस हैं कंटेंट जनरेशन को लेकर, इफ यू आर प्लानिंग समथिंग आउट और आपको एआई लगता है यार ये महीने का और खर्चा हो जाएगा, तो ये आपके काम आ सकता है और बहुत बहुत कमाल का है। सो गो फॉर इट एंड आई थिंक इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू। आप बढ़ते हैं जरा आगे। देखिए लैंग्वेज सीखने के लिए मैंने पिछली बार भी आपको एक वेबसाइट बताई थी, और अब एक और नई वेबसाइट बताना चाहता हूँ जो आपको कोई भी नई लैंग्वेज सीखने में मदद कर सकती है। वेबसाइट का नाम है learn101.org, learn learn फिर 101, न्यूमेरिकली लिखना है 101.org। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे और उसके बाद आपसे पूछेगा भाई आपको कौन सी भाषा आती है, आप बताएंगे ये आती है, अच्छा ठीक है कौन सी सीखनी है, ये वाली सीखनी है, और फिर आपको हर तरीके से ये सिखाने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं कि बस पढ़ के बोल दो, नहीं, इमर्सिव तरीके हैं थ्रू साउंड इफेक्ट्स, फोनिक्स, थ्रू वीडियोस एंड स्मॉल गेम्स, स्कोरिंग कर सकते हैं आपको, बहुत कमाल की चीज़ है यार। या लैंग्वेजेस वैसे भी सीखनी चाहिए, मतलब मैं अभी स्पेनिश का मेरा कोर्स चल रहा है इस पर धीरे धीरे, कोमोएस्टास से मुझे भी आगे बढ़ना है, एंड ऑफकोर्स अरेबिक, तो टारगेट बनाइए अपना। एंड आई थिंक आई नो बोलने वाले लोग चाहिए होते हैं आसपास, बट अगर नहीं है तो AI है ना, बात करो बिंदास उससे भाई, बोलो मेरे से आज तुम अरबी में बात करो, समझ रहे हैं आप, एंड यू कैन स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन, कुछ तो दिमाग में आएगा, पर कर सकते हैं आप। आज का जमाना इस चीज को लेके कम से कम फ्री है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, थर्ड वेबसाइट, थर्ड वेबसाइट है nomorecopyright.com, nomorecopyright.com। ठहरिए, इससे पहले आप अजम्पशन लगाएं इसमें क्या है, ये इमेजेस के लिए, स्टॉक इमेजेस। कई मरतब आप देखते हैं ना इमेजेस, आप स्टॉक इमेजेस यूज करना चाह रहे होते हैं, उसके ऊपर वाटरमार्क होता है या फ्री नहीं होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो स्टॉक इमेज जो आपको अच्छी लग रही है वो आप इस वेबसाइट पर डालिए nomorecopyright.com पे, और ये उसी इमेज का एक अलग बहुत ही रिफाइंड वर्जन आपको दे देगा। तो जितने लोग स्टॉक इमेजेस में काम करते हैं, जिन्हें जरूरत पड़ती रहती है, उनके ये बहुत काम आएगा। डेफिनेटली अ वेरी गुड थॉट बिहाइंड इट, जिसने भी ये वेबसाइट सोची है, तो काम की तो है भाई, ठीक है, गो फॉर इट। अब जरा बढ़ते हैं एक नॉट एग्जैक्टली डिस्कवरी मगर एक ट्रेंड की तरफ जो अभी डिस्कवर हुआ है, कुछ लोगों ने अभी किया, कुछ लोग पहले भी कर चुके थे। तो आपको याद है 3D प्रिंटर जब पहली बार देखा था तो क्या रिएक्शन था, मेरा रिएक्शन था है ये ऐसा भी होता है। तो 3D प्रिंटर्स का क्रेज तो रहा है, लेकिन बहुत महंगे हुआ करते थे। राइट नाउ मैं नहीं कहूंगा अरे बिल्कुल ही सस्ते हो गए, तो अब तो धूल के बराबर है, नहीं, पर अभी आफ्टर लाइक 10-15 ईयर्स जब से क्रेज चालू हुआ था, आज की तारीख में जो एंट्री लेवल 3D प्रिंटर्स हैं वो एक्चुअली में अफोर्डेबल हैं। $200, $400 ये रेंज बढ़ती चली जाती है, मिड टीयर मॉडल्स हैं $750, और फिर आगे चला जाता है मामला। और कुछ लोग इसी वजह से यूरोपियन कंट्रीज में स्पेशली सोच रहे हैं कि भाई ये ही ले लिया जाए, क्योंकि ये होम प्रिंटिंग टूल ऐसा है जो आपको थोड़ी छोटी मोटी चीजें, छोटे मोटे टूल्स बनाने में मदद कर सकता है। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन योर बजट एंड एवरीथिंग, बट आई थिंक 3D प्रिंटर्स आर हेयर टू स्टे, ये डाई आउट नहीं होने वाले। आपका क्या कहना है बता दीजिएगा, अगली अपडेट में मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।

0: चार बजे से सिर्फ FM 107 पर।
1: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: दिल से देसी।
3: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए स्कैम के बारे में मैं आपको इत्तला करता रहता हूं। और आज जिस स्कैम के बारे में बात करने वाला हूं, ये लोगों के लिए बड़ा ही खेल बन गया है। तो वैसे आज मैं बात करने वाला हूं खेल यानी कि स्पोर्ट्स एकेडमी का स्कैम। दोस्तों ये स्कैम बहुत ही बेकार है, मतलब ये टारगेट करता है बच्चों को। इसमें फ्रॉडस्टर सीधे तौर पर पेरेंट्स के इमोशन के साथ खेलते हैं और उनके बच्चों के अच्छे फ्यूचर की ख्वाहिश का गलत फायदा उठाते हैं। हर एक पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा अच्छी तरह पढ़े, स्पोर्ट्स में भी अपना नाम रोशन करें, और आजकल तो स्पोर्ट्स में ज्यादा तवज्जो देने लगे हैं पेरेंट्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस ख्वाहिश को टारगेट करते हुए स्कैमर्स पेरेंट्स को ठगने की पूरी कोशिश करते हैं, जाल बुनते हैं। वो इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ही प्रेस्टीजियस, हाई क्लास और साथ ही अफोर्डेबल दिखने वाली स्पोर्ट्स एकेडमीज के बड़े बड़े और अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स चलाते हैं। ये सोशल मीडिया पे आपके पास पहुंचता है। इन एड्स में बहुत अच्छी फैसिलिटीज, बड़े कोचेस की फोटोज दिखाई जाती हैं, जिससे पेरेंट्स आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब पेरेंट्स उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं तो ऑर्गेनाइजर्स उनसे स्टीप अपफ्रंट रजिस्ट्रेशन फीस की डिमांड करते हैं। देखिए इसमें बहुत से लेयर्स होते हैं। वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, आपको ऑफर के बारे में बताएंगे कि अक्टूबर में ये ऑफर है, नवंबर में ये ऑफर है ना। अब तो पेरेंट्स वापस भी आ गए हैं छुट्टी से, तो बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, हमारे पास लिमिटेड सीट है। तो बहुत सी लेयर जो है वो धीरे धीरे आपको बताएंगे और फिर आपसे कहेंगे कि आप मिनिमल अमाउंट जो है वो आप दे दें, फिर आके आप बच्चे को कभी भी एडमिशन फला जगह आके करवा सकते हैं। तो ऐसे में होता ये है, वो आपसे 100 कतरी रियाल मांगते हैं, लेकिन यहां पर होता है खेल, वो 100 कतरी रियाल लेकर गायब हो जाते हैं। अमाउंट छोटा जरूर है, लेकिन आपसे 100 कतरी रियाल लेके वो गायब हो जाते हैं। जब आप लोकेशन पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि कोई ऐसा शख्स है ही नहीं जो बात कर रहा है। और आमतौर पे पेरेंट्स पैसा दे देते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों के अच्छे करियर के लिए बिना ज्यादा सोचे ये मोटी रकम आराम से दे देते हैं, मगर जैसे ही पेरेंट्स पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उनका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। ये पेमेंट आपको मिलता नहीं है, आप व्हाट्सएप पे ब्लॉक हो चुके हैं, लोकेशन पे जाने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है, और आपने जहां पर पेमेंट किया है वो एक्चुअली में ट्रेस हो ही नहीं सकता। लेकिन इन सब का सॉल्यूशन भी है दोस्तों। इस तरह के फ्रॉड से बचने का जो सबसे पहला सॉल्यूशन है, पेरेंट्स को अपने बच्चों का एडमिशन ऐसे एकेडमी में कराते वक्त बहुत केयरफुल रहना चाहिए, ताकि उनकी मेहनत की कमाई चोरी ना हो। इसका सबसे पहला जो रूल या नियम है वो ये कि कभी भी और किसी भी हाल में सिर्फ सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट्स के भरोसे ना रहते हुए आप लोकेशन पे जाएं। एड्स बहुत आसानी से फेक बनाए जा सकते हैं। मैंने कोई पोस्टर बनाया, उसको सोशल मीडिया पे डाला और उसे बूस्ट कर दिया, तो ये तो बड़ा आसान है, आप तक पहुंच जाएगा। और फिर मैं कह दूं कि रजिस्ट्रेशन फीस दे दी है क्योंकि मेरे पास लिमिटेड सीट है, और फिर मैं बताऊंगा भी बहुत बड़ा एकेडमी है यहाँ का और सिर्फ 10 जो बच्चे हैं वो हो सकते हैं, 8 हमारे पास आ गए हैं, सिर्फ 2 की जगह बची है। तो दुनिया भर के कहानी जो है वो खेलते हैं बनाते हैं। कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले फिजिकल ट्रेनिंग फैसिलिटीज या वेन्यू पर खुद फिजिकली विजिट करें और अपनी आंखों से देखकर कंफर्म भी करें कि क्या वो एकेडमी सच में वहां ऑपरेट कर भी रही है या नहीं, वहां बच्चे सच में खेलते भी हैं या नहीं। तो दोस्तों उसके अलावा जब भी आपसे कोई पेमेंट के लिए कहे तो आप उनके वेरीफाइड बैंक अकाउंट में डालें जो कि उसी शहर का हो। उसके अलावा आप लोकेशन पे उनके करीब उनके पास पहुंचे, उनसे बात करें और पूछें कि क्या आप ही बात कर रहे हैं। फिर अगर पेमेंट के लिए वो कहें तो कैश पेमेंट दीजिए और रिसीट भी लीजिए। आप जब स्पोर्ट्स एकेडमी में हो वहां पर लोगों से बात करिए, तब आपको ज्यादा सही तरीके से अंदाजा होगा कि ये लोग सही हैं या गलत हैं। चेक करें एकेडमी लीगली रजिस्टर्ड है भी या नहीं। कई बार लोकेशन पे जाने के बाद आपको ये पता चलता है कि ये लीगली रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आप जब देखते हैं लोग बच्चे वहां पर खेल रहे हैं तो आप पेमेंट कर देते हैं। लीगली अगर रजिस्टर्ड वो एकेडमी नहीं है तो भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन एडवांस पेमेंट, रजिस्ट्रेशन का पेमेंट और बगैर मुलाकात किए वायर ट्रांसफर करना बिल्कुल गलत है। इस तरह के फेक और स्कैम से जरूर बचिए। फिलहाल ये था आज का शो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि इस 5 मिनट में आपको सॉल्यूशन भी मिल गया और पता भी चल गया कि इस जमाने में किस तरह के फ्रॉड आजकल हो रहे हैं। इसके साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
4: स्कैम अलर्ट,
5: एक खास शो जहां बात होगी खातीन की सेहत, अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबीइंग की।
6: वेलनेस इज

0: कर सकते हैं तो दोस्तों सुनना ना भूलें शो वेमेन वेलनेस हर मंडे शाम 5 बजे से आरजे नासिया के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
1: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ तो सुनिए यू मैटर आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके क्योंकि आप मैटर करते हैं
2: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर आरजे सफा और आरजे महविश के साथ जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है Tune into FM 107 Dil Se Desi
3: Qatar ka pehla Desi radio station FM 107 Dil Se Desi
4: Smart Money
0: Hello and welcome to our segment called Smart Money Main hoon aapki dost, aapki host Nasia आज दोस्तों इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी फंड यानी मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा आपका सहारा वैसे तो अल्लाह ही है लेकिन हाँ फाइनेंशियली अगर सहारा देखा ढूंढा जाए तो ये वही फंड है आज हम एक ऐसे फाइनेंशियल टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो शायद इन्वेस्टमेंट बिजनेस या फिर लग्जरी स्पेंडिंग जितना एक्साइटिंग ना लगे लेकिन असल में ये हर घर और हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है इमरजेंसी फंड जिंदगी में बहुत सी चीज़ों की प्लानिंग की जा सकती है लेकिन हर चीज़ को प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है कभी कुछ भी अचानक हो सकता है गाड़ी खराब हो गई जॉब चली गई या कोई और सिचुएशन उसका सामना करने के लिए क्या हम तैयार हैं ऐसे वक्त में वैसे तो तैयारी होती ही होगी लेकिन एक जो बड़ी तैयारी है वो है पैसों का इंतज़ाम अब ये सवाल जो है इसका जवाब हमें ढूंढना है इमरजेंसी फंड्स के थ्रू देखिए इमरजेंसी फंड्स होते क्या हैं इमरजेंसी फंड वो पैसा होता है जो खास तौर पर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए अलग रखा जाता है ये पैसा आपके वेकेशन शॉपिंग या अननेसेसरी एक्सपीरियंसेस के लिए या अननेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए नहीं होते ये सिर्फ उन सिचुएशंस के लिए होते हैं जब जिंदगी अचानक कोई चैलेंज सामने ले आए इसलिए आप फाइनेंशियल फर्स्ट एड बॉक्स भी कह सकते हैं जिस तरह घर में इमरजेंसी मेडिसिंस रखी जाती हैं, उसी तरह फाइनेंशियल इमरजेंसीज के लिए इमरजेंसी फंड रखे जाते हैं अब इमरजेंसी फंड्स की अहमियत पे बात करते हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस को ये कम कर देता है जब अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस सामने आए और आपके पास रिजर्व पैसा मौजूद हो तो आप पैनिक और टेंशन कम करते हैं या कम होती है बहुत से लोग आपने देखा है कि इमरजेंसी की सूरत में लोन लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड्स पर डिपेंड करते हैं इससे फाइनेंशियल प्रेशर और बढ़ सकता है लेकिन इमरजेंसी फंड आपको इसकी ज़रूरत से बचाते हैं या आपको फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस देते हैं आज की दुनिया में जॉब्स और इंडस्ट्रीज तेज़ी से चेंज हो रही हैं कभी कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग करती है कभी रोल चेंज हो जाता है कभी इंसान खुद बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए ट्रांजिशन करता है ऐसे वक्त में इमरजेंसी फंड एक सेफ्टी कुशन का काम करता है यह आपको वक्त देता है कि आप बेहतरीन डिसीशंस ले सकें सिर्फ मजबूरी की बुनियाद पर नहीं वहीं इमरजेंसी फंड सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरी फैमिली के लिए सिक्योरिटी का सोर्स होते हैं अगर घर में किसी को हेल्थ इशू हो या कोई ज़रूरी एक्सपेंस आ जाए तो फाइनेंशियल प्रिपरेशन फैमिली को बहुत सी परेशानियों से बचा सकती है जो लोग सेविंग की आदत बना लेते हैं वो धीरे धीरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं बस आखिर में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी कि जिंदगी में हम हर कोई चैलेंजेस जो है उनका सामना करते हैं वो चैलेंजेस सामने आते हैं और हम उन्हें रोक नहीं सकते लेकिन उसके लिए खुद को तैयार जरूर कर सकते हैं इमरजेंसी फंड हमें ये यकीन दिलाते हैं कि अगर कोई कल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हमारे सामने आ जाए तो हम घबराने की बजाय उसका सामना करें लग्जरी चीज़ें हमें खुशी दे सकती हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट्स हमें ग्रोथ देती हैं इन्वेस्टमेंट्स हमें सिक्योरिटी देती हैं और अक्सर जिंदगी में सिक्योरिटी वो बुनियाद है जिस पर कॉन्फिडेंस स्टेबिलिटी और कामयाबी की इमारत खड़ी होती है तो बस जाते जाते आपसे यही कहूँगी कि इमरजेंसी फंड अमीर बनने के लिए नहीं है बल्कि मुश्किल वक्त में मजबूती से खड़े रहने के लिए है जब आपके पास फाइनेंशियल बैकअप होता है

0: आप सिर्फ पैसे नहीं बचाते बल्कि अपने पीस ऑफ माइंड को भी महफूज करते हैं बस मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अल्लाह ना करे हम में से किसी को भी इस तरह के अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का सामना करना पड़े लेकिन फिर भी तैयारी तो हमें करनी चाहिए बाकी बहुत सारी बातें हैं लेकिन आज नहीं कल करेंगे अभी के लिए मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए देखते हो सुनते रहिए एफएम 107 फिल्म से देसी
1: कंसिस्टेंसी इज द की ये तो सुना ही होगा आपने और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया सो सस्टेन द फ्यूचर हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से आरजे सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए ओनली ऑन एफएम 107 Dil se, desi, desi.
2: फुटबॉल का असली रंग असली जज्बा और असली धमाका लेकर आ रहा है मोहम्मद अमीन इट्स अ गोल शो जहां हर मैच की हर किक होगी लाइव हर गोल बनेगा एक सेलिब्रेशन
3: हाइलाइट्स कमेंट्री और स्पोर्टी वाइब्स का फुल पैकेज अगर फुटबॉल है आपका पैशन तो ये शो है आपका अल्टीमेट मजा Don't miss it. It's the Goal Show. With Muhammad Amin. Every Sunday and Thursday at 1 p.m. Live on FM 107. Dil Se Desi.

0: सितारे उतरेंगे मैदान में, अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए, और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए। दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इंक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।
1: FM 107, टाइम चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू साथियों, इस वक्त FM 107 की घड़ी बज रहे हैं 10:00 और ये हो गए 2 मिनट, और आप सुन रहे हैं माविश और सफा के साथ। शो का नाम है यू मैटर। आप यहाँ पर आ जाएं तो मैं वहाँ पर चली जाती हूँ। हाँ जी, रुके ज़रा आप लोगों को, फिर हम और भी बातें करते हैं आपसे।
3: हाँ जी माविश, कुछ तो गड़बड़ है
2: ना, मुझे भी आवाज़ में कुछ लग रहा है। खैर, अस्सलामु अलैकुम, यू मैटर आप सुन रहे हैं 10:02 और हम आपके साथ रहेंगे 11 बजे तक।
3: हाँ जी, किसी ने सेटिंग चेंज कर दी है जी।
2: सेटिंग चेंज नहीं की है, आपको सेटिंग पता नहीं है।
3: रियली?
2: यस।
3: ना करो भाई,
2: ये हमेशा यही होता है।
3: हमेशा ही होता है। वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल, हम शरीफ क्या हुआ, दुनिया बदमाश हो गई। अच्छा जी, ऐसा भी होता है।
2: जी जी जी बिल्कुल,
3: असल में मैंने अपना माइक ऑन किया लेकिन तीसरा ही माइक ऑन हो गया, तो मेरी आवाज ऐसा लग रहा था जैसे बाहर पता नहीं कहां चांद से बात कर रही हूँ, तो मैं खुद कंफ्यूज हो गई।
2: खैर जी, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे।
3: सात तारीख
2: हो गई है।
3: वेडनेसडे।
2: हां, लेकिन 7 तारीख है।
3: हां 7 तारीख,
2: सही। आज तो 7 होंगे।
3: 7 दिन में दुनिया बनी थी। 7 आसमान है, 7 समंदर है, और आज 7वां दिन है। वाह, क्या तो गहरी बात कर,
2: क्या मतलब इतनी कोई गहरी बात कर दी है कि अब मुझे लग रहा है मैं डूब ना जाऊं इसमें।
3: नोजी आगे मुझे इतनी गहरी बात करके।
2: हद है यार, मैं किसके साथ बैठी हुई हूँ।
3: अच्छा भाई, तो भाई गोभी दया बुल्लो आ जाओ, जरा खुशबू लगा के अटेंडेंस लगाओ। माविश को बचे, माविश किसके साथ बैठी हुई है, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, आप भी मेरे जैसे ही हैं। ये माविश को आज बताना है हमने कि हर किसी के अंदर फन साइड होता है, और हर किसी के अंदर एक कहीं ना कहीं किसी किनारे के दिल में सफा छुपी बैठी है। सफा जैसे ही कोई पर्सनैलिटी है आपके अंदर भी।
2: अच्छा,
3: लाजमी नहीं है कि हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो होगी।
2: मतलब कर लें, 1% मतलब कर लें, थोड़ी बहुत कर लें।
3: 1%
2: अगर आपको जिंदगी में डिप्रेशन चाहिए तो थोड़ा बहुत कर लें।
3: डिप्रेशन नहीं, बाइपोलर पर्सनालिटी।
2: तो फिर थोड़ा बहुत कर लें, मतलब अगर चाहिए तो। खैर जी, 443-443-77 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, और मैसेज के लिए हमारा नंबर है
3: 666-2107। शो का नाम है यू मैटर, और सफा और आपके साथ, सफा और माविश आपके साथ मौजूद है। और भाई आज माविश देखो मुझे हंसा नहीं कर,
2: मैं हंसा नहीं रही हूँ, मैं तो हंस
3: रही हूँ। माविश और फिर मिलना मुझे, रुक जाओ
2: अभी मिलते हैं 30 पर।
3: हाँ 30 पर। अच्छा भाई, नहीं आज हमें कहा गया कि हम 30 से पहले भी अगर चाहें तो ब्रेक ले सकते, लेकिन 30 के आसपास लेनी है हमने ब्रेक।
2: हाँ,
3: फिर से एक एक एक एक जो है नोट दे दो सबको, छाप दो सबके ऊपर नोट।
2: सही,
3: हेलो 10:30 पे हम किसी की कॉल ना लेंगे, डेढ़ होशियारी नहीं करना।
2: अच्छा भाई, टॉपिक क्या है?
3: हाँ आज जो है, अच्छा आज बड़ा मजे का टॉपिक है। माविश टॉपिक्स बारे मुझे बताएं, आपको ऐसा लगता है आपकी जिंदगी ऑटो पायलट हो गई?
2: हाँ काफी हद तक।
3: वो याद है हम लोग शुरू में कुछ सालों पहले ना एक बड़ा ट्रेंड आया था, ईट स्लीप वर्क रिपीट, ईट स्लीप समथिंग रिपीट। आपको ऐसा लग रहा है ऐसे ही हो रहा है?
2: ऐसे ही
3: वाकई में ऐसा हो रहा है?
2: ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही।
3: तीन चीजें
2: मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम चीख चीख के बोल रही हो?
3: मैं तो हमेशा ऐसे ही बात करती
2: हूं। हां लेकिन आवाज तुम्हारी ज्यादा जा रही है।
3: अब ठीक है, अब नहीं, आप यकीन,
2: मैंने आपका लेवल कम कर दिया है।
3: माविश मैं ऐसे ही बात करूंगी, फिर भी ऐसे ही बात करूंगी,
2: मैंने फिर भी आपका लेवल कम कर दिया है
3: कि लोगों के दिलों तक घुस जाए आवाज।
2: अच्छा अच्छा जी, आप
3: जगह बना
2: करें, जगह बनाए
3: अपनी। देखिए मैं माविश से सवाल कर रही थी, माविश आपको ऐसा लगता है, मेरा सवाल बाकी सबसे भी है, क्या आपको लगता है आपकी जिंदगी ऑटो पायलट पे चली गई है?
2: बिल्कुल ऐसे ही लगता है, क्योंकि है ऐसे ही ना, मतलब हमारी एक रूटीन लाइफ है। और अगर हमारी, अच्छा मजे की बात यह है कि रूटीन से हटकर अगर कुछ और होने लगे तो हम परेशान हो जाते हैं।
3: इसे ना ऑटो पायलट मोड कहा जा सकता है। इसे जहाज होता है ना, ऑटो पायलट पे आधा टाइम छोड़ते हैं कि 2 घंटे चले जाते हैं,
2: रूटीन के आदी होते हैं। रूटीन से ज़रा सी हटके, एग्जैक्टली, मतलब रूटीन से अगर आपकी चीजें आउट होने लगे ना, तो फिर आपको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, कोई तो मसला है। मैंने एक चीज देखी थी सोशल मीडिया पे देखी थी बड़े मजे की लगी मुझे मैंने अब तक ट्राई नहीं की है लेकिन मुझे ये करनी है कोई चूंटी होती है ना उसके अगर अगर आप आके कोई पेन से
4: मैंने किया
2: होता है
4: वाकई में वो इधर उधर चल पड़ती है वो डायरेक्शन अपनी चेंज कर लेती है
2: उसके ऊपर ही चल पड़ती है
4: मतलब नहीं अगर आप लाइन खींचने की बात कर रहे हो तो चल पड़ेगी लेकिन अगर आप सामने बिल्कुल जैसे कोई भी थोड़ा सा भी हर्डल उसे फील होता है ना आप जितनी दफा अपने आप को मतलब उंगली रखोगे कुछ भी करोगे उतनी दफा वो फौरन से मतलब सेकंड्स भी नहीं लेती मिली सेकंड्स पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है
2: अरे भाई मुझे इस चीज से ना असल में आज हम लोग बात कर रहे हैं कि जरा मुझे टिप्स और टैक्स तो दें क्योंकि एक बड़ी जज्बाती सी बात है फैक्चुअल बात है मैं जज्बाती नहीं कहूंगी फैक्चुअल बात ये कि इंसान जो ना क्यूरियोसिटी बेस्ड बीइंग है अल्लाह ताला ने बनाया इसे रिवॉर्ड सिस्टम पर है रिवॉर्ड सिस्टम तब होता है जब आप जैसे गेम के लेवल्स होते हैं ना उनको अनलॉक करते चले जाते हैं तो आपको मजा आता है लाइफ में लेकिन हमें इसलिए मजा नहीं आ रहा वो हम कहते हैं ना वो अब खाने में वो बात नहीं रही अब लोगों में वो बात नहीं रही अब काम में वो बात नहीं रही वो बात ये है कि आप ऑटो पायलट मोड से हटोगे तभी तो आपको कुछ बात नजर आएगी जिंदगी में वो जो क्यूरियोसिटी का लेवल है वो जो एडवेंचर का लेवल है
4: तो यही तो मैं उस दिन आपसे बात कर रही थी मतलब जो हमारा टॉपिक चल रहा था ना वो डिसिप्लिन और मोटिवेशन वाला तो अगर आपने ये ऑटो पायलट मूड से अपने आप को निकालना है ना तो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन चाहिए होती है वो ऐसे नहीं निकलती मतलब तजस्सुस हो कुछ भी हो उसके लिए एक आपको अपनी जिंदगी का कोई एम रखना पड़ता है और फिर उसके लिए अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है तो फिर आप वो होता है लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो हमारी अगर हम समझो किसी मकसद के तहत भी चल रहे हैं तो जिंदगी का पैटर्न हमारा एक जैसा होता है उसमें हमने कुछ अलग करने के लिए अपने आप को मोटिवेट करना होता है
2: कितनी अजीब बात है इसी पैटर्न की वजह से ना अच्छा डिसिप्लिन इज समथिंग एल्स माविश
4: नहीं नहीं डिसिप्लिन मैं समझ सकती हूँ देखो डिसिप्लिन जो चीज
2: है की तरह ना एक, हाँ, एक बात है सुबह उठो नाश्ता बनाओ ऑफिस पर जाओ घर का काम करना बच्चों की जिम्मेदारियां फोन चेक करना खाना बनाना सबको सुलाना खुद सोना ये काम चलो इसको आप कह लो ये डिसिप्लिन है ये होगा ही होगा
4: ये डिसिप्लिन है और यही अगर आप देखो तो ये ऑटो पायलट मूड भी है अगर इसमें कोई मोटिवेशन कोई स्पार्क नहीं है
2: हाँ बस चल रहा है बंदा रोबोट की तरह
4: एग्जैक्टली
2: मुझे उस चीज में मोटिवेशन चाहिए कैसे चेंज करोगे इसे मुझे चाहिए
4: क्योंकि वही मेरा दिमाग उस दिन से ना इस बात पर अटका हुआ है कि यार डिसिप्लिन मस्ट है मतलब ऐसा नहीं लोग सुनने वाले सोचें यार ये तो बड़ी कोई फोर किस्म की बंदी होगी ना इसके घर पे खाना वक्त पे बनता होगा ना कुछ ऐसा नहीं है मतलब मैं भी अपने सारे काम वही ऑटो पायलट रूटीन पे कर रही हूँ लेकिन मेरा जो पॉइंट था ना वो ये था कि मुझे ऐसी लाइफ बोरिंग लगने लगती है जिसमें हाँ जिसमें आपके पास कोई मोटिवेशन और कोई चेंजेस ना हो चेंजेस मीन्स कि आपकी जिंदगी में हर कुछ अरसे के बाद ये फैक्ट है आप अगर बचपन से देख लो हम जब छोटे हुआ करते थे हमसे सवाल होता था बड़े होके क्या बनोगे फिर हम कुछ ना कुछ बन गए
2: कुछ ना कुछ बन गए
4: ठीक है फिर उसके बाद फिर ये होने लगा नेक्स्ट क्या है फिर होने लगा यार अब शादी करनी है ठीक
2: है
4: तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब क्या तो अब हम बच्चों की जिंदगी जी रहे हैं पहले वो कौन से स्कूल में एडमिशन करवाना है फिर वो ये वो सब कुछ उनकी जिंदगी उनके हवाले से ख्वाब है ना तो वो ख्वाब जो ये एक एलिमेंट होता है जो कि हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट रखता है उसमें भी चलो ठीक है हम डिसिप्लिन पे चल रहे हैं हम एक ऑटो पायलट पे लाइफ गुजार रहे हैं कि हमने ये सब कुछ फिक्स किया हुआ है लेकिन बच्चों के साथ अपनी जिंदगी के साथ आपके कुछ ख्वाब होते हैं और उन ख्वाबों की कोई भी नौयत हो सकती है
2: वो वाली बात है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं करना चाहता हूँ या मैं बस कर रहा हूँ
4: ये फर्क है डिसिप्लिन या ऑटो पायलट लाइफ में और थोड़ी सी जिंदगी में कहीं एक मोटिवेशन कुछ पैदा करने में
2: 90% लोग ऐसे ही चल रहे हैं
4: मुझे बड़ी हैरत हुई मैं 90 नहीं कहूंगी मैंने उसे नोट किया कि 99% लोगों ने एक ही जवाब दिया कि हमारी अच्छा मैंने घर पे पूछा यही जाके मुझे उलझाया मेरे घर वालों ने भी यही बात बोली डिसिप्लिन मैंने कहा एक मिनट मतलब मेरा ये पॉइंट है फिर उनके नहीं फिर तो मोटिवेशन जरूरी है फिर उन्होंने बाद में उस बात को कहा कि हाँ फिर तो मोटिवेशन जरूरी है लेकिन आप बेसिकली हमारा मूड जो है ना इतना ऑटो पायलट के ऊपर सेट हो चुका है कि हम उसमें ये समझते हैं कि यार यही एक लाइफ है अगर मैं इससे थोड़ा सा भी इधर उधर हटा रूटीन मैंने इधर उधर की
2: तो खत्म तो मसला हो जाएगा लाइफ चली गई
4: हाँ या फिर सही है मोटिवेशन आपकी जिंदगी में कम कम आती है डिसिप्लिन आपको रोज का बरकरार रखना पड़ता है लेकिन अब एक मोटिवेशन है जो हमें मतलब अगर आप थोड़ा सा दीनी पहलू के ऊपर आ जाओ तो आपको नमाज हम पढ़ने की कोशिश करते हैं لیکن ایک حدیث کے حوالے سے بھی قرآن میں بھی ہمیں جو ملتا ہے نا کہ فجر کی نماز اکثریت کے اوپر بھاری ہوتی ہے, کیونکہ اس کے لیے آپ کو صرف ڈسپلن نہیں چاہیے ہوتا, اس کے لیے آپ کو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. اس میں یہ بات ہے, آپ دیکھو کہ یہ کہا جاتا ہے, میں آج ہی بلکہ وہ حدیث پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوتے ہوئے شیطان تین گرہیں لگا دیتا ہے, پھر آپ جب جاگتے ہو تو ایک گرہ کھلتی ہے, آپ جب وضو کرتے ہو تو دوسری کھلتی ہے, اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو تو تیسری بھی کھل جاتی ہے. تو فجر کی نماز جو لوگ ماشاء اللہ سے بہت باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے ہیں زبردست, لیکن اس کے لیے ڈسپلن نہیں چاہیے. میں پھر رپیٹ, اگر ہاں آپ کی جاب ٹائمنگ ہی وہی ہیں, آپ اتنے بجے ہی اٹھتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. اب سمر بریکس میں جیسے ہمیں بچوں کو نہیں بھیجنا ہوتا, یہ نہیں ہوتا, زیادہ تر لوگوں کی فجر مس ہوتی ہے کیونکہ ڈسپلن جو چل رہا ہوتا ہے نا وہ مس ہوتا ہے, تو پھر موٹیویشن نہیں ہوتی, تو وہ کہتے ہیں یار چلو کوئی بات نہیں اٹھ کے پڑھ لیں گے.
2: مجھے ڈسپلن اور آٹو پائلٹ کی نا ایک ایگزامپل سمجھ میں آتی ہے کہ ڈسپلن وہ ہوتا ہے جو آپ جس کے نا آپ کے پاس پھر بھی چوائس ہوتی ہے, آپ کانشیس ڈیسیجن لیتے ہیں.
4: Exactly.
2: لیکن یہ جو آٹو پائلٹ ہوتا ہے اس کے نا آپ کے پاس, فار ایگزامپل آپ نے جاب پہ جانا ہے, آپ کے پاس چوائس نہیں ہے, آپ نے جانا ہے, آپ کو تنخواہ چاہیے, آپ نے جانا ہے. ہاں ڈسپلن اس کے اندر آ جاتا ہے کہ جب آپ اپنا بزنس کرتے ہو فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ کو ڈسپلن چاہیے کیونکہ اس کے اندر آپ کے اوپر کوئی ہائر اتھارٹی نہیں بیٹھی, آپ ہی ہائر اتھارٹی ہو.
4: ایگزیکٹلی, وہ ٹھیک ہے, وہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی کچھ عرصے کے بعد وہ ڈسپلن فالو کرتے کرتے کرتے آپ کی زندگی پھر آٹو پائلٹ پہ آ جاتی ہے.
2: ہاں
4: ہیلو, السلام علیکم.
5: کیسے ہیں آپ لوگ؟
4: الحمد للہ اللہ کا شکر.
5: کیا موضوع چل رہا ہے
2: آج؟ موضوع یہ چل رہا ہے کہ بتائیں ذرا کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ جو آٹو پائلٹ پہ چل رہی ہے ہماری زندگی, اس کو ہمیں کم کر دینا چاہیے, شوڈ وی اسٹاپ لیونگ اٹ, کیونکہ ہم سب تو روبوٹ بن گئے, اور اگر کرنا چاہیے تو کیسے کریں, حل چاہیے کوئی.
5: بہت مشکل ہے,
2: بہت مشکل ہے ناممکن نہیں ہے, مشکل ہے.
5: کس نام, ناممکن نہیں ہے, مشکل ہے.
2: صحیح. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
5: ایک کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی تھی, ذمہ داریوں میں جینا میں نے سودے کی طرح سیکھا ہے, ہر فرض کے بدلے کوئی نہ کوئی خواہش دفن کی ہے.
2: اچھا آصف بھائی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں جی,
4: آصف بھائی کے زکام کے نا مختلف وہ چل رہے ہیں.
5: نہیں میم, کل ایکچوئل کیا ہوا, اب تو میں سوچتا ہوں مطلب کنٹینیو رہا ہے, کیونکہ کل جو ہے آپ کے کیا نام ہے, ارے مرزا بھائی, انہوں نے بولا بڑی پیاری آواز لگ رہی ہے آپ کی,
4: تو آپ نے کہا ایسی بنا لو, آپ نے کہا ایسی بنا لو,
5: میں نے کہا ایسی بنا لو,
4: صحیح ہو گیا.
5: کچھ ایسی چیزیں ہیں ذمہ داریوں کے چلتے ہوئے, ٹھیک ہے, جو ہمارے خواب ہوتے ہیں, جیسے ہم لائف جینا چاہتے ہیں اس طرح سے نہیں چل پاتی ہماری لائف, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے. جب تھوڑا سا ہم لائن پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹرین ہماری لائن پہ آتی ہے, ویسے کچھ نہ کچھ
2: اتفاق
5: ہو جاتے ہیں, انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, کچھ بھی ہو جاتا ہے, پھر اتر جاتی ہے. مطلب کہاں تک سنبھالے گا انسان بندہ, پھر آدمی سوچتا ہے آٹو پائلٹ پہ جیسے چل رہا ہے اللہ کے بھروسے چلنے دو.
2: اچھا کبھی کبھی یہ بھی تو ہوتا ہے نا, کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے وہ آٹو پائلٹ پہ چلتے چلتے نا آپ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آٹو پائلٹ کے لیے بنایا نہیں ہے. دا تھنگ از اللہ تعالیٰ نے انسان کا دماغ جو بنایا نا وہ رکھا ہے تجسس کے لیے.
5: ایکچوئل ہم نے اپنی خواہشوں کو ضرورت بنا دیا ہر چیز کو, ٹھیک ہے. اب یہ کسی چیز کی خواہش ہے, نیڈ, مطلب نیڈ بنا لی ہے زندگی کی, اس لیے خوشحال نہیں ہے. اور ان سب چیزوں کے چلتے ہم لوگ جو ہے ایک کسی چیز میں قید ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ابھی ہمیں کوئی نئی چیز آ گئی, کسی کو ہم نے دیکھا یہ چیز لے کے آیا, میرے کو بھی لینا ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈیوائس آ گئی, یہ خریدنا ہے, بچوں کے لیے سوچنا ہے, تو اسی میں لائف کٹتی جا رہی ہے. جتنا ہم الیکٹرانک چیزوں سے, ساری چیزوں سے, جتنا ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں,
2: مجھے ایسا لگتا ہے یہ کچھ جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا, مجھے ایسا لگتا ہے ہمارا دماغ نا, وہ جو فیلنگز ہوتی ہیں نا ہماری, جو ہمیں زندہ رہنے کا احساس دلاتی ہیں, वो लिटरली कहीं खत्म होती चली जा रही है लोगों के दिलों से.
5: अब हमें सिर्फ जरूरतें दिखती हैं.
2: हाँ हाँ हाँ, ये सही बात है. रूटीन दिखती है और जो है ना बस ये होता है कि क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं नहीं पता. मोबाइल भी देख रहे हैं, सुबह उठते के साथ मोबाइल को पकड़ लेते हैं. कोई मुझे रीजन बता सकता है क्यों पकड़ते हो?
4: कोई रीजन नहीं है.
5: बस ये है कि एक हमने अब हर चीज को जो है अपने आप को बांध लिया है किसी दायरे में और कुछ भी नहीं है. और चाहे नामुमकिन नहीं है लेकिन उसके लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा. वैसे जब आप गांव की लाइफ में और सिटी की लाइफ में आप देखो जमीन आसमान का फर्क है. बंदा काम करता है ठीक है, सबसे ज्यादा खुशहाल कौन है? जो रोड पे सो रहा है और जो महलों में सो रहा है. बीच वाले जो है काफी अपनी लाइफ जी नहीं सकते, मिडिल क्लास के लोग जिन्हें बोलते हैं. क्योंकि जो जो नीचे रोड पे मतलब जैसे रोड का मतलब जैसे छोटे छोटे घरों में जो रहते हैं तो वो लोग क्या है उनका सवेरे से शाम तक उन्हें दिहाड़ी मजदूरी करनी है, शाम को उन्हें खाना पीना खा के सो जाना है. कल की फिक्र नहीं है ठीक है. और जो महलों में रह रहा है बिजनेसमैन बड़े बड़े उन्हें क्या है टेंशन, उनके पास अनाप शनाप पैसा भरा हुआ है. लेकिन जो बीच वाले लोग है ना अब उन्हें ये भी देखना है अपने आप को माशरे के हिसाब से भी चलना है.
2: वो वाली बात है, वो अटके हुए बीच में कहीं
5: बीच में अटके हुए मतलब उनकी
2: पॉकेट
5: नहीं करती है लेकिन खर्च ज्यादा है. वो एक मूवी आई थी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया,
2: गोविंदा की थी.
5: गोविंदा की तो वही हाल है हम मिडिल क्लास लोगों का.
2: नीचे गिरना नहीं चाह रहे, ऊपर जाने की कोशिश में लगे हुए.
5: कोशिश में लगे हुए लेकिन कोई रास्ता तो निकले
2: रास्ता.
5: मसला ये है अभी हम जब हम कमाने के लिए आए उसके बाद शादी हो गई, अब अपने बच्चों के लिए लगे हुए. जब तक हम उस लेवल पे पहुंचेंगे तब हमारी ख्वाहिशें खत्म हो चुकी होंगी. क्योंकि बच्चों को पढ़ाना लिखाना शादी करना
2: ये बंदे की हड्डियां गल जाती हैं
5: खत्म. उसके बाद लाइफ
2: एक सर्कल में फंसे हुए
5: हैं बस खत्म. क्योंकि हमें सिर्फ जिम्मेदारियों का एक बोझ दे दिया गया है कि आप उठाते रहो, बस इन्हें बोझ उठाते रहो.
2: थैला उठा के घूम रहे ना खुशियों का थैला दूसरों को देने के लिए, अपने कंधे पे बोझ ही नजर नहीं आ रहा. उस थैले का बोझ अपने कंधे पर है वो किसी को नजर नहीं आ रहा. वो थैला उठाया हुआ है और कुछ यहाँ बांट रहे सालों साल
5: सब जो है खुश करने के चक्कर में. ओके बोलते हैं ना कि सबको खुश करने के चक्कर में वो आदमी अकेला रह जाता है जो सबको साथ लेके
2: खुद जो है ना खुद रोबोट बन जाते हैं.
5: जो आदमी सबको साथ लेके चलता है वो हमेशा अकेला रह जाता है.
2: और पता है एक और चीज मुझे नजर आती है, जब हम ऑटो पायलट पर होते हैं ना तो हमें ये मसला होता है कि हम अपनी चॉइसेस को अपने पैशन को अपने आप को नोटिस करना बंद कर देते हैं. कभी इस बात पे ध्यान दीजिएगा.
5: बिल्कुल
2: हर वो इंसान जो ऑटो पायलट पर है ना उसको ये भी याद नहीं होगा कि उसकी फेवरेट चीज क्या है और उसका फेवरेट रंग क्या है. अक्सर औकात तो लोग ये तक भूल जाते हैं कि भाई मेरा फेवरेट खाना क्या है. खाना बेसिक नेसेसिटी है, उसको भूल जाते हैं लोग. पूछो भाई आज खाने में क्या खाओगे, लोग कहेंगे कुछ भी बना दो क्योंकि वो ऑटो पायलट पर है. खाना तो इसी तो खाने के पीछे तो भाग रहे हो.
5: बस वही है सारी चीजें जो
2: अब बताएं. अब आपने ये तो बता दिया, अब बताएं इससे बाहर कैसे निकला जाए. भाई आज मुझे सोल्यूशन चाहिए क्योंकि मैं खुद ऑटो पायलट पे चल रही
5: हूँ. अगर इस चीज का कोई सोल्यूशन दे दे तो मेरे को भी बताइएगा ठीक है. मैं मुझे तो कोई रास्ता ना
4: चले दिया आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.
5: अगर कोई दे दे तो मुझे जरूर मैसेज करके बता दीजिएगा.
4: चले ठीक है, चले जरूर जरूर जरूर बिल्कुल. थैंक यू जी. थैंक यू अल्लाह हाफिज़. अच्छा जी तो आसिफ भाई के पास
2: आज मुझे जवाब चाहिए
4: यार इसके लिए ना. जो मैं हमेशा से ये बात कह रही हूँ कि आपको अपनी जिंदगी की खुशियाँ, चलो पहले हम बात कर लेते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
6: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू.
2: जी कौन है हमारे साथ?
6: हम शानिया वाला बात करता हूँ. खालिद.
2: खालिद भाई कैसे हैं आप?
6: जी कैसे हो? तारीफ का मोहताज नहीं.
4: ये किंग है खालिद किंग.
6: सोल्यूशन ये है मेरे बच्चा लोग, सोल्यूशन एक ये बीच डालोगे तो गंदम निकलेगा, बीज नहीं डालोगा गंदम कहाँ से निकलेगा।
2: चलो माविश खेती बाड़ी करनी चले, जमीन है तुम्हारे पास? मेरे पास नहीं है।
6: एक आदमी बैठा हुआ है, बोला क्या इस्तेमाल कर रहा है, वो बीज नहीं निकल रहा, वो बीज डालोगा तो बीज निकलेगा मेरे भाई, मेहनत करोगा तो फल निकलेगा।
2: सही सही सही,
6: 40 साल से कर रहा है, 40 साल से, 5 साल की उम्र से।
2: सही,
6: अभी मेरी उम्र 50 है
2: माशाल्लाह,
6: अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का सब कुछ दिया हुआ है।
2: इन्होंने तो मुझे याद दिला दिया,
6: नहीं छोड़ा है,
2: ऊपर वाले का दिया सब कुछ है,
6: मेहनत किया हुआ है। जो बाप दादे का जमीन है वो पड़ा हुआ, अपना जो खरीदा है वो भी पड़ा है,
2: माशाल्लाह।
6: अभी तेरे भाभी को लाया था, वो छोड़ के आया वापस, वो एक हफ्ता पहले लेके आता हूँ, एक हफ्ता लेके आता हूँ, फिर घुमा फिरा के फिर वापस छोड़ के आता हूँ। उमरा भी कराता हूँ, सोदिया भी लेके जाता हूँ, एक मासी है उधर, उसको कराता हूँ। बेटिया है, चार बेटियों को शादी किया है, बेटा का भी शादी किया है, मोटा भी है,
2: नवासे
6: भी है।
4: चले माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड, जबरदस्त। तो मतलब आपका कहना है कि बीज बोना पड़ेगा अगर हमें कोई फसल चाहिए, राइट?
6: तो मेहनत करो,
4: मेहनत करना पड़ेगा। ओके ओके, चले जी,
6: करो, बाकी अल्लाह पे छोड़ो मेरे भाई।
4: चले ठीक है, जबरदस्त।
6: जमा करो, जमा करने से काम चलता, जमा नहीं करो तो कदर।
4: ओके सही,
2: अगर मैंने कोशिश कर रही हूं
6: जमा करो, खाना भेजो। अभी मेरा मेरा 5000 मास है, मैं अपना फैमिली 1,00,000 बाकी 4,00,000 जमा कर।
2: हम कौन सी डायमेंशन में बात कर रहे हैं, सोचना पड़ेगा।
4: चले खालिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, एक और हमारे साथ कॉल है, ठीक है? थैंक यू जी, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, खालिद भाई ना थोड़ा सा कुछ और समझ रहे थे, तो मैंने कहा कि हम
2: खालिद भाई दूसरी डायमेंशन में चल रहे थे।
4: अस्सलाम वालेकुम
7: जी। वालेकुम सलाम मैम,
4: मुबीन भाई क्या हाल है भाई?
7: बिल्कुल बेहतरीन मैम, टॉपिक सुना तो मैं ये पूछूंगा सफा मैम से, अगर आपको जिम्मेदारी नहीं चाहिए, सुबह का नाश्ता नहीं चाहिए, दिन का खाना नहीं चाहिए,
2: हाँ,
7: तो फिर सब कुछ छोड़ दो, संन्यास ले लो।
2: सुबह का नाश्ता
7: जंगल नहीं चाहिए,
2: हाँ कभी कभी ऐसे मेरा दिल करता है, लेकिन यहाँ पे जंगल नहीं है, सहरा है, वहाँ क्या करूंगी, वहाँ तो पानी भी नहीं है। पानी तो चाहिए मुझे।
7: हाँ तो जब जिम्मेदारी नहीं चाहिए तो फिर यही जिंदगी होगी, और क्या मिला।
2: ऑटो पायलट वाली नहीं चाहिए ना, थोड़ी मस्ती वाली चाहिए, थोड़े मजे वाली चाहिए, रूटीन से थोड़ी सी हटके चाहिए। मसले तो देखिए मुबीन भाई, मसले तो इंसान पैदा हुआ ना तब से मसले मसाइल हैं ही हैं, जन्नत के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मसला ना हो।
7: इंसान इंसान को आजादी चाहिए, इस्लाम आजादी नहीं देता।
2: नहीं नहीं नहीं, आजादी आजादी आजकल के लफ्जों की जो आजादी है ना, वो वाली किसी को नहीं चाहिए, मेरे को तो नहीं चाहिए।
7: तरीके से जीना, कैसे जीना, ऐसे जीना, अपन अगर आजाद जिएंगे तो फिर कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो सब कुछ छोड़ दो, संन्यास ले लो।
4: हाँ, लेकिन मुबीन भाई, इस्लाम ना आपको ऑटो पायलट पे जिंदगी गुजारने को नहीं कहता, इस्लाम ही तो वो दीन है जो झंझोड़ता है, जो कहता है कि नहीं सोचो ऐसे नहीं है।
2: मैंने एक जगह पढ़ा था, मैंने एक जगह पढ़ा था कि अल्लाह ताला कहता है कि मेरी जमीन में घूमो फिरो, अब मुझे वो आयत याद नहीं आ रही वो कौन सी थी, कि अल्लाह ताला कहता है कि जमीन में घूमो फिरो, देखो मुशाहिदा करो कि मैंने क्या कुछ बनाया है, मैंने क्या कुछ किया है। आपको लगता है मेरे और आपके पास जिंदगी में वो वक्त, पैसा, वो मिजाज रह गया कि हम घूमें फिरें और इस चीज के ऊपर गौर व फिक्र करें, अल्लाह ताला ने क्या बनाया, कैसे बनाया, किस लिए बनाया है, उसका शुक्र करें?
7: नहीं तो घूमने फिरना और इस तरह से करें तो अपने को अपनी खुद से कुछ करना पड़ेगा। जब किया तो किया, नहीं किया तो मुझे। अब अगर अपन नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में हम ना राइट जा सकते ना लेफ्ट जा सकते, जाना सीधा ही पड़ेगा।
2: देखिए कभी कभी
7: रिस्क लेना है,
4: कभी कभी आप ना ये आप ना हिलाल से आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई जगह बताओ,
2: अब हम जा रहे हैं,
4: हाँ जा रहे हैं, ठीक है, ये भी अल्लाह ही की जमीन है, इसमें घूमते
2: हैं आप, और थाईलैंड जाना है, एग्जैक्टली इंग्लैंड जाना
4: है, आप देखते हैं, देखिए मौसम अभी चेंज हो रहा है, ठीक है, मैं ये ऑब्जर्व कर रही हूँ कि अभी इस वक्त ना थोड़े से फूल खिलना शुरू हो चुके हैं, और वो जो खिले खिलाए फूल होते हैं ना उनके रंग बदलने शुरू हो गए हैं, अब आपको जरा ज्यादा ब्राइट लग रहे हैं सब कुछ, तो ये भी मतलब हमारी दुनिया भी एक पूरा, देखिए अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया ना, इधर से उधर नहीं होती कहने को, लेकिन फिर भी सीजन्स आते हैं, चीजों में चेंजेस आ रहे होते हैं, सब कुछ अपनी एक रूटीन से चल रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक इनफरादियत भी है जो कि आपको एक दावत दे रही है सोचने की।
7: तो वही तो वही बात है, उनको हर चीज में बोरियत महसूस होती है। और मैं एक बात और बताता हूँ मैम, पिछले साल इसी महीने के अंदर मैं बिल्कुल बाहर सो रहा था,
2: अच्छा ये हाँ मोबिन भाई सही के बोल रहे हैं, मोबिन भाई सही कह रहे हैं, पिछले
7: साल तो बिल्कुल ऐसी बंद नहीं कर सकते
2: पिछले 15 दिन से हमारे घर में भी हम लोग यही बात कर रहे हैं कि भाई ये क्या है, ये
4: बहुत शदीद गर्मी, कुछ अजीब सी गर्मी है,
2: हब्स है जो जा नहीं रहा,
7: यहाँ नहीं मैं
2: पूरी दुनिया में,
7: इंडिया में भी ये हाल है, हाँ इंडिया में भी ये हाल है, और अभी लंदन से कोई आए तो वहाँ पे भी यही हाल है।
4: हाँ
2: ये पिछले 15-20 दिन से हम लोग
4: जबकि अक्टूबर में तो मौसम बेहतर हो जाता है हमेशा, लेकिन अभी भी आप आओ तो ह्यूमिडिटी वैसी हो रही है।
7: हाँ मैं सितंबर लास्ट ईयर में बाहर था मैं बिल्कुल, और अक्टूबर में आके तो इतनी शानदार मस्त नींद आती थी, 10 बजे तक आके नहीं खुलती थी नमाज के बाद।
2: मजे की बात ये कि होता ये था कि हमें ऐसे पता चल जाता था कि सर्दियां अब आ गई हैं कि हम पर्दा खोलते थे ना खिड़की का तो अंधेरा होता था और एकदम से ठंड ठंड सी आती थी बाहर से, अब पर्दा खोल रहे अंधेरा है, सूरज नहीं निकला हुआ मजे की बात, लेकिन गर्मी है अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला सबको खैर आफियत से रखे। तो भाई मामला ये कि जरा मुझे बताएं ऑटो पायलट से बाहर कैसे निकला जाए।
7: ऑटो पायलट से बाहर निकला सबको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी अपने, किसी के तमाते काम नहीं करना है, तब जाके आप ऑटो पायलट से फ्री हो सकते हो। अगर आपको ऑटो पायलट का बंद करना है तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, जॉब छोड़ना पड़ेगा, अपना कुछ करना पड़ेगा।
2: इन्होंने मेरे छोटे भाई जैसे वाली बात कर दी,
7: कहीं भी जाओ कुछ भी करो आप, यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ, लेकिन अगर बंदे हैं तो अपन को 8 बजे ड्यूटी पर पहुंचना, तो पहुंचना है ऑफिस से, तब निकलना तो निकलना है।
2: अच्छा ऑफिस को साइड पे रखें, चले ऑफिस को साइड पे रखें, ठीक है ऑफिस की भी एक अपनी जिंदगी है, ठीक है ऑफिस का हमने मामला सुलझाया, अगर किसी को ऑफिस का है मसला तो उसे ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। अब ऑफिस के बाद की भी एक रूटीन होती है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने घर के अंदर एक पौधा रखा, ठीक है मुझे पौधों का बहुत शौक है, मेरे पास गमले शमले पड़े हुए, मैं एक टाइम था जब उसके अंदर एक एक पत्ता नोट करती थी, मुझे लिटरली याद था ये पत्ता नया निकल रहा है, इसका ख्याल रखना है, इसका ये करना है। मेरा पिछले दिनों एक इतना रेयर पौधा था, वो माशाल्लाह वो चाइनीज मनी प्लांट था, वो अलग ही किस्म होती है, तो वो मर गया और मुझे पता नहीं चला, मैंने कहा क्या हुआ, ये क्या हुआ होता है ना, मैं इतना रोई हूँ उसको लेकर, मुझसे तो मेरा एक तो मछलियाँ और एक मेरे पौधे, मैं बहुत रोती हूँ उसके ऊपर, मुझे एक जानदार चीज कोई मर जाए ना मैं रोती हूँ बच्चों की तरह, पौधे पढ़ने आते मेरे घर में एक तहलका मच गया, क्योंकि मुझे वो ट्रॉमाटाइजिंग लगा कि मुझे ये बेचारा मर गया मेरा पौधा, मुझे पता कैसे नहीं चला ये डीके हो रहा था या कुछ भी हो रहा था, तो मुझे पता चल जाना चाहिए था ना, वो मैं कह रही हूँ ना ऑटो पायलट पे यूं भाग, ऑफिस से निकलो घर जाओ काम करो खाना खाओ खाना बनाओ, उससे बाहर निकलकर इंसान देख ही नहीं पा रहा कुछ,
7: सब कुछ देखने के लिए अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी।
4: नहीं नहीं ऐसा नहीं है मुबीन भाई, ऐसा नहीं है, मैं इस बात से डिसएग्री करती हूँ
2: मुबीन भाई, मैं 18 साल की थी मैं तब से,
4: चले हम सलूशन निकालते हैं थोड़ी देर में, ठीक है हम थोड़ी देर में इसका सलूशन निकालने की कोशिश करते हैं, और जब तक के लिए आप एक गाना सुनिए और डांस कीजिए, ठीक है ओके अल्लाह हाफिज।
2: कितने मजे की बात है, मैं तो तकरीबन जब 18 साल की तब से जॉब कर रही हूँ, तब भी तो मैं चीजें नोट करती थी माविश, मुझे छोटी छोटी चीजें पसंद आती थी, अब वो क्यों नहीं आ रही, मैं सोचती हूँ
4: सोचो

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर. दिल से देसी.
2: मुझे तो लगता है नोटिफिकेशन को बंद कर देना चाहिए, बहुत डिस्टर्ब करते हैं.
3: अरे पर कुछ मिस हो गया तो? इनफैक्ट हर नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए, वरना बेचैनी रहेगी ना.
2: उफ, पर दिमाग को सुकून भी तो चाहिए ना.
4: यही वो अलाइनमेंट है दिमाग की, जिसे बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर ओपिनियन मैटर. सुनिए हमारा खास प्रोग्राम एनर्जी आर, हर संडे से थर्सडे दोपहर 1:30 to 2:30 PM आरजे नाजिया और आरजे सरवर मिर्जा के साथ, ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
5: दोस्तों, स्कूल स्टूडेंट्स की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए वजारत दाखिला ये ताकीद करती है कि बच्चों को सिर्फ डेजिग्नेटेड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के जरिए ही रोड क्रॉस करने की हिदायत दी जाए. ये ना सिर्फ उन्हें ट्रैफिक एक्सीडेंट से महफूज करता है, बल्कि उनमें ट्रैफिक अवेयरनेस और अपने आप को महफूज रखने की आदत को भी बढ़ावा देता है. पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल स्टाफ का फर्ज है कि वो बच्चों को गाइड करें और उन्हें समझाएं कि ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी हर वक्त जरूरी है. बिना पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के रोड क्रॉस करना खतरा बढ़ाता है, खासतौर पर बिजी रोड्स और स्कूल जोन्स में. बच्चों को ये जरूर बताएं कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पर भी रुककर ट्रैफिक का मुआयना करना, सिग्नल्स और रोड मार्किंग्स को फॉलो करना उनकी सेफ्टी को इंश्योर करता है. मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि अगर हम सब मिलकर बच्चों को रोड क्रॉस करने का सही तरीका सिखाएं, तो हम ना सिर्फ उनकी हिफाजत करते हैं, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड और सेफ ट्रैफिक कल्चर को भी बढ़ावा देते हैं. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.
6: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें. हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
7: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने.

0: इसी कंसिस्टेंसी के साथ
1: अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से आरजे सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए। ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। आप सुन रहे हैं यू मैटर
2: आरजे सफा और आरजे महविश के साथ
1: FM 107 पर दिल से देसी।
3: वेलकम बैक। और अच्छा हम थोड़ा सा इसके ऊपर
4: बह गए थे
3: हम पीछे अपने आप भी यही वाली चीज़ें जो है ना डिस्कस कर रहे थे। अच्छा यहाँ पे ना जैसे मुबीन बुखारी बोल के गए कि सोल्यूशन क्या है, हमें अपनी जॉब छोड़ना पड़ेगी। लेकिन हमें अपनी जॉब छोड़ने की या किसी भी, अक्सर लोग ना जब भी कभी ये बात होती है तो लोगों के पास जो पहला एक दिमाग में बात आती होती है वो ये आती है हम गुलाम हैं। अच्छा ये गुलामी ना आज की नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। ठीक है आज हम 9 to 5 और ये सारी एक रूटीन में फंसे हुए, जब से दुनिया बनी है जब से हर बंदे का कोई ना कोई प्रोफेशन रहा है। कोई बंदा है जिसने खेतों में काम करना, और उसकी भी एक वो होता था कि यार ये मैंने अगर नहीं किया तो जब फसल पकेगी तो मेरी फसल अच्छी नहीं पक सकेगी, मेरा एक मतलब हर बंदे की जिंदगी में एक दुनिया वाला जो लालच का एलिमेंट है ना वो है। अब कम या ज्यादा
4: तो करना पायलट तो हर चीज में
3: एग्जैक्टली उसके लिए आपको जॉब छोड़ना या आपको जिंदगी के बहुत सारे मामला छोड़ के संन्यास लेना जरूरी नहीं है। आप संन्यास लोगे तो कुछ अर्से के बाद वो भी ऑटो पायलट हो जाएगा, आप उसमें भी एक ऑटो पायलट की जिंदगी गुजारने लगोगे। कोई चीज अगर स्विच भी करोगे
4: चले जाओ। अच्छा ये इसके ऊपर ये चीज बैठती है कि द ओनली थिंग कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। द ओनली थिंग कांस्टेंट इज चेंज।
3: अब दूसरी जो चीज़ है कि हम जैसे हम सब लोग बात कर रहे हैं, मेरी और सफ़ा की ये भी ऑफ एयर भी ये बात हो रही थी कि मैंने ऑन एयर आने के लिए जवाब सोचा हुआ था, मेरे दिमाग में ये बात थी कि आप ऑटो पायलट की बात कर लो, आप एक बहुत रूटीन लाइफ की बात कर लो, आप ये कह लो कि यार हम इस गर्दिश से निकल नहीं पा रहे हैं, हम कहीं फंसे हुए हैं, हम कुछ और चाहते तो हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे। ठीक है हर बंदे के पास यही एक जवाब होता है, लेकिन आप को एक विल पावर दी गई है। उस विल पावर का मतलब यह है कि आप अपनी जिंदगी के जो मामलात हैं उसके अख्तियार रखते हो, आप वो चीज़ें कर सकते हो। और हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, हमें से कोई नहीं कह सकता कि हमारे पास विल पावर नहीं है, या हम अपनी ज़िंदगी के मामलात को जो भी हैं हमारे मसाइल हैं हमारी ज़िंदगी की रूटीन है जो कोई भी चीज़ है, हम सबके पास अख्तियार होता है अच्छे या बुरे का। हम सबके पास अख्तियार होता है ऑब्जर्व करने का भी उन्हीं चीज़ों को लेकर और इग्नोर करने का।
4: महावेश जिसे कहते हैं ना हम कहते हैं ना प्रेजेंट में जीना जो ऑटो पायलट होते हैं ना विद कॉन्शियस माइंड। एग्जैक्टली वो चीज गुम हो गई है। अब ऑटो पायलट का मतलब ये नहीं कि आप वेकेशन पे चले जाओ, अपने आपको वेकेशन पे क्या होता है, कितने दिन जाओगे वेकेशन पे, चलो मैं कहती हूँ 3 महीना चले जाओगे
3: वो भी ऑटो पायलट हो जाएगा,
4: कोई भी ऑटो पायलट
3: उधर भी बोर हो जाओगे कुछ कहो यार एक ही रूटीन है, सुबह उठो घूमने चले जाओ रात तक घूमते रहो फिर आओ खाओ पियो सो जाओ, उससे भी बोर हो जाएगा। तो आपको उसी रूटीन में रहते हुए लेकिन फिर भी अपने माइंड को कॉन्शियस रखना है और उसमें चीजें आपने ऑब्जर्व करनी है तो आप खुद ब खुद उस ऑटो पायलट रूटीन से निकल जाओगे।
4: अब जैसे एक बड़ी मुझे एक बड़ी बेसिक सी मिसाल याद आती है, पिछले साल की मिसाल है जो मेरे दिमाग से नहीं जाती बिल्कुल। और जब भी मैं डाउनफॉल होता है ना या बंदा लो फील करता है तो मुझे वो वक्त याद आता है। पिछले साल ना जब मौसम अच्छा था ना, अब जैसे अक्टूबर नवंबर में चेंज होगा तो उसी टाइम का मौसम था, जैसे कि गर्मियों के बाद हम लोग निकलते हैं पार्क शार्क गए बच्चों को लेकर, मुझे उस दिन एहसास हुआ मैं ये अपना जो होटल पार्क है जो कॉलेज की साइड पर है बड़ा मजे का, उसके ना एक हिल सी बनी हुई टॉप, वहां पे पहले जो ना वो स्क्रीन वगैरह लगाते थे, तो मैं उस मुझे शौक है उस हिल पे जाकर बैठने का, मैं मोस्टली हर वीकेंड वहां जाती हूँ। तो मैं ना उस दिन बैठी और मैंने वो काम किया जो मैं बचपन में करती थी, मैंने पहले नहीं किया था। बच्चे अच्छे चले गए खेलने कूदने, अब माशाल्लाह बड़े हो गए, अब उनको सर्विलेंस की इतनी जरूरत नहीं है, कतर में माशाल्लाह वैसे भी सेफ्टी इतनी अच्छी है। तो मैंने क्या किया, मैंने घास को हाथ लगाया, रात का टाइम था, क्यों घास को हाथ लगाया, घास मुझे पहली दफा मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे कोई छोटा बच्चा होता ना वैसे घास को हाथ लगा रहा है। फिर मैंने क्या किया, मैं सर ऊपर करके यूं करके लेट गई घास के ऊपर ही, आसमान को देखा, महावेश क्या तो सुकून
3: यार, ये
4: वो जो कॉन्शियसनेस था ना।
3: एग्जैक्टली ये बड़ी ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको अपनी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां ऐड करना पड़ती हैं,
4: जैसे मुझे सांस आ रहा है।
3: एग्जैक्टली मतलब अब छोटी छोटी अब अपने कमरे में बैठे हुए हो आपके पास, मैं नहीं मान सकती हाँ कि आपके पास कोई चीज ऑब्जर्व करने के लिए नहीं है, आपके पास है
4: वो एक होता ना आसमान की तारों की रोशनी आप देखो अंधेरा हाँ? देखो आसमान का और बेख्तर आपके मुंह से निकले या आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहो या आपको सुभानअल्लाह हाँ? और वो आप इस तरीके से फील करो कि जो पिछले 3 महीने से आप थके हुए टूटे हुए आपको फटीग हो रहा है आपकी बॉडी में दर्द हो रहा है ये वो जो 15 मिनट आप घास पे लेटे ना यूं करके वो जो ग्रेविटी ने अपना कमाल दिखाया मुझे नहीं पता जमीन में अल्लाह ताला ने क्या रखा है मिट्टी में घास में क्या रखा है लेकिन वो जो आपकी नेगेटिव एनर्जी चली जाती है ना और आप फिर सुबह को अगले दिन उठते हो और आप कहते हो ये कहां गया सब कुछ ये दर्द ये नेगेटिव फीलिंग ये कहां गया
3: कभी भी सोचो कि आप कभी भी अपनी नॉर्मल रूटीन से हटकर आप गौर करने बैठते हो ना चाहे वो किसी के साथ गौर करो चाहे अकेले गौर करो
4: हाँ।
3: उसके बाद आपको ना उसके फौरन बाद आपको अपना आप हल्का फुल्का सा लगता है लाइट वेटेड
4: बहुत बहुत ज्यादा
3: ऐसे ही है ना चलो एक कॉलर है हमारे साथ हेलो अस्सलाम वालेकुम जी कौन बात कर रहे
4: हैं अजू भाई लॉन्ग टाइम नो सी मैंने कहा वेकेशन पे चले गए
5: नहीं नहीं डेली रूटीन में थोड़ा बिजी है
4: देखा ऑटो पायलट पर आ गए
5: एक्चुअली डेली रूटीन को बात करेंगे तो कोई कंपनी आपको स्ट्रिक्ट शेड्यूल स्केड्यूल नहीं देता
4: ओके ओके
5: आप यू शुड वर्क 8 hours इट्स नॉट लाइक दैट वी आर गिविंग एक्स्ट्रा टाइम फॉर टी ब्रेक एंड लंच ब्रेक every 1 hour or 2 hour they are giving 15 minutes or half an hour 1 hour क्योंकि आपका स्ट्रेस को थोड़ा बस्ट करने के लिए
4: सही सही सही
5: तो कोई कंपनी आपको स्ट्रिक्ट नहीं करता एंड आपको डेली रूटीन बोरिंग हो रहा है आप जॉब रिजाइन करके जाएगा तो आपका दूसरा रूटीन आपको पड़ेगा ना नया जॉब ढूंढने का घर में सो के उठ के नया जॉब को एप्लीकेशन डालने का वो भी एक नेक्स्ट रूटीन हमारा ऊपर आ जाएगा ना
4: सही
3: या फिर अगर आप जॉब नहीं भी करते तो फिर वही रोजाना की जिंदगी गुजारने का
5: तो आपको हम लोग को क्या करना है एक्सेप्ट सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए कोशिश करने का क्योंकि एवरी डे इट्स नॉट लाइक अ सेम डे आपको सम डे यू विल फेस सम डिफिकल्टी आपको रूटीन थोड़ा मिस होगा तो आपको एक्सेप्ट करने का and include something enjoyable like going movies or family को time spend करने का even a small hobby this is not wasting time it helps to recharge
4: मैं इसी चीज की बात कर रही हूँ कि अपने आप को consciousness में लेकर आओ
5: yeah exactly
3: अभी देखे ना आजकल आप movie भी देख रहे होते हो तो आप एक तरफ मूवी देख रहे होते हो दूसरी तरफ नोटिफिकेशंस
4: मोबाइल चल रहा है
3: आपका माइंड किसी एक तरफ नहीं होता मतलब इवन अगर हम टीवी देखने की भी बात करें तो हम टीवी भी मुकम्मल तौर पे नहीं देखते
5: आपको 9 o'clock आपका ऑफिस में जाना है रूटीन ब्रेक करेगा तो ये डिसिप्लिन नहीं है तो इसका अंदर बहुत सारा चीज है सो आपको जो चीजें फॉलो करने का बस जस्ट थोड़ा स्टार्ट टाइम होना चाहिए और समथिंग आप उसके अंदर हॉबीज है वो ऐड करने का बस
3: सही हो गया
4: कॉन्शियसनेस अपने आप को जिंदा जिंदा होने का अपने आप को एहसास दिलाना है किसी तरह से
5: एग्जैक्टली
4: पॉज का बटन दबाना है और अपने आप को रीस्टार्ट करना है Like yeah. the same way like our mobiles get stuck, right? We just either restarted, rebooted.
5: Even the 5 to 6 o'clock as a small walk, very good for recharge your energy.
4: सही.
5: इसका जैसे आपका routine break नहीं होता है. It will be helpful for your health also. तो कभी-कभी ऑटो पायलट मोड 1 घंटा 2 घंटा को ऑफ करने के लिए कोई मसला नहीं हो कर सकते
4: हाँ हाँ हाँ समटाइम्स जहाँ अपना बस चलता है ना वहाँ करना चाहिए आई एग्री
3: बिल्कुल चलें जी अजू बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का थैंक्स अ लॉट
5: एक मिनट
3: जी जी जी बोलिए बोलिए
5: और एक आदमी बात
3: जी वालेकुम सलाम
6: आप रूटीन आपको जहाँ भी आप काम करते हैं तो आपको वीकेंड मिलता है ना
4: जी जी
5: तो वीकेंड किस लिए होता है आपको?
3: नहीं नहीं, हम ना काम के हवाले से तो बात ही नहीं करें, हम पूरी जिंदगी के हवाले से बात करें, ऑटो पायलट मोड।
5: जी जी, मैं समझ गया हूँ। काम कर रहे हैं जो भी आप डेली रूटीन में, आपको वीकेंड या आपको जो रेस्ट मिलती है उसमें आपने अपना ऑटो मूड चेंज करके आपने मैनुअल मूड में आ जाना है। ये जो आपको रेस्ट मिलती है, आप उस रूटीन से, आप डेली 5 बजे उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर आप 6 या 7 बजे ड्यूटी पे जाते हैं। जबकि वीकेंड में आप नमाज पढ़ के दोबारा सो जाते हैं, आप 9 बजे 10 बजे उठ के अपनी मर्जी का नाश्ता बनाते हैं, डेली आप शायद एक तोज लेके एक क्रूसन लेके चाय पी के चले जाते हैं। लेकिन ये रूटीन थी आपकी, लेकिन जब आप मैनुअल रूटीन में आएंगे ना, मैनुअल अपनी मर्जी से उठे, अपनी मर्जी का नाश्ता करें,
4: वीकेंड जो होता है ना,
5: रूटीन से आउट हो जाएंगे।
4: जी सही।
5: तो दूसरा क्या, आप डेली लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं, रोज आप सी साइड से गुजरते हैं, उसको समुंदर को देखते चले जाते हैं, लेकिन एक दिन आप रुके, अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले और छलांग लगा दें समुंदर में।
4: हाँ हाँ, जिसको स्विमिंग आती हो। आज मैं भी यही सोच रही थी कि पानी की लहरों की आवाजें कितनी अच्छी लगती हैं।
5: जी, वो चीज आउट ऑफ रूटीन होगी, वो आप इंजॉय करेंगे। आप डेली ऑफिस या घर जाते हैं, रास्ते में आप डेली एक कॉफी शॉप देखती हैं, आप कभी वहाँ नहीं रुकी, लेकिन किसी दिन आप वहाँ रुक के अंदर चले जाएं, कॉफी पिए, चाय पिए, तो वो रूटीन से हट गए आप, तो वो ही आपने ऑटो मूड से निकल के आप मैनुअल मूड में आ गए। इसी तरह जो आपको रेस्ट मिलती है उसमें आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं।
4: सही।
5: तो रूटीन तो ठीक है, रूटीन में डिसिप्लिन भी होती है, लेकिन जब आप मैनुअल मूड में आके कुछ करते हैं उसमें जरूरी है कि उसी डिसिप्लिन भी हो। आप कई ऐसी चीजें करते हैं कि जिसका ताल्लुक नहीं होता डिसिप्लिन से, आप कहीं रुक गए, कुछ खा लिया, कहीं चले गए, आउट ऑफ ऑर्डर, और आप आउट ऑफ आपकी जो मर्जी के, आपकी जो दिल कर रहा है वो कर रहे हैं।
4: एग्जैक्टली, आपका जो दिल कर रहा है ना वो आप करते हैं। सही
5: करते हैं। तो अब तो आप यानी लकीर के फकीर हैं, हमें जो मतलब वो भी ठीक है, आपने एक जॉब करनी है तो उसके लिए 5 दिन या 6 दिन आपने उसी पैटर्न पे चलना है, लेकिन जब आपको रेस्ट मिली, आपको मौका मिला, शाम को आपका वक्त अपना है, उसमें आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप मूवी देखें, तो वो जरूरी नहीं कि वो डेली रूटीन में आपके हो, और हमेशा नहीं, 15 दिन 20 दिन में, 2 हफ्ते में, 1 महीने में 1-2 बार।
4: अच्छा, मजे तो की बात कुछ ऐसी है,
5: आप एंजॉय भी करेंगे।
4: मजे की बात कुछ ऐसी है, कुछ लोग ना काम कर करके, मैं ऑफिस की बात नहीं कर रही, मैं वैसे ही डेली लाइफ में इतना कुछ लोग वो इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो थक टूट जाते हैं, और उनको पता ही नहीं चलता कि जिंदगी में रेस्ट नाम की चीज क्या होती है, यहाँ तक कि उनका वीकेंड भी आता है ना, अगर उसके अंदर वो काम ही कर रहे होते हैं। ये मैंने बहुत टाइम बाद जाकर सीखा है कि वीकेंड रिलैक्सेशन के लिए होता है, काम के लिए नहीं होता।
5: जो डेली रूटीन है वो आपकी तकदीर है, और जो आप चेंज करते हैं वो तदबीर है आपकी, उसके लिए आपको तदबीर करनी है। ठीक है,
3: सही तो सही हो गया।
5: यही थोड़ा सा आइडिया था, यही
3: हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हमें एक आइडिया दिया वीकेंड का, कि वीकेंड के में हम थोड़ी सी अपनी लाइफ चेंज करते हैं, हम सभी करते हैं।
4: नहीं नहीं, आई नो, आई एम वन ऑफ दोस पीपल, आई डोंट,
3: एक ही रूटीन रहती है तुम्हारी।
4: हाँ, मुझे काम है, और ये मैं बता रही हूँ, एक उम्र गुजर गई, एक उम्र गुजरने के बाद जाके अब ख्याल आता है कि नहीं, दीज कपड़े कैन वेट, ये जो सिंक के अंदर बर्तन पड़े हुए दे कैन वेट, झाड़ू पोछा करना है इट कैन वेट। तो वो एनर्जी फिर कुछ 1-2 घंटे बाद जब होता है, तो मुझे अब जाके इस बात का अंदाजा हुआ है, नहीं, एवरीथिंग कैन वेट सफा, एवरीथिंग कैन वेट, इट्स ओके। नहीं तो मुझे जो एनजाइटी होती थी ना वो इसीलिए होती थी।
3: अच्छा, मेरा ये है कि मैं वीकेंड पे आराम करती हूँ, और ये जो कपड़े शपड़े और ये सारी जो चीज़ें हैं मैं वीकडेज में कर लेती हूँ। मैं कहती यार मुझे वीकेंड पे मी टाइम, मतलब अपना टाइम चाहिए, हम लोग बैठे घूमें सब कुछ करें, ये वाला चीज़ है। खैर, लेकिन उससे भी ऑटो पायलट एक और डिफरेंट चीज़ है, मैं अभी भी मतलब थोड़ा सा इस चीज के ऊपर तलाश करूंगी।
4: चॉइस नहीं है ना,
3: हाँ, मतलब आप अगर वीकेंड पे भी एक ही रूटीन को फॉलो कर रहे हो, उन्होंने सही की, कभी कुछ करो कभी कुछ करो, 15 दिन में कुछ और कर लो, कभी कॉफी के लिए रुक जाओ, जो चीज भी आपको खुशी देती है, लाजमी नहीं है जैसे मैं अब रस्ते में आ रही हूँ, मैं अकेले कॉफी में मुझे मजा ही नहीं आएगा,
4: उसके लिए ना आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है मावेश। कुछ लोग
3: आपको मजा देती है, जो चीज आपके लिए इंजॉयबल है, जो चीज आपको अच्छी लगती है चाहे वो कुछ भी हो
4: हाँ.
3: आप वो कीजिए और थोड़ा सा दिल लगा के कीजिए, उसको भी रूटीन का हिस्सा ना बनने दीजिए.
4: लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि जैसे घर में आग लग गई और बुझानी है 24 घंटे वो इसी
3: नहीं, वो कैफियत तो खत्म करना पड़ेगी ना. अच्छा खालिद भाई कहाँ हो भाई? खालिद भाई ये शहजादा सलीम कह रहे थे, मेरा ख्याल है वो कहीं और गवाह हो गए थे, गुजर गए थे. अच्छा जी

फिर वो टूट कर पीछे पड़ जाता है। कुरान कहता है कि जो तुम्हारे इख्तियार में है वहां अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा करो, जो वाकई इख्तियार से बाहर है उसके बारे में अल्लाह तुम्हारी इस्तेआत को जानता है। तो ये बात भी सही नहीं कि इस आयत में किसी सुस्ती का जवाज के हवाले से बताया गया। नहीं, आयत ये नहीं कहती कि जितना दिल चाहो उतना करो, कहती है कि मस्ततअतुम, जितनी हकीकी इस्तेआत है, यानी अपनी ताकत को छुपानी भी नहीं और अपने कंधों पर यानी नामुमकिन बोझ भी न डालो। घर में, काम में, इबादत में, इस्लाह में, मुआशरे में, जहाँ इख्तियार है जिम्मेदारी है, जहाँ इख्तियार नहीं वहाँ इंसान अपनी हद पहचान ले। ये आयत इंसान को बेअमली होने से भी बचाती है और गैर हकीकी बोझ को कंधे पर लेने से भी बचाती है। अच्छा जी, इसी तरह इंसानी ताल्लुकात के लिए कुरान का एक हैरत अंगेज उसूल है, इदफा बिल्लती हिया अहसन, बुराई को उस तरीके से दफा करो जो सबसे बेहतर हो। आपसे किसी ने सख्ती की तो हर मरतबा सख्ती ही वाहिद जवाब नहीं। किसी ने गलत बात कही तो उसे नीचा दिखाना जरूरी नहीं। किसी ताल्लुक में अगर कशीदगी आ जाए तो वहाँ जरूर आपने जीतना है, बात ऐसी भी नहीं। कुरान कहता है रद्द अमल के गुलाम मत बनिए, दूसरा शख्स ये तय न करे कि आपका अखलाक क्या होगा। उसने बुरा किया है तो आपके पास फिर भी इख्तियार है कि आप बेहतर रास्ता मुंतखब करें। तो बुनियादी अखलाकी कायदा ये निकला कि मुमकिन हो तो बुराई के जवाब में वो रास्ता इख्तियार कीजिए जो नतीजे अखलाक और अल्लाह की रजा के एतबार से बेहतर हो। तो सामने कराम जरा देखिए कि कुरान क्या कर रहा है। वो आपको हर मुमकिन सिचुएशन की इतनी सारी यानी 10,000 इंस्ट्रक्शंस नहीं देता, वो आपके हाथ में एक कुतुब नुमा एक उसूल दे रहा है, कंपास दे रहा है, हर सड़क का सिमत पहचानने की सलाहियत दे रहा है। अक्सरियत सामने आए तो यूं मत समझ बैठे कि हाँ यही हक की दलील है। कुरान तो कहता है वइन तुति अक्थर मन फिल अर्ज़ युदिल्लुक अन सबीलिल्लाह, अपनी ताकत और जिम्मेदारी का सवाल हो तो फत्तकुल्लाह मस्ततअतुम, किसी की बुराई का जवाब देना हो तो इदफा बिल्लती हिय अहसन। यानी कुरान इंसान के अंदर एक ऐसी फिक्र पैदा करता है कि वो सही सिमत में सोच सके। और यही सामने कराम कुरान करीम का नक्शा कि वो किस तरह इंसान को बदलता है। पहले वो जड़ तक पहुंचता है, पहले वो दुनिया की डिफिनेशन दुरुस्त करता है, फिर नफ्स की, फिर सआदत शकावत, हिदायत जलालत, अखलाक और ईमान के मफाहिम दुरुस्त करता है, फिर आपके जहन के अंदर जाकर बताता है कि खबरदार तुम्हारी फिक्र को ख्वाहिश हाईजैक न कर ले, हसद तुम्हारा फैसला बदल सकता है, जहालत तुम्हें बिलाइल्म बोलने पर मजबूर कर सकती है, दुनिया की चमक तुम्हारा मीजान बदल सकती है। और ऐसे वक्त जबकि कुरान आपको बेसहारा नहीं छोड़ता, वो आपके हाथ में उसूल रख देता है, ये लो मीजान, ये लो कॉम्पस, अब जिंदगी में चलो इसी कॉम्पस के सहारे। इसलिए कुरान इंसान में जो तब्दीली लाना चाहता है, इस बात की गहराई ये है कि इंसान का दरअसल जाविया सोच, जाविया नजर ये कुरान बदल देता है। और जब देखने का अंदाज बदल जाए तो फैसले बदलते हैं, तरजीहात बदलती हैं, ताल्लुकात बदलते हैं, ख्वाहिशों के साथ जो मामला ये सब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू होता है और इंसान की यहाँ तक कि पूरी जिंदगी बदल जाती है। मसलन मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ के हवाले से कुरान हमें क्या उसूल देता है, वस्सुल्हु खैर, सुल्ह बेहतर है। दरअसल ये सिर्फ दो अल्फाज हैं कि वस्सुल्हु खैर, मगर ये दो अल्फाज इज़दवाजी इख्तलाफ से लेकर खानदानी तनाज़ और बहुत से इंसानी मामलात तक एक पूरा मिजाज तश्कील देते हैं। हर इख्तलाफ को अना की जंग न बनाओ, हर मसले में ये न सोचो कि मैं कैसे जीतूं, कभी ये भी सोचो कि ये ताल्लुक कैसे बचे। फिर इस दिवाजी जिंदगी के लिए कुरान क्या कहता है, वाशिरूहुन बिल मारूफ, उनके साथ अच्छे और मारूफ तरीके से जिंदगी बसर करो। यहाँ कुरान हर सुबह, हर शाम, हर मुकालमे और हर घरेलू सूरत हाल की अलग अलग तफसील नहीं देता, वो सिर्फ एक उसूल दे रहा है, मारूफ के साथ जिंदगी गुजारो। अब इस उसूल के अंदर मोहब्बत भी आएगी, एहतराम भी, जिम्मेदारी भी, हुकूक की अदायगी भी। गोया एक आयत आपके हाथ में बड़ी बुनियाद रख देती है, फिर आपको इस बुनियाद को अपने घर की रोजमर्रा जिंदगी में उतारना है। फिर इज्तिमाई जिंदगी के हवाले से आइए देखिए कुरान क्या कहता है, वला तनाज़ाउ फतफशलु वतذهب ريحكم, आपस में निज़ा न करो वरना तुम कमजोर पड़ जाओगे और तुम्हारी कुव्वत जाती रहेगी। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि कुरान ने आपको की दे दी, इख्तलाफ होगा, इंसान है, जाहिर

0: दिल है और यही समयना व अताना का मिजाज है। और जब इंसान इस कैफियत से कुरान के पास आता है तो अजीब तब्दीली शुरू होती है। जो बात कल उसे रेस्ट्रिक्शन लगती थी आज प्रोटेक्शन महसूस होती है। जो हुक्म कल बोझ लगता था आज उसमें खैर दिखाई देने लगती है। तो फिर इंसान कहता है, अरे मसला तो आयत का नहीं था, मसला मेरी निगाह का था। मैं कुरान के सामने खड़ा तो था मगर अपने ख्यालात को इतना मजबूत पकड़े हुए था कि कुरान को मेरे अंदर दाखिल होने की जगह ही नहीं मिल रही थी।
1: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ FM 107 पर।
0: मजीद खुसूसियात के हवाले से जब गुफ्तगू हो रही है तो एक और खुसूसियत का भी जिक्र कर दें जो कुरान के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये खुसूसियत दरअसल इंसानी फितरत से बराहे रास मुतालिक है। और वो ये कि कुरान मुख्तलिफ इंसानी दरवाजों से इंसान तक पहुंचता है। इसका मतलब क्या है? हम सब एक जैसे नहीं। किसी पर मंतकी दलील ज्यादा असर करती है, किसी के दिल को एक वाकया छू लेता है, कोई सवालों जवाब से समझता है तो कोई मिसाल से, कोई आखिरत की याद से तो कोई अल्लाह की रहमत सुनकर बदलता है, कोई हिसाब और अजाब की तंबीह सुनकर जागता है। तो अगर आप अकली इस्तदलाल चाहते हैं तो कुरान कहता है, लौका नफीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद होते तो दोनों का निजाम बिगड़ जाता। तो यहाँ कुरान आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है। दलील, इस्तदलाल, नतीजा, अकल से खिताब। इसी तरह कुरान आपको जन्नत के दरवाजे पर भी ले जाता है। इरशाद खुदावंदी है, अऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أهل التقوى گروه در گروه جنة کی طرف لے جائے گئے، दरवाजे खोल दिए गए, फरिश्ते इस्तकबाल कर रहे हैं। सलाम अलैकुम तिबतुम, तुम पर सलाम हो, तुम पाकीज़ा रहो। फदखुलूहा खालिदीन, अब दाखिल हो जाओ हमेशा रहने के लिए। यहाँ कुरान आपके दिल के सामने एक मंजर खोल रहा है। जरा तसव्वुर कीजिए कि जिंदगी भर की थकन खत्म, इम्तिहान खत्म, खौफ खत्म, जुदाई खत्म और दरवाजे पर पहली आवाज, तो वो कौन सी आवाज है? सलामुन अलैकुम। फिर अहले जन्नत कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु वअवरसना अल-अर्ध नतबव्वउ मिनल जन्नति हैथु नशा फनिअम अजरुल आमिलीन। तमाम हम्द उस अल्लाह के लिए है जिसने हमसे अपना वादा सच्चा कर दिखाया। और फिर सूरतुल ज़ुमर के इख्तिताम का वाज़ेह मंजर देखिए, وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فرشتے عرش کے گرد اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، فیصلہ ہو چکا ہے، दुनिया की पूरी दास्तान अपने अंजाम को पहुंच चुकी और आखिरी सदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गोया इंसानी तारीख का पर्दा गिरता है और आखिरी लफ्ज भी हम्द इलाही है। ये कुरान का वजदानी खिताब है। ये आपको चंद लम्हों के लिए आखिरत के मंजर में खड़ा कर देता है। समरी कराम, इंसान को बदलने वाली बेहतरीन गुफ्तगू अमूमन वो होती है जो दिल तक पहुंचे। दूसरी तरफ अगर सिर्फ जज्बात हों, दलील ना हो तो ये बात भी नहीं बनती। कुरान दोनों को जमा करता है, अकल को भी और दिल को भी। कभी एक ही सिलसिला कलाम में दलील चल रही होती है और साथ आखिरत भी सामने आ जाती है। और इस तरह कुरान इंसान से पूरे इंसान की हैसियत से खिताब करता है, जहां फिक्र भी है, खौफ भी, उम्मीद, मोहब्बत और ख्वाहिश भी। इसी तरह खैर और शर के मसले में भी कुरान का अंदाज सामने आता है। मसलन एक सवाल ये हो सकता है कि कोई गुनाह गलत क्यों है? सिर्फ इसलिए कि उस पर सजा है या वो बजात खुद भी अल्लाह की हिकमत के मुताबिक इंसान और मुआशरे के लिए फसाद रखता है? कुरान कई मकामात पर अहकाम के बाज़ मफासिद और हिकमतों की तरफ भी रहनुमाई करता है। शराब और जुए के बारे में।

0: नई जिहतें दिखाती है। और इस तरह शायद आखिर में सबसे बड़ा सवाल कुरान के बारे में नहीं, हमारे बारे में है। कुरान में तो हिदायत है, मगर क्या मैं उसे अपनी सिमत मुतायन करने देता हूँ? कुरान में मीज़ान है, मगर क्या मैं अपने ख्यालात को उस मीज़ान पर रखता हूँ? कुरान में गहराई है, मगर क्या मैं सतह से नीचे उतरता हूँ? और सबसे बढ़कर कुरान की महार किसके हाथ में है? कुरान मेरे हाथ में है या मेरी जिंदगी की महार कुरान के हाथ में है? अगर कुरान सिर्फ मेरी मालूमात में रहेगा तो इल्म बढ़ सकता है, लेकिन जब कुरान मेरी तारीफें बदलने लगे, मेरी तरजीहात बदलने लगे, मेरी ख्वाहिश को रोकने लगे, मेरे दिल को नरम और मेरी अकल को रोशन करने लगे, तब कुरान मुझे बदल रहा है, ये कहा जा सकता है। और यही वो मकाम है जहां मोमिन कुरान के सामने अपनी शर्तें रखना छोड़ देता है, अपनी जिंदगी की महार उसके सुपुर्द कर देता है और दिल से कहता है, समिअना वअतअना, हमने सुना और हमने इताअत की। क्योंकि कुरान से हकीकी ताल्लुक ये नहीं कि हम सिर्फ ये पूछें कि कुरान ने मुझे क्या बताया, बल्कि कभी खामोशी से ये भी पूछें कि कुरान ने मेरे अंदर क्या बदल दिया है। प्रोग्राम कुरान के मोती के आज के इस हलके से तकनीकी मुआविन नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मा सलामा।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, तो फिर एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
1: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।
4: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामीने किराम, अगर आपसे पूछा जाए नेकी क्या है, तो शायद जहन में फौरन इबादत आए, नमाज, रोजा, सदका, तिलावत, जिक्र, ये सब तो यकीनन अजीम नेकियां हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुख्तसर जुमले में नेकी के एक ऐसे पहलू की तरफ तवज्जो दिलाते हैं जो हमारी पूरी रोजमर्रा जिंदगी को अपने अंदर समेट लेता है। अल बिर्रु हुस्नुल खुलुक, नेकी अच्छे अखलाक का नाम है। और फिर गुनाह की एक बातिनी अलामत बयान फरमाते हैं, वल इस्मु मा हाक फी सदरक व करहत अन यत्तलिअ अलैहि अन्नास, और गुनाह वो है जो तुम्हारे सीने में खटके और तुम ये नापसंद करो कि लोग उससे वाकिफ हों। इमाम इब्न दकीकुल अईद रहिमहुल्लाह ने हुस्नुल खुलुक की वजाहत करते हुए निहायत खूबसूरत पहलू बयान किए हैं, जिसका खुलासा ये है कि हुस्न अखलाक में इंसाफ भी है, हुस्न अखलाक में अदल, रिफ्क और एहसान भी है। कभी इंसान की गुफ्तगू बहुत मीठी होती है लेकिन मामले में वो हक मार जाता है, तो सिर्फ मीठी जबान काफी नहीं। तो खुलासा ये निकला कि सिर्फ मीठी जबान काफी नहीं। कोई शख्स मुस्कुरा कर मिलता है मगर कारोबार में धोखा देता है, ये मुकम्मल हुस्न अखलाक नहीं। अच्छा अखलाक किरदार का हुस्न है। सामईन किराम, कभी हम दीन को दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, इबादत अलग और अखलाक अलग। घर में लहजा जैसा भी हो तिलावत जरूरी, कारोबार में मामला कुछ भी हो जिक्र बहुत कर रहे हैं, मुलाजिम के साथ बदतमीजी लेकिन नफल रोजे अदा कर रहे हैं। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल बिर्रु हुस्नुल खुलुक, यानी नेकी का असर आपके किरदार में भी नजर आना चाहिए। इबादत आपको अल्लाह के करीब ले जाए और इस कुर्ब का हुसन लोगों के साथ आपके रवैये में भी जाहिर हो। और जैसा कि आपने सुना सामने किराम के हुस्न अखलाक का एक अहम हिस्सा इंसाफ भी है। इंसाफ का असल इम्तिहान तब है जब फैसला हमारे अपने खिलाफ जा रहा हो, दो लोगों में इख्तिलाफ हुआ, एक हमारा दोस्त एक अजनबी, क्या फिर भी हम इंसाफ कर सकते हैं? कारोबारी मामले में गलती हमारी है, क्या हम जिम्मेदारी ले सकते हैं? याद रखिए, इंसाफ ये भी है कि दूसरों को भी उसका हक मिले, चाहे मुझे थोड़ा नुकसान ही क्यों ना हो। मजीद इब्न दकीक अलैद रहमहुल्ला ने हुस्न अखलाक में रिफ्क यानी नरमी का भी जिक्र फरमाया। मिसाल के तौर पर हम किसी को सही बात बता रहे हों मगर किस अंदाज में, तहकीर के साथ या फिर सबके सामने उसकी इसलाह करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी हमारी बात बिल्कुल दुरुस्त होती है लेकिन अंदाज उसके असर को खत्म कर देता है। हुस्न अखलाक हमें ये सिखाता है कि हक कहिए मगर खूबसूरत तरीके से। मजीद आगे हदीस एक दूसरी अलामत बताती है, وكرهت ان يطلع عليه الناس, और तुम नापसंद करो कि लोग उससे वाकिफ हों। अब हदीस की इस लाइन को अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ले आइए। कुछ मैसेज ऐसे हैं जिन्हें हम दूसरों के सामने नहीं खोलना चाहते, कुछ कन्वर्सेशंस ऐसे हैं जिन्हें फौरन डिलीट कर देते हैं, حالانکہ سوال تو صرف یہ نہیں کہ کیا لوگ دیکھ رہے ہیں، اصل سوال تو یہ ہے کہ اگر لوگ نہیں بھی دیکھ رہے ہیں تو کیا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا؟ مومن کا ضمیر صرف لوگوں کے کیمرے سے زندہ نہیں ہوتا، اسے یہ شعور زندہ رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو خوبصورت بنائے، ہمیں عدل، نرمی اور احسان کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
0: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: Your health matters.
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे हड्डियों और जॉइंट्स के बारे में। हम अपनी हड्डियों को अक्सर उस वक्त याद करते हैं जब कमर में दर्द हो, घुटने में तकलीफ हो या कोई इंजरी हो जाए, लेकिन हड्डियों की सेहत का ख्याल बहुत पहले से हमें रखना चाहिए। और हमारा मकसद भी यही है कि हम किस तरह से अपनी हड्डियों को ज़्यादा मजबूत बना सकेंगे। हमारी बोन्स सिर्फ जिस्म को सहारा नहीं देती बल्कि एक पूरा स्ट्रक्चर देती हैं और हमारी जो भी मूवमेंट है, चलना फिरना है, उसमें मदद करती हैं। जिस्म के अहम हिस्सों की हिफाजत करती हैं। उम्र ज़्यादा होने के साथ साथ बोन्स की स्ट्रेंथ में तब्दीली आ सकती है, इसलिए शुरू से अच्छी आदत रखना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। कैल्शियम जो कि बहुत अहम है, वो कहाँ से मिलता है? और ये बहुत ही अहम न्यूट्रिएंट है और ये दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा बस दूसरे फूड से भी हासिल हो सकता है, जैसे

0: कुछ सब्जियां हैं, बीन्स हैं या कैल्शियम फोर्टिफाइड जो फूड्स हैं वो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम जो है वो ही काफ़ी नहीं होता, उसमें विटामिन डी बहुत अहम किरदार अदा करती है। विटामिन डी बहुत अहम है कि वो किस तरह से हमारा जिस्म जो है वो कैल्शियम इस्तेमाल करता है और उसके हुसूल के तरीके और ज़रूरत हर शख्स में मुख्तलिफ हो सकती है। ख़ास तौर पर अगर किसी को विटामिन डी डेफिशिएंसी का ख़तरा हो या बिला ज़रूरत सप्लीमेंट लेने के बजाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मशवरा ज़रूर कीजिए, यानी अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए कि वो क्या आपको कहते हैं। और ये भी कि एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ वज़न के लिए नहीं होती, ये हमारी फिजिकल जो एक्टिविटी है यानी मसल्स के लिए और बोन्स के लिए बहुत अहम है। चॉइस बहुत से अफराद के लिए अच्छी जो वेट बेरिंग एक्टिविटी है जैसे वॉकिंग है उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, इसीलिए ओवरऑल फिजिकल जो फंक्शन है और मसल्स भी स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेस के मुताबिक कीजिए। फिजिकल कंडीशंस हमेशा अपनी उम्र और जो एक्सरसाइज है वो भी उसी के मुताबिक कीजिए। ख्वातीन के लिए जो है वो ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। ख्वातीन में उम्र के साथ हार्मोनल चेंजेस की वजह से बोन हेल्थ पर ख़ास तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। ख़ास तौर पर मेनोपॉज के बाद डॉक्टर से बोन हेल्थ के बारे में बात करना बाज़ ख्वातीन के लिए बहुत अहम और ज़रूरी हो सकता है। बुज़ुर्ग अफराद में उम्र बढ़ने के साथ साथ गिरने का ख़तरा बढ़ सकता है। घर में फर्श साफ़ व रास्ते आप खुले रखिए, मुनासिब रोशनी रखिए और अगर ज़रूरत हो तो बाथरूम में सेफ्टी अरेंजमेंट ज़रूर कीजिए। इसी तरह से जो मुनासिब जूते हैं वो पहनना बहुत अहम है। अब ये कि जोड़ों में दर्द होता है और जॉइंट पेन है तो उसको हम कैसे देखें? हर जो जॉइंट पेन है वो आर्थराइटिस नहीं होता, कभी इंजरी है, कभी ओवरयूज है या फिर दूसरी वजूहत भी हो सकती हैं। अगर दर्द मुसलसल है और आपका जो जॉइंट है वो सूजा हुआ है और एक्टिविटी बहुत महदूद है या दर्द रोज़मर्रा कामों में रुकावट बन रहा है तो फिर आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए, मेडिकल असेसमेंट बेहद ज़रूरी है। अपनी पोस्चर पर ज़रूर तवज्जो दीजिए, लंबे वक्त तक एक ही पोजीशन में बैठना, गलत पोस्चर और मुसलसल इनएक्टिविटी बाज़ अफराद में बैक या फिर नेक डिस्कम्फर्ट को ज़्यादा कर सकती है। हड्डियों की मजबूती के लिए आज से ही जो कुछ आदत हैं हम अपनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बैलेंस डाइट है, मुनासिब फिजिकल एक्टिविटी है, अगर आप स्मोकर हैं तो फिर स्मोकिंग से दूर हो जाइए। इसी तरह उम्र और रिस्क के मुताबिक मेडिकल एडवाइस और स्क्रीनिंग बहुत ही अहम है। एक और अहम बात वो ये कि हड्डियों की सेहत का ख्याल सिर्फ बुढ़ापे में नहीं जिंदगी भर रखना है। अगर आप आज अपनी बोन्स और मसल्स को मजबूत रखने की आदतें अपनाते हैं तो ये आपकी फ्यूचर मोबिलिटी के लिए बहुत अहम है, मुस्तकबिल आपका सेहतमंद हो सकता है। तो आज अपने आप से आप ज़रूर कहिए कि मैं सिर्फ आज के लिए नहीं आने वाले सालों की सेहत के लिए भी अपने जिस्म का ख़ास ख्याल रखूँगा या रखूँगी। बेहतर जिंदगी, मोबिलिटी, मजबूत जिस्म बेहतर है और यही है Your health matters. Your health matters.
1: Qatar ka pehla desi radio station FM 107. Dil se desi.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन्स के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन्स के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है। कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है। मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में।
2: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
1: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी ट्यूसडे एट 1 PM।
2: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स
0: की। कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया। सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी
4: गेम चेंजर सीजन 2।
5: आप सुन रहे हैं FM 107।
0: दिल से देसी।
6: FM 107 presents Tech Update. Tech Update.
7: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम टू टेक अपडेट। आज बहुत काम की चीज है, हर रोज होती है। आप बोलेंगे हर रोज आता ही बोलता है। आज भी आई डोंट नो व्हाट टू से स्टार्टिंग में। यही है ना, मैं बता तो रहा हूँ, वो काम का बंदा है यार कबीर। चलिए मैं आपको तीनों वेबसाइट जल्दी से बता देता हूँ। तो ये तीनों वेबसाइट्स आपके काम आएंगी, कुछ फॉर फन है और कुछ बड़ी काम की है। लेट्स बिगिन। सो नंबर वन वेबसाइट ऑन द लिस्ट, इसका नाम है MrFreeTools.com। मिस्टर फ्री टूल्स डॉट कॉम। आप इस पे जाइए, आपको वेबसाइट्स भी मिलेंगी, AI टूल्स भी मिलेंगी, वो वाले टूल्स जो आपको स्पेसिफिकली काम बताएंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे मार्केटिंग, तो मार्केटिंग टूल आ जाएगा। सोशल मीडिया वाले टूल बताएंगे, फिर उन टूल की तरफ आपको ले जाएंगे। वो सारे टूल्स आप यूज भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत बहुत काम का है। और नाम में क्या है, MyFreeTools.com। तो आपको जितने भी टूल्स मिलेंगे ये सारे के सारे एकदम फ्री हैं। तो आप अगर सीरियस हैं कंटेंट जनरेशन को लेकर, इफ यू प्लानिंग समथिंग आउट और आपको AI लगता है यार ये महीने का और खर्चा हो जाएगा, तो ये आपके काम आ सकता है और बहुत बहुत कमाल का है। सो गो फॉर इट एंड आई थिंक इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू। अब बढ़ते हैं जरा आगे। देखिए, लैंग्वेजेस सीखने के लिए मैंने पिछली बार भी आपको एक वेबसाइट बताई थी, और अब एक और नई वेबसाइट बताना चाहता हूँ जो आपको कोई भी नई लैंग्वेज सीखने में मदद कर सकती है। वेबसाइट का नाम है learn101.org। learn LEARN फिर 101, न्यूमेरिकली लिखना है 101.org। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे और उसके बाद आपसे पूछेगा भाई आपको कौन सी भाषा आती है, आप बताएंगे ये आती है, अच्छा ठीक है, कौन सी सीखनी है, ये वाली सीखनी है, और फिर आपको हर तरीके से ये सिखाने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं कि बस पढ़ के बोल दो, नहीं, इमर्सिव तरीके हैं थ्रू साउंड इफेक्ट्स, फोनिक्स, थ्रू वीडियोस एंड स्मॉल स्मॉल गेम्स स्कोरिंग कर सकते हैं आपको। बहुत कमाल की चीज़ है यार। लैंग्वेजेस वैसे भी सीखनी चाहिए, मतलब मैं अभी स्पेनिश का मेरा कोर्स चल रहा है इस पे धीरे धीरे, कोमोइस्ता से मुझे भी आगे बढ़ना है एंड ऑफ कोर्स अरेबिक। तो टारगेट बनाइए अपना, एंड आई थिंक आई नो बोलने वाले लोग चाहिए होते हैं आसपास, बट अगर नहीं है तो AI है ना, बात करो बिंदास उससे भाई, बोलो मेरे से आज तुम अरबी में बात करो, समझ रहे हैं आप, एंड यू कैन स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन, कुछ तो दिमाग में आएगा, पर कर सकते हैं आप। आज का जमाना इस चीज को लेके कम से कम फ्री है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, थर्ड वेबसाइट है nomorecopyright.com। nomorecopyright.com। ठहरिए, इससे पहले आप अजम्पशन लगाएं इसमें।

0: क्या है ये इमेजेस के लिए, स्टॉक इमेजेस। कई मरतब आप देखते हैं ना इमेजेस, आप स्टॉक इमेजेस यूज करना चाह रहे होते हैं, उसके ऊपर वाटरमार्क होता है या फ्री नहीं होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो स्टॉक इमेज जो आपको अच्छी लग रही है वो आप इस वेबसाइट पर डालिए nomorecopyright.com पे, और ये उसी इमेज का एक अलग बहुत ही रिफाइंड वर्जन आपको दे देगा। तो जितने लोग स्टॉक इमेजेस में काम करते हैं, जिन्हें जरूरत पड़ती रहती है, उनके ये बहुत काम आएगा। डेफिनेटली अ वेरी गुड थॉट बिहाइंड इट, जिसने भी ये वेबसाइट सोची है, तो काम की तो है भाई, ठीक है, गो फॉर इट। अब जरा बढ़ते हैं एक नॉट एग्जैक्टली डिस्कवरी मगर एक ट्रेंड की तरफ जो अभी डिस्कवर हुआ है, कुछ लोगों ने अभी किया, कुछ लोग पहले भी कर चुके थे। तो आपको याद है 3D प्रिंटर जब पहली बार देखा था तो क्या रिएक्शन था? मेरा रिएक्शन था, हैं ये ऐसा भी होता है? तो 3D प्रिंटर्स का क्रेज तो रहा है, लेकिन बहुत महंगे हुआ करते थे। राइट नाउ मैं नहीं कहूंगा अरे बिल्कुल ही सस्ते हो गए, तो अब तो धूल के बराबर है, नहीं। पर अभी आफ्टर लाइक 10-15 ईयर्स जब से क्रेज चालू हुआ था, आज की तारीख में जो एंट्री लेवल 3D प्रिंटर्स हैं वो एक्चुअली में अफोर्डेबल हैं। $200, $400 ये रेंज बढ़ते चली जाती है। मिड टियर मॉडल्स हैं $750 और फिर आगे चला जाता है मामला। और कुछ लोग इसी वजह से यूरोपियन कंट्रीज में स्पेशली सोच रहे हैं कि भाई ये ही ले लिया जाए, क्योंकि ये होम प्रिंटिंग टूल ऐसा है जो आपको थोड़ी छोटी मोटी चीजें, छोटे मोटे टूल्स बनाने में मदद कर सकता है। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन योर बजट एंड एवरीथिंग, बट आई थिंक 3D प्रिंटर्स आर हेयर टू स्टे। ये डाई आउट नहीं होने वाले। आपका क्या कहना है बता दीजिएगा, अगली अपडेट में मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टेक अपडेट।
1: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: आप तो आंखों में हैं अब भी, फिर भी उनकी ताबीरों से दिल डरता है।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए स्कैम के बारे में मैं आपको इत्तला करता रहता हूं। और आज जिस स्कैम के बारे में बात करने वाला हूं, ये लोगों के लिए बड़ा ही खेल बन गया है। तो वैसे आज मैं बात करने वाला हूं खेल यानी कि स्पोर्ट्स एकेडमी का स्कैम। दोस्तों ये स्कैम बहुत ही बेकार है, मतलब ये टारगेट करता है बच्चों को। इसमें फ्रॉडस्टर सीधे तौर पर पेरेंट्स के इमोशन के साथ खेलते हैं और उनके बच्चों के अच्छे फ्यूचर की ख्वाहिश का गलत फायदा उठाते हैं। हर एक पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा अच्छी तरह पढ़े, स्पोर्ट्स में भी अपना नाम रोशन करें, और आजकल तो स्पोर्ट्स में ज्यादा तवज्जो देने लगे हैं पेरेंट्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस ख्वाहिश को टारगेट करते हुए स्कैमर्स पेरेंट्स को ठगने की पूरी कोशिश करते हैं, जाल बुनते हैं। वो इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ही प्रेस्टीजियस, हाई क्लास और साथ ही अफोर्डेबल दिखने वाली स्पोर्ट्स एकेडमीज के बड़े बड़े और अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स चलाते हैं। ये सोशल मीडिया पे आपके पास पहुंचता है। इन एड्स में बहुत अच्छी फैसिलिटीज, बड़े कोचेस की फोटोज दिखाई जाती हैं, जिससे पेरेंट्स आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब पेरेंट्स उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं तो ऑर्गेनाइजर्स उनसे स्टीप अपफ्रंट रजिस्ट्रेशन फीस की डिमांड करते हैं। देखिए इसमें बहुत से लेयर्स होते हैं। वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, आपको ऑफर के बारे में बताएंगे कि अक्टूबर में ये ऑफर है, नवंबर में ये ऑफर है ना। अब तो पेरेंट्स वापस भी आ गए हैं छुट्टी से, तो बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, हमारे पास लिमिटेड सीट है। तो बहुत सी लेयर जो है वो धीरे धीरे आपको बताएंगे और फिर आपसे कहेंगे कि आप मिनिमल अमाउंट जो है वो आप दे दें, फिर आके आप बच्चे को कभी भी एडमिशन फला जगह आके करवा सकते हैं। तो ऐसे में होता ये है, वो आपसे 100 कतरी रियाल मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर होता है खेल, वो 100 कतरी रियाल लेकर गायब हो जाते हैं। अमाउंट छोटा जरूर है, लेकिन आपसे 100 कतरी रियाल लेके वो गायब हो जाते हैं। जब आप लोकेशन पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि कोई ऐसा शख्स है ही नहीं जो बात कर रहा है। और आमतौर पे पेरेंट्स पैसा दे देते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों के अच्छे करियर के लिए बिना ज्यादा सोचे ये मोटी रकम आराम से दे देते हैं, मगर जैसे ही पेरेंट्स पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उनका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। ये पेमेंट आपको मिलता नहीं है, आप व्हाट्सएप पे ब्लॉक हो चुके हैं, लोकेशन पे जाने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है, और आपने जहां पर पेमेंट किया है वो एक्चुअली में ट्रेस हो ही नहीं सकता। लेकिन इन सब का सॉल्यूशन भी है दोस्तों। इस तरह के फ्रॉड से बचने का जो सबसे पहला सॉल्यूशन है, पेरेंट्स को अपने बच्चों का एडमिशन ऐसे एकेडमी में कराते वक्त बहुत केयरफुल रहना चाहिए, ताकि उनकी मेहनत की कमाई चोरी ना हो। इसका सबसे पहला जो रूल या नियम है वो ये कि कभी भी और किसी भी हाल में सिर्फ सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट्स के भरोसे ना रहते हुए आप लोकेशन पे जाएं। एड्स बहुत आसानी से फेक बनाए जा सकते हैं। मैंने कोई पोस्टर बनाया, उसको सोशल मीडिया पे डाला और उसे बूस्ट कर दिया, तो ये तो बड़ा आसान है, आप तक पहुंच जाएगा। और फिर मैं कह दूं कि रजिस्ट्रेशन फीस दे दिए क्योंकि मेरे पास लिमिटेड सीट है, और फिर मैं बताऊंगा भी बहुत बड़ा एकेडमी है यहाँ का और सिर्फ 10 जो बच्चे हैं वो हो सकते हैं, 8 हमारे पास आ गए हैं, सिर्फ 2 की जगह बची है। तो दुनिया भर के कहानी जो है वो खेलते हैं बनाते हैं। कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले फिजिकल ट्रेनिंग फैसिलिटीज या वेन्यू पर खुद फिजिकली विजिट करें और अपनी आंखों से देखकर कंफर्म भी करें कि क्या वो एकेडमी सच में वहां ऑपरेट कर भी रही है या नहीं, वहां बच्चे सच में खेलते भी हैं या नहीं। तो दोस्तों उसके अलावा जब भी आपसे कोई पेमेंट के लिए कहे तो आप उनके वेरीफाइड बैंक अकाउंट में डालें जो कि उसी शहर का हो। उसके अलावा आप लोकेशन पे उनके करीब उनके पास पहुंचे, उनसे बात करें और पूछें कि क्या आप ही बात कर रहे हैं। फिर अगर पेमेंट के लिए वो कहें तो कैश पेमेंट दीजिए और रिसीट भी लीजिए। आप जब स्पोर्ट्स एकेडमी में हो वहां पर लोगों से बात करिए, तब आपको ज्यादा सही तरीके से अंदाजा होगा कि ये लोग सही हैं या गलत हैं। चेक करें एकेडमी लीगली रजिस्टर्ड है भी या नहीं। कई बार लोकेशन पे जाने के बाद आपको ये पता चलता है कि ये लीगली रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आप जब देखते हैं लोग बच्चे वहां पर खेल रहे हैं तो आप पेमेंट कर देते हैं। लीगली अगर रजिस्टर्ड वो एकेडमी नहीं है तो भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इसके

0: बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन एडवांस पेमेंट, रजिस्ट्रेशन का पेमेंट और बगैर मुलाकात किए वायर ट्रांसफर करना बिल्कुल गलत है। इस तरह के फेक और स्कैम से जरूर बचिए। फिलहाल ये था आज का शो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस 5 मिनट में आपको सॉल्यूशन भी मिल गया और पता भी चल गया कि इस जमाने में किस तरह के फ्रॉड आजकल हो रहे हैं। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कतर के एक ऐसे शूटर की जिन्होंने हालिया सालों में इंटरनेशनल शूटिंग के अरीना में अपनी एक खास पहचान बनाई है। नाम है राशिद सालेह अल अथवा और 2026 एशियन गेम्स में उनकी लेटेस्ट परफॉर्मेंस ने कतर के स्पोर्ट्स फैंस को जश्न मनाने का एक मौका दिया। राशिद अल अथवा का नाम कतर के स्कीट शूटिंग में काफी अहम है, काफी फेमस है। उन्होंने कतर को इंटरनेशनल और कॉन्टिनेंटल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है और पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स में भी कतर की तरफ से शूटिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था। एशियन गेम्स से पहले भी उनकी फॉर्म काफी स्ट्रांग थी।

दिसंबर 2026 में जापान के आइची नागोवा शहर में एशियन गेम्स के लिए कतर की शूटिंग टीम में राशिद को मेंस स्की टीम में शामिल किया गया था और फिर जापान में अलातबा ने वो परफॉर्मेंस दी जो कतर के एशियन गेम्स कैंपेन की सबसे अहम शूटिंग अचीवमेंट्स में शामिल हो गई। 23 सितंबर 2026 को राशिद ने मेंस इंडिविजुअल स्कीट कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता, यानी इंडिविजुअल गोल्ड। सिर्फ गोल्ड मेडल ही नहीं बल्कि उन्होंने 34 टारगेट्स हिट करके नया एशियन रिकॉर्ड भी एस्टैब्लिश किया। चीन के ल्यू जियानरी ने 33 हिट्स के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि चाइनीज ताइपे के ली मेंग युआन ने 29 हिट्स के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। लेकिन राशिद अलादबा के लिए ये दिन अभी मुकम्मल नहीं हुआ। इंडिविजुअल गोल्ड से पहले वो कतर के मेंस टीम स्कीट स्क्वाड का भी हिस्सा थे। राशिद अलादबा ने नासिर सोले अलतिया और अली अहमद अल इसाख के साथ मिलकर टीम कंपटीशन में 353 टारगेट्स का स्कोर बनाया और कतर को गोल्ड मेडल दिलाया। कुवैत 348 टारगेट्स के साथ सिल्वर और इंडिया 346 टारगेट्स के साथ ब्रॉन्ज मेडल पर रहा। यानी एक ही एशियन गेम्स में राशिद अलादबा ने टीम गोल्ड और इंडिविजुअल गोल्ड दोनों मेडल्स अपने नाम किए। उनके इंडिविजुअल फाइनल परफॉर्मेंस खास तौर पर इंप्रेसिव थी। अलादबा ने 34 टारगेट्स हिट किए और प्रीवियस एशियन रिकॉर्ड को बेहतर बनाया। इस अचीवमेंट के बाद उन्होंने कहा कि कंपटीशन का लेवल बहुत हाई था और एशियन गेम्स दुनिया के मुश्किल स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन्स में से एक हैं। उन्होंने अपनी कामयाबी को बहुत कड़ी मेहनत और इंटेंस कंसंट्रेशन का नतीजा करार दिया। वाकई एम शूटिंग इज नॉट एन ईजी यू नो गेम, नॉट एन ईजी स्पोर्ट टू कैरी फॉरवर्ड टू योर इंटरनेशनल सक्सेस। और राशिद अलादबा की रीसेंट फॉर्म सिर्फ एशियन गेम्स तक महदूद नहीं है। एशियन गेम्स से पहले जुलाई 2026 में हैंगजो ISSF वर्ल्ड कप में भी राशिद अलादबा मेडल जीता था, वो भी गोल्ड मेडल। कतर के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक और इम्पोर्टेंट अचीवमेंट थी और इस परफॉर्मेंस ने एशियन गेम्स से पहले उनकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म को हाईलाइट किया। एशियन गेम्स में उनका कैंपेन भी यहीं ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों। 25 सितंबर को राशिद अलादबा और रीमाल शाशानी ने मिक्स्ड टीम स्कीट कंपटीशन में क्वालिफिकेशन में टॉप पोजीशन हासिल करके फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में कतरी पेयर पोडियम तक नहीं पहुंच सका और चौथे पोजीशन पर रहा, जबकि चीन ने गोल्ड, साउथ कोरिया ने सिल्वर और इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। लेकिन इस फोर्थ प्लेस फिनिश से पहले ही राशिद अलादबा अपना नाम आइची नागोवा 2026 के रिकॉर्ड बुक्स में लिखवा चुके थे, दो गोल्ड मेडल्स और एक एशियन रिकॉर्ड के साथ। दोस्तों, राशिद अलादबा की कहानी कतर की शूटिंग में मेहनत, कंसिस्टेंसी और इंटरनेशनल कंपटीशन में परफॉर्मेंस की कहानी है। उनका लेटेस्ट एशियन गेम्स डबल्स गोल्ड कतर के लिए भी एक मेमोरेबल अचीवमेंट बन गया है। राशिद अलादबा फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि कतर का चैंपियन शूटर है, एशियन गेम्स का डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 2026 का एशियन रिकॉर्ड होल्डर। आपको कैसा लगा आज का हमारा ये स्पोर्ट्स सेगमेंट, जरूर बताइएगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें। हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर, माहिरीन की राय पर। लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक, इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
2: Qatar's most heard radio station,

हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस वर्षे को अगली नस्लों तक पहुंचाने का अहद करें। आज हम खास तौर पे बात करेंगे कतर की एक मशहूर और पसंदीदा मिठाई लुकिमात की। लुकिमात का लफ्जी मतलब है छोटे छोटे लुकमे। ये नाम इस मिठाई की सूरत को बिल्कुल बयान करता है। छोटी सुनहरी गोलियां जो बाहर से हल्की खस्ता और अंदर से नरम होती हैं। फिर उन पे शीरे, शहद या खजूर का शरबत डाला जाता है। इस मिठाई की बुनियादी तैयारी सादगी पर मबनी होती है। आटे, खमीर, पानी और कभी कभी इलायची या जाफरान से नरम नरम सा बैटर तैयार किया जाता है। इसे कुछ वक्त के लिए रखा जाता है ताकि खमीर का असर पैदा हो। फिर छोटे हिस्से गरम तेल में तलकर सुनहरे कर लिए जाते हैं। लुकिमात बनाने का हुनर सिर्फ उसके अज्जा में नहीं बल्कि तलने के तरीके में भी छुपा होता है। तेल का दर्जे हरारत मुनासिब हो तो लुकिमात का बाहर नरम खस्ता और अंदर हल्का फुल्का रहता है। बहुत ज्यादा गर्म तेल बाहर का रंग फौरन बदल सकता है जबकि अंदर का हिस्सा कच्चा रह सकता है। सही तवाजुन के लिए तजुर्बा और तवज्जो जरूरी होते हैं। तलने के बाद लुकिमात को शहद, चीनी के शरबत या फिर खजूर के शीरे से भी मीठा किया जाता है। कुछ लोग ऊपर से तिल भी छिड़कते हैं। इलायची और जाफरान की हल्की खुशबू इस मिठाई को और पुरकशिश बना देती है। लुकिमात का एक खास रिश्ता रमजान से है। अफ्तार के बाद जब घर वाले और मेहमान एक साथ बैठते हैं तो गरम लुकिमात चाय और अरबी कहवे के साथ पेश किए जाते हैं। इसी तरह ये ईद, शादी, मेहमान जब आए या खानदानी मौकों पर भी दस्तरखान की जीनत बनता है। कतरी कल्चर में मिठाइयाँ अक्सर पहले से मुकर्रर खाने से ज्यादा एक जज्बे का इजहार होती हैं। जब कोई मेहमान घर आए तो उसे सिर्फ खाना नहीं बल्कि अपनायत और इज्जत दी जाती है। लुकिमात का छोटा सा बर्तन भी इसी गर्मजोशी का पैगाम होता है। सोचिए, घर में मुलाकात हो, अरबी कहवे के फंजान रखे हों, चाय तैयार है और दरमियान में लुकिमात का बर्तन। हर शख्स अपनी पसंद के मुताबिक एक लकवा उठाता है। छोटी सी मिठाई, बातचीत, मुस्कुराहट और यादों के लम्हों को और भी दिलकश बनाना। पुराने वक्त में कतरी खाने अक्सर मकामी वसाइल और तिजारती राब्तों से मुतासिर थे। जाफरान, इलायची और खजूर जैसे अज्जा मुख्तलिफ रास्तों से इस इलाके तक पहुंचे। वक्त के साथ उन्हें मकामी जायकों के साथ इस तरह अपनाया गया कि आज कतर की पकवान रिवायत का हिस्सा नजर आते हैं। हर घर के लुकिमात की रेसिपी एक जैसी नहीं होती। कहीं बैटर थोड़ा हल्का रखा जाता है, कहीं ज्यादा खुशबू के लिए इलायची या जाफरान शामिल किया जाता है, कुछ घर शीरे को पसंद करते हैं और कुछ खजूर के शीरे को तरजीह देते हैं। ये मुख्तलिफ तरीके इस बात की अलामत हैं कि रिवायत में गुंजाइश भी होती है। आज के कतर में लुकिमात को कैफे और रेस्टोरेंट्स में नए अंदाज में भी पेश किया जाता है। कुछ लोग इस पर चॉकलेट, पिस्ते और दूसरे टॉपिंग लगाते हैं। ये नए तजुर्बे खास तौर पर नौजवान नस्ल को मुतासिर करते हैं, लेकिन रिवायती लुकिमात की दिलकशी अब भी उसके सुनहरी रंग, गर्माहट और खजूर के शीरे में शामिल है। लुकिमात हमें एक अहम बात सिखाती है। बड़े जश्न अक्सर छोटी छोटी खुशियों से मिलकर बनते हैं। एक छोटा सा लुकमा, चाय का एक फंजान और अपने लोगों का साथ किसी भी शाम को यादगार बना सकता है। तो जब आप कतर में लुकिमात चखें तो सिर्फ एक मीठी चीज समझकर ना खाएं। इसमें घर की मेहमान नवाजी, रमजान की पुरसुकून शामें, बुजुर्गों की रेसिपीज और खानदानी मुलाकातों की मिठास भी शामिल है। आज के कल्चर मोमेंट का खुलासा यह है कि लुकिमात छोटे जरूर होते हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती, रिवायती और सामाजिक कीमत बहुत ज्यादा है। तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक
अपना ख्याल रखें और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ

0: करता है जिसका इंसान ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया हमें यही यकीन दिलाता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को देख रहा है। लिसनर्स, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया सिर्फ माजी की एक दास्तान नहीं, इसमें हमारे आज के लिए भी बहुत से सबक हैं। आज हम पत्थर के बुतों के सामने शायद ना झुकते हों, लेकिन इंसान मुख्तलिफ चीजों को अपनी जिंदगी का मरकज बना सकता है। किसी के लिए दौलत सबसे अहम हो जाती है, किसी के लिए शोहरत, किसी के लिए ओहदा, किसी के लिए लोगों की तारीफ, किसी के लिए सोशल मीडिया पर मकबूलियत, किसी के लिए अपनी ख्वाहिशात। जब कोई चीज इंसान को अल्लाह ताला की अताहत से दूर करने लगे तो उसे अपने दिल का जायजा लेना चाहिए, खुद से सवाल करना चाहिए, क्या मैं अल्लाह ताला की रजा को सबसे ज्यादा मुकदम रखता हूँ? क्या मैं सही और गलत का फैसला लोगों की राय से करता हूँ या अल्लाह ताला की हिदायत से? क्या मैं सिर्फ इसलिए किसी अमल को दुरुस्त समझता हूँ कि सब लोग उसे कर रहे हैं? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं कि हक के लिए गौर व फिक्र जरूरी है। अब आ जाते हैं कि हमने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकये से क्या सीखा। तो सबसे पहला सबक ये है कि सोचे समझे बगैर पैरवी ना करें। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम का बड़ा मसला ये था कि वो अपने अबाओ अजदाद की पैरवी कर रही थी। उन्होंने दलील के बजाय कहा कि हमने अपने बाप दादा को ऐसे करते देखा है। हमें इस बात से सबक मिलता है कि हर रिवायत गलत नहीं होती, लेकिन हर रिवायत खुद ब खुद सही भी नहीं हो जाती। हमें अपनी अच्छी रिवायात का एहतराम करना चाहिए, लेकिन जहां दीन और अकीदे का मामला हो वहां कुरान और सुन्नत की रहनुमाई को ही मयार बनाना चाहिए। एक मुसलमान के लिए सवाल करना बेअदबी नहीं, सही सवाल इल्म का दरवाजा खोल सकता है। हम अपने बच्चों को भी ये सिखा सकते हैं कि वो दीन को समझकर सीखें। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि ऐसा होता आया है, बल्कि उन्हें समझाएं कि अल्लाह ताला ने हमें क्या तालीम दी है और इस तालीम की हिकमत क्या है। दूसरा सबक ये मिलता है कि गुफ्तगू में हिकमत होनी चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से मोहब्बत और एहतराम के साथ बात की। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आज इख्तलाफ बहुत आसानी से झगड़े में बदल जाता है। लोग अपनी बात साबित करने के लिए दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अंदाज हमें बताता है कि हक बयान करते हुए भी इखलाक कायम रहा जा सकता है। किसी के अकीदे या राय से इख्तलाफ हो तो पहले उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, फिर मुनासिब अल्फाज में अपनी बात रखें। सामने वाले की इज्जत को मजरू किए बगैर भी इख्तलाफ किया जा सकता है। हक के लिए मजबूत होना जरूरी है, मगर जबान में बदतमीजी जरूरी नहीं। तीसरा सबक हमें मिलता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ पूरी कौम नहीं थी, वो तादाद में कम थे, लेकिन हक उनके साथ था। यह आज के नौजवानों के लिए खास तौर पर एक सबक है। कभी स्कूल में, कॉलेज में, काम की जगह पर या दोस्तों के दरमियान ऐसा हो सकता है कि अक्सरियत किसी ऐसे काम की तरफ जा रही हो जो दुरुस्त नहीं है। ऐसे वक्त में सिर्फ इसलिए गलत रास्ता इख्तियार ना करें कि सब लोग वही तो कह रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि मकबूल चीज सही भी हो, और ये भी जरूरी नहीं कि कम लोगों की बात गलत हो। असल सवाल ये है कि अल्लाह ताला की हिदायत क्या कहती है। तब तक के लिए हमें याद रखना चाहिए कि दुनिया की हर चीज महदूद है, मगर अल्लाह ताला की कुदरत लामहदूद है। लोगों की तादाद हक का मयार नहीं, रिवायात दलील का मुतबादल नहीं, और आजमाइश मोमिन के सफर का इख्तिताम नहीं, बल्कि कभी कभी ईमान की मजबूती का जरिया बन जाती हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इजाजत लूंगी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे सेम शो में नेक्स्ट वीक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।
1: हेलो,
2: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटेजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट,
1: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन ओनली ऑन FM 107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: FM 107 टाइम चेक
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु स्टूडियो की घड़ी में 1:31
3: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
4: सलाम आदाब अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्या हाल चाल है उम्मीद करें आप लोग खैरियत से होंगे सर्वर और नाजिया हम दोनों आ चुके हैं पूरे एक घंटे आपके साथ रहेंगे बहुत सारी बातें करेंगे और आज है वेंसडे का दिन
2: यार तो, आज वेनेसडे का दिन है मुझे तो सारा ने याद दिलाया बोली कितनी जल्दी वीकेंड हो गया और यूं हो गया सारा ने दो तीन बातें ऐसी कही कि सारा को ऐसा लग रहा है कि वीकेंड हो गया और मेरे जहन में पता नहीं क्यों है कि आज ट्यूसडे है ना दिया और जबकि
4: सर भाई आप हमेशा लेट लतीफ हैं आप एक दिन पीछे चल रहे हैं
2: वाकई है ये देखिए कि एक आदमी कितना माशाल्लाह से काम कर रहा है कि काम काम काम गुठलियों को भी दाम और उसको पता ही नहीं है उसको पता ही नहीं है कि कब कौन सा दिन गुजर रहा है
4: वही तो कह रहे एक सबसे बड़ा काम कर रहा है खा रहा है उसको आईडिया नहीं हो रहा है अच्छा
2: हमारी लाइफ में
4: वीकेंड वाली दावत भी आ गई करीब
2: हमारी लाइफ में भाई थर्सडे गायब हो जा रहा है हमें पता ही नहीं आज बुध हो गया
4: सर भाई आपकी लाइफ से जो है ना वेंसडे निकल रहा है
2: बुध निकल
4: वेंसडे
2: वैसे बुध को पैदा होने वाले क्या बुद्धू होते हैं ये ऐसा मैंने सुना है
4: आप नजर तो
2: आपको मालूम है अपनी तारीफ करने में बचता नहीं हूँ मैं बुध को ही पैदा हुआ हूँ
4: आप नजर आ रहे
2: हैं तो कभी गुरूर किया ही नहीं आपको मालूम
4: ये भी आपको पता था बुध को पैदा हुआ
2: हाँ रियली
4: अरे वाह अच्छा
2: ऑन वेटनेस डे
4: ओहो क्या झूठ मिलाया
2: बहुत काबिल लोग जो हैं वो बुध को बुधवार को पैदा होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको तो पता ही है यार कभी गुरूर किया ही नहीं इन बातों
4: कभी गौर नहीं किया इन बातों
2: में हमारे साथ जुड़ने के लिए करना क्या है आपको तो पता ही है बहुत ही आसान से दो तरीके नाजिया क्या है बताइए वो तरीके
4: बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू नंबर है 666-22-107 यहाँ पर हम आपके सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस ले सकते हैं वहीं अगर आपको लगता है कि हाँ डायरेक्टली कॉल करना है बात करना है तो हमारा नंबर है 443-443-77
2: और अब होगी बात किस हवाले से ये देखिए सारी वाइब्स बन जाएंगी आज वजह यह है कि आज हम बात करने वाले हैं भाई मूवीज के हवाले से आपकी जिंदगी के हवाले से और आपकी जो शक्ल है वो जो मिलती है ना शाहरुख खान से बाजीगर ओए होए होए अपनी जिंदगी में कौन कौन बाजीगर रहा है ये आज मुझे पता चलेगा नादिया कैसे
4: सर भाई आप गब्बर हैं
2: अरे देखिए किरदार हमेशा ऐसे ही अपनाया जिसमें दूसरों को तकलीफ हो और अपने को आराम हो कभी झूठ तो बोलते ही नहीं
4: अच्छा तो आज का वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जैसे कहा सर्वर ने आपसे कि आज हम आपसे पूछने के वाले हैं कि कौन सी बॉलीवुड मूवी है जो आप जितनी बार भी देखते हैं आप बोर नहीं होते और ऐसा उस मूवी में क्या है जो आपको सबसे ज्यादा जो है उस मूवी की तरफ खींचता है
2: यार दो तो सीधी सीधी आ रही है जमान पे अगर अपनी बात करूँ नादिया आपसे भी पूछूंगा सबसे पहली तो DDLJ और दूसरी है मुगले आजम बल्कि पहली मुगले आजम ले लीजिए और दूसरी DDLJ है क्योंकि मुगले आजम की
4: तो आपके जमाने की थी
2: नहीं जमाना तो और कहानी भी जरा सा मिलती है ना यार एक बार ये म्यूजिक और हो जाए ये वाला हाय हाय हाय हाय यार क्या बात है यार इसकी भाई शाहरुख खान भी अपने आप में ट्रेंड ऐसे ऐसे लाए और मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर लोग बॉयज की अगर बात करूं नाजिया शाहरुख खान से ही अपने आप को कहीं ना कहीं मिलाते आए हैं मिलाने की कोशिश करते हैं
4: डोंट से कि आपने नहीं
2: मैं
4: ऐसी कोई गुस्ताखी की
2: मैं झूठ बोलता ही नहीं आपको बता मैं झूठ तो बोलता ही नहीं
4: नहीं सच बीच में थोड़ा सा बोला कीजिए
2: नहीं मैं मैंने तेरे नाम बनने की कोशिश करी थी एक टाइम पे और मैंने बिच्छू कट रखा था मतलब इंटरवल से पहले वाला तेरे नाम तो ये बीच की मांग और ऐसे जो डंक आते थे मेरे निकल के
4: नाम जो है
2: बहुत डसा है मैंने उससे लोगों को
4: आपके नाम पर सिर्फ वो जो
2: अब उसके बाद आपको मालूम है झूठ तो मैं बोलता ही नहीं, जिंदगी जैसी बदली उसके बाद इंटरनल के बाद की कहानी जो है वो हमारी शुरू हो गई, बदल गई पूरे तरीके से। चलिए भाई प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर देते हैं और आज का टॉपिक आपको पता ही है, तो बड़ा लाइट सा मामला रखा है क्योंकि एकदम से यार मुझे पता चला जैसे कि मैंने बताया कि कल थर्सडे आ गया ना यार।
4: अच्छा आज आपने सोचा कि लाइट कर दें?
2: हाँ जुमेरात में क्योंकि हमने कुछ ऐसा मसला ही नहीं रखा,
4: फ्राई मामला
2: कल फ्राई रख देंगे, आज थोड़ा स्टार्टर पर बात हो जाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम
2: रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अहलन व सहलन, कौन है हमारे साथ? शाहरुख खान है, सलमान खान है, अजय देवगन है,
4: अक्षय कुमार
2: है या सैफ अली खान है?
5: हम तो इंसान है भाई, तुम्हारा फोन उठा के अपने आप में गुम हो गए दोनों लोग।
4: कह रहे हैं आप अपनी
2: अच्छा ये कह रहे हैं माशाल्लाह अपने आप में इंसान है, मुझे नहीं पता था ये सारे डेड मैन वॉकिंग है जितने भी हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स है। अच्छा है कौन हमारे साथ ये तो बताइए।
5: मेरा नाम है मोहम्मद यासिर।
2: ओ मेरा नाम है,
5: आपसे पहली बार बात हो रही है।
2: यासिर भाई कैसा? यासिर भाई पे पैसा ही पैसा मेरा भाई। यासिर भाई पहली बार बात,
4: अपनी फौरन टोन चेंज कर लीजिए जैसे आपने कहा पहली बार बात।
2: नहीं यार पहली बार अच्छा तमीज। हाँ आदमी को जरा खुश कर दो कि आगे आमद होती रहे, पता चला तौबा करते हुए भागे आज यासिर भाई और कभी नहीं लौटे। यासिर भाई कैसे हैं? यासिर भाई
5: अल्हम्दुलिल्लाह। और आप कैसे
2: हैं मिर्जा भाई? सफा मैडम यार मैं क्या शेर सुनाया छोड़ा?
4: नहीं आप सफा मैम के साथ करते थे ना
5: मिर्जा भाई? नहीं ऐसा नहीं है, मैंने आपका शो डेली सुनता हूँ, आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो कनेक्ट नहीं होता है, तो आज पहली बार कनेक्ट हो गया, मेरा कंफ्यूज हो गया मैंने।
2: नहीं तो आपको पता है कौन है मेरे साथ इस वक्त?
5: हाँ हाँ ये नाजिया मैडम और मिर्जा साहब है।
2: नहीं नहीं अरे मिर्जा साहब को तो छोड़ो यार, कौन पूछ रहा है, नाजिया मैडम नहीं है मेरे साथ, कोई और है, फिर बताइए कौन है।
4: क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं?
2: यासिर भाई, यासिर भाई कैसा? बहुत ही सीधा। यासिर भाई कहाँ से ताल्लुक है आपका पहले तो ये बताइए, अब कम से कम रिश्तेदारी भी तो निकालूंगा ना, पहली बार आपकी आमद हुई है।
4: बिरयानी तक ले ही जाएंगे।
5: मैं तो इंडिया से हूँ, आंध्र प्रदेश से।
2: अच्छा आंध्रा, nice. क्या बात है यार, बड़ी प्यारी जगह से। आंध्रा में किधर?
5: आंध्र प्रदेश में कर्नूल डिस्ट्रिक्ट।
2: अरे कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में किधर?
5: अदोनी।
2: अरे अदोनी, अदोनी में किधर? घंटा घर से किस तरफ?
4: लेफ्ट।
5: अरे भाई कर्नूल डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट से टाउन अदोनी है यार, टाउन में किधर बताओ आपको।
2: अरे अदोनी में अपना घंटा घर जो है उससे किस तरफ
4: है? नहीं
5: घंटा घर मतलब यानी
2: अरे अरे वो अपने बड़ी वाली जो क्लॉक है, घड़ी घड़ी बड़ी वाला टावर जो है घड़ी वाला।
4: अरे भाई आप लेके भागे तो थे उसके पास।
5: नहीं
4: भाई
5: आपने कहा मैं तो टावर नहीं है, घड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
2: अच्छा अभी लगने वाला है ना आगे इंशाल्लाह, कहिए इंशाल्लाह ताला
4: मैं ट्रांसफार्मर के अगल बगल पूछ
5: लिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप करें, आपकी जो ये है ना रिक्वायरमेंट हम गवर्नमेंट को पहुंचा देंगे।
2: अरे मेरा भाई कैसा यासिर भाई, यार यासिर भाई बड़े ही प्यारे हैं आप तो। यासिर भाई अब ये बताइए कि कौन सी ऐसी बॉलीवुड मूवी है जो आप बार बार देखते हैं, लगातार देखते हैं, देखते ही रहते हैं, देखना ही चाहते हैं, और क्या कोई ऐसी फिल्म है जिसमें आप अपनी जिंदगी को भी देखते हैं, और ऐसा कोई हीरो है जिससे आप अपने आप को मिलाते हैं?
5: अरे हीरो को तो पता नहीं, हम तो मूवीज देखते
2: हैं। हीरोइन से मिलाते हैं?
5: नहीं यार हीरो हीरोइन की बात नहीं है, जो कैरेक्टर्स रहते हैं ना उसमें जो स्टोरी रहते हैं उससे रिलेट कर सकते हैं।
2: अच्छा कौन जैसे?
5: यानी देख लो अभी घर का फैमिली शो रहता है या तो भी मैं खुल के नहीं बता सक रहा, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या बोल के बताऊं बोल के।
4: अच्छा अपनी बेस्ट अपनी फेवरेट वाली मूवी बताइए।
2: सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है? अच्छा कोई ऐसी फिल्म
4: कोई
2: है
4: लगी
2: अच्छी
4: आपको जो सबसे अच्छी एक से ज्यादा बार देखा?
5: तो मैं तो देखा हूँ वो गुस्सा, इसका शाहरुख खान का है ना ये पठान।
2: शाहरुख खान का पठान देखा है?
4: पठान
5: हाँ पठान मूवी
2: अच्छा लगता है आपको?
5: दिलवाले
4: शाहरुख
5: खान और
4: काजल का
2: मूवी है ना कहीं शाहरुख खान से मिलते हैं आप यासिर भाई?
5: नहीं गए थे तो गए थे उनके घर के पास मन्नत के पास, तो उनसे मुलाकात नहीं हुई। अपॉइंटमेंट नहीं मिला हमको।
4: ये मिलने वाला मिलना बोल
2: नहीं मैं वाकई आप अगर शाहरुख खान आपको देख लेता तो आपसे जरूर मिल लेता, मुझे ऐसा लगता है आप इतने प्यारे हैं।
5: अरे
2: नहीं
5: अच्छा माशाल्लाह। आपका रेफरेंस हो जाता तो मुलाकात हो जाती।
4: चलिए मैं तब तो डांट पड़ती है अब।
2: नहीं मैं कॉल कर देता हूँ और आपका इंशाल्लाह जिस वक्त भी बॉम्बे जाना हो मुझे बता के जाइएगा, मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ।
4: तो क्यों चाहते कि वापस ना आए?
5: इनका कहना यह है कि कतर से जाकर पहले तुम शाहरुख खान से मिलकर आओ बोल के बता दे रहे हैं।
4: बताइए।
2: नहीं मैं कह रहा हूँ कि अगर बॉम्बे कभी बॉम्बे जाना हो तो यार बॉम्बे जाना हो तो बहरहाल भाई ने बताया दिलवाले मूवी जो है, क्यों दिलवाले में शाहरुख खान तो जरा बदमाश किस्म के बने थे, क्या आपने ऐसा कोई वक्त गुजारा अपनी जिंदगी में?
5: नहीं
2: यानी
5: क्या बोलूं, कास्ट में रहता है ना जो
2: हाँ गैरेज में होते हैं वो मैकेनिक
5: वो भाई के लिए सेक्शन और ये बात
2: आप समझ रही है नाजिया?
4: सरवर भाई आप जो हैं
2: इतना
4: आपने
2: फैमिली ओरिएंटेड आदमी निकला
4: है, अच्छे भले आदमी को कहाँ तक पहुँचा दे।
2: नहीं नहीं ये तो आप देखिए,
5: नहीं नहीं वो एक दूसरे के साथ जो
2: मोहब्बत
5: है ना, हीरोइन है,
2: तो भाई की बात
5: है, अपने फैमिलीज के टूवर्ड्स केयरिंग और अफेक्शन दिखाते रहते ना, उससे रिलेटेड।
2: वाह वाह वाह वाह वाह।
5: हमारे घर पे भी हमारे भाई हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया था, जब इंतकाल होने के बाद हमारे भाई आए थे, आने के बाद हमारे लिए हमारे बाप के जैसा
2: फर्ज अदा किया,
5: इसीलिए
2: क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। आप यकीन जानिए एक मैसेज आपने दे दिया है यहाँ पर और बहुत ही अच्छी बात करी यासिर भाई, और इंशाल्लाह ताला आगे भी तशरीफ लाते रहिए। सताते तो मैं तो नहीं, नाजिया सताती
5: रहेंगे। आप तो फोन आप तो पिकअप ही नहीं करते हमारा कॉल।
2: नाजिया पिकअप करिए कल से आप यासिर भाई को, मतलब यासिर भाई की कॉल।
4: नाजिया पिकअप करें, नाजिया पिकअप करें। सरवर भाई आप इशारा करते, इशारा ये लोग करते रहते हैं।
2: यासिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपका पूरा दिन निकल जाएगा अगर नाजिया बात करती रही। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
4: थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
2: ओके बाय,
4: अल्लाह हाफिज़। और हमारे साथ यहाँ पे कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो,
6: हाँ जी,
2: हाँ आइए आइए आइए आइए नागार्जुना।
6: कौन से फ्लोर पे आना है जी?
2: यार क्या बात,
4: टेरेस टेरेस पे बुलाते हैं।
2: गाँव भाई तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आपको मिलाया होगा किसी ना किसी हीरो से, मैं मानूंगा ही नहीं अगर ये कहेंगे कि मैंने
4: मिलाया होगा। हाँ हीरो मिला रहे हैं इनसे अपने आपको।
2: अच्छा चलिए ऐसे हो सकता, गाँव भाई है कुछ ऐसा लाइफ में हुआ?
6: बात है नाजिया जी, आपने ना एक तो होती है बारिश, एक तो होते हैं गड़े पड़ने, उसके बाद
2: दो हो गए।
6: अभी आपने पता नहीं कौन सी चीज उसको तीसरी चीज को क्या बोलते हैं, वही कर दिया आपने।
2: आफत कहते हैं, तूफान कहते हैं, उसके आगे फिर ऐसे ही होता गा भाई, फिर तो परेशानी परेशानी। थंडर स्ट्रॉम, क्या बात है,
4: बाढ़ बाढ़।
2: तो बताओ बताओ गाबा भाई, शेयर करिए कौन सी मूवी, एक तो आप ये बताइए लगातार बार बार देखते हैं डीडीएलजे, मुझे लगता है आपके अंदर भी कहीं ना कहीं।
4: क्यों भैया आप अपनी चॉइस,
2: मुझे दिख रहा है इनके अंदर डीडीएलजे दिख रही है मुझे गाबा भाई के अंदर, ऐसे ही गाबा भाई?
6: नहीं सरवर भाई, नहीं
4: सरवर भाई, आपको एक गज का सही से दिखता नहीं।
2: तो कौन सी मूवी ऐसी है जो आपको बहुत पसंद है?
6: सरवर भाई सबसे पहली मूवी जिसको मैं बहुत ज्यादा कई बार देख चुका हूँ वो है आवारापन।
2: ओके ओके ओके ओके,
6: इमरान हाशमी
2: के फैन निकले, समझ रहा हूँ। हाँ बहुत मैसेजेस थे इमरान हाशमी की मूवी में, मैसेज ही मैसेज होते हैं भाई, मैं तो कह ही रहा हूँ ये बात। इमरान हाशमी तो बहुत ज्यादा मैसेजेस देते हैं और काफी अच्छे एक्टर भी हैं। तो क्या आप अपने आप को इमरान हाशमी से मिलाते हैं गाबा भाई?
6: नहीं सरवर भाई, मिलाता नहीं हूँ, उनकी मूवीज है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ सरवर भाई।
2: दो बताइए।
6: अगर आप उनकी कोई भी पुरानी मूवी उठा के देख लेना आज से 15 या 20 साल पहले, लोगों को तो लगता है अभी उन्होंने भी नेगेटिव करेक्टर किया है, उनको एक नेम भी दिया हुआ था जो आपको मालूम है, नेम से लोग बुलाते थे उनको।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
6: मगर सरवर भाई बात ये है, अगर सच्चाई ये है कि आप अपनी फैमिली को छोड़ के या अपने लाइफ पार्टनर को छोड़ के किसी तीसरे ट्रैक पे जाओगे वो अच्छी बात नहीं है सरवर भाई। उसके जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो डेफिनेटली आपको फेस करने पड़ेंगे।
2: मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया। तो मूवी हुई आवारापन, और हीरो कौन सा पसंद है भाई को?
6: रणबीर सिंह।
2: रणबीर सिंह, हाँ मिलता जुलता है आपके आपका कैरेक्टर, ऐसी बात नहीं है। बैंड बाजा बारात वाले जो रणबीर थे वो काफी मिलते जुलते हैं,
4: एनर्जेटिक तो हैं, दोनों ही लोग हैं, ये तो है।
2: और ऐसी कोई
6: पहले मैं
2: क्या आवारापन इसलिए बताइए, वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से उसका कुछ है मिला मिलाना, क्या ऐसा है क्या? मैं ऐसा
6: नहीं सर्वर भाई, उसमें जो मैसेज है ना,
2: मैसेज तो सर बहुत सॉलिड है,
6: मैं बताता हूँ। नाजिया जी ने सिर्फ उसका एक क्लिप देखा था जो मैंने इनको बोला था,
2: अच्छा
6: रिहा आजाद कैद पंछियों को आजाद करने का।
2: सही सही सही, जोया जो कर रही है, और उसके बाद ही जोया निकल भी लेती है मेरे ख्याल में।
6: कहाँ पे निकल लेती है सरवर भाई,
2: मतलब फिल्म में से निकल लेती है,
4: दुनिया से निकल लेती है, आजाद किया खुद आजाद।
2: अच्छा चलिए
4: सरवर भाई, आपने गलत मूवी गलत बता रखी है।
2: हाँ
6: जी, अगर आप सरवर भाई दूसरी मूवी भी देखेंगे ना,
2: हाँ,
6: तो दूसरी मूवी में भी यही मैसेज दिया हुआ है भी, जिन लोगों को हम लोग गुलाम बना के रखते हैं ना, जिन पे हम लोग टॉर्चर करते हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी
2: बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इसको हर जमाने में लोग जो है इसके खिलाफ बात भी करते आए हैं, अच्छे लोग जो हैं। तो गावा भाई, पहली तो चीज हुई आवारापन, दूसरी चीज हुई रणबीर, और तीसरा अपने आप को किससे मिलाते हैं आप? सुबह जब एकदम नहा धो के एकदम बाल काटते होंगे शीशे में, तो कहते तो होंगे अपने आप से, यार तू मिल रहा है यार कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन।
6: सर पर भाई एक्चुअली पता क्या है, आज से 15 साल पहले ना मेरे बाल से घुंघराले।
2: ओहो, घुंघराले वाला कौन है, नजरुद्दीन
4: शाह? सर भाई आपके
6: तरफ नहीं।
2: अच्छा,
6: तो एक प्लेयर था ना वेस्ट इंडीज का, था शायद वो कार्ल हूपर, समझ गए बात आप।
2: यार गावा भाई यार,
6: कहीं सर्दी उससे रिलेट होता था।
2: नहीं नहीं यार, ग्रेट प्लेयर, या ग्रेट प्लेयर
4: एक्चुअली। सर भाई आप भी तो मलिंगा से मिलाते थे।
2: मैंने तो बाल भी रखे हैं उनकी तरीके
4: से,
2: ये तो अब रहे नहीं, मन्ना मैं रखवा
6: लेता। नादिया जी, कहीं इनको मलिंगा के जैसे स्टेडियम में भागना पड़ जाए बॉल को लेके। यार गावा भाई
2: वाकई आप मतलब मजाक समझ रहे हो यार, मैं भाई नेशनल लेवल का एथलीट रहा हूँ यार।
4: ऐसा ये भागे स्टेडियम में लोग
2: वहां से निकल लिए, यार के रुके क्या बात है। गावा भाई के लिए गावा भाई
6: सच में रहे हो?
4: अरे मिले ही नहीं स्टेडियम से जो भागे।
2: अरे गावा भाई पूरा एपिसोड कम पड़ेगा यार, अब मैं क्या क्या सुनाऊं आपके लिए। एक मिनट, ये वो तो ये खुद कर ही रहे हैं, उसमें चलाना क्या है, बाजीगर बना रहा उनको मैं वहां से निकाल के।
6: सर्वर भाई लास्ट में,
2: हाँ जी,
6: ये जो मूवी का आपने सॉन्ग चलाया ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे,
2: हाँ ये बाजीगर का था।
6: दूसरे
2: वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले
4: जाएंगे,
2: दिल वाले
6: जाएंगे। सर्वर भाई उसकी जो लोकेशन है ना, जहाँ तक मेरे को लगता है उसमें वो ट्रेन भी दिखाई गई है जो स्विट्जरलैंड में चलती है, शायद आपको पता होगा।
2: यस, बड़े हसीन लगे हैं शाहरुख खान उस शॉट में, काजोल भी बड़ी अच्छी लगी है।
6: ग्लेशियर एक्सप्रेस बोलते हैं सर्वर भाई उसको, अगर जिंदगी में मौका मिला ना सर्वर भाई,
2: मैं बैठा हूँ
6: स्विट्जरलैंड में।
4: हाँ, छूटे
2: बस पलट कहने का मौका नहीं मिला किसी को, बट बैठा तो
4: ख्वाब में बैठते हैं।
2: मैं पर्ची लेके पता पूछ रहा था, भाई पलट जा, बता दे भैया जाना किधर है।
4: ट्रेन में लोकल वाली
6: उसमें बैठे हैं नानिया जी, नैनीताल में चलती है।
4: अरे उसमें तो बैठा ला उनको, चल नहीं रही आप उतरिए,
2: नहीं इंजन खराब हो गया, आप आगे चलिए, इसको जरा सा पहुंचा दिए। ओके गावा भाई, ओके तो ये थे गावा भाई हमारे साथ। तो बात हो रही है आज आप किस शख्सियत से अपने आप को मिलाते हैं, कौन सी ऐसी मूवी है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, और सुबह सुबह आप अपने आप को किस हीरो, या फिर मोहतरमाओं से भी कह रहा हूँ मैं, लेडीज से भी कह रहा हूँ, आप भी बता सकती हैं, शर्म वाली कोई बात नहीं है। नादिया अपने आप को मधुबाला से मिलाती आई है, जबकि ये बिल्कुल हूबहू उनके जैसी है ही नहीं बिल्कुल कहीं से कहीं तक, मगर फिर भी भाई अपना दिल है, कोई भी कुछ कह सकता।
4: अब चलिए खुशी है आपने मुझे मिलाया तो।
2: जॉनी लीवर अपने आपको माइकल जैक्सन समझते हैं, अब उसमें कोई वो थोड़ी, जबकि वो खुद भी बहुत बड़े एक्टर है। हेलो, सलाम अलैकुम।
7: वालेकुम सलाम,
2: कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कौन है हमारे साथ? मुदस्सिर भाई, शायद
7: मैं मुदस्सिर बात कर रहा हूँ।
2: कैसे हैं मुदस्सिर भाई, खैरियत से?
7: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत है, आप बताओ कैसे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों भी बिल्कुल ठीक हैं। तो
7: नाज़िमान कैसा है?
2: नाज़िमान कैसा है?
4: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से। अच्छा
7: ठीक है, मैं नाज़िमान से एक सवाल पूछना था।
4: पूछिए।
7: ना जी मैम, जब वीकेंड आता है ना हर आदमी खुश हो जाता है ना कि ये है वो है ना, आप किस लिए खुश हो जाते हैं वीकेंड आने पे?
4: मैं इसलिए खुश हो जाती हूँ कि दो दिन मुझे सर्वर भाई का साथ नहीं मिलेगा।
7: अच्छा
2: क्या आप यही सुनने आए?

0: क्या आप यही चाहते थे?
1: एक महीने से सुनना था, लेकिन वो मौका नहीं मिल रहा था।
0: चलिए ये भी आप देखिए, अच्छी बात, सच्ची बात कहने में नादिया भी कहीं ना कहीं बिल्कुल पीछे रहती है। ये बातें तो ये ऐसे कर देती है। तो मैडी भाई, कौन सी ऐसी फिल्म है, कौन सा ऐसा हीरो है जो आप सुबह अपने आप अमिताभ बच्चन से मिलाते होंगे अपने आपको? मुझे लगता है
1: नहीं,
0: भाई
1: तो मेरा
0: अमिताभ बच्चन की तरह है। वाकई? रियली? 6 फीट 4 इंच है आप?
1: लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना, दोबारा जो मूवी देखी है अभी तक, मैंने दोबारा मूवी एक भी नहीं देखी है
2: भाई।
0: क्या कह रहे हैं? मैंने दोबारा मूवी नहीं देखी आपने?
2: कोई भी मूवी दो बार नहीं देखी?
0: कोई भी मूवी
1: दो बार नहीं देखी?
0: अरे वो तो यार, वो तो मतलब बिल्कुल अलग हटके ही बात हो गई। वो तो हम सभी देखते हैं, और मैं कम थोड़ी हूँ इर्तुगल और उस्मान से, अल्हम्दुलिल्लाह।
1: और तो मैं अभी भी देखता हूँ, लेकिन अभी तक दोबारा।
0: अच्छा, नादिया जी से कुछ सीखिए। जितने हमारे पाकिस्तानी ड्रामा हैं, वो माशाल्लाह से उनकी जो व्यूइंग है वो नादिया जी की वजह से टॉप पे रहती है। तो हाँ, अरे
2: सच है, बिल्कुल सच है।
0: जितने करेक्टर आपको उसके अंदर दिखेंगे, नेगेटिव जितने भी हैं, जो भी उसके अंदर,
2: अब
0: ये आपसे स्क्रिप्ट लिखवाई जाती है भाई। नादिया जी हमारी छोटी कलाकारा थोड़ी है, जितनी भी सास बहू साजिश कर रही है उन प्रोग्राम में, नादिया जी का हाथ है। मुदस्सिर साहब
2: लिखे तुम्हें हाथ में?
1: पाकिस्तानी ड्रामे तो मैं भी बहुत ज्यादा देखती है।
0: ये लोग ड्रामा ज्यादा करते हैं ना, इसलिए ड्रामा ज्यादा देख रहे हैं।
1: अरे
0: सब लोग ज्यादा देखते हैं, क्योंकि हैं इतने अच्छे। मैं भी देखता हूँ, क्योंकि जितने भी मजाहिया ड्रामे हैं मैं नहीं छोड़ता।
1: हर किसी का अपना होता है, लेकिन मैंने जितना ड्रामे देखे, जितना फिल्में देखे है, तो मुझे सबसे ज्यादा अर्तुगरुल और जो उस्मान के नहीं है, ऐसे बेस्ट कोई भी नहीं है।
0: क्या बात है?
2: ये तो है, मैंने भी देखा।
1: मैं अभी तक वो देख रहा हूँ
2: उस्मान तक पहुंच गए आप।
0: क्या बात है, चलिए साहब, अल्लाह ताला उससे हमें जो भी सीख मिल रही है वो अपनी जिंदगी में उन चीजों को हम करने की कोशिश करें इंशाल्लाह ताला। और बड़ी अच्छी बात भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: थैंक यू सो मच। अच्छा बताए मुझे क्या लगा, इन्होंने कहा मैं मूवीज बहुत ज्यादा मैं रिपीट कोई नहीं देखता, क्योंकि मैं भी एक ऐसी बंदी हूँ जो मैं नहीं देख सकती दोबारा एक ही मूवी को। फिलहाल इस क्वेश्चन में अपनी फेवरेट बता सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती मैंने दो बार देखी।
0: जी आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है?
2: बताऊंगी, पहले हमारे साथ कॉलर है।
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, जनाब कैसे हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग खैरियत से, शुएब लग रहे हैं।
0: अच्छा
3: जी, बिल्कुल।
0: अरे वो राजेश खन्ना की कौन सी फिल्म आई थी, हीरो नंबर वन जैसी जो थी पहले वाली?
2: बावर्ची?
0: नहीं, वो मुझे याद आ गई एकदम। शुएब भाई तो हमारे साथ है। शुएब भाई कैसे हैं?
3: अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: अल्लाह का शुक्र, आप लोग बिल्कुल ठीक है शुएब भाई, और उम्मीद करते हैं कि आप भी खैरियत से होंगे, और अभी तक का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा मेरे भाई का।
3: जी बिल्कुल बेशक, बहुत अच्छा जा रहा है।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो क्या कहते हैं आज के मौजू के हवाले से?
3: अभी जस्ट रेडियो ओपन करा।
0: अच्छा, तो मैं अभी बताता हूँ, पहले आप ये सुनिए। अब आई कुछ फीलिंग शाहरुख खान वाली? तो शाहरुख खान के फैन हैं आप?
3: जी
0: शाहरुख खान के फैन हैं?
3: नहीं, तो मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हूँ, बाकी
0: मोहम्मद भाई ये तो दूसरी तरफ बात चली गई। मतलब आप कोई एक्टर आप पसंद नहीं करते?
3: नहीं, मुझे बहुत सारे एक्टर पसंद है, आप उनको मेरी फेवरेट लिस्ट में डाल सकते हैं, लेकिन मैं चलिए फैन फॉलोइंग नहीं है।
0: ओके
2: चलिए फेवरेट। अच्छा, कोई पूछ लेते हैं,
0: मूवी आपको अच्छी लगती है, देखते हैं फिल्में?
3: आजकल मेरा टेस्ट थोड़ा चेंज हो गया, मतलब जैसे
0: अरे अल्लाह रहम करे। अच्छा, फिल्मों की बात हो रही है जी, क्या?
3: नहीं, मूवीज की बात आ दो, जैसे कि मतलब पहले ज्यादातर जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, सनी देओल, ये सब, उसके बाद फिर बॉलीवुड को देख के जो है ना थोड़ा सा मन बोर हो गया, क्योंकि अभी इनके पास कुछ नया नहीं है अभी फिलहाल।
0: अच्छा,
3: तो उसके बाद फिर साउथ इंडिया की तरफ हो गया।
0: अच्छा, फिर तो सही जगह गए।

0: नहीं मूवी आई है कुछ डिगर्स कुछ ऐसी नाम से शायद, आई थिंक आपको पता होगा।
1: टॉम क्रूज की? यार याद नहीं नाम में तो, यहाँ नादिया की नाम याद रह रहा बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ। बहरहाल हाँ कुछ वो फ्लाइट से जिसमें वो एयरफोर्स में बने थे गालबन, मैं नाम नहीं याद रहा। एनी हाउ
0: देखो तो, मैं बताता हूँ, मुझे जो है ना मार्वल सिनेमैटिक बहुत पसंद है। मैंने आज तक मार्वल्स का कोई ड्रामा मतलब जैसे कोई सीरीज होती है या कोई मूवी मैंने नहीं छोड़ता हूँ।
1: चलिए तो बहुत
0: अच्छी बात, पहले आती है मैं देखता हूँ।
1: तो फिर तो आपको डूम्सडे पूरी तरीके से समझ में आने वाली है। बाकी अगर किसी का एक भी हिस्सा छूटा हुआ है, एक बात और ऐड कर दूं, बिल्कुल अलग जा रहे हैं टॉपिक से, हम लोग वापस आते हैं। अगर आपने लोकी नहीं देखा है अभी तक, जो सीरीज आई है डिज्नी पे, वो जरूर देख लीजिएगा तो आप डूम्सडे से कनेक्ट कर पाएंगे। आई एम वेरी श्योर आपने नहीं देखी होगी लोकी की सीरीज। अरे तो बस बस फिर तो कनेक्टेड है, फिर तो कनेक्टेड है जब भाई। खैर शुभ भाई,
0: आज सीजन 2 का हिंदी वर्जन नहीं मिला कहीं, तो मुझे इंग्लिश में देखनी पड़ी।
1: अच्छा मजबूरन। चलिए वापस आ जाते हैं, आज हमारी देसी सिनेमा की बात हो रही है। तो फिल्म कोई ऐसी जिससे जिसको देखने के बाद आपको ऐसा लगता हो कि आप अपने आप को रिलेट कर पाते हैं उस मूवी से?
0: अच्छा अपने हिंदी सिनेमा में,
1: हिंदी सिनेमा में
0: अपने आप को रिलेट करना,
1: आपकी कहानी से, आपकी जिंदगी की कहानी से आपको लगता है ओ यार ये तो मेरी बात हो रही है?
0: अच्छा मेरी ऐसी नहीं ऐसा कोई ऐसी कोई है नहीं। नहीं 200% श्योर, क्योंकि मेरा कैरेक्टर बहुत ज्यादा डिफरेंट है।
1: हाँ, वो तो हम जानते ही हैं यार जो भाई, वो तो हम जानते ही
0: हैं। नहीं सच में मेरा कैरेक्टर बहुत
1: अरे आप बहुत प्यारे हैं यार, हमें पता है ये बात, और मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूँ, आप वाकई बहुत प्यारे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और ये तो छेड़ा छाड़ी हम लोग करते ही रहते हैं। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शुभ भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और वक्त निकालने के लिए।
2: थैंक यू सो मच।
1: एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बढ़ रहे आगे, एक गाना तो चला ही देते हैं यार।
3: हो गया जुदा,
1: नाल नाल वे
3: मर जाएंगे हम।
1: दर्शन भाई एंड सुवर्णा तिवारी, ये सॉन्ग एंजॉय कीजिए। 3 मिनट के बाद आपसे हो रही है मुलाकात। नाजिया और सरवर आपके साथ, ओनली ऑन FM 107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107
2: Time check. दो दो और हाजिर खिदमत हम दोनों, और आज बात हो रही है बॉलीवुड के हवाले से। वो ऐसा कौन सा शख्स है बॉलीवुड के अंदर जो ये कहता है कि मैं आपके जैसा हूँ, ऐसे ही है हीरो समझो अपने आपको, तो पूरा समझो। और हमारे साथ यहाँ पर प्यारे प्यारे मैसेजेस भी आ चुके हैं, आइए उनके हवाले से भी बात कर लेते हैं। तो साहब सबसे पहले जो यहाँ पर मैसेज मुझे दिखा, वो मुझे दिखा है आरजे कबीर साहब का। और ऐसा कैसा हो सकता था कि बॉलीवुड की बात हो रही है तो ये बड़े बड़े जो ड्रामे करने वाले लोग हैं ये हाजिर नहीं होते। तो नाजिया ये यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कहते हैं भाई अपना सीन लग रहा है इमरान हाशमी और आवारापन जन्नत क्या बात है, और मर्डर टू मेरे पास जैकेट है मर्डर टू वाली एग्जैक्टली एंड साइंड अक्सर वाली टी शर्ट बाई हिम पर्सनली। अब इससे ज्यादा क्या ही बोलूं, ये मुझे मालूम है आप कबीर भाई मुझे बता भी चुके हैं और आप दो बार मुलाकात कर चुके हैं इमरान हाशमी से। ऐसा कैसे हो सकता था कि इमरान हाशमी का जिक्र हो या श्रद्धा का जिक्र हो तो आप बीच में टांग ना अड़ाएं, आप कबाब में हड्डी ना बने। तो अच्छा कहते हैं आगे, वो सरवर भाई जोया नहीं आलिया थी, माई बैड आवारा पेन में आलिया थी तो जन्नत में थी जोया गालबन। इतना तो मैं गलत नहीं हो सकता आलिया और जोया का, मतलब वो हीरोइनों का जिक्र आ रहा है,
1: 100% गलत चल रहा है इसमें कोई शक नहीं।
2: थोड़े से मैसेज
1: ले लीजिए, फिर हम कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं।
2: हम कॉल की जानिब भी बढ़ेंगे। कहां से करूं शुरुआत, यहां से करता हूं, खाली डॉट बना के भेज दिया है ना, हमें कॉल इस पे बराबर आ रही है, मैं मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो कॉल का नंबर एक बार आप बता दीजिए।
1: बिल्कुल दोस्तों, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो नंबर है 4434377।
2: तो कबीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया एक तो आपके मैसेज करने का और पुरानी याद ताजा कराने का। जैसे वो कौन है कैथरीना के जो शोहर है, क्या नाम है ना,
1: नहीं
2: काली भी तो नाजिया घरों में लड़ाई करवा देंगे ये तो यार।
1: कैटरीना के हाँ। अरे भाई वो बहुत पॉपुलर एक्टर
2: हाँ, क्या नाम है मुझे भी नहीं याद आ रहा ना, आप बहुत जोर से ना मगर आ नहीं रहा भरल कौशल विकी कौशल जो है अक्षय कुमार के ऐसी फैन थे जैसे कबीर इमरान के हैं, और उनकी बचपने में मुलाकात हुई थी, फिर जवानी में जब वो हीरो बन गए तो मुलाकात हो। तो आई विश कबीर भाई के आप भी जब बड़े हो जाएं इंशाल्लाह ताला तो आप भी हीरो बने। मैं
1: और कितने बड़े
2: आपको और बहुत ज्यादा भी बड़ा होना है इंशाल्लाह ताला। मेरा भाई कैसा जाएगा बॉलीवुड तक, कहना माई सेल्फ एस आर के माई ऑल टाइम फेवरेट मूवी DDLJ मेरा भाई कैसा, कौन है ये, सादिक भाई जैसा, सादिक मलिक और कुछ कुछ होता है, ये है शाहरुख खान का। मुमताज हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई और नादिया, कैसे हैं आप दोनों, गुड आफ्टरनून, नाइस शो। मेरा फेवरेट फिल्म है राजा हिंदुस्तानी, आमिर खान करिश्मा कपूर का। मैं ये मूवी देखा तो समझ में आया मोहब्बत क्या चीज है। ओहो मुमताज भाई अच्छा है, जो जीता वही सिकंदर कहते हैं, ये इनकी फेवरेट मूवी है मोहम्मद शाहिद की, और कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन से अपने आपको मिलाती है। अस्सलाम वालेकुम सरू भाई एंड नाजिया मैडम जी, हाँ माई फेवरेट मूवी मैंने प्यार किया, दिस मूवी इज वन ऑफ द मोस्ट वन ऑफ द बेस्ट मूवी इन द वर्ल्ड टिल नाउ कहते हैं नाजिया। इतना ज्यादा KM खान है हमारे साथ, शाहरुख खान और से निकल के सलमान खान तक पहुंचे, शहजादा सलीम हमारे साथ, ये तो अपने आप में भाई, ये तो जब दिलीप कुमार साहब इस मूवी को साइन कर रहे थे तो पहले शहजादा सलीम साहब के पास आए थे और बोले अगर आप नहीं करना चाहते हैं मुगले आजम तो मैं साइन कर लेता हूं, और फिर इन्होंने इजाजत दी, फिर दिलीप कुमार साहब ने कहीं जाके वो फिल्म बनाई। मूवी जो एक से ज्यादा बार देखा है रोमियो राजकुमार, फेवरेट हीरो सरवर मिर्जा। मेरा भाई मोहम्मद भाई पूरा नाम तो लिख देते यार,
1: भाई मोहम्मद जी क्या हो गया
2: नादिया, प्लीज यार कितना मतलब
1: अरे मैं चाह रही हूँ कि वो गफलत से बाहर निकले।
2: सलाम सरवर भाई या नादिया बहन, क्या मैं शाहरुख खान से कम हूँ, मेरा भाई आप देख के बताइए, आप शाहरुख खान से 26 है शाहरुख खान से, इनका नाम क्या है अरमान मलिक, यार अरमान भाई यार माशाल्लाह यार मॉडलिंग में
1: तैयारी कीजिए
2: भाई,
1: आपकी धूम धड़ाके से जबरदस्त वाली बॉलीवुड एंट्री होनी चाहिए।
2: 40 बार कॉल मिला लिया,
1: सरवर भाई नहीं उठाने देते दोस्तों, मैं किस तरह से बोलूं आप लोगों
2: है हमारे साथ, बिल्कुल अभी उठाएंगे क्योंकि ये मैसेजेस भी जरूरी हैं, इनको पूरा करते करते आगे बढ़ना है। मुबीन बुखारी बगदादी साहब सलाम दुआ कर रहे हैं सबको,
1: वालेकुम अस्सलाम,
2: और कह रहे हैं बिल्लू बार चाहत राम जाने लिखना चाहते होंगे, उससे तो आप मिलते हैं, वो वाला कैरेक्टर है मुबीन बुखारी का, सूर्यवंशम है वो मूवी, देख कर हमको रोना आता है, आए है वो खीर मत खा लिएगा शेख अली जो अमिताभ को खिलाई गई।
1: सरवर भाई एक तो कमाल है जो आज मुझे आपने एक असली टैलेंट खुला, एक एक मूवी की खबर है।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड आफ्टरनून आदिया जी और सरवर भाई, कैसे हैं आप दोनों? होप वेलकम एनर्जी यार, दिल से देसी यूसुफ भाई, सबको आफ्टरनून विश करते हुए वेनेसडे की। कैसे हैं? वैसे मेरी कोई एक फिल्म फेवरेट नहीं है, बस कोई भी कॉमेडी सस्पेंस हॉरर और मिस्ट्रियस जॉनरे की फिल्म जो है अच्छी लगती है, देख लेता हूँ चाहे कोई एक्टर एक्ट्रेस हो, अगर कोई एक स्पेसिफिक तो गोलमाल की जो फ्रेंचाइजी उसकी मूवीज अच्छी लगती हैं, जब भी टीवी पे आती हैं देखता हूं। यूसुफ खान सरवर भाई आप जब गाबा भाई से बात, ये पर्सनल मैसेज तो नहीं है यूसुफ भाई, पहले पढ़ लूं फिर अदा करूंगा, एक बार मैं पढ़ लेता हूं, आगे बढ़ते हैं। आसिफ भाई हैं, कह रहे हैं कॉल कॉल कॉल मी ब्रो, जरूर अभी।
1: और दोस्तों अगर मैं इस वक्त आपको सरवर भाई की बिल्कुल पिक्चर खींच के भेजूं ना इस वक्त
2: संघर्ष देखी थी आप लोगों ने कहीं ना कहीं, मैं
1: बिल्कुल उसी कैरेक्टर में बैठे हुए।
2: अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई,
1: संघर्ष वाला
2: नाज़िया मैम कैसे हैं आप? मुझे अगर आप पसंदीदा मूवी के बारे में पूछेंगे तो मैंने बहुत पहले एक मूवी देखी थी चलो दिल्ली, ये वीना पाठक और लारा दत्ता की मूवी आई थी,
1: मुझे बहुत खुशी हुई,
2: ये बहुत बार देख चुका हूँ, जितनी बार देखता हूँ बार बार उतनी ही मजा आता है। अगर आप ये बात कर रहे हैं यासीन मुल्ला, देन
1: यासीन जी आई रियली अप्रिशिएट योर
2: चॉइस, जस्ट गो एंड वॉच भेजा फ्राई आल्सो, आपको वाकई अच्छी लगेंगी अगर आप विनय के फैन हैं। ओके अंदाज अपना अपना कहते हैं, व्हाट अ गुड चॉइस, रिजवान है हमारे साथ,
1: अंदाज अपना अपना तो मेरी भी फेवरेट,
2: अंदाज मेरे अपने हैं और अपने ही अंदाज अच्छे भी होते हैं। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर, मेरी फेवरेट हीरो आप और कबीर भाई। नाज़िया
1: भाई क्या हो गया,
2: मैं पहले तो नाज़िया से बात कर लेता हूँ यार, मेरी तरफ से नाज़िया जी को सलाम, भाई मेरा सलाम नहीं आया, बिलाल है यहाँ पर, अच्छा कहते हैं और आपको भी नीचे लिख दिया, बहुत अच्छा
1: लगा, आपको जलन हंसे चल रही है ना लाइफ में।
2: मुगले आजम कहते हैं शहजादा भाई हमने तो खुद ही आपको मिला दिया है, दिलीप कुमार से, नादिया बिल्कुल हम कॉल लेने जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम
1: दोस्तों, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है,
2: मेरे बेस्ट मूवी तारे जमीन पर और गुड मैसेज उस मूवी में तारे जमीन पर,
1: बिल्कुल
2: फेवरेट मूवी है और नादिया उसी किरदार से बहुत अच्छी ड्रॉइंग जो है वो बनाती है, सीखी है,
1: कई बार आपका फेस पेंट किया।
2: हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू,
1: ये तो कोई हीरो है हमारे साथ
2: अरे
1: अरे ये शाहरुख खान से बहुत मिल चुके हैं,
2: अरे अल्लाह रहम करे जूही चावला भाग जाती, मतलब कहती कि एक डर की टू जो है वो बनाई जाए, हैं कौन वैसे हमारे साथ, अरे अल्लाह रहम करे,
1: देखा
2: मुझे परेशानी हो रही है, मुझे लग रहा शाहरुख खान पीछे खड़ा है मेरे, गले में हार बांध रहा है मेरे, मेरे मतलब मेरी तो बातें भी ऐसे होने लगी जी। कौन है
3: जी और सरवर भाई और सुनने वालों में सबको सलाम,
2: सलाम
3: मुर्तजा खान,
2: मुर्तजा खान मतलब वो वाले मुर्तजा खान, हमारे वाले मुर्तजा खान,
1: ये वही वाले जिनसे आपने उधार लिया हुआ है,
2: हैं वही
1: वही
2: कुछ तो मिले और हमारे पास तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ये भी बता दूं अगर नादिया के नाम पे
1: डेट पे डेट डेट पे डेट मिलेगी
2: मुर्तजा खान,
3: जी जी 35 बार डायलिंग करने के बाद अब मिला है,
2: नहीं मैं
1: भाई भाई हमारा भाई नहीं उठाने देता फोन,
2: मैं समझ गया कि आप शाहरुख खान के फैन हैं सबसे पहले तो, और क्या जो डर में इस वक्त आपने डर की हंसी जो निकाली है शाहरुख खान की आवाज निकाली है, तो क्या कहीं वो आपकी, अरे सुनो तो सही।

0: जी नहीं नहीं नहीं नहीं
1: ना ना हमने एक ही बार में सुना वही है मतलब वही
2: नहीं ये शाहरुख खान जैसे
1: अच्छा पठान
0: जी मैं मूवी मेरे हिसाब से है ना जवान
1: अच्छा
2: पठान हुआ
1: वो तो आप रहना चाहते हैं अच्छा फिल्म भी जवान कह रहे हैं अच्छा अच्छा अच्छा जवान अच्छी फिल्म है क्या थी जवान की स्टोरी वैसे मैं भूल गया
2: मैंने एक भी फिल्म देखी तो मैं कुछ बोलूं
0: शाहरुख खान की करियर की बेस्ट ऑफ फिल्म है वो क्योंकि है ना उसके अंदर बहुत
1: अच्छा पट्टी वाले शाहरुख खान अभी याद आ गया वो याद करना पड़ता है ना यार रहने इधर उधर इतना
2: पता है मैं स्टोरी पढ़ लेती हूं हां मुझे याद आ गई तीन इश्यूज पे जवान थी वो पठान थी
0: तीन
2: अच्छा
1: वो आप कभी रही नहीं ना नादिया इसलिए आपको फिल्म का नाम और फिल्म देख
2: जवान तो याद आ गई वो भी अच्छी थी सही कहा आपने
1: मर्दोदा भाई की मर्दोदा भाई ने तो चलो यार बड़ी अच्छी बात बताई और कोई एक मूवी जो बार बार देखते हैं जस्ट वन
0: बार बार देखते हैं
1: हाँ
0: बार बार देखने पे भी जवान ही बोलूंगा मैं क्योंकि उसमें
1: ओके बहुत नाइस
0: सब्जेक्ट है और है ना आज के माहौल के हिसाब से बहुत बेस्ट ऑफ मूवी है
1: बेस्ट अच्छी मूवी है ये वाली अच्छी नहीं लगती आपको
2: भैया आप अपनी चॉइस क्यों ठोक रहे हैं लोगों पर
0: हार कर जीतने वाले को 90s की थी आज के दौर की ये बोल रहा हूं
2: अरे ये खुद उससे पीछे के दौर के हैं अपने
1: भाई बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजा साहब वक्त निकालने के लिए और हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए थैंक यू सो मच
0: बिल्कुल बहुत दिन के बाद में बात हुई आपके नाजिया जी से और सुन रहा था मैं आते आते तो मैंने सोचा आज डायल कर ही देता
2: हूं बहुत अच्छा किया आपने फाइनली डायल किया और आपसे बात हो गई
1: बहुत शुक्रिया
0: मिलाने में है ना क्योंकि वो एक दौर था वो दौर में ये ऐसा होता था कि काल एंगेज आ रही थी फिर रिंग हो रही थी फिर कभी आ रही थी काफी दिन के बाद में मेरे को पुराने दिन याद आ गए
1: अच्छा अच्छा अच्छा चलिए सर इंशाल्लाह कनेक्ट होते रहिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई को बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं सलाम भाई हीरो रणबीर कपूर मूवी अजब प्रेम की गजब कहानी क्या ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है एम के यार लग तो बड़े हैंडसम रहे मतलब है ही हैंडसम लग नहीं रहे अरबाज हैं यहाँ पर सलाम कहते हैं और कहते हैं फेवरेट मूवी रब ने बना दी जोड़ी माय फेवरेट एक्टर SRK तो क्या कुछ आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि अरबाज खान साहब भाई सलमान खान के और SRK के फैन कह रहे हैं गाबा भाई कौन सी जॉब करते हैं शोएब भाई पूछ रहे यार ये क्या सवाल है यार ये क्या सवाल है यार और ये गाबा भाई हमारे मैं याद भी नहीं कर पा रहा हूँ मुझे पता तो था आमिर रियाज फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई सुल्तान मिर्जा अजय देवगन कोई तो मिला अजय देवगन का फैन यहाँ पर चलिए साहब कोई तो मिला मुबीन भाई यहाँ पर खूब सारे स्टिकर भेज रहे हैं अब्दुल्ला हमारे साथ हैं कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई और नाजिया बहन क्या हाल है ठीक है मेरा फेवरेट मूवी है हेरा फेरी अब्दुल्ला
2: अब्दुल्ला जी हेरा फेरी मेरी भी
1: आपकी हो ही सकती थी इसमें कोई शक नहीं है आपकी फेवरेट फिल्म क्या
2: है गब्बर इज बैक
1: भाई दादी देखिए हेरा फेरी आपकी फेवरेट फिल्म ही है मैं
2: बिकॉज ऑफ यू उसमें आपका जो रोल नजर आ रहा है वो एक अलग ही है
1: हमारे साथ एक कॉलर कनेक्ट हो रहे हैं
2: हेलो
3: हाय अस्सलाम
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्ला जी कौन है हमारे साथ अरे एलन बस एलन ओवैस भाई कैसे हैं खैरियत से हैं
3: मैं वही टीचर जिसका उस दिन टीचर से पे बात हुई थी
1: अरे आप टीचर हैं
3: कराची से
2: टीचर से बात हुई थी आपको तो कुछ याद ही नहीं आता सर भाई
1: नहीं मतलब टीचर भी हैं क्या मैं भूल गया माजरा चाहता हूँ
3: बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है ना तो सर्वर भाई मेरे खास से थोड़ा सा इधर उधर निकल जाता है
1: मैं माधर चाहता हूँ भूल गया कि आप टीचर भी हैं
3: मैंने टीचर्स डे पे कॉल की थी आप लोगों ने शोर मचा दिया
1: नहीं नहीं वो
2: हस्बैंड वाइफ
1: अरे सर अरे सुन तो लो भाई
2: है
1: ये क्यों नहीं बता रहे कि टीचर हूँ ये क्यों नहीं कह के दे रहे
2: वो कह रहे याद क्यों नहीं आ रहा आपको
1: मेरी गलती हो गई कॉल उठा ली उवैस भाई तो टीचर के हिसाब से कौन सी बॉलीवुड मूवी हिट हुई है टीचर के हिसाब से ये बताइए पहले उवैस साहब
3: मैं तो फैन हूँ RHTDM का
1: है टीचर काम सारे माधवन वाले
3: हाँ जी जी जी
1: रहला है तेरे दिल में दिया मिर्जा कोई स्टूडेंट सुन ले अभी जब आया हो था
3: वो मेरी बेगम को मैंने बताया तो वो यही कह रही थी कि आप जो है ना मतलब पूरे कदर को बताना चाह रहे हैं सारी चीजें मैंने कहा भाई वो ये मिनट्स कुछ मिल जाते हैं तो मैंने कहा ये
1: अच्छा भाभी अभी साथ में हैं आपके

0: नहीं अभी मैं
1: अच्छा,
0: की तरफ जा रहा हूँ, मतलब
1: मुख्तलिफ है। नहीं इसमें मैं ये जानना चाह रहा हूँ उस्ताद आपसे कि क्यों YRHTDM, क्या वजह है उसके पीछे? इज इट माधवन, इज इट सैफ अली खान, और द मूवी स्टोरी, और दिया मिर्जा?
2: फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द म्यूजिक।
0: हाँ एग्जैक्टली वाकई, क्योंकि वो तुम्बिन वाला और जो म्यूजिक है ना, उस तरीके का म्यूजिक, और वो
1: बाकी क्या जिंदगी में कभी स्टोरी लाइन से कुछ जिंदगी की लाइन भी मिलती जुलती?
0: बस वो तकरीबन ऐसा ही कुछ
3: चल रहा है। मैं तो पहले ही समझ गया था, मेरे तो काम ही यही है। ये लो भैया, ये शाहरुख खान कहीं चलेगा आज?
2: इनके तो सारे काम ही टेढ़े हैं। आप पे भी एक मूवी बनी
3: है। मैं तो जानू, मेरे तो काम ही यही है।
1: अरे अहलन वसहलन सर, उस्ताद कहूंगा मैं आज से आपको, क्योंकि आप उस्ताद हैं ही। और बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
2: सर भाई, आपका एक वो रोल भी तो कितना बड़ा दमदार हिट हुआ था, पप्पू पेजर का।
1: पप्पू पेजर?
2: अरे नहीं, वो याद आ गया, त्रिमूर्ति में आप थे,
1: त्रिमूर्ति में
2: खोखा सिंह।
1: अरे यार क्या एक्टर था, क्या मिला दिया आपने मुझे। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू।
2: बिल्कुल
1: आपकी। एंड इट्स नॉट खोखा, इट्स कोका आई थिंक है। कोका, कोका, कोका तो मेरा है अपना, ये बात अलग है, बट कोका, ही वाज कोका यार,
2: कोका
1: नहीं, ही वाज कोका। मैं बोल ही नहीं सकता। तेरी मूर्ति तो मैंने सहारनपुर नहीं, शाहजहांपुर में देखी थी, मुझे ये भी याद है।
2: किसी भी पुर, कहीं भी आपने देखी हो,
1: किसी भी पुर में आपने देखी हो,
2: किसी भी शहर में आपने देखी हो, बट था वो आप ही की तरह से।
1: ओके ओके ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं।
2: हमारे साथ एक और कॉलर
1: कहते हैं नाजिया इडियट। मेरा मतलब ये मेरे साथ आ रहे हैं, कहते हैं थ्री इडियट, मैं थ्री पढ़ना भूल गया था, वो कह रहे थ्री इडियट उनको पसंद है। आई एम सॉरी, माय बैड मिस नाजिया, आई एम सॉरी। आरएम अपना नाम तो बता देते, आरएम हॉल याद आ गया मुझे तो, एमयू का अपना फेवरेट मूवी थ्री इडियट। एक और आए, माय फेवरेट आरजे मिस नाजिया, ऐसा लिखा है मोहम्मद खलील। आपके दीवाने, मेरा मतलब ये है कि आपके दीवाने फिल्म अच्छी लगती है इनको, और फैन यहाँ पे नाजिया जी के हैं। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई एंड नाजिया सिस्टर, बोथ ऑफ यू माय फेवरेट मूवी विक्रम 2, हीरो कमल हसन। कमल हसन, ओ हो, अभी जो आई थी यार,
2: अलग अलग
1: ओ विक्रम, नाइस।
2: अच्छा एक और भी बहुत अच्छी मूवी थी, रोबोट करके, रजनीकांत की, ऐश्वर्या राय।
1: जी जी, वो आपने अच्छी बात कही, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम कबीरुल इस्लाम को भी सलाम, वालेकुम सलाम, अगर सुन रहे हैं तो कबीर भाई आपको भी सलाम।
2: कॉलर भी जुड़ गए।
1: माय फेवरेट मूवी हम आपके हैं कौन, नादी बताइए हम आपके हैं कौन, आपने देखी है? हेलो सलाम वालेकुम,
2: जानते ही नहीं आपको।
1: हेलो
2: वालेकुम अस्सलाम, हमारे साथ कॉल
1: उन्हीं से। हेलो कर।
2: अच्छा
1: जी,
4: मैं समझ गया सर, आप अपने आप लोग आपस में बात कर रहे हैं।
2: अरे अच्छा, करते हैं अपने आप से ही फुल टाइम बात कर रहे हैं।
1: हम आपसे ही बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका?
4: यूपी का बंदा सर, साहिल आजमी।
1: साहिल आजमी फ्रॉम आजमगढ़। साहिल यार, एक तो साहिल इतना खूबसूरत नाम, और फिर आजमी भी लग गया इसके अंदर। ओए होए होए होए, जितनी
2: शेर तो बनता है, एक शेर तो बनता
1: है। क्या कह रहे हैं?
4: कश्ती कश्ती ककर रही थी लहरें मेरे तवाफ, दुनिया समझ रही थी मेरी कश्ती भंवर में
1: है। हाय हाय हाय हाय हाय,
2: शेर तो बनता ही बनता है।
1: क्या बात है यार, और क्या बात कही है आपने, बड़ी ही प्यारी बात कही है आपने, जो भी बात कही है आपने आखिर अच्छी बात कही है आपने।
2: आप कब सीखेंगे?
1: आजमी साहब हैं हमारे साथ,
2: हैं
1: शबाना आजमी।
4: जी जी जी
1: जी। नहीं मेरे कहने का मतलब ये है कि शकील आजमी, शबाना आजमी,
4: या शकील आजमी मेरे फैमिली रिलेशन हैं और बहुत ही करीबी हैं।
1: ओ हो हो हो हो,
4: अगर आप लोग जब कहेंगे आपसे बात करा दूंगा।
1: अरे
2: मोहब्बत हो गया आपका, आज सही हुआ आपका।
1: शकील भाई मेरे भी बहुत करीबी हैं और काफी अच्छे मरासिम हैं और बड़ी अच्छी खासियत है। खैर बात दूसरी तरफ जा रही
4: है। इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, एक पाकिस्तानी बंदा, उन्होंने जो है शकील भाई के ऊपर पीएचडी किया है पाकिस्तान से।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह,
4: उस टाइम बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी जो है उनकी, वो मतलब वो बड़ी खबर बनी थी उस टाइम उनके लिए।
1: क्या बात है यार,
4: बड़ा अप्रिशिएट करते हैं वो।
1: अच्छा वही आपके अंदर भी आई है कहीं ना कहीं से कहानी शायरी की, तो अब फिल्म के हवाले से बात हो रही है। आजमी साहब ये बताइए कि कौन सा ऐसा हीरो, कौन सी ऐसी फिल्म, और कौन सी जिंदगी की ऐसी कहानी जो आप बार बार देखना पसंद करते हैं?
4: माय नेम इज खान।
1: अच्छा आप तो आजमी बता रहे थे।
4: जी नेम इज खान, मेरी बहुत ही पसंदीदा मूवी है सर। और वैसे जी उसमें जो काजोल का रोल

0: फूल है वो जो,
1: अरे वो आपको अच्छा लगता
0: है वो बहुत किलर है सर, वो टचिंग है बहुत
2: सर भाई ये सारे लोग इंटेलेक्ट है जिनके अलग अलग आ रही है
0: किलर है तो
1: मैं
2: ट्राई टू अंडरस्टैंड
1: बहुत कर सकता
0: हूं मुझे बहुत ज्यादा पसंद है जो मैंने देखी है सर
1: जी
0: वो कॉकटेल मूवी है सर सैफ अली खान की बहुत ही अच्छी
1: आ गए माय नेम इज खान से कॉकटेल में ले इंटेलेक्चुअल मेरा भाई क्या ये चलेगा यार किधर अरे एक मिनट ये क्या आपने कॉकटेल 2 देखी
0: नहीं नहीं नहीं
1: देखिए ना जब भी तो आप मेरे बराबर में आके फिल्म एंजॉय कर सकेंगे आगे
0: नहीं सर इतना बुरा टेस्ट भी नहीं है
1: अरे यार तो जब बंद देखिए
0: नहीं देख
1: अच्छा शाहिद कपूर की वजह से
0: कहां एफ आर के सर कहां कहां
1: नहीं, नहीं तो कपूर? मैं तो मर्द हजरात की बात ही नहीं कर रहा था मैं तो फिल्म में और भी कैरेक्टर थे मेरे भाई देखने दिखाने के लिए अच्छे कैरेक्टर तो अब हरल आजमी साहब बड़ा अच्छा लगा अच्छा किसी को मिलाते हैं आप अपने आप से आप सवाल देख रहे हैं मेरा आपके हिसाब से कि किसी को मिलाते हैं आप अपने आप से मैं ये नहीं कह रहा आप अपने आप को किसी से मिलाते हैं
0: हम लोगों के सर बिकॉज हम लोग आजम करते हैं तो हमारे जो आइडियल होते हैं वो कैफी साहब होते हैं या जावेद साहब होते हैं या
1: शेर शायरी से ही
0: या फिर जो या ऐसा
1: ही
0: होता सर
1: चलिए बहुत बढ़िया साहब बहुत बढ़िया और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच भाई ना बहुत बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया नादिया कुछ मैसेजेस ले लेते हैं जल्दी से वक्त भी हुआ जाता है यहाँ पर हमारे साथ हैं सरवर भाई ये गाना इतना पसंद है तो पूरा ही चला दिए यार टाइम होता तो जरूर चला देता 7 मिनट का गाना कितनी देर का 7 मिनट 26 सेकंड का सादत आफरीदी हैं हमारे साथ और आगे बताते तो सही है अपने बारे में थोड़ा सा कहते हैं सलाम सरवर भाई मुझे इमरान हाशमी की मूवी अच्छी लगती हैं और उसकी मूवी के सॉन्ग्स खासकर मर्डर टू एक सॉन्ग तो प्ले कर दीजिए साद नूर क्या बात है रेहान हेयर हैड अ टॉक विद यू यस्टरडे अबाउट सिएस्टा एंड पावर नैप एलन वसेलन सर बड़े हैंडसम आदमी हैं आप माशाल्लाह अल्लाह ताला खुश रखे अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब आप खैरियत से हो आज कॉल ना लगने की वैसे मेरी फेवरेट ओल्ड मूवी है निकाह मैं समझ रहा हूँ और थ्री इडियट क्या मिलाया भाई इसके बाद तो यही मूवी देखनी बनती भी है और हीरो हैं अक्षय कुमार आसिफ अंसारी सारे काम आपके जो आपने बताए हैं निखर के सामने आए हैं आसिफ अंसारी साहब कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह 55 बार कॉल किया है इंशाल्लाह ताला अभी
2: भाई सर्वर भाई पिक नहीं करने दे रहे लोगों की कॉल्स
1: फेवरेट आरजे कबीर एंड सरफराज सरफराज हीरो संजय बाबा हमारे साथ कोई सरफराज भी है नाजिया
2: आप ही हैं सरदार भी थे पहले आप सलवार भी हुए भी थे
1: अस्सलाम वालेकुम भाई एंड मैडम हुसैन
2: वालेकुम
1: सलाम वरहमतुल्लाह हसीना मान जाएगी ये क्या मुझे इस वक्त आरजे सना है हमारे साथ बिल्कुल कह रही हसीना मान जाएगी इनकी फेवरेट स्टोरी फिल्म है
2: अच्छा
1: सना हमारी सना हमारे साथ है
2: हमारी सना को हसीना मान जाएगी
1: हसीना मान जाएगी अच्छा। ये तो कब की मान गई है मुझे लग रहा है खैर एक कॉल ले लेते हैं चलते चलते
2: फिर अगला जो अगली जो मुझसे शादी
1: वो भी फेवरेट वो भी देख चुके हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: ये कबीर की फेवरेट
1: हाय
2: नहीं बोलिएगा आप
0: नहीं बोलिएगा
1: उधर भी आप ही बोल रही है नादिया हेलो
3: साठ बार हो गया
1: जी कौन है हमारे साथ
2: होते होते रहेगी
3: नहीं मतलब दावत मतलब तो इसका मतलब ये थोड़ी है हमारा नंबर
1: ओहो देखो यार यार रियाज भाई देख रहे हैं आप कनेक्शन देख रहे हैं दिल से दिल का कॉल आपकी उड़ गई ऐसी बात नहीं है
3: नाजिया जी 1:35 से लेके 2:25 पे मेरा कॉल उड़ गया
2: अरे भाई शुक्र कीजिए
1: यार देखिए उठ तो गया
2: उठाने नहीं
1: नादी अभी ये फोटो खींच के मैं वायरल कर दूंगा कि फोन किसकी तरफ है सबको भेज दूंगा
2: मैं आपका फोटो खींच के भेजूंगा इशारे से मना करते नहीं नहीं नहीं मत उठाइए अभी
3: मैं रिक्वेस्ट
1: अरे ये तो बहुत बार मैं
3: ओके सर सर्वर भाई एक बंदा है उसको दूसरे टाइम में शिफ्ट किया जाए ये टाइम ये हमको फ्री हो
1: यार रियाज भाई तो जल्दी से रियाज भाई ये बताइए कि कौन सा ऐसा हीरो है जिसको आप अपने आप से मिलाते हैं
3: जी 2007 में एक मूवी देखी थी आवारापन
1: और उसके बाद उसको अपनी जिंदगी में अमल में लिया और उसके बाद ना फिल्म देख पाए क्योंकि फिल्म से अपने ऐसे ही मैं सही सोच रहा
3: हूँ कहानी खत्म हो गई
1: मेरे हीरो
3: उसमें नहीं वो फिल्म वो मूवी में वो ऊपर चली गई और हमारी पता नहीं कहाँ चली गई, उसका बात खत्म, उसके पीछे क्यों क्या जाना है।
1: अच्छा आपको क्या इमरान हाशमी पसंद है रियाज साहब? जो चीजें कम मालूम है लोगों को और उनके बच्चे को एक हेल्थ कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से काफी परेशानी में, तो अल्लाह ताला उसको सेहत दे और हम सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अब वक्त हो गया इजाजत लेने का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो हमें नहीं लगता कि अब हम कॉल ले पाएंगे या एक कॉल ले लें जल्दी से नादिया, चलिए एक मैसेज ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, अपनी अपनी जगह लेते हैं नादिया। उसके बाद नादिया ये बैग कैसे करते हैं, ये स्पेशल मोबाइल है ना,
2: ये कितनी
1: अच्छा, मैंने काम भी तो इतने बड़े हिटाची के एचआर मैनेजर को बता दिया,
2: ये लीजिए आप लीजिए,
1: मैं तारीफ कर रहा
2: था,
1: आदाब आदाब, मैं तारीफ कर रहा था, कह रहे 85 टाइम्स आसिफ भाई रुलाना है क्या अब, अरे आसिफ भाई रुलाना है 85 टाइम ट्राई तो टू कॉल। अच्छा वो आसिफ भाई से कह रहे हैं कि तुमने इतनी बार मिलाया, मैंने इतनी बार, जासीम साहब हैं, जासीम साहब मुझे मालूम है आप अपनी जिंदगी में बब्बर शेर का किरदार अदा करते हैं और यार की मैसेज है
2: गब्बर शेर का
1: साद नूर सरूर भाई प्लीज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो, एक सॉन्ग तो प्ले कर दो मर्डर टू से।
2: चलिए बस अब तो मेरे ख्याल से आप एक सॉन्ग निकाल ही लीजिए तो आज ऑल टुगेदर। सर भाई आपने अपनी फेवरेट बताई हुई,
1: हाँ मैंने बताया, मैं शुरू में बताया डीडीएलजे एंड मुगले आजम, मतलब अच्छा, हैं तो ऐसे बहुत ऑब्वियसली, अगर ह्यूमर
2: वैसे तो आप कोई मूवी नहीं छोड़ते,
1: अगर ह्यूमर की तरफ चले जाएंगे तो फिर तो इंतहाई ही
2: है, मिर्जा किधर भी चले जाएं कोई मूवी आपसे छूटी तो है नहीं, जिधर भी जाएं।
1: अच्छा ये गाना बनता है यार लगाने का, अगर मर्डर टू की बात हो रही है तो साहब नाजी इजाजत ले लेते हैं, वक्त हो गया और इंशाल्लाह ताला कल है यौमुल खमीस, होए होए होए कल करेंगे मजे और खूब इंशाल्लाह अच्छी अच्छी और तफरी वाली बातें होंगी, आपका वीकेंड अच्छे बनाने की कोशिश मैं और नाजिया करेंगे जिस मकसद से हम आते हैं इस वक्त के भाई दिन का जो आधा वक्त है वो और भी ज्यादा आपका खूबसूरत हो जाए,
2: लग रहा है कि थोड़ा सा गाना सुन लिया जाए।
1: हाँ गाना बस शुरू हो रहा है, इजाजत का भी वक्त हो गया है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी, देखते और सुनते रहिए FM 107
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामीने किराम, अगर आपसे पूछा जाए नेकी क्या है, तो शायद जहन में फौरन इबादत आए, नमाज, रोजा, सदका, तिलावत, जिक्र, ये सब तो यकीनन अजीम ने किया है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुख्तसर जुमले में नेकी के एक ऐसे पहलू की तरफ तवज्जो दिलाते हैं जो हमारी पूरी रोजमर्रा जिंदगी को अपने अंदर समेट लेता है। अल बिर्रु हुस्नुल खुलुक, नेकी अच्छे अखलाक का नाम है। और फिर गुनाह की एक बातिनी अलामत बयान फरमाते हैं, वल इस्मु मा हाक फी सदरक व करहत अन यत्तलिअ अलैहि الناس, और गुनाह वो है जो तुम्हारे सीने में खटके और तुम ये नापसंद करो कि लोग उससे वाकिफ हों। इमाम इब्न दकीक अल ईद रहमहुल्लाह ने हुस्नुल खुलुक की वजाहत करते हुए निहायत खूबसूरत पहलू बयान किए हैं, जिसका खुलासा ये है कि हुस्न अखलाक में इंसाफ भी है, हुस्न अखलाक में अदल, रिफ्क और एहसान भी है। कभी इंसान की गुफ्तगू बहुत मीठी होती है लेकिन मामले में वो हक मार जाता है, तो सिर्फ मीठी जबान काफी नहीं। तो खुलासा ये निकला कि सिर्फ मीठी जबान काफी नहीं। कोई शख्स मुस्कुरा कर मिलता है मगर कारोबार में धोखा देता है, ये मुकम्मल हुस्न अखलाक नहीं। अच्छा अखलाक किरदार का हुस्न है। सामईन किराम, कभी हम दीन को दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, इबादत अलग और अखलाक अलग। घर में लहजा जैसा भी हो, तिलावत जरूरी। कारोबार में मामला कुछ भी हो, जिक्र बहुत कर रहे हैं। मुलाजिम के साथ बदतमीजी लेकिन नफल रोजे अदा कर रहे हैं। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बिर्रु हुस्नुल खुलुक, यानी नेकी का असर आपके किरदार में भी नजर आना चाहिए। इबादत आपको अल्लाह के करीब ले जाए और इस कुर्ब का हुसन लोगों के साथ आपके रवैये में भी जाहिर हो। और जैसा कि आपने सुना सामईन किराम, के हुस्न अखलाक का एक अहम हिस्सा इंसाफ भी है। इंसाफ का असल इम्तिहान तब है जब फैसला हमारे अपने खिलाफ जा रहा हो, दो लोगों में इख्तिलाफ हुआ, एक हमारा दोस्त एक अजनबी, क्या फिर भी हम इंसाफ कर सकते हैं? कारोबारी मामले में गलती हमारी है, क्या हम जिम्मेदारी ले सकते हैं? याद रखिए, इंसाफ ये भी है कि दूसरों को भी उसका हक मिले, चाहे मुझे थोड़ा नुकसान ही क्यों ना हो। मजीद इब्न दकीक अल ईद रहमहुल्लाह ने हुस्न अखलाक में रिफ्क यानी नरमी का भी जिक्र फरमाया। मिसाल के तौर पर हम किसी को सही बात बता रहे हों मगर किस अंदाज में, तहकीर के साथ या फिर सबके सामने उसकी इसलाह करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी हमारी बात बिल्कुल दुरुस्त होती है लेकिन अंदाज उसके असर को खत्म कर देता है। हुस्न अखलाक हमें ये सिखाता है कि हक कहिए मगर खूबसूरत तरीके से। मजीद आगे हदीस एक दूसरी अलामत बताती है, वो करहत अन यत्तलिअ अलैहि الناس, और तुम नापसंद करो कि लोग उससे वाकिफ हों। अब हदीस की इस लाइन को अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ले आइए। कुछ मैसेज ऐसे हैं जिन्हें हम दूसरों के सामने नहीं खोलना चाहते, कुछ कन्वर्सेशंस ऐसे हैं जिन्हें फौरन डिलीट कर देते हैं। हालांकि सवाल तो सिर्फ ये नहीं कि क्या लोग देख रहे हैं, असल सवाल तो ये है कि अगर लोग नहीं भी देख रहे हैं तो क्या अल्लाह भी नहीं देख रहा। मोमिन का जमीर सिर्फ लोगों के कैमरे से जिंदा नहीं होता, उसे ये शऊर जिंदा रखता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। अल्लाह ताला हमारे अखलाक को खूबसूरत बनाए, हमें अदल, नरमी और एहसान की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम रूपर व सुन्नत के आज के इस हल्के से तकनीकी मुआविन शकील अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, सुन्नतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते रहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
3: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए स्कैम के बारे में मैं आपको इत्तला करता रहता हूं। और आज जिस स्कैम के बारे में बात करने वाला हूं, ये लोगों के लिए बड़ा ही खेल बन गया है। तो वैसे आज मैं बात करने वाला हूं खेल यानी कि स्पोर्ट्स एकेडमी का स्कैम। दोस्तों ये स्कैम बहुत ही बेकार है, मतलब ये टारगेट करता है बच्चों को। इसमें फ्रॉडस्टर सीधे तौर पर पेरेंट्स के इमोशन के साथ खेलते हैं और उनके बच्चों के अच्छे फ्यूचर की ख्वाहिश का गलत फायदा उठाते हैं। हर एक पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा अच्छी तरह पढ़े, स्पोर्ट्स में भी अपना नाम रोशन करें, और आजकल तो स्पोर्ट्स में ज्यादा तवज्जो देने लगे हैं पेरेंट्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस ख्वाहिश को टारगेट करते हुए स्कैमर्स पेरेंट्स को ठगने की पूरी कोशिश करते हैं, जाल बुनते हैं। वो इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ही प्रेस्टीजियस, हाई क्लास और साथ ही अफोर्डेबल दिखने वाली स्पोर्ट्स एकेडमीज के बड़े बड़े और अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स चलाते हैं। ये सोशल मीडिया पे आपके पास पहुंचता है। इन एड्स में बहुत अच्छी फैसिलिटीज, बड़े कोचेस की फोटोज दिखाई जाती हैं, जिससे पेरेंट्स आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब पेरेंट्स उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं तो ऑर्गेनाइजर्स उनसे स्टीप अपफ्रंट रजिस्ट्रेशन फीस की डिमांड करते हैं। देखिए इसमें बहुत से लेयर्स होते हैं। वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, आपको ऑफर के बारे में बताएंगे, बताएंगे कि अक्टूबर में ये ऑफर है, नवंबर में ये ऑफर है ना। अब तो पेरेंट्स वापस भी आ गए हैं छुट्टी से, तो बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, हमारे पास लिमिटेड सीट है। तो बहुत सी लेयर जो है वो धीरे धीरे आपको बताएंगे और फिर आपसे कहेंगे कि आप मिनिमल अमाउंट जो है वो आप दे दें, फिर आके आप बच्चे को कभी भी एडमिशन फला जगह आके करवा सकते हैं। तो ऐसे में होता ये है, वो आपसे 100 कतरी रियाल मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर होता है खेल, वो 100 कतरी रियाल लेकर गायब हो जाते हैं। अमाउंट छोटा जरूर है, लेकिन आपसे 100 कतरी रियाल लेके वो गायब हो जाते हैं। जब आप लोकेशन पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि कोई ऐसा शख्स है ही नहीं जो बात कर रहा है। और आमतौर पे पेरेंट्स पैसा दे देते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों के अच्छे करियर के लिए बिना ज्यादा सोचे ये मोटी रकम आराम से दे देते हैं, मगर जैसे ही पेरेंट्स पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उनका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। ये पेमेंट आपको मिलता नहीं है, आप व्हाट्सएप पे ब्लॉक हो चुके हैं, लोकेशन पे जाने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है, और आपने जहां पर पेमेंट किया है वो एक्चुअली में ट्रेस हो ही नहीं सकता। लेकिन इन सब का सॉल्यूशन भी है दोस्तों। इस तरह के फ्रॉड से बचने का जो सबसे पहला सॉल्यूशन है, पेरेंट्स को अपने बच्चों का एडमिशन ऐसे एकेडमी में कराते वक्त बहुत केयरफुल रहना चाहिए, ताकि उनकी मेहनत की कमाई चोरी ना हो। इसका सबसे पहला जो रूल या नियम है वो ये कि कभी भी और किसी भी हाल में सिर्फ सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट्स के भरोसे ना रहते हुए आप लोकेशन पे जाएं। एड्स बहुत आसानी से फेक बनाए जा सकते हैं। मैंने कोई पोस्टर बनाया, उसको सोशल मीडिया पे डाला और उसे बूस्ट कर दिया, तो ये तो बड़ा आसान है, आप तक पहुंच जाएगा। और फिर मैं कह दूं कि रजिस्ट्रेशन फीस दे दिए क्योंकि मेरे पास लिमिटेड सीट है, और फिर मैं बताऊंगा भी बहुत बड़ा एकेडमी है यहाँ का और सिर्फ 10 जो बच्चे हैं वो हो सकते हैं, 8 हमारे पास आ गए हैं, सिर्फ 2 की जगह बची है। तो दुनिया भर की कहानी जो है वो खेलते हैं बनाते हैं। कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले फिजिकल ट्रेनिंग फैसिलिटीज या वेन्यू पर खुद फिजिकली विजिट करें और अपनी आंखों से देखकर कंफर्म भी करें कि क्या वो एकेडमी सच में वहां ऑपरेट कर भी रही है या नहीं, वहां बच्चे सच में खेलते भी हैं या नहीं। तो दोस्तों उसके अलावा जब भी आपसे कोई पेमेंट के लिए कहे तो आप उनके वेरीफाइड बैंक अकाउंट में डालें जो कि उसी शहर का हो। उसके अलावा आप लोकेशन पे उनके करीब उनके पास पहुंचे, उनसे बात करें और पूछें कि क्या आप ही बात कर रहे हैं। फिर अगर पेमेंट के लिए वो कहे तो कैश पेमेंट दीजिए और रिसीट भी लीजिए। आप जब स्पोर्ट्स एकेडमी में हो वहां पर लोगों से बात करिए, तब आपको ज्यादा सही तरीके से अंदाजा होगा कि ये लोग सही हैं या गलत हैं। चेक करें एकेडमी लीगली रजिस्टर्ड है भी या नहीं। कई बार लोकेशन पे जाने के बाद आपको ये पता चलता है कि ये लीगली रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आप जब देखते हैं लोग बच्चे वहां पर खेल रहे हैं तो आप पेमेंट कर देते हैं। लीगली अगर रजिस्टर्ड वो एकेडमी नहीं है तो भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन एडवांस पेमेंट, रजिस्ट्रेशन का पेमेंट और बगैर मुलाकात किए वायर ट्रांसफर करना बिल्कुल गलत है। इस तरह के फेक और स्कैम से जरूर बचिए। फिलहाल ये था आज का शो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि इस 5 मिनट में आपको सॉल्यूशन भी मिल गया और पता भी चल गया कि इस जमाने में किस तरह के फ्रॉड आजकल हो रहे हैं। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
0: स्कैम अलर्ट। आप सुन रहे हैं एफएम 107 एफएम 107
1: दिल से देसी हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट नासिया आज दोस्तों इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी फंड यानी मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा आपका सहारा वैसे तो अल्लाह ही है लेकिन हाँ फाइनेंशियली अगर सहारा देखा ढूंढा जाए तो ये वही फंड है आज हम एक ऐसे फाइनेंशियल टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो शायद इन्वेस्टमेंट बिजनेस या फिर लग्जरी स्पेंडिंग जितना एक्साइटिंग ना लगे लेकिन असल में ये हर घर और हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है इमरजेंसी फंड

सा। अब ये सवाल जो है इसका जवाब हमें ढूंढना है इमरजेंसी फंड्स के थ्रू। देखिए इमरजेंसी फंड्स होते क्या है? इमरजेंसी फंड वो पैसा होता है जो खास तौर पर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए अलग रखा जाता है। ये पैसा आपके वेकेशन, शॉपिंग या अननेसेसरी एक्सपीरियंसेस के लिए या अननेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए नहीं होते। ये सिर्फ उन सिचुएशंस के लिए होते हैं जब जिंदगी अचानक कोई चैलेंज सामने ले आए। इसलिए आप फाइनेंशियल फर्स्ट एड बॉक्स भी कह सकते हैं। जिस तरह घर में इमरजेंसी मेडिसिन रखी जाती है, उसी तरह फाइनेंशियल इमरजेंसीज के लिए इमरजेंसी फंड रखे जाते हैं। अब इमरजेंसी फंड्स की अहमियत पे बात करते हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस को ये कम कर देता है। जब अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस सामने आए और आपके पास रिजर्व पैसा मौजूद हो, तो आप पैनिक और टेंशन कम करते हैं या कम होती है। बहुत से लोग आपने देखा है कि इमरजेंसी की सूरत में लोन लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड्स पर डिपेंड करते हैं। इससे फाइनेंशियल प्रेशर और बढ़ सकता है, लेकिन इमरजेंसी फंड आपको इसकी ज़रूरत से बचाते हैं या आपको फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस देते हैं। आज की दुनिया में जॉब्स और इंडस्ट्रीज तेज़ी से चेंज हो रही हैं। कभी कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग करती है, कभी रोल चेंज हो जाता है, कभी इंसान खुद बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए ट्रांजिशन करता है। ऐसे वक्त में इमरजेंसी फंड एक सेफ्टी कुशन का काम करता है। ये आपको वक्त देता है कि आप बेहतरीन डिसीजंस ले सकें, सिर्फ मजबूरी की बुनियाद पर नहीं। वहीं इमरजेंसी फंड सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरी फैमिली के लिए सिक्योरिटी का सोर्स होते हैं। अगर घर में किसी को हेल्थ इशू हो या कोई ज़रूरी एक्सपेंस आ जाए, तो फाइनेंशियल प्रिपरेशन फैमिली को बहुत सी परेशानियों से बचा सकती है। जो लोग सेविंग की आदत बना लेते हैं, वो धीरे धीरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। बस आखिर में दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगी कि जिंदगी में हम हर कोई चैलेंजेस जो है उनका सामना करते हैं। वो चैलेंजेस सामने आते हैं और हम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन उसके लिए खुद को तैयार जरूर कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड हमें ये यकीन दिलाते हैं कि अगर कोई कल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हमारे सामने आ जाए, तो हम घबराने की बजाय उसका सामना करें। लग्जरी चीज़ें हमें खुशी दे सकती हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स हमें ग्रोथ देती हैं। इन्वेस्टमेंट्स हमें सिक्योरिटी देती हैं, और अक्सर जिंदगी में सिक्योरिटी वो बुनियाद है जिस पर कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी और कामयाबी की इमारत खड़ी होती है। तो बस जाते जाते आपसे यही कहूंगी कि इमरजेंसी फंड अमीर बनने के लिए नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में मजबूती से खड़े रहने के लिए है। जब आपके पास फाइनेंशियल बैकअप होता है, तो आप सिर्फ पैसे नहीं बचाते बल्कि अपने पीस ऑफ माइंड को भी महफूज करते हैं। बस मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अल्लाह ना करे हम में से किसी को भी इस तरह की अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का सामना करना पड़े, लेकिन फिर भी तैयारी तो हमें करनी चाहिए। बाकी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज नहीं, कल करेंगे। अभी के लिए मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कतर के एक ऐसे शूटर की जिन्होंने हालिया सालों में इंटरनेशनल शूटिंग के अरीना में अपनी एक खास पहचान बनाई है। नाम है राशिद सालेह अल अथवा और 2026 एशियन गेम्स में उनकी लेटेस्ट परफॉर्मेंस ने कतर के स्पोर्ट्स फैंस को जश्न मनाने का एक मौका दिया। राशिद अल अथवा का नाम कतर के स्कीट शूटिंग में काफी अहम है, काफी फेमस है। उन्होंने कतर को इंटरनेशनल और कॉन्टिनेंटल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है और पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स में भी कतर की तरफ से शूटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था। एशियन गेम्स से पहले भी उनकी फॉर्म काफी स्ट्रांग थी। सितंबर 2000

2026 में जापान के आईची नागोवा शहर में एशियन गेम्स के लिए कतर की शूटिंग टीम में राशिद को मेंस स्की टीम में शामिल किया गया था और फिर जापान में अलातबा ने वो परफॉर्मेंस दी जो कतर के एशियन गेम्स कैंपेन की सबसे अहम शूटिंग अचीवमेंट्स में शामिल हो गई। 23 सितंबर 2026 को राशिद ने मेंस इंडिविजुअल स्कीट कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता, यानी इंडिविजुअल गोल्ड। सिर्फ गोल्ड मेडल ही नहीं बल्कि उन्होंने 34 टारगेट्स हिट करके नया एशियन रिकॉर्ड भी एस्टैब्लिश किया। चीन के ल्यू जियानरी ने 33 हिट्स के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि चाइनीज ताइपे के ली मेंग युआन ने 29 हिट्स के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। लेकिन राशिद अलातबा के लिए ये दिन अभी मुकम्मल नहीं हुआ। इंडिविजुअल गोल्ड से पहले वो कतर के मेंस टीम स्कीट स्क्वाड का भी हिस्सा थे। राशिद अलातबा ने नासिर सोले अलतिया और अली अहमद अल इसाख के साथ मिलकर टीम कंपटीशन में 353 टारगेट्स का स्कोर बनाया और कतर को गोल्ड मेडल दिलाया। कुवैत 348 टारगेट्स के साथ सिल्वर और इंडिया 346 टारगेट्स के साथ ब्रॉन्ज मेडल पर रहा। यानी एक ही एशियन गेम्स में राशिद अलातबा ने टीम गोल्ड और इंडिविजुअल गोल्ड दोनों मेडल्स अपने नाम किए। उनकी इंडिविजुअल फाइनल परफॉर्मेंस खास तौर पर इंप्रेसिव थी। अलातबा ने 34 टारगेट्स हिट किए और प्रीवियस एशियन रिकॉर्ड को बेहतर बनाया। इस अचीवमेंट के बाद उन्होंने कहा कि कंपटीशन का लेवल बहुत हाई था और एशियन गेम्स दुनिया के मुश्किल स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन्स में से एक हैं। उन्होंने अपनी कामयाबी को बहुत कड़ी मेहनत और इंटेंस कंसंट्रेशन का नतीजा करार दिया। वाकई एम शूटिंग इज नॉट एन ईजी यू नो गेम और नॉट एन ईजी स्पोर्ट टू कैरी फॉरवर्ड टू योर इंटरनेशनल सक्सेस। और राशिद अलातबा की रीसेंट फॉर्म सिर्फ एशियन गेम्स तक महदूद नहीं है। एशियन गेम्स से पहले जुलाई 2026 में हैंगजो ISSF वर्ल्ड कप में भी राशिद अलातबा मेडल जीता था, वो भी गोल्ड मेडल। कतर के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक और इम्पोर्टेंट अचीवमेंट थी और इस परफॉर्मेंस ने एशियन गेम्स से पहले उनकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म को हाईलाइट किया। एशियन गेम्स में उनका कैंपेन भी यहीं ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों। 25 सितंबर को राशिद अलातबा और रीमाल शाशानी ने मिक्स्ड टीम स्कीट कंपटीशन में क्वालिफिकेशन में टॉप पोजीशन हासिल करके फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में कतरी पेयर पोडियम तक नहीं पहुंच सका और चौथे पोजीशन पर रहा, जबकि चीन ने गोल्ड, साउथ कोरिया ने सिल्वर और इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। लेकिन इस फोर्थ प्लेस फिनिश से पहले ही राशिद अलातबा अपना नाम आईची नागोवा 2026 के रिकॉर्ड बुक्स में लिखवा चुके थे, दो गोल्ड मेडल्स और एक एशियन रिकॉर्ड के साथ। दोस्तों, राशिद अलातबा की कहानी कतर की शूटिंग में मेहनत, कंसिस्टेंसी और इंटरनेशनल कंपटीशन में परफॉर्मेंस की कहानी है। उनका लेटेस्ट एशियन गेम्स डबल्स गोल्ड कतर के लिए भी एक मेमोरेबल अचीवमेंट बन गया है। राशिद अलातबा फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि कतर का चैंपियन शूटर है, एशियन गेम्स का डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 2026 का एशियन रिकॉर्ड होल्डर। आपको कैसा लगा आज का हमारा ये स्पोर्ट्स सेगमेंट, जरूर बताइएगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 presents Tech Update.
3: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू टेक अपडेट। आज बहुत काम की चीज है, हर रोज होती है। आप बोलेंगे हर रोज आता ही बोलता है, आज भी आई डोंट नो व्हाट टू से स्टार्टिंग में। यही है ना, मैं बता तो रहा हूँ, वो काम का बंदा है यार कबीर। चलिए मैं आपको तीनों वेबसाइट जल्दी से बता देता हूँ। तो ये तीनों वेबसाइट्स आपके काम आएंगी, कुछ फॉर फन है और कुछ बड़ी काम की है। लेट्स बिगिन। तो नंबर वन वेबसाइट ऑन द लिस्ट, इसका नाम है MrFreeTools.com। MrFreeTools.com आप इस पे जाइए, आपको वेबसाइट्स

तो आप अगर सीरियस है कंटेंट जनरेशन को लेकर, इफ यू प्लानिंग समथिंग आउट और आपको एआई लगता है यार ये महीने का और खर्चा हो जाएगा, तो ये आपके काम आ सकता है और बहुत बहुत कमाल का है. सो गो फॉर इट एंड आई थिंक इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू. आप बढ़ते हैं जरा आगे. देखिए लैंग्वेजेस सीखने के लिए मैंने पिछली बार भी आपको एक वेबसाइट बताई थी और अब एक और नई वेबसाइट बताना चाहता हूँ जो आपको कोई भी नई लैंग्वेज सीखने में मदद कर सकती है. वेबसाइट का नाम है learn101.org. learn learn फिर 101, न्यूमेरिकली लिखना है 101.org. इस वेबसाइट पे आप जाएंगे और उसके बाद आपसे पूछेगा भाई आपको कौन सी भाषा आती है, आप बताएंगे ये आती है, अच्छा ठीक है कौन सी सीखनी है, ये वाली सीखनी है, और फिर आपको हर तरीके से ये सिखाने की कोशिश करेगा. ऐसा नहीं कि बस पढ़ के बोल दो, नहीं, इमर्सिव तरीके हैं थ्रू साउंड इफेक्ट्स, फोनिक्स, थ्रू वीडियोस एंड स्मॉल स्मॉल गेम्स स्कोरिंग कर सकते हैं आपको. बहुत कमाल की चीज़ है यार. या लैंग्वेजेस वैसे भी सीखनी चाहिए. मतलब मैं अभी स्पेनिश का मेरा कोर्स चल रहा है इस पर धीरे धीरे, कोमोएस्टास से मुझे भी आगे बढ़ना है एंड ऑफकोर्स अरेबिक. तो टारगेट बनाइए अपना एंड आई थिंक आई नो बोलने वाले लोग चाहिए होते हैं आसपास, बट अगर नहीं है तो एआई है ना, बात करो बिंदास उससे भाई, बोलो मेरे से आज तुम अरबी में बात करो. समझ रहे हैं आप? एंड यू कैन स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन. कुछ तो दिमाग में आएगा, पर कर सकते हैं आप. आज का जमाना इस चीज को लेके कम से कम फ्री है अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, थर्ड वेबसाइट. थर्ड वेबसाइट है nomorecopyright.com. nomorecopyright.com. ठहरिए, इससे पहले आप अजम्पशन लगाएं इसमें क्या है. ये इमेजेस के लिए, स्टॉक इमेजेस. कई मरतब आप देखते हैं ना इमेजेस, आप स्टॉक इमेजेस यूज करना चाह रहे होते हैं, उसके ऊपर वाटरमार्क होता है या फ्री नहीं होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं. तो स्टॉक इमेज जो आपको अच्छी लग रही है वो आप इस वेबसाइट पर डालिए nomorecopyright.com पे, और ये उसी इमेज का एक अलग बहुत ही रिफाइंड वर्जन आपको दे देगा. तो जितने लोग स्टॉक इमेजेस में काम करते हैं, जिन्हें जरूरत पड़ती रहती है, उनके ये बहुत काम आएगा. डेफिनेटली अ वेरी गुड थॉट बिहाइंड इट, जिसने भी ये वेबसाइट सोची है तो काम की तो है भाई. ठीक है, गो फॉर इट. अब जरा बढ़ते हैं एक नॉट एग्जैक्टली डिस्कवरी मगर एक ट्रेंड की तरफ जो अभी डिस्कवर हुआ है. कुछ लोगों ने अभी किया, कुछ लोग पहले भी कर चुके थे. तो आपको याद है 3D प्रिंटर जब पहली मरतबा देखा था तो क्या रिएक्शन था? मेरा रिएक्शन था है ये ऐसा भी होता है. तो 3D प्रिंटर्स का क्रेज तो रहा है लेकिन बहुत महंगे हुआ करते थे. राइट नाउ मैं नहीं कहूंगा अरे बिल्कुल ही सस्ते हो गए तो अब तो धूल के बराबर है, नहीं. पर अभी आफ्टर लाइक 10-15 ईयर्स जब से क्रेज चालू हुआ था, आज की तारीख में जो एंट्री लेवल 3D प्रिंटर्स हैं वो एक्चुअली में अफोर्डेबल हैं. $200, $400 ये रेंज बढ़ती चली जाती है. मिड टियर मॉडल्स हैं $750 और फिर आगे चला जाता है मामला. और कुछ लोग इसी वजह से यूरोपियन कंट्रीज में स्पेशली सोच रहे हैं कि भाई ये ही ले लिया जाए, क्योंकि ये होम प्रिंटिंग टूल ऐसा है जो आपको थोड़ी छोटी मोटी चीजें, छोटे मोटे टूल्स बनाने में मदद कर सकता है. हाँ, इट डिपेंड्स ऑन योर बजट एंड एवरीथिंग, बट आई थिंक 3D प्रिंटर्स आर हेयर टू स्टे. ये डाई आउट नहीं होने वाले. आपका क्या कहना है बता दीजिएगा. अगली अपडेट में मिलते हैं. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टेक

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इंक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: आप सुन रहे हैं एफएम 107
2: दिल से देसी
3: कहते हैं जिंदगी एक रेस है लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं
4: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं
3: नए करियर्स फ्यूचर स्किल्स चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं अपने करियर का अगला कदम समझ कर उठाइए
5: अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स आप सुन रहे हैं एफएम 107 कदर और शो है ये फ्यूचर करियर वो शो जहां हम उन प्रोफेशनल्स के बारे में बात करते हैं जो हमारी कल की दुनिया को शेप कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं मैं हूं आपकी आरजे मावश हेल्थकेयर हमेशा से हमारी सोसाइटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर रहा है डॉक्टर्स नर्सेस फार्मासिस्ट और दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स हमारी कम्युनिटीज को हेल्दी रखने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम हेल्थ केयर के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर हमारे जहन में हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट का तस्वुर आता है लेकिन आज हेल्थ केयर की दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है और इस चेंज के पीछे एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है टेक्नोलॉजी आज टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर सर्विसेज का एक एसेंशियल हिस्सा बन चुकी है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड से लेकर वियरेबल डिवाइसेस तक रोबोटिक सर्जरी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर के तरीके को फंडामेंटली चेंज कर रही है पहले पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड अक्सर पेपर फाइल्स में मेंटेन किया जाता था आज बहुत से हेल्थ केयर सिस्टम्स में पेशेंट की इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर और मैनेज की जा रही है वेरिएबल डिवाइसेस लोगों को अपनी हेल्थ और फिटनेस के बारे में एस्पेक्ट्स मॉनिटर करने में मदद देते हैं स्मार्ट डिवाइसेस हार्ट रेट फिजिकल एक्टिविटी और दूसरे हेल्थ रिलेटेड मेजरमेंट्स को ट्रैक कर सकती हैं। इसी तरह मेडिकल टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस ने डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के नए तरीके भी इंट्रोड्यूस किए हैं रोबोटिक सिस्टम्स डॉक्टर्स को कुछ कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर्स में असिस्ट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को लार्ज अमाउंट्स ऑफ मेडिकल डेटा एनालाइज करने और कुछ सिचुएशंस में पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में सपोर्ट कर सकती है ये तमाम डेवलपमेंट्स सिर्फ हेल्थ केयर को मॉडर्न नहीं बना रही बल्कि स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए नए करियर अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रही हैं अगर आपको हेल्थ केयर में इंटरेस्ट है लेकिन आप ट्रेडिशनल मेडिकल प्रोफेशन के अलावा कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फील्ड हो सकती है और अगर आप टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स डेटा और इनोवेशन में इंटरेस्ट रखते हैं और साथ ही लोगों की हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने में कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो ये फील्ड आपको दोनों इंटरेस्ट को कंबाइन करने का मौका दे सकती है आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी करियर्स हम देखेंगे कि इस फील्ड में कौन से करियर्स फ्यूचर में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स इस फील्ड में करियर बनाने के लिए किस तरह की एजुकेशन और स्किल्स डेवलप कर सकते हैं हम ये भी समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर को किस तरह ट्रांसफॉर्म कर रही है और सबसे इम्पोर्टेंट बात हम देखेंगे कि कतर में हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी की फील्ड्स में किस तरह की अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है दुनिया भर में हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस, स्मार्ट हेल्थ सॉल्यूशंस, स्मार्ट मेडिकल टेक्नोलॉजीज और एआई पावर्ड हेल्थ केयर सिस्टम्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही हैं। इसका मतलब है कि हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी के इंटरसेक्शन पर काम करने वाले प्रोफेशनल्स की इम्पोर्टेंस भी बढ़ रही है। आने वाले वक्तों में हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेज ही नहीं बल्कि ऐसे प्रोफेशनल्स भी चाहिए होंगे जो टेक्नोलॉजी, डेटा, डिजिटल सिस्टम्स और हेल्थ केयर को समझते हो। यदि फ्यूचर का हेल्थ केयर वर्कफोर्स इंक्रीजिंगली मल्टीडिसिप्लिनरी हो सकता है। और अब आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या आप ऐसे करियर में काम करना पसंद करेंगे जो टेक्नोलॉजी को लोगों की हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के साथ कंबाइन करते हो? इस सवाल का जवाब अभी अपने जहन में रखिए, क्योंकि आज के एपिसोड में हम हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर में इस फील्ड में आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। और अब वक्त आ गया है हमारे सेगमेंट जॉब्स फॉर टुमारो का। जॉब्स फॉर टुमारो। हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी आज की फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड में से एक बन रही है। इस फील्ड की खास बात यह है कि ये हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी को एक साथ लेकर चलती है। एक तरफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पेशेंट्स की नीड्स को समझते हैं और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स डिजिटल सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर, डेटा और इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं। जब ये दोनों एरियाज एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो हेल्थ केयर डिलीवरी को इम्प्रूव करने की नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कुछ ऐसे करियर्स के बारे में जो फ्यूचर हेल्थ केयर को शेप कर सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट की। हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स हेल्थ केयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दरमियान एक ब्रिज का काम करती है। हेल्थ इंफॉर्मेटिक स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को मैनेज करने में मदद करते हैं। इनका काम ये इंश्योर करना होता है कि मेडिकल इंफॉर्मेशन एक्यूरेट, ऑर्गेनाइज्ड, सिक्योर्ड और जरूरत के वक्त एक्सेसिबल हो। आज हॉस्पिटल्स में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। पेशेंट्स के मेडिकल रिकॉर्ड्स, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स, डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स, प्रिस्क्रिप्शंस और ट्रीटमेंट इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स को मैनेज करना, हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को इम्प्रूव करना, हेल्थ केयर स्टाफ को डिजिटल सिस्टम यूज करने में सपोर्ट करना, पेशेंट डेटा को एनालाइज करना और हेल्थ केयर प्रोसेसेस को ज्यादा एफिशिएंट बनाना। मिसाल के तौर पर अगर एक हॉस्पिटल में पेशेंट इंफॉर्मेशन अलग अलग सिस्टम्स में स्टोर हो और स्टाफ को इंफॉर्मेशन एक्सेस करने में मुश्किल हो तो हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स प्रोफेशनल्स सिस्टम को इम्प्रूव करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इस करियर के लिए हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी दोनों में इंटरेस्ट फायदेमंद हो सकता है। अब बात करते हैं टेली हेल्थ कोऑर्डिनेटर की। टेली हेल्थ का मतलब है टेक्नोलॉजी की मदद से पेशेंट्स को रिमोटली हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना, यानी पेशेंट्स को कंसल्टेशन के लिए फिजिकली हॉस्पिटल या क्लिनिक जाना जरूरी नहीं होता। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और पेशेंट्स रिमोटली कनेक्ट कर सकते हैं। टेली हेल्थ कोऑर्डिनेटर्स इस प्रोसेस को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल हो सकता है वर्चुअल अपॉइंटमेंट्स को मैनेज करना, टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म्स को कोऑर्डिनेट करना, पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेशन मैनेज करना, ऑनलाइन हेल्थ केयर सर्विसेज को ऑर्गेनाइज करना और इंश्योर करना कि पेशेंट्स टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली यूज कर सकें। सोचिए, एक पेशेंट घर से डॉक्टर के साथ वीडियो कंसल्टेशन करना चाहता है। इस सिंपल प्रोसेस के पीछे अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, पेशेंट कम्युनिकेशन और टेक्निकल सपोर्ट जैसे बहुत से एलिमेंट्स हो सकते हैं। टेली हेल्थ कोऑर्डिनेटर इन सिस्टम को स्मूथली ऑपरेट करने में मदद करता है। जैसे जैसे डिजिटल हेल्थ केयर एक्सपेंड होगी, टेली हेल्थ से रिलेटेड करियर्स भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तीसरा करियर है मेडिकल टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट। मॉडर्न हॉस्पिटल्स में एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट और डिजिटल सिस्टम का यूज बढ़ता जा रहा है। मेडिकल टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी सिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं। इनका काम डिफरेंट मेडिकल डिवाइसेस को ऑपरेट करना, उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करना और इंश्योर करना हो सकता है कि टेक्नोलॉजी प्रॉपरली फंक्शन कर रही हो। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल है मेडिकल डिवाइसेस को ऑपरेट करना, इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस मॉनिटर करना, हेल्थ केयर स्टाफ को टेक्नोलॉजी यूज करने की ट्रेनिंग देना, टेक्नोलॉजी के करेक्ट फंक्शनिंग को इंश्योर करना और हेल्थ केयर सिस्टम्स को मेंटेन करना। ये करियर उन स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है जो हेल्थ केयर के साथ टेक्नोलॉजी में भी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट रखते हों। हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी सिर्फ कंप्यूटर्स तक लिमिटेड नहीं है। मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम और एडवांस्ड हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज भी इस फील्ड का इम्पोर्टेंट पार्ट है। और अब चौथा करियर है डिजिटल हेल्थ कंसल्टेंट। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को जब न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी होती है तो उन्हें सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदना ही नहीं होती, उन्हें ये भी समझना होता है कि टेक्नोलॉजी को ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। डिजिटल हेल्थ कंसल्टेंट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को इसी प्रोसेस में गाइड करते हैं। वो डिफरेंट एरियाज में एडवाइस दे सकते हैं, जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट्स और पेशेंट एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन अपने पेपर बेस्ड प्रोसेसेस को डिजिटल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहती है तो डिजिटल हेल्थ कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में सपोर्ट कर सकता है। इस करियर में हेल्थ केयर नॉलेज के साथ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग भी इम्पोर्टेंट होती है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट करियर की, क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट। आज हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट करती हैं। पेशेंट इंफॉर्मेशन, ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स, लेबोरेटरी रिजल्ट्स और हेल्थ केयर आउटकम्स, ये सब वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन डेटा सिर्फ कलेक्ट करना काफी नहीं, इस डेटा को समझना और यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना भी जरूरी है। क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट हेल्थ केयर डेटा को एनालाइज करते हैं और पैटर्न्स और ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। उनका काम हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्थ केयर ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने, पेशेंट आउटकम्स इम्प्रूव करने, रिसर्च प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने, ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस एवल्यूट करने और हेल्थ केयर डिसीजंस में सपोर्ट प्रोवाइड करने में मदद देता है। डेटा एनालिसिस हेल्थ केयर को एविडेंस बेस्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट कर सकती है और ये करियर उन स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर इंटरेस्टिंग हो सकता है जो मैथमेटिक्स, स्टेट्स, कंप्यूटर्स और हेल्थ केयर में इंटरेस्ट रखते हैं। और अब बात करते हैं हेल्थ केयर साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की। आज हेल्थ केयर सिस्टम्स इंक्रीजिंगली डिजिटल हो रहे हैं, लेकिन डिजिटलाइजेशन के साथ साइबर सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस भी बढ़ रही है। पेशेंट इंफॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव होती है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, हॉस्पिटल सिस्टम्स, पेशेंट इंफॉर्मेशन, हेल्थ केयर नेटवर्क्स और मेडिकल डिवाइसेस को सिक्योरिटी थ्रेट से प्रोटेक्ट करना जरूरी है। हेल्थ केयर साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को डिजिटल सिक्योरिटी इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। उनका फोकस हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स की सिक्योरिटी, हॉस्पिटल सिस्टम्स की प्रोटेक्शन, पेशेंट इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी, हेल्थ केयर नेटवर्क्स की सिक्योरिटी और कनेक्टेड मेडिकल डिवाइसेस की साइबर सिक्योरिटी। जितना हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करेगा उतनी ही साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। इसलिए अगर किसी स्टूडेंट को कंप्यूटर्स या साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो हेल्थ केयर सेक्टर में भी करियर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर की जा सकती हैं।
3: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
4: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
3: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
5: तो हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी को फ्यूचर करियर क्यों कहा जा रहा है? सबसे पहली वजह ये है कि दुनिया भर में हेल्थ केयर की डिमांड कंटिन्यू कर रही है। लोगों की हेल्थ नीड्स भी कभी खत्म नहीं होती। साथ ही टेक्नोलॉजी हर सेक्टर में रैपिडली डेवलप हो रही है। जब हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो नए रोल्स और न्यू करियर पाथवेज क्रिएट होते हैं। फ्यूचर में उन प्रोफेशनल्स की वैल्यू बढ़ सकती है जो सिर्फ एक फील्ड को नहीं बल्कि हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी दोनों को समझते हो। इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज हॉस्पिटल से लेकर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजी कंपनीज और डिजिटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस तक हो सकती हैं। यानी हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी एक ऐसा करियर एरिया है जहां साइंस, टेक्नोलॉजी, डेटा और ह्यूमन वेलबींग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अब सवाल ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं और हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में जाने के लिए सिर्फ एक ही एजुकेशनल पाथवे नहीं है। डिफरेंट बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पाथवेज को समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स का। आज बहुत सी यूनिवर्सिटीज हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं। इन प्रोग्राम्स में हेल्थ केयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कंबाइन किया जाता है। स्टूडेंट हेल्थ केयर सिस्टम्स, डेटा मैनेजमेंट, मेडिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस के बारे में सीख सकते हैं। अगर आपको हेल्थ केयर के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी इंटरेस्ट है तो हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स एक सुटेबल ऑप्शन हो सकता है। दूसरा पाथवे है कंप्यूटर साइंस। अगर आप टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं तो आप हेल्थ केयर सेक्टर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल हेल्थ प्रोजेक्ट्स के जरिए एंटर कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिसिस, डेटाबेस सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे एरियाज में स्किल्स डेवलप करते हैं। इन स्किल्स को हेल्थ केयर एप्लीकेशंस में यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हेल्थ केयर एप्लीकेशन सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। डेटा प्रोफेशनल्स हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हैं। AI स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को इंटेलिजेंट डिजिटल सॉल्यूशंस डेवलप करने में सपोर्ट कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हेल्थ केयर सिस्टम को डिजिटल थ्रेट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा पाथवे हेल्थ केयर और मेडिकल साइंसेज का है। अगर आप हेल्थ केयर में इंटरेस्ट रखते हैं तो अपनी मेडिकल एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्किल्स भी डेवलप कर सकते हैं। पॉसिबल एरियाज में हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक लेबोरेटरी साइंसेज, पब्लिक हेल्थ और हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्किल्स भी शामिल हो सकती हैं। हेल्थ केयर का फ्यूचर मल्टीडिसिप्लिनरी है, इसलिए हेल्थ केयर नॉलेज के साथ टेक्नोलॉजी और डेटा की अंडरस्टैंडिंग आपको फ्यूचर वर्कप्लेस में एडवांटेज दे सकती है। एजुकेशन के साथ स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में सक्सेसफुल होने के लिए स्टूडेंट्स को टेक्निकल और ह्यूमन दोनों स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। सबसे पहले टेक्निकल स्किल्स, डेटा एनालिसिस, डिजिटल लिटरेसी, हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की नॉलेज और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। आपको हर चीज का एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना और नए डिजिटल टूल सीखने की विलिंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी के बावजूद हेल्थ केयर एक ह्यूमन सेंटर्ड फील्ड है, इसीलिए ह्यूमन स्किल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन, एम्पैथी, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अटेंशन टू डिटेल। हेल्थ केयर में छोटी सी इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए एक्यूरेसी और अटेंशन टू डिटेल बहुत वैल्यूएबल क्वालिटीज हैं। साथ ही हेल्थ

0: healthcare professionals ko patients, doctors, nurses, technicians aur administrators ke saath effectively communicate karna hota hai. Students ko apni education ke saath practical experience hasil karne ki bhi koshish karni chahiye. Aap internship ya training opportunities explore kar sakte hain. Hospitals mein, healthcare organizations mein, research institutions mein, technology companies mein aur digital health startups mein. Practical experience aapko classroom knowledge ko real world situations mein apply karne ka mauka deta hai. इससे आपको ये भी समझ आता है कि इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी किस तरह यूज हो रही है. अगर आप हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखें, लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होनी चाहिए. हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रही है. आज जो टेक्नोलॉजी नई है मुमकिन है कुछ सालों बाद वो कॉमन टेक्नोलॉजी बन जाए. इसलिए स्टूडेंट्स को क्यूरियस रहना चाहिए, न्यू टूल सीखने चाहिए, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करें, ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें और अपनी स्किल्स को कंटिन्यूसली अपडेट करते रहें. फ्यूचर में वो प्रोफेशनल ज्यादा वैल्यूएबल हो सकते हैं जो हेल्थ केयर की नीड्स को समझने के साथ डिजिटल सॉल्यूशंस को भी इफेक्टिवली यूज कर सकें. और अब आ गया है हमारे सेगमेंट AI एंड वर्क का वर्क. और अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के सबसे एक्साइटिंग एरियाज में एक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI. AI हेल्थ केयर में नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रही है. AI का रोल सिर्फ कंप्यूटर्स को इंटेलिजेंट बनाना नहीं, हेल्थ केयर में AI मेडिकल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करने के लिए यूज की जा सकती है. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझना बहुत जरूरी हो जाता है. AI का पर्पस हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को सिंपली रिप्लेस करना नहीं, बल्कि कई सिचुएशंस में AI उन्हें फास्टर और मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में सपोर्ट कर सकती है. AI के इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन मेडिकल इमेजिंग है. हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल इमेजेस यूज कर सकते हैं, जैसे एक्सरेज, MRI स्कैन्स, CT स्कैन्स और अल्ट्रासाउंड. AI सिस्टम्स कुछ मेडिकल इमेजेस को एनालाइज करने में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की मदद कर सकते हैं. AI लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को रैपिडली प्रोसेस कर सकती है और कुछ पैटर्न्स या एबनॉर्मलिटीज को आइडेंटिफाई करने में सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है. इससे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इंफॉर्मेशन को इफिशेंटली रिव्यू करने में मदद मिल सकती है. लेकिन फाइनल क्लिनिकल जजमेंट और पेशेंट केयर में क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है. AI पेशेंट केयर के डिफरेंट एरियाज में भी यूज़ हो सकती है. फॉर एग्जांपल, AI सिस्टम्स हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को पेशेंट्स को मॉनिटर करने, अपॉइंटमेंट्स मैनेज करने, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने, ट्रीटमेंट प्लानिंग को सपोर्ट करने और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड रिड्यूस करने में मदद दे सकती हैं. अगर रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क टेक्नोलॉजी हैंडल कर ले तो हेल्थ केयर स्टाफ अपना ज़्यादा वक्त पेशेंट्स और इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर फोकस कर सकते हैं. AI का एक और इंटरेस्टिंग एरिया है प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर. मॉडर्न AI सिस्टम्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा एनालाइज कर सकते हैं. इस एनालिसिस की मदद से पोटेंशियल हेल्थ रिस्क को अर्लियर आइडेंटिफाई करने में सपोर्ट मिल सकती है. इसका ऑब्जेक्टिव प्रिवेंटिव केयर और अर्ली इंटरवेंशन को सपोर्ट करना है. यानी हेल्थ केयर का फोकस सिर्फ इलनेस का ट्रीटमेंट करने से आगे बढ़कर पॉसिबल रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करने की तरफ भी जा सकता है. हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट का भी यूज इंक्रीजिंगली एक्सप्लोर कर रही हैं. वर्चुअल असिस्टेंट्स पेशेंट्स के बेसिक क्वेश्चंस का जवाब देने में मदद कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स शेड्यूल करने में मदद कर सकती हैं, हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हैं और सर्विसेज को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने में कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं. लेकिन यहाँ भी ह्यूमन सुपरविजन और रिलायबल इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सेंसिटिव होती हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी का रिस्पॉन्सिबल और इथिकल यूज़ होना ज़रूरी है. टेक्नोलॉजी जितनी भी एडवांस हो जाए, हेल्थ केयर में ह्यूमन एक्सपर्टीज की इम्पोर्टेंस कम नहीं होती। हेल्थ केयर सिर्फ डेटा और मशीन्स का नाम नहीं, हेल्थ केयर में कंपैशन चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, क्लिनिकल जजमेंट चाहिए, एथिकल डिसीजन मेकिंग चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट रिलेशनशिप्स चाहिए। एक पेशेंट जब डॉक्टर या नर्स के पास जाता है तो वो सिर्फ मेडिकल इंफॉर्मेशन नहीं चाहता, वो अंडरस्टैंडिंग, रीअश्योरेंस और ह्यूमन कनेक्शन भी चाहता है। इसलिए फ्यूचर हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एक्सपर्टीज एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं है बल्कि पार्टनर्स हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर को इनहेंस कर सकती है लेकिन केयर के सेंटर में इंसान ही रहेगा। और अब वक्त आ गया है हमारे सेगमेंट कतर करियर स्पॉटलाइट का। कतर हेल्थ केयर मॉडर्नाइजेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस कर रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का यूज डिफरेंट एरियाज में एक्सपेंड हो रहा है। इस डेवलपमेंट के साथ हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं। कतर में हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी का स्कोप हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स तक लिमिटेड नहीं। इस फील्ड में डिजिटल सिस्टम्स, हेल्थ केयर डेटा, रिसर्च, इनोवेशन और साइबर सिक्योरिटी जैसे एरियाज भी इम्पोर्टेंट हैं। मॉडर्न हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंक्रीजिंगली डिजिटल सिस्टम्स यूज कर रही हैं। इन सिस्टम्स में शामिल हो सकते हैं पेशेंट रिकॉर्ड्स, डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज, ऑपरेशनल मैनेजमेंट सिस्टम्स और हेल्थ केयर डेटा एनालिसिस। जब हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस डिजिटल सिस्टम पर ज्यादा डिपेंड करते हैं तो उन्हें ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है जो इन सिस्टम्स को अंडरस्टैंड और मैनेज कर सकें। तो आज के एपिसोड में हमने हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी करियर्स के बारे में डिटेल से बात की। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था कि क्या आप ऐसे करियर में काम करना पसंद करेंगे जो टेक्नोलॉजी को लोगों की हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के साथ कंबाइन करती हो। उम्मीद है आज के एपिसोड के बाद आपको इस सवाल का जवाब देने में आसानी होगी। आज हमने सीखा कि हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोगों की वेलबींग और हेल्थ केयर में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। हमने हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट के बारे में जाना जो हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को मैनेज और इम्प्रूव करते हैं। हमने टेली हेल्थ कोऑर्डिनेटर्स के रोल को समझा जो रिमोट हेल्थ केयर सर्विसेज को ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं। हमने मेडिकल टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट के बारे में बात की जो एडवांस्ड हेल्थ केयर इक्विपमेंट और सिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं। हमने डिजिटल हेल्थ कंसल्टेंट का रोल देखा जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस में गाइड करते हैं। हमने क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट के बारे में जाना जो हेल्थ केयर डेटा को एनालाइज करके ट्रेंड्स और यूजफुल इंसाइट्स आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। और हमने हेल्थ केयर साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के रोल को समझा जो सेंसिटिव मेडिकल इंफॉर्मेशन और डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर को किस तरह ट्रांसफॉर्म कर रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस के बावजूद एक बात हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगी, हेल्थ केयर में इंसान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कंपैशन, एम्पथी, कम्युनिकेशन, क्लिनिकल जजमेंट और इथिकल डिसीजन मेकिंग की वैल्यू फ्यूचर में भी रहेगी। इसलिए अगर आप हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी सीखें लेकिन ह्यूमन स्किल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाएं। और कतर में रहने वाले यंग लोगों के लिए हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी एक इंटरेस्टिंग फ्यूचर करियर एरिया हो सकती है। साइंस और टेक्नोलॉजी में अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें, डिजिटल स्किल्स डेवलप करें, इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हासिल करें और सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग को कभी स्टॉप ना करें क्योंकि फ्यूचर उन्हीं लोगों का होगा जो चेंज को समझने, सीखने और उसके साथ एडेप्ट करने के लिए रेडी होंगे। फ्यूचर करियर के आज के एपिसोड में हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते हम एक्सप्लोर करेंगे एक और एक्साइटिंग फील्ड जो कल के वर्कफोर्स को शेप कर रही है, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन करियर। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग और फ्यूचर के करियर्स के लिए खुद को प्रिपेयर करते रहें। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे मावर और आप सुन रहे थे फ्यूचर करियर। आज तक के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। No.
1: from one hit's music.

0: एनीवेयर।
1: यस, एनीटाइम, एनीवेयर।
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107।
2: FM 107।
0: लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ।

Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: हाँ तो आंखों में है अब भी, फिर भी उनकी ताबीरों से दिल डरता है।

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: FM 107 टाइम चेक।

0: चेक चेक चेक टाइम चेक। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए शाम के 4:01, यानी ये वक्त हो चला है।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: हाँ जी, तो मेरी देसी ऑडियंस क्या हाल चाल है, वेलकम है बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर। द रिक्वेस्ट शो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। क्या बात है, ये पूरा एक घंटा सिर्फ आपका और मेरा होता है जहाँ पर हम हिट गानों को एंजॉय करते हैं, लेकिन वो गाने सिर्फ और सिर्फ हमारे फेवरेट्स होते हैं। तो आज की जो थीम है वो बड़ी कमाल की है। आई नो आप सब म्यूजिक लवर्स हैं और कोई ना कोई गाना ऐसा होता है जो आप लाजमी गुनगुनाते ही गुनगुनाते हैं, और जब भी अपनों के बीच बैठे होते हैं या बर्थडे पार्टीज होती है या कुछ होते हैं, ये बड़ा ट्रेंड है कैरियोके करना, यानी कि म्यूजिक पर अपनी आवाज़ में गाने गाना। तो वो कौन सा गाना है जो कि आपको हमेशा पसंद आता है कि जब भी आपको कोई बोले कि ज़रा गा के बता दो तो आप फटाफट गाना शुरू कर देते हैं, एंड वो सारे लिरिक्स एकदम हार्ट टू हार्ट आपको एकदम रटे हुए हैं वर्ड बाय वर्ड। हाँ, तो वो कौन सा गाना है, कम ऑन, आज आपको ये बताना है आपका फेवरेट कैरियोके सॉन्ग, कि कोई आपको कभी कह दे कि चलो ये गा के सुना दो तो आप तुरंत गा देते हो, हाँ वो गाना कौन सा है। डू शेयर विद अस, अपनी मेमोरी शेयर कर सकते हैं, अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, अपने डेडिकेशन शेयर कर सकते हैं, या ये बता सकते हैं कि ये गाना मैं हमेशा गुनगुनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो डू शेयर 666-2107 पर अपने नाम के जरिए, या फिर हमारे FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़िए, आरजे अमिता के सोशल मीडिया पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। और अभी हमारे शो का पहला गाना वो गाना है, ये आशिकी 2 फिल्म का गाना है। जब 2013 में ये फिल्म रिलीज हुई, आई शुड टेल यू वर्ल्ड वाइड, ठीक है, सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान में नहीं लेकिन वर्ल्ड वाइड इस गाने पर लोगों ने अपनी आवाज दी। यस, एंड द सॉन्ग इज, समझ ही गए होंगे, तुम ही हो। सो लेट्स एंजॉय टुगेदर, स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: यह जनाब बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। द रिक्वेस्ट शो चल रहा है और आज की थीम बड़ी सिंपल है भाई। वो गाने आपको रिक्वेस्ट करने जो आप कभी भी गुनगुना सकते हो, चाहे घर की कोई गैदरिंग हो, कोई बर्थडे पार्टी हो, और वो गाना आपको बिल्कुल वर्ड्स बाय वर्ड्स पूरी तरह से याद है। और जब भी कोई आपसे कहता है कि चलो गा के सुना दो, तो आप पीछे नहीं हटते हो। यस एग्जैक्टली, उन्हीं गानों की रिक्वेस्ट करनी है 6622107 6622107 पर, या फिर चाहे तो आप हमारे FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या आरजे अमिता के सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें जो रिक्वेस्ट आई है किशोर कुमार के गाने की रिक्वेस्ट है। उस्मान जी का हैप्पी वाला बर्थडे है, सो बहुत सारी मुबारकबाद आपको जन्मदिन की, आपके बर्थडे की, और हम दुआ करते हैं कि आप हमेशा खुश रहे, खुशहाल रहे। सो हैप्पी बर्थडे उस्मान जी। एंड अनफॉर्चुनेटली जिस गाने की उन्होंने रिक्वेस्ट की है विद सम रीज़न, हम उसे प्ले नहीं कर सकते, बट क्योंकि बर्थडे है तो हम आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। सो यहाँ पर हम शान फिल्म का गाना आपके लिए प्ले करेंगे, जानू मेरी जान, एंड आई एम श्योर कि आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे। सो हैप्पी वाला बर्थडे टू यू। और उसके बाद मुमताज अहमद की रिक्वेस्ट है, एंड दिस इज द सॉन्ग वो अक्सर रिक्वेस्ट करते आए हैं, एंड आज हम उनके लिए खास तौर से इस गाने को प्ले करेंगे अलका याग्निक की आवाज में, राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गाना। एंड आई एम वेरी सर्टन ये गाना भी जब रिलीज हुआ तो हर कोई इसे गुनगुनाता ही रहा। तो आज वो सारे गाने प्ले होंगे FM 107 पर जो आप अक्सर गुनगुनाते हैं। तो ज़रूर शेयर करें अपनी रिक्वेस्ट 6622107 पर अपने नाम के साथ अपने डेडिकेशंस, एंड लेट्स एंजॉय दिस ग्रेट कॉम्बिनेशन किशोर कुमार और रफ़ी साहब का। स्टे ट्यून्ड।

0: Wake up! हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
2: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ।
0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो A for Amita ke saath, only on FM 107. Dil se desi.
3: Ya janab, bahut bahut istiqbal hai aap sabhi ka on FM 107 par. क्या कहना, द रिक्वेस्ट शो पर बड़े कमाल कमाल की रिक्वेस्ट आई हुई है, क्योंकि आज का थीम बड़ा सिंपल है बॉस। ये है थीम कि वो कौन से गाने हैं जो अगर आपको कभी गाने के लिए बोल दिए जाएं तो आप यूं खड़े होकर फटाफट गाना शुरू कर दोगे और वो गाने आपको बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड याद है, आपके फेवरेट कैरियोके सॉन्ग्स। यस, तो जरूर शेयर करें 666-22-107 पर, या आप हमारे एफएम 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े, या आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ कर मतलब बता सकते हो, ठीक है। तो अभी रिक्वेस्ट आई है मोहम्मद हुसैन की, और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत एकदम सटल सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है, और कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल का है, और ये दोनों ही मेरे फेवरेट सिंगर हैं, आतिफ असलम एंड नुसरत फतेह अली खान साहब। आइए जरा इनके इस कॉम्बिनेशन को एंजॉय करें। सानू एक पल, और बिल्कुल कहते हैं ना एक नए अंदाज में ये गाना, मतलब है तो पुराना लेकिन सुनने में बड़ा प्यारा लगता है क्योंकि इसके बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं। सो आतिफ असलम एंड नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ में ये गाना हम सुनेंगे, और उसके बाद एक गाना बड़ा शानदार है जिसकी शूटिंग सिर्फ 2 दिन में की गई थी वेनिस में, एंड जो क्रू भी था वो भी बहुत कम था, सिर्फ 6 लोगों के साथ मिलकर इस पूरे गाने का वीडियो बना, एंड ये रिक्वेस्ट की है अमीर रियाज ने, और गाना है यस जुबिन नौटियाल की आवाज में। डेफिनेटली ये गाना भी आपकी राहों में पूरा पूरा आ रहा है, और आपका फेवरेट गाना वो कौन सा है जो कि आप कभी भी गुनगुना सकते हैं, योर कैरियो के फेवरेट सॉन्ग, जरूर बताएं 666-22-107 पर अपने नाम के साथ अपने डेडिकेशन भेजें, और अभी बने रहे FM 107 पर दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
3: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं मगर ईमान हमेशा जीतता है। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
2: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
4: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें। हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
5: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
6: हाँ जनाब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर। भाई आज की थीम बड़ी कमाल की हमारे द रिक्वेस्ट शो की, वो कौन से गाने जो आप कभी भी गुनगुना सकते हैं, मतलब कैरियो के नाइट्स हो, बर्थडे सेलिब्रेट।

वाइब्रेशंस हो, मतलब आपको बोला जाए गाओ और आप फटाफट गाने लगते हो. हाँ, तो कौन से वो गाने? आज उसी थीम पर द रिक्वेस्ट शो पर आपकी रिक्वेस्ट ली जा रही है. तो शेयर कीजिए 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ अपनी डेडिकेशन या अपनी स्टोरीज भी बता सकते हो कि आप कोई कैरियोके गाना गा रहे थे एंड सडनली आप लिरिक्स भूल गए, या फिर आपके दोस्तों ने आपको लिरिक्स भुलाने की कोशिश की लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी. सो डू शेयर विद अस, ठीक है. अभी हम अगली रिक्वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं. मिस्टर खान की रिक्वेस्ट है एंड राहत फतेह अली खान एंड श्रेया घोषाल की आवाज़ है. बॉडीगार्ड फिल्म का गाना है ये. म्यूजिक सुनकर ही हम समझ जाते हैं कि कौन सा गाना है कि नहीं. सलमान खान, करीना कपूर, बड़ा क्यूट कॉम्बिनेशन था. हाँ, तो ये गाना हम पूरा पूरा सुनाएंगे. और उसके बाद मोहम्मद फयाज की रिक्वेस्ट है, जुबिन नौटियाल एंड असीज कौर की आवाज़ का ग्रेट कॉम्बिनेशन. फिल्म का नाम है शेरशाह एंड द सॉन्ग इज राता लंबिया, जो कि जब 2021 में रिलीज हुआ तो भाई ये तो बिल्कुल वायरल सॉन्ग बन गया. चलिए, ये दोनों ही गाने आपकी राहों में आ रहे हैं और आप भी सोचिए कि आपको कौन सा गाना सुनना है, कौन सा आपका कैरियोके हिट है जिसे आप कभी भी गुनगुना सकते हैं. शेयर करें 6622107 पर अपने नाम के साथ और अभी बने रहें FM 107 पर दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: हाँ जनाब, वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप। देखो भाई, मैं हूँ आपकी एफ और अमिता द रिक्वेस्ट शो पर। आज की थीम बड़ी सिंपल है और सादी सी थीम है कि भाई कौन से वो गाने हैं जो आप बस गुनगुनाना पसंद करते हैं। आपको कोई बोल दे बस गा दो, आप यूं ही गा देते हो। एंड आई कैन सी कि हमारे लिसनर्स को अभी जिस तरह की रिक्वेस्ट आई हुई है कि हर कोई एकदम से आराम आराम से वाले गाने, यानी कि सिंपल स्लो मूव वाले, या यूं कहे मतलब ऐसे गाने कि जो हौले हौले से गाए जा सकें, उनकी रिक्वेस्ट की है। अभी मैं वेट कर रही हूँ कि कोई ऐसा तड़कता भड़कता गाना आए जिसकी रिक्वेस्ट आए जहाँ मुझे लगे कि हाँ इस गाने में आपने जान डाल दी होगी। वैसे नहीं, आप सभी की रिक्वेस्ट बहुत प्यारी है, बहुत स्मूथ गानों की रिक्वेस्ट आई हुई है। अवेस की रिक्वेस्ट है जो कि सुनना चाहते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गाना, एंड द सॉन्ग इज कभी जो बादल बरसे। आय हाय, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग जैकपॉट मूवी का। सो डेफिनेटली ये गाना हम आपके लिए प्ले करने वाले हैं, मतलब ये वो गाना है जो आप कभी भी गुनगुना सकते हो। हाँ, एंड देन कम्स अब्दुल की रिक्वेस्ट, एंड व्हाट अ सॉन्ग। द सॉन्ग इज

0: मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। मोहब्बत चीज ही ऐसी होती है कि नहीं, मतलब चाहे जितने भी बैरियर्स लग जाए, रिस्ट्रिक्शंस लग जाए, और अगर दिल ने कुछ ठान लिया है तो वो पूरा करता है कि नहीं। सो डेफिनेटली ये गाना भी पूरा पूरा आपकी राहों में आएगा। एंड इसी के साथ क्विज टाइम पर जरा हम आपका फिल्मी नॉलेज चेक कर लेते हैं।
1: क्विज टाइम।
0: हाँ, तो क्विज टाइम पर आज इस बड़े ही पॉपुलर गाने को आपको पहचानना है जिसकी धुन बजते ही हर कोई इसे गुनगुनाता है।
2: उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं।
0: जल्दी से गैस करें और जल्दी जल्दी हमें बताएं कि ये गाना कौन सा है। 6622107 पर, 6622107 पर। एंड आई कैन सी कि मेरी जो FM 107 की टीम है, जो हमारे स्टूडियो के उस पार बैठती है, दे ऑल्सो नो इट कि कौन सा गाना है, यानी वो भी झूम रहे हैं। सो या आगे बढ़ते हैं और जो क्विज टाइम पर हमने सवाल पूछा उसका तो जवाब बताएंगे, लेकिन अभी आपकी रिक्वेस्ट प्ले करेंगे। सो एंजॉय अरिजीत सिंह की आवाज़ में। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: यस जनाब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। द रिक्वेस्ट शो का बिल्कुल आखिरी पड़ाव चल रहा है और हमारे काफी सारे जो रिक्वेस्ट हैं वो प्ले नहीं हो पाए। हमारे लिसनर्स कह रहे हैं अमिता हमारी रिक्वेस्ट का क्या, तो मैं कहूँगी भाई देखो हर दिन ये शो होता है वीक डेज में, शाम 4 बजे से मैं आपके साथ रहती हूँ और अलग अलग थीम होती है। सो डेफिनेटली अगर आज वो मौका नहीं मिला तो कल वो मौका मिल सकता है, ठीक है? तो जरूर हमारे साथ बने रहें। एंड मैंने आपसे क्विज टाइम पर कहा था कि गाना पहचानो भाई, ये गाना वो है जिसकी धुन बजते ही हर कोई गुनगुनाता है। तो उदित नारायण एंड साधना सरगम की आवाज है, बड़ा ही शानदार सा गाना है। क्या पता है मुझे कौन सा गाना है? पहला नशा जो जीता वही सिकंदर फिल्म का, और इस फिल्म में स्पेशली ये गाना एक आइकॉनिक सॉन्ग बन चुका है। ऐसा गाना जिसे कोई कभी नहीं भूल पाया, एंड स्पेशली फेमस बॉलीवुड की कोरियोग्राफर फराह खान का दिस वॉज डायरेक्टोरियल डेब्यू। इनफैक्ट उदित नारायण जी के लिए भी कहा गया कि ये गाना उन्होंने चुटकियों में गा दिया, मतलब नॉर्मली जब गाने गाते हैं तो रिहर्सल्स होती हैं, ये

होता है वो होता है, बट ही डिड इट वेरी क्विकली. और इस गाने को जिन्होंने जल्दी जल्दी से गैस किया है उनके नाम है हिशाम नूर, मोहम्मद यूसुफ खान, प्रिंसन सबीर एंड

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

नजर आता है जिसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट करने वाला, मिसबिहेव करने वाला, अटेंशन सीकर, गुस्से वाला बच्चा या कई बार लेजी। कभी कभी बच्चा सिर्फ इसलिए जिद करता है क्योंकि जिद करने पर पेरेंट्स उसकी तरफ ध्यान देते हैं, उसे रिएक्शन का एक सॉलिड रीजन मिलता है, उसे रिएक्शन भी मिलता है, बच्चों को पेरेंट्स की तवज्जो भी शायद मिल जाती है और बच्चा ये समझता है कि पॉजिटिव अटेंशन नहीं मिला तो ना सही नेगेटिव ही सही। और इस तरह से बच्चे जो हैं वो इस लाइन को पावरफुली अडॉप्ट करते हैं। अब ये भी मैं आपको समझाना चाहूंगी कि इमोशनल नेगलेक्ट क्या है। लोग अक्सर समझते हैं कि नेगलेक्ट का मतलब सिर्फ खाना ना देना या फिर बेसिक नीड्स को पूरा ना करना है, लेकिन इमोशनल नेगलेक्ट उससे बहुत ही मुख्तलिफ चीज है। एक बच्चा एक्सपेंसिव स्कूल में पढ़ रहा है, उसके पास टॉयज है, गैजेट्स हैं, हर फिजिकल फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी वो इमोशनली नेगलेक्टेड फील करता है। इमोशनल नेगलेक्ट तब होता है जब बच्चे की फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस ना मिले, उसकी बात ना सुनी जाए, उसको इमोशनल सपोर्ट ना मिले, पेरेंट्स फिजिकल प्रेजेंट हो लेकिन इमोशनली एब्सेंट हो। आजकल ये मसला बहुत कॉमन हो चुका है। घर में सब मौजूद होते हैं लेकिन हर शख्स अपने स्क्रीन में भी होता है। बच्चा भी मोबाइल पर, पेरेंट्स भी मोबाइल पर, कम्युनिकेशन खत्म, कनेक्शन कमजोर और इमोशनल डिस्टेंस बढ़ते चले जाते हैं। अब समझने की ये भी जरूरत है कि बच्चा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर क्यों अडॉप्ट करता है। देखिए, हर इंसान को ना अटेंशन की जरूरत होती है। ये सिर्फ बच्चों के साथ जोड़ना काफी नहीं है, यही जरूरत बच्चों में और भी ज्यादा होती है क्योंकि बच्चे अपनी आइडेंटिटी पेरेंट्स के रिस्पॉन्स से बनाते हैं। जब मम्मी उसकी ड्राइंग देखती है तो वो खुश होती है, जब पापा उसके अचीवमेंट्स अप्रिशिएट करते हैं तो उसे कॉन्फिडेंस मिलता है, लेकिन जब रिपीटेडली इग्नोर किया जाए तो बच्चा अटेंशन ग्रैब करना सीख लेता है। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के कुछ एग्जाम्पल्स जो हमें और आपको समझ में आते हैं वो ये कि हर वक्त बोलना, रोना, ड्रामा करना या चीजें तोड़ना, भाई बहन को तंग करना, कई बार झूठ बोलना और कई बार बीच में बात को काट देना। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि ये सिर्फ अटेंशन के लिए किया जाता है, लेकिन असल बात अटेंशन नहीं रिएक्शन है। ये बच्चे का वो रिएक्शन है जो उसे नेग्लेक्ट करने की सूरत में यहाँ पर दिखाना पड़ता है। अब सवाल ये है कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? जवाब, उसे अटेंशन की भूख है। पर हर बच्चा इमोशनली नरिश्ड रहना चाहता है। देखिए, आज के मदर्स भी अगर हम देखें, पेरेंट्स की तो बात कर ही रहे हैं, मदर्स भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर रही होती हैं। कई मदर्स जो है अपने जॉब्स में होती हैं, उनको होम को मैनेज करना है, सोशल कमिटमेंट्स हैं, फैमिली ऑब्लिगेशंस हैं, कम्युनिटी इवेंट्स और कई दफा सेल्फ केयर की भी जरूरत होती है। और इसमें कोई राय तो है नहीं, हर मदर को अपनी आइडेंटिटी और अपनी पर्सनल लाइफ का हक है, लेकिन चैलेंज तब पैदा होता है जब बच्चा कॉन्स्टेंटली सेकेंड प्रायोरिटी फील करे, जब उसे लगे कि मम्मी फोन पर ज्यादा बिजी होती हैं, मम्मी फ्रेंड्स के साथ ज्यादा खुश होती हैं, मम्मी को मेरी बात सुनने का टाइम ही नहीं मिलता। ये फीलिंग्स बच्चे के अंदर रिसेंटमेंट क्रिएट कर सकती है। वो डायरेक्टली एक्सप्रेस तो नहीं करेगा लेकिन उसका बिहेवियर बदल सकता है। वहीं पर आजकल देखा गया है कि अलग तरीके का वर्क प्रेशर है और ये वर्क प्रेशर दोनों तरफ से है, मेरा मतलब है मदर्स एंड फादर्स, और इस वर्क प्रेशर का बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। आज हर घर में एक माहौल ही ऐसा सेट है, माँ बाप दोनों स्ट्रेस में हो सकते हैं, कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस हो, डेडलाइंस हैं या फिर टारगेट्स अचीव करने, बिजनेस का प्रेशर है, मीटिंग्स हैं, कई बार लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, और पेरेंट्स के लिए ये सारी बातें तो नॉर्मल है, लेकिन बच्चा इन कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझता। उसको सिर्फ और सिर्फ इतना समझ में आता है कि मम्मी मेरे पास नहीं बैठती, पापा मेरे साथ गेम नहीं खेलते। बच्चा लव को वक्त से मेजर करता है, उसके लिए क्वालिटी टाइम सब कुछ होता है। कभी कभी पेरेंट्स गिल्ट में गिफ्ट्स दे देते हैं, लेकिन बच्चे को टॉय से बहुत ज्यादा पेरेंट्स की प्रेजेंस चाहिए होती है। देखिए, अब बात करते हैं सिम्टम्स की भी। कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे आपको समझ में आ सकता है कि बच्चा जो है वो इमोशनल डिस्ट्रेस का शिकार है? अब कुछ कॉमन सिम्टम्स या साइंस हैं जिसमें आप कह सकते हैं एग्रेसिव एंगर, हर बात पे गुस्सा कर रहा है, बच्चे का चीखना, चिल्लाना, चीजें फेंकना, ये कहीं ना कहीं शो करता है कि बच्चा जो है वो इमोशनल डिस्ट्रेस का शिकार है। वहीं पर बच्चे का जिद्दी होना, स्टबर्ननेस, हर बात पर नो, कंस्ट्रक्शंस रिफ्यूज करना, इंस्ट्रक्शंस को रिफ्यूज करना, कंस्ट्रक्टिव वे में बात ना करना, ये सारी चीजें दिखाती हैं।
वहीं पर कुछ बच्चे जो हैं वो इमोशनल डिस्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं और कॉन्स्टेंटली उनकी आदत होती है कि वो सेंसिटिव होकर बात बात पर या छोटी छोटी बातों पर रोने लगते हैं। ये फ्रीक्वेंटली क्राई बता रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मसला है। वहीं एक और तरीके का इमोशनल डिस्ट्रेस नजर आता है, कुछ बच्चे आइसोलेट कर लेते हैं खुद को, अकेले खुद रूम में रहना, कम बोलना, फैमिली एक्टिविटीज हैं तो कम्प्लीटली अवॉइड करना, ये भी सिम्टम्स हैं। वहीं कुछ बच्चों के सिम्टम्स उनकी जो है वो पढ़ाई लिखाई में नजर आते हैं, यानी लगातार लो ग्रेड्स, पुअर फोकस, टीचर्स की बहुत सारी कम्प्लेन्स, तो ये सारी चीजें भी स्कूल में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं और इसका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्ट्रेस से हो सकता है। हो सकता है हेल्दी कंपटीशन करते हैं, लेकिन होता है तो बच्चों में, सिबलिंग्स में कंपटीशन के चलते एक जेलसी वाली फीलिंग जो है वो डेवलप हो जाती है, कई बार अटेंशन की फाइट होने लगती है। और वही बच्चा जो है कई बार आप देखिए कि रेस्टलेसनेस का शिकार है, डर बहुत ज्यादा है, जल्दी बहुत ज्यादा ओवरथिंक करता है, एंग्जायटी का शिकार है, तो ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो कहीं ना कहीं बताते हैं कि बच्चा इमोशनल डिस्ट्रेस का शिकार है। अब स्कूल और बच्चों का बिहेवियर, इसमें भी एक कनेक्शन दिखाई देना या समझ में आना जरूरी है। कभी कभी घर का स्ट्रेस स्कूल बिहेवियर में नजर आता है। टीचर कहती है कि बच्चा क्लास में कंसंट्रेट नहीं करता, बहुत डिस्टर्ब करता है, हर वक्त अटेंशन मांगता है, लेकिन मुमकिन है कि असल प्रॉब्लम एकेडमिक ना हो, असल प्रॉब्लम इमोशनल हो। जब बच्चा इमोशनली अपसेट होता है तो ब्रेन का फोकस सिस्टम अफेक्ट होता है, उसके लिए लर्निंग मुश्किल हो जाती है। इसीलिए स्कूल कंप्लेंट्स को सिर्फ डिसिप्लिन इशू समझना ठीक नहीं, उसके इमोशनल बैकग्राउंड को भी देखना चाहिए। वहीं पर कई बार ये भी देखा गया है कि बच्चे जो हैं वो आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, और ये एक बड़ा कॉमन सी बात है, भाई बहन में आपस में लड़ाई होना, एक दूसरे के साथ डांट डपट, छीना झपटी, कई बार मैं कहूंगी नॉर्मल भी है, लेकिन अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि ये दोनों हर वक्त लड़ते रहते हैं, और ये लाइन बार बार रिपीट करने से उनकी जो छोटी मोटी आपस में बातचीत है वो बातचीत जो उन्हें लगता है कि एक बड़ी लड़ाई है, मसला लड़ाई नहीं है, असल मसला है कंपटीशन, कंपटीशन फॉर अटेंशन। हर बच्चा चाहता है कि मम्मी मुझे ज्यादा प्यार करें, पापा मुझे ज्यादा नोटिस करें। अगर किसी बच्चे को लगता है कि दूसरे सिबलिंग्स को ज्यादा अटेंशन मिल रही है तो बिहेवियरल इश्यूज शुरू हो सकते हैं या हो जाते हैं। वहीं पर मोबाइल पेरेंटिंग भी एक रीजन है। आजकल एक नई टर्म यूज की जाती है, मोबाइल पेरेंटिंग, दैट वी ऑल नो नाउ। ये टर्म, परेशान हो तो मोबाइल दे दो, रोए तो टैबलेट दे दो, खामोश करना हो तो कार्टून लगा दो, टेम्परेरी रिलीफ हमें और आपके लिए, हमारे और आपके लिए जरूरी होता है और मिल भी जाता है, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म इमोशनल कनेक्शन यहाँ पर वीक होता है। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी पेरेंट का रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकती। बच्चे को स्क्रीन के साथ साथ ह्यूमन कनेक्शन भी चाहिए, है ना। देखिए कितनी सारी चीजें हैं जो हमें और आपको समझ में आई कि हर बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्ट्रेस का शिकार है, जिसके इतने सारे सिम्टम्स भी मैंने आपको बताए, और हमने और आपने ये जाना कि कई बार हमारी मोबाइल पेरेंटिंग भी शॉर्ट टर्म में रिलीफ दे रही है, बट लॉन्ग टर्म में उसके जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस हमें ही फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि हर जिद के पीछे क्या होता क्या है, रीजंस क्या है। पेरेंट्स का सबसे कॉमन स्टेटमेंट है कि मेरा बच्चा बड़ा जिद्दी है, है ना, आप भी कहते हैं, आप भी कहती हैं, है ना। मगर हर जिद के पीछे कोई रीजन होता है, इसे तलाशने की कोशिश की, शायद हमारा ध्यान ही नहीं गया। कभी नीड फॉर कंट्रोल, कभी फीलिंग अनहर्ड, कभी अटेंशन, कभी फ्रस्ट्रेशन, कभी थकान। दोस्तों अगर हम सिर्फ और सिर्फ जिद को देखेंगे तो मसला सॉल्व कभी भी नहीं होगा, हमें इसके रूट कॉज को समझना होगा, पनिशमेंट या फिर करेक्शन। देखिए पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स अक्सर कहते हैं कि कनेक्शन बिफोर करेक्शन, यानी पहले बच्चे के साथ इमोशनल कनेक्शन एस्टैब्लिश करें, फिर उसे करेक्ट करें। अगर बच्चा अपसेट है और हम फौरन पनिश कर देते हैं तो उसकी इमोशनल वॉल और मजबूत हो सकती है, लेकिन अगर हम पहले समझें तुम अपसेट क्यों हो, तुम्हें किस बात ने हर्ट किया, तो बच्चा हमारे साथ कोऑपरेट करने लगेगा। इसके कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो हो सकता है वो ये कि डेली बच्चे के साथ वक्त गुजारें, रोज सिर्फ 20 से 30 मिनट, और ये वो मिनट्स हो जब ना फोन हो, ना इंटरप्शन हो, ना मल्टीटास्किंग हो रही हो, सिर्फ बच्चा और आप। ये छोटा सा वक्त रिलेशन को बिलीव मी ट्रांसफॉर्म कर सकता है।
वहीं पर एक और चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है एक्टिव लिसनिंग. सिर्फ सुनना नहीं, दिल से सुनना, बिना जज किए. दिस इज व्हाट वी से एक्टिव लिसनिंग. वहीं जब बच्चे की बात आप सुन रहे हैं तो आई कॉन्टैक्ट कीजिए. जब बच्चा बात करे तो उसकी तरफ देखिए. ये रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस का सिग्नल है. वहीं रोज कम अज कम एक पॉजिटिव चीज जरूर ढूंढे, तलाशे अपने बच्चे के अंदर और उसे अप्रिशिएट कीजिए. वहीं कहीं ना कहीं फिजिकल अफेक्शन भी बहुत मैटर करता है. जैसे हग है, पैट कर देना शोल्डर पे, हाथ को होल्ड करना, शेक करना या इमोशनल बॉन्डिंग को मजबूत बनाते हैं. ये जेस्चर्स आपको दिखाने ही चाहिए. वहीं पर बच्चों को इमोशंस का नाम भी सिखाइए. ये मत कहिए कि रोना बंद करो, बल्कि कहिए कि मुझे लगता है कि तुम दुखी हो. उसे पता होना चाहिए इमोशंस के नाम क्या हैं. तुम नाराज लग रहे हो, तुम्हें बुरा लग रहा है. जो इमोशंस आइडेंटिफाई होते हैं तो उसे मैनेज करना आसान हो जाता है. देखिए, स्ट्रॉन्ग फैमिली रिचुअल्स क्रिएट करना भी जरूरी है. जैसे फैमिली टाइम, फैमिली डिनर, वीकेंड ब्रेकफास्ट, स्टोरी नाइट, प्रेयर टाइम, गेम टाइम, इवनिंग वॉक. ये एक्टिविटीज बच्चे को सिक्योरिटी और बिलोंगिंग देती है और ये फीलिंग अनयूजुअल बिहेवियर को नेचुरली कम कर देती है. दोस्तों, मेरा आप सबके लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट वाला मैसेज है. आप परफेक्ट मत बनिए, ना परफेक्ट बनने की कोशिश कीजिए. परफेक्ट बनना जरूरी भी नहीं है, लेकिन हाँ, इमोशनली अवेलेबल होना, प्रेजेंट होना, ये बहुत जरूरी है. बच्चा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भूल सकता है, लेकिन वो हमेशा याद रखता है कि किसने मेरी बात सुनी, किसने मुझे हग किया, किसने मेरी फीलिंग्स को वैलिडेट किया, कौन मेरे पास मेरे बुरे टाइम में खड़ा था. इसीलिए पेरेंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है लव, डिसिप्लिन के साथ और आपका टाइम फुल तवज्जो के साथ. आप भले से कितनी भी फैसिलिटीज देते रहे, मैटर नहीं करती. आपकी प्रेजेंस, आपका कनेक्शन, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका क्वालिटी टाइम, ये वाकई भरपूर तरीके से मैटर करता है. चलिए मैं आपको अयान नाम के एक 9 साल के लड़के का किस्सा बताती हूँ. अयान 9 साल का एक प्यारा सा बच्चा. वो एक अच्छे घर में रहता था. उसके पास अच्छे खिलौने, अच्छे कपड़े, अच्छे स्कूल और हर चीज जो जरूरत की थी वो मौजूद थी. लेकिन एक चीज जिसकी कमी थी वो था वक्त. उसकी माँ अक्सर सोशल गैदरिंग्स, फोन कॉल, सोशल मीडिया में बिजी रहती. पापा

थके हुए होते और शायद सो जाते। अयान हर रोज स्कूल से आकर एक्साइटेड होता, मम्मी आज मुझे क्लास में स्टार मिला, टेबल लंच टेबल पर बैठकर दिखाने और बात करने की कोशिश करता। मम्मी मेरी बात सुन रही है ना? मम्मी का जवाब होता, हाँ हाँ सुन रही हूँ, लेकिन शायद उनका अटेंशन कहीं और, या कई बार बेटा बाद में, अभी मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ अभी सुनते हैं, और वो थोड़ी देर कभी खत्म ही नहीं होती। धीरे धीरे अयान अपनी बातें शेयर करना कम किया, उसे लगने लगा कि शायद उसकी बातें इम्पोर्टेंट ही नहीं है। और एक दिन स्कूल से कंप्लेन आई, टीचर ने कहा अयान क्लास में डिस्टर्ब करता है, दूसरे बच्चों को तंग करता है और काम पर फोकस नहीं करता। मम्मी परेशान हुई, यह अचानक कैसे हो गया? पापा ने उसे गुस्से में कहा, तुम इतने बदतमीज होते जा रहे हो, अब तुम्हें पनिश किया जाना चाहिए। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि अयान के दिल में क्या चल रहा है। अगले कुछ हफ्तों में उसका बिहेवियर और ज्यादा बदल गया, वो जिद्दी हो गया, कभी बहन से लड़ता, कभी जानबूझकर चीजें गिरा देता, हर रोज उसे डांट पड़ती और कई बार डांट के साथ पिटाई भी होती, लेकिन उसकी हरकतें रुकने की बजाय और बढ़ रही थी। एक शाम स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, टीचर ने बाकायदा बड़ा बड़ा नोट बनाया और लिखा कि पेरेंट्स का आना जरूरी है, पेरेंट्स मतलब मम्मी और पापा दोनों का आना। उन्होंने कहा अयान एक अच्छा बच्चा था, फिर ऐसा क्या हुआ है, जब मैं उससे अकेले बात करती हूँ तो वो बहुत मुझे समझदार लगता है। मम्मी और पापा दोनों जो इस पेरेंट्स मीटिंग में पहुंचे थे बड़े हैरान हो गए, फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। टीचर कुछ देर चुप रही, फिर बोली शायद वो आपका अटेंशन मांग रहा है, नेगेटिव अटेंशन भी बच्चों को पॉजिटिव अटेंशन से बेहतर लगता है अगर उन्हें बिल्कुल अटेंशन ना मिले। ये सुनकर मम्मी और पापा दोनों ही सोच में पड़ गए। उस रात मम्मी अयान के कमरे में गई, अयान ड्राइंग बना, मम्मी उसके पास बैठ गई और पूछा क्या बना रहे हो। जब उनकी मम्मी की नजर ड्राइंग पे पड़ी तो उस बच्चे ने ड्राइंग में फादर और मदर की पिक्चर बनाने की कोशिश की, लेकिन इतना कंफ्यूजन था उसके माइंड में कि वो पिक्चर जो थी एक स्क्रिबल फॉर्म में नजर आ रही थी। मम्मी ने देखा कि वो कंफ्यूज्ड है, उसने इस बार मम्मी की इस धीमी आवाज का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कोने में जाकर वापस से कुछ और बनाने लगा। यहाँ मम्मी की आंखों में शायद आंसू थे, पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि वो अपने बेटे को वो टाइम नहीं दे पा रही थी जो वो चाहता था, उसे खाना खिला देना वक्त पे, उसके स्कूल यूनिफॉर्म तैयार कर देना वक्त पे, होमवर्क किया कि नहीं ये पूछ लेना ये जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारियां इससे बढ़कर है। असली जिम्मेदारी शुरू होती है कि आप कितना टाइम दे पाती हैं। अमूमन मैंने देखा है कि पेरेंट्स जो है वो कंप्लेन करते हैं, और स्पेशली मदर्स को देखा है कि हमारे जी 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, हम इतना टाइम तो नहीं दे सकते। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है, आप टाइम दे सकते हैं। टाइम कम है ये तो मैं नहीं मानूंगी, टाइम गुम हो रहा है ये समझना है, और ये गुम कहाँ हो रहा है। अब ये चीज भी समझना है, क्या मुझे मजा आता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमू फिरू, क्या मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो हूँ लंबी लंबी फोन कॉल्स पर लंबी लंबी बातें करूँ लोगों के साथ, क्या मैं दूसरों का हालचाल लेने में इतनी मसरूफ हूँ कि आज इसके घर कल उसके घर, और क्या मैं अपने बच्चे को टाइम उस तरह से दे ही नहीं पा रही हूँ। अगर ये सारे सवाल एकदम जेन्युइनली खुद से पूछे जाए तो शायद इनका जवाब मिले। क्या हमारे फादर्स जो है या जो पेरेंट्स है वो अपनी बिजी लाइफ को हथियार बना चुके हैं, या वो एक दीवार का काम कर रही है। फादर्स का भी रोल यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चे चाहते हैं कि फादर्स उनके साथ खेलें, बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा ही सही, वो चाहते हैं कि उनसे बात की जाए, बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा ही सही, कम से कम उनसे इतनी बात की जाए कि उन्हें ये महसूस हो कि हमारे घर में हमारी जरूरतों को पूरा करने के अलावा हमारी इमोशनल नीड्स को भी समझा जाता है। बच्चों को सिर्फ आपके कपड़े, खाना, टॉयज, स्कूल, अच्छे अच्छे फैंसी गैजेट्स ये नहीं चाहिए, बच्चे को चाहिए कि उसकी बात को सुना जाए, उसके साथ वक्त बिताया जाए। और जब ऐसा किया जाता है तो बच्चों के बिहेवियर में एक बहुत ही कमाल का पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन नजर आता है। बच्चा जब शरारत करता है तो हर बार मसला उसका बिहेवियर नहीं है, कभी कभी वो सिर्फ ये कह रहा होता है कि मुझे आपकी जरूरत है। क्वालिटी टाइम और इमोशनल कनेक्शन हर बच्चे की बुनियादी जरूरत है।

जिसे हमें और आपको समझना ही होगा। दोस्तों, आज हमने जाना कि अनयूजुअल बिहेवियर अक्सर बच्चों की इमोशनल नीड्स का सिग्नल होता है। जिद के पीछे लोनलीनेस हो सकती है, उससे के पीछे हर्ट फीलिंग्स हो सकती हैं, अटेंशन सीकिंग के पीछे कनेक्शन की जरूरत हो सकती है और मिस बिहेवियर के पीछे एक खामोश पुकार हो सकती है। प्लीज मुझे देखिए, मुझे सुनिए, मुझे समझिए। जब पेरेंट्स बच्चों को वक्त देते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करते हैं और उनके साथ इमोशनल बॉन्ड बनाते हैं, तो बहुत से बिहेवियरल इश्यूज या प्रॉब्लम्स नेचुरली कम होने लगते हैं। देखिए, याद रखिए, हर बच्चा बुरा नहीं होता, हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चा कुछ अलग तरीके से कहना चाहता है। शायद उसे आपके प्यार की जरूरत है, आपकी तवज्जो की जरूरत है। हर बच्चा बिलोंगिंग डिजर्व करता है। दोस्तों, आज की दुनिया ऐसी है जहां हम सब बहुत बिजी हो गए हैं। डेडलाइंस हैं, मीटिंग्स हैं, सोशल गैदरिंग्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, सोशल मीडिया है और इन सब के दरमियान अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे हमारे वक्त के मोहताज हैं। बच्चा महंगी बाइक या फिर लेटेस्ट टैबलेट्स को उतना याद नहीं रखेगा जितनी एक शाम उसने आपके साथ फैमिली के साथ गुजारी हो या पापा के साथ जो क्रिकेट खेला हो। वो महंगे टॉय भूल सकता है लेकिन सोने से पहले सुनाई गई कहानी कभी नहीं भूलता। वो नए फोन भूल सकता है लेकिन माँ की कही हुई बातें और जो प्यार है उसे नहीं भूलता। याद रखिए, बच्चे बड़ों की तरह बनने की कोशिश करते हैं। बच्चा एक पौधा है, पौधे को सिर्फ मिट्टी नहीं चाहिए, उसे धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए, तवज्जो भी चाहिए, मोहब्बत भी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह बच्चों को सिर्फ कपड़े, खाना पीना या उसकी और जो नीड्स है उन्हें पूरा करना ही इनफ नहीं है, उनके साथ इमोशनल कनेक्शन बनाएं। जब बच्चा नेग्लेक्टेड फील करता है तो वो अलग तरह से बिहेव करता है। उसके आंसू हमेशा आंखों से नहीं गिरेंगे लेकिन कई बार वो जिद की शक्ल में सामने आते हैं, कभी गुस्से की शक्ल में सामने आते हैं और कभी खामोशी की शक्ल में सामने आते हैं और कभी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर की सूरत में। आज जब आप घर जाएं तो सिर्फ एक काम कीजिएगा, अपने बच्चे के पास बैठेगा, मोबाइल साइड रखेगा और पूछेगा, आज तुम्हारा दिन कैसा था। हो सकता है वो सिर्फ 2 मिनट की बात करे, हो सकता है कि आपकी और उनकी बात 10 मिनट की हो जाए, लेकिन यकीन मानिए उसके लिए वो वक्त दुनिया की सबसे कीमती चीज होगी। क्योंकि बच्चे को, जैसे मैंने कहा, परफेक्ट पेरेंट्स नहीं चाहिए, उन्हें प्रेजेंट पेरेंट्स चाहिए। और जिंदगी का सबसे खूबसूरत इन्वेस्टमेंट बैंक अकाउंट में नहीं है बल्कि अपने बच्चों के दिल में किया जाता है। आज वक्त दीजिए वरना कल पछतावा भी वक्त को वापस नहीं ला सकता। यहाँ पर अगर आप और भी ज्यादा बच्चों के बिहेवियर को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कुछ मैं बुक्स भी आपके साथ जो है वो शेयर कर देती हूँ, लाइक द स्टोरी फैक्टर। बड़ी कमाल की बुक है साइमंस की, जिसमें बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड को क्रिएट करने में यूजफुल होंगी। वहीं मेड टू स्टिक, ये भी बहुत ही अच्छी बुक है, बड़ी पावरफुल बुक है। यहाँ पे आइडियाज दिए गए हैं जो अगेन यूजफुल हो सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं द हैबिट्स ऑफ गुड चाइल्ड स्टीफन्स की ये बुक, ये भी काफी यूजफुल हो सकती है। तो बस कोशिश ये करना है कि हमें अपने आप को हल्का फुल्का जिस भी अंदाज में चेंज कर सकते हैं चेंज करें, 10 से 15 मिनट या 20 मिनट जो भी आप निकाल सकते हैं वो अपने बच्चों के लिए जरूर निकालिए। दोस्तों, याद रखिए कि बचपन जो है वो सिर्फ उम्र का एक हिस्सा नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की बुनियाद होती है। बच्चे हमेशा लफ्जों में अपनी फीलिंग्स बयान नहीं करते, वो अपने अपने बिहेवियर से दिखाते हैं। अक्सर जिस बच्चे को हम प्रॉब्लम चाइल्ड समझते हैं वो असल में हर्ट चाइल्ड होता है। अगर इस बुनियाद में महत्व तवज्जो और इमोशनल सिक्योरिटी हो तो बच्चा मजबूत, पुरएतमाद और खुश मिजाज इंसान बनता है। लेकिन अगर वो अपने ही घर में नजरअंदाज महसूस करे तो उसके दिल के जख्म उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं। हर माँ और बाप अपने बच्चों के लिए बेहतरीन चाहते हैं लेकिन कभी कभी बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत पैसे, गिफ्ट्स या फैसिलिटीज की नहीं होती, उन्हें जरूरत होती है आपके वक्त की, आपकी मुस्कुराहट की, आपके वक्त की और आपके एहसास की। अगर घर जाकर सिर्फ इतना कहा जाए कि मैं तुम्हारे लिए अपना वक्त देना चाहता हूँ या मैं अपने बच्चे की आंखों में आंखें डालकर उससे बात करना चाहता हूँ, उसे महसूस करना चाहता हूँ, तो बच्चा अपने आप को सबसे ज्यादा खुश नसीब समझता है। क्योंकि बच्चे कल के लीडर्स हैं, आज की अमानत होते हैं और जो वक्त आज उन पर इन्वेस्ट किया जाता है वही कल उनकी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा बन

0: जाता है। इसीलिए अपना आज जो है वो अपने बच्चों को समझाने में, उनके साथ वक्त बिताने में गुजारे। रील्स और चीजें आती जाती रहेंगी, लेकिन ये वक्त एक बार चला गया तो शायद वापस ना आए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नाजिया और शहबाज अंसारी, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: Family matters, क्योंकि हर family matters.
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में, अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए, और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए, दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इंक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर.
1: FM 107 टाइम चेक.
2: हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू. एफएम 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का. टाइम फॉर द टाइम चेक हमारे एफएम 107 की स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 6:02 और ये शो है.
3: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
4: ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी.
2: है कोई अल्लाह का बंदा जो मुझे कार उधार दे पाए? भाई साहब अभी तक नहीं बनी यार, मैकेनिक के पास है. यह इतने लंबे टाइम तक मैकेनिक के पास रहती है कार, तो मैकेनिक के ऊपर तो गुस्सा आती है, कार के ऊपर दोबारा से आने लगती है कि यार तुम्हें इतना लंबा क्या टाइम लेना था यार सही होने के लिए. कभी कभार लगता है मुझे मैकेनिक लोग जानबूझ के टाइम लेते हैं ताकि ज्यादा पैसे हड़प पाए, है ना. सच बताना, अगर कोई मैकेनिक है तो सच बताना दिल खोल के. क्या कभी कभार ये करते हो आप लोग के यार ऐसा है फजील भाई काम थोड़ा ज्यादा है, और काम इतना ज्यादा भी नहीं होता. हालांकि मेरे वाले कार में है, मेरे को पता है, तीन काम है अलग अलग और तीनों बड़े काम है. भाई साहब माइलेज गिर गई 100, मतलब जो माइलेज वाला है वो एकलौता काम ऐसा है जो थोड़ा सा लो लेवल का काम है, लेकिन उसको सही किया जा

0: सकता है बस इंजेक्टर बदल के। भाई 100 किलोमीटर माइलेज कम हो गई एकदम से। अरे कैसे तुम्हारे अंदर ये, अब वो ऐसा भी नहीं है कि बाइक हो के टंकी के अंदर फूक फूक के चला लें आखिरी के जो पेट्रोल भरे हुए हैं। है तो कार लेकिन वो चल नहीं रही भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं कहा यार 100 किलोमीटर तो ज्यादा होता है, पहले फुल टंकी कराओ तो 600 कुछ तो किलोमीटर चलती थी, लेकिन अभी जो है चीचा कह रहा 500 से ऊपर नहीं चलूंगी। तो मैंने कहा तो फिर चेंज कराना पड़ेगा। अब इस चक्कर में ये गाड़ी खड़ी है, 4 दिन हो गए भाई, मैं कैब कर करके थक गया हूँ यार। जितने का पेट्रोल मैं 6 महीने तो ज्यादा हो गया, जितने का पेट्रोल मैं 6 हफ्ता चला लेता उतने का तो मैं कैब का लग गया यार। लेकिन इन सब के बीच एक मेरे को ईमानदारी से जवाब चाहिए। मैकेनिक भाई लोग अगर सुनने ले तो क्या ऐसा होता है कि साहब थोड़ा सा काम ज्यादा है और फिर जब काम पूरा हो जाए 3-4 दिन बाद के बाद के व्यवहार सर वो थोड़ा काम ज्यादा था, इस वजह से मेहनत ज्यादा लगी, लेबर ही ज्यादा लगी और 3 के बजाय 6 काम सही कर दिए, अब आपकी गाड़ी टनाटन चलेगी। करा 3 ही काम है और फिर पैसे जो है बढ़ा के मांग लिए। ईमानदारी से बताना ऐसा है क्या? बाकी 6:04 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और ये शो है अनप्लग्ड इवनिंग। मैसेज की तरफ बढ़ लेते हैं जरा।
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
2: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: अब जितने ईमानदार भाई हैं वो तो यही कहेंगे, कह रहे नहीं देते हो, ये तो ऐसा नहीं होता। और मुझे लगता है ईमानदारी तो यहाँ चल जाएगी क्योंकि एक बार अगर आप पकड़ में आ गए, बाकी क्योंकि आपका वाला थोड़ी मुल्क है ये, यहाँ पर एक बार अगर पकड़ में आ गए तो भाई बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मेरे साथ एक बार ऐसा किस्सा हुआ था लेकिन दूसरे मुल्क में, तो वो दूसरा मुल्क था उस पर तो भाई मैंने उल्टा 10,000 रुपये निकलवा लिए थे, मज़ेदार था भाई। मुझे पता चला ना उनने मेरी गाड़ी में छेड़छाड़ करी थी। फिलहाल जैस खान का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अल्लाह के बहुत बंदे हैं अपनी कार रेंट पर देने के लिए, रेंट पे भाई मेरी तस्वीर देख लो सोशल मीडिया पे जाके, मेरी शक्ल देख रहा हूँ मैं। अगर रेंट पे ही लेना होगा तो मैं कैब ना कर लूँ, रेंट का ज़्यादा खर्चा है यार उसका, मतलब एक हफ्ते का भी ज़्यादा खर्चा है, तो मैं बेहतर है कि कैब ही कर लूँगा यार। थोड़ा तो यार मेरे अंदर भी है क्या, है तो इंडियन ही आदमी ना यार, तो आप कितना भी, और इंडियन ऊपर से मिडिल क्लास, कितना भी कोशिश कर लो भाई, मैं तो अल्टरनेटिव ही ढूंढता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ फ्री में कोई दे देगा क्या। बाकी अगर जरूरत से ज्यादा लगेगा कि नहीं यार 1-2 हफ्ता तो फिर अपन ले लेंगे, लेकिन अभी कैब करना मेरे लिए ठीक है, मतलब घर से ऑफिस आ रहे फिर ऑफिस से घर, फिर बीच में अगर कोई काम पड़ रहा है तो देख लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है अगर कैब की जरूरत लग रही है। वैसे तो अच्छा हुआ कि एक एक हफ्ते का राशन रख लेता हूँ भाई, राशन के लिए बहुत भागना पड़ता है। बाकी यूसुफ भाई का मैसेज है, सलाम वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी वेंसडे इवनिंग, आपको भी हैप्पी वेंसडे इवनिंग मेरा भाई। जस खान के बाद एक और ये मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम फजील भाई, हाउ आर यू, किधर है फजील भाई?
3: मैं इधर ही हूँ ऑफिस में, कहीं नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि कार खराब है।
0: और ख़राब ही नहीं है कार ने, तो ये भी कहा कि भाई चलने का पैसा डबल लगेगा, 1 का डबल भाई। ये अनुराधा है, मेरी ज़िंदगी की अनुराधा बन गई थी मेरी कार, पहले फुल कराने पर टंकी अच्छी खासी चल रही थी भाई, 100 किलोमीटर तक ड्रॉप हो गया इसका माइलेज, मेरा दिमाग ख़राब हुआ। मैंने कहा अरे अनुराधा तुम डबल ले रही हो यार चलने का, कौन सी गाड़ी है भाई अज़हर पूछ रहे हैं। वो जो होती है ना जो सबके पास होती है, कतरी भाई लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, डेजर्ट में आराम से चली जाती है, चीखती चिल्लाती नहीं है, चुपचाप चलती है ना, और काम वाम नहीं देती है, लेकिन जब देती है तो फिर आपके अच्छे अच्छे पुर्जे ढीले कर देती है, वही वाली है बस। बाकी जिनको पता उनको पता अब इस पे ज़्यादा। हाँ अज़र भाई सही लिखा तुमने। फिर सलाम भाई कैसे हो? शाश्वर भाई लिखते हैं, वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, आप सुनाए आप कैसे हैं, उम्मीद है कि आप भी बढ़िया होंगे। बाकी मेरे को ये बताओ कि क्या ऐसा लोग करते हैं कि थोड़ा पैसा ज़्यादा ले लेते हैं, जब ये बताते कि सर ज़्यादा काम है आपकी कार में थोड़ा सा। मैंने मेरी ईमानदारी इतनी अच्छी है कि मैंने 4 काम और ऐड कर दिए, उसके होते तो 3,000 नहीं आए, लेकिन चलिए आपके आपसे क्या ही लेंगे, आप 2,000 एक्स्ट्रा दे दिएगा बस। बात हुई थी 3,000 की, भाई 5,000 मांग रहा, तो ये इस तरह से चीजें होती है ना। यूसुफ भाई का मैसेज है, अभी तक नहीं बन पाई क्या? हाँ यार नहीं बन पाई मेरा भाई, क्या करें, माशाल्लाह डैश डैश डैश कार है, हाँ यही है। बाकी शाम का मैसेज है, सलाम वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, फिर सवाल पे आएंगे। अब ये कार वार की बात तो कब तक ही करोगे भाई, वो तो चार दिन से वो हो जाता है थोड़ा बात, ठीक है सह लेंगे थोड़ा, क्या ही है मसला। बाकी अजहर साहब कहते हैं कि हाँ भाई कभी कभार ऐसा होता है, मेरे को भी लगता है ऐसा होता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आता हूं, क्योंकि मेरे को लग रही प्यास भयंकर। सुन गगड़ की आवाज में दिल है कि मानता नहीं कवर, ये सॉन्ग आपके लिए FM 107 पे। वापस आने के बाद सवाल दिल से देसी।

0: सुबह कितनी भी कोशिश कर लो उठने के लिए दिल है कि मानता ही नहीं है।
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
2: ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
0: भाई साहब, गहरी नींद का एक अलग सा नशा है यार। लेकिन अच्छा, मुझे लगता है कि सुबह की जो नींद है और दिन की जो नींद है, इसमें काफी फर्क है। सुबह की नींद में क्या है कि आप 7-8 घंटा सो लेते हैं तो आपको लगता है कि चलो अब तो उठना है। लेकिन दिन की नींद में अलग सा नशा है भाई, मन करता है पड़े रहें। और अगर आप 1 घंटा सोए और 1 घंटे के बाद उठ गए तो सर और भारी लगने लगता है। ऐसा लगता है कि दिन में तो सोना नहीं चाहिए था फिर। लेकिन ये तो सिर्फ फ्राइडे या सैटरडे को ही नसीब हो सकता है दोस्तों। फिलहाल 6:13 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और आज के सवाल की तरफ आते हैं अलग्यास से।
3: मेरे सवाल का जवाब दो,
0: तो आज का सवाल ऐसा है कि कभी ना कभी आपने इस चीज को या इस सिचुएशन को काउंटर जरूर किया होगा। सवाल यह है कि क्या अच्छे बाल बनाने से, बढ़िया कपड़ा पहनने से, अच्छे शूज पहनने से, टिप टॉप बने रहने से क्या असल में कोई फायदा होता है? ये एक मुझे लगता है बड़ा सवाल है, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है भाई, ऑफिस हो, कहीं पर भी जाना हो, ख़ास तौर पे मर्द और औरत में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। महिलाएं बहुत बढ़िया सजवज के जा रही होती हैं मेकअप वेकअप करके, है ना, उनका तो एकदम ही सेट होता है कि हाँ 10-20 तरह की अबाया हैं, 100 तरह के कपड़े हैं, 3 अलमारियाँ भरी हुई हैं मेकअप के लिए, 3 अलग अलग ड्रॉर जो है वो भरे हुए हैं। मर्द भाई कुछ नहीं कर रहे हैं, ये मर्द नहा रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं, वही शर्ट पहन रहे हैं, उनके पास गिन के 6 या 7 शर्टें हैं जो हफ्ते में एक ही शर्ट 2 बार रिपीट भी हो रही है, और वो ऑफिस चले जा रहे हैं। और कुछ लेकिन ऐसे मर्द समाज में ऐसे लोग हैं जो अच्छे खासे अपने वार्डरोब को सजा के रखते हैं और वो ऑफिस एकदम बन के जाते हैं, टीप टाप बन के जाते हैं, उनके पास 4-4, 6-6 जूते हैं और वो चेंज कर करके जाते हैं। तो मुझे लग रहा मैं पहले वाले मर्द समाज का हो गया भाई। लेकिन क्या ऐसा है कि बाल टिप टॉप बना के, ड्रेस सेंस अपनी अच्छी रखते हुए अगर आप किसी लोकेशन पे, किसी जगह पे जाते हैं तो क्या फायदा होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके बॉस के सामने, आपके फैमिलीज मेंबर के, रिलेटिव के सामने इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर आप कहीं अनजान जगह पे मीटिंग करने जा रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है? कभी ना कभी आपने लाइफ में इस बात को इनकाउंटर जरूर किया होगा, है ना। कुछ लोग ऐसा भी होता है ना, वैसा मर्द में भी है भाई, बहुत से लोग हैं, और अब तो बहुत आम भी हो गया कि वो मुंह धोने के बाद भाई क्रीम भी लगा रहे हैं आजकल। देखा है आपने वो वाले, तो वो लोग भी हैं। और एक वक्त पे मतलब कॉलेज डेज में तो मैं भी करता था, लेकिन फिर ये हो गया कि अब क्या करोगे फजील, उम्र हो गई। तो अब मैं नहीं करता ऐसा। बट ऐसा क्या होता है कि इम्पैक्ट बॉस के ऊपर, काम के ऊपर, आपके मीटिंग के ऊपर पड़ता है, हाँ या नहीं? अगर है रीज़न आपके पास हाँ का तो, और ना का अगर रीज़न है तो भी हमें बताएं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22-107, 666-22-107। बाल टिप टॉप बना के जाना और सब प्रॉपर बेहतरीन आदमी लगना, ऐसा लगना कि हाँ यार ये काम करने वाला आदमी है जो, क्योंकि 1-2 बार मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत बचपन की बात है, बहुत पहले की बात है। और मुझे लगता है कि जो काम मैं बताने वाला हूँ वो 90% लोगों ने किया होगा। जैसे होता ना कि आम की बगिया होती है, आप आम तोड़ने के लिए जाते हैं, तो मैं शहर में रहने वाला आदमी था, लेकिन हमारे अब्बा तो गांव में, और गांव आप जाते हैं साल में 1-2 बार आपका गांव का रुख हो जाता है। तो मैं गर्मियों में एक बार अपने गाँव गया और वहाँ पर हमारे रिलेटिव थे, हमारी उम्र का एक लड़का जिसके साथ हम घूमने टहलने निकलते थे। तो क्या है कि हम भी बड़े हो रहे थे, तो हमारे हाथ पैर दौड़ने भागने के जो तरीके थे वो चेंज हो रहे थे, भाग रहे थे भाई, बढ़िया भाग ले रहे थे। तो मेरे दोस्त ने बताया कि ऐसा है कि आम खाओगे? मैंने कहा हाँ खाएंगे यार, कहाँ पर मिल रहा है? कह रहा पैसे नहीं है। तो मैंने कहा तब कैसे खाएंगे? उन्होंने कहा तोड़ के किसी दूसरे की बगिया से। मैं कह रहे भाई साहब चोरी? कह रहा नहीं भाई, अपने हक का। मैंने कहा चोरी नहीं करेंगे भाई। कह रहा अरे नहीं यार, वो चोरी नहीं है, ये बस एक फन वाला है। तो अपने को बचपन में इतना क्या ख्याल, तो अपन जो है बगिया चले गए, तोड़ के भागने लगे और वहीं पर लेटे रहते हैं भाई, चारपाई डाल के, जो ओनर होते हैं ना बगिया के, बाग के ओनर होते हैं, उनने डंडा फेंक के मारा, लगी किसी को नहीं, लेकिन पकड़ में आ गए अपन लोग। तो जब पकड़ में आ गए तो उनने हमको नहीं सूता, क्योंकि हम जो है जब भाग रहे थे तो शूज पहने हुए, बढ़िया टी शर्ट पहने हुए, बाल ठीक ठाक थे ही और शर्ट पैंट भी बढ़िया थी, तो उनने हमको ना नहीं कूटा भाई, लेकिन हमारे दोस्त को कूटा इसलिए कि तू नफीस का लड़का है ना, बहुत छिट्टा हो गया है तुझे, तो आज मैं बताता हूँ, हमारे बगिया से आम लेके भाग रही है तू। वहां उसको दो तीन हाथ जो है गुद्दी पे और कान पे दिया है, लेकिन मुझे पहली बार देखा था, कह रहे ये तो शहर का लड़का लग रहा है, तो उनने मुझे नहीं मारा, तो मुझे लगता है कि शायद इसीलिए कि शहर का लग रहा है, कपड़े वपड़े ठीक ठाक है, शूज भी पहने हुए हैं, क्योंकि वो तो चप्पल में भाग रहा था, वो चप्पल भी छूटी गई थी। उसके बाद भी बेचारा दो तीन खाया उसने गुद्दी पर, ज्यादा लाल गुद्दी हो गई थी भाई उसकी। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा होता है कि इम्पैक्ट तो पड़ता है, और भी कई जगह इम्पैक्ट पड़ता है, अगर आपकी सिचुएशन थोड़ी खराब हो बट आपका प्रेजेंस अच्छा है, हेयर स्टाइल वगैरह एकदम कर रही है, शर्ट अच्छी पहनी हुई है, यस हेलो हाउ आर यू, आप बात भी कर रहे हैं जान रहे हैं, तो सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, तो जरूर बताइएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22107 666-22107। बाकी ये मैसेज किस भाई का, सलाम वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं, मैकेनिक की बात देखिए, अच्छा ठीक है, इन्हें कहा कि यार मैकेनिक ऐसा कम करते हैं, लेकिन हमारे जितने दोस्त लोग हैं या हमारे जितने मैकेनिक वाले हैं वो नहीं करते हैं। हाँ यार, मतलब नहीं भी करना चाहिए, आपके पास काम ज्यादा आएगा ना अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार अगर दिमाग में घुस गई ये बात कि हूँ शायद ऐसा है कि पैसा ज्यादा खींच लिया हमसे मैकेनिक ने इस बार, तो फिर आप उधर नहीं जाते। बाकी सुबह का मैसेज है, कहते हैं फजील डेली ऑफिस रूटीन में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैं डेली जो है कोई खास चेंजेस नहीं करता हूँ भाई, मैं वैसा ही आ जाता हूँ जो मेरे पास कपड़े हैं, कोई वार्डरोब नहीं चल रहा, मैं वार्डरोब चेंज करने के लिए कोशिश करता हूँ कि मैं जब इंडिया जाऊँगा तो वहां से खरीदूंगा। इस चक्कर में रिपीट हो रहा भाई, लेकिन भाई मैं महिलाओं को देखा यार, उनका तो वो है कि यार हर महीने एक नया मेकअप का किट ही आ जाता है, क्योंकि उनका खत्म भी हो रहा है ना। हमारे मर्द समाज में आप देखिए शैम्पू वही एक चलता है जो चलता है, और कई बार तो ये पाउच वाला खरीद ले रहे हैं, और नहीं है इनके पास वो शैम्पू, तो ये साबुन की बट्टी इस्तेमाल कर ले रहे हैं भाई, हैं, और वही एक साबुन की बट्टी से कपड़ा भी धो रहे हैं और उसी से बाल भी रगड़ के, और उनके बाल ठीक हैं भी। ये हम मर्द समाज कर रहा भाई, क्या करें। फिर एक और ये मैसेज, अच्छा आगे यूसुफ भाई ने लिखा है, हाँ कोई इंटरव्यू है या कुछ मीटिंग है तो लाजिम पड़ता है कि आप ऑफिस में अच्छा कपड़ा पहने, क्योंकि नए लोग के सामने तो ग्रूमिंग यानी अच्छी ड्रेसिंग, अच्छा आउटलुक के साथ जाएंगे तो श्योर इफेक्ट पड़ता है, और जो सेल्स में है ज़रूर पड़ता है, क्योंकि सेल्स एग्जीक्यूटिव तो डेली नए नए लोगों से मिलना पड़ता है उसको, और साथ में लिखा है वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज बेस्ट और लास्ट इम्प्रेशन, यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है, ये सुबह ने काफ़ी हद तक सही कहा है, लेकिन कई बार ऐसा भी है ना कि पता चला ड्रेसिंग सेंस है और ज़बान जो है इतनी ख़राब है कि सामने वाला कहता है इससे तो बातें मत किया करो, घमंडी आदमी है ये। बाकी नसीम भाई का मैसेज है, कहते हैं शहर नहीं मेहमान समझ के छोड़ा, अच्छा कि तू नफीस का कौन लगता है, हैं कजिन है तेरा ये, इसको के कंटा। लेकिन भाई नफीस कह के उसको दो चार खींच दिया था भाई उसको। नफीस का लड़का बहुत तेज हो रहा। ओके नसीम भाई, हो सकता है कि शहर का नहीं मेहमान समझ के छोड़ दिया हो उसने, लेकिन उसको भी श्योर नहीं था कि ये नफीस का है कि नहीं है। उन्होंने पूछा ही था ना कि नफीस का है ना तू, है नफीस और नसीम मिलता जुलता है, नसीम भाई आपका लड़का था। आगे मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फजल भाई, फजल हेयर। फजल भाई, इट्स अ मस्ट फॉर मी टू बी इन अ सूट, आई एम द जीएम ऑफ माय कंपनी एंड मीट्स 5 क्लाइंट्स डेली। अच्छा, द रोज 5 क्लाइंट्स से मिलते हैं। नहीं यार, आप तो फिर मैं मानता हूं कि आप जो है अच्छा वाला और सिल्क को सिल्क बना देने वाला शैम्पू इस्तेमाल करते होंगे, बड़े वाला शैम्पू इस्तेमाल करते होंगे, आपके घर बट्टी नहीं होगी जिससे साबुन और बदन दोनों धो रहे हो, फिर बाल भी। आपका वार्डरोब अच्छा होगा आपकी जीन्स है और आपके पैंट ऐसे ही नहीं कहीं लटके रहते होंगे, कहीं नहीं पड़े रहते होंगे। हम मर्द समाज जो है बिगड़ गए हैं भाई, हम घर पे जाते हैं जीन्स इधर शर्ट उधर, हम प्रेस भी नहीं कर रहे भाई, बहुत काहिल हो गए हैं। लेकिन जो आदमी डेली 5 लोगों से 6 लोगों से मिल रहा है तो उसको तो अच्छा पहनावा करना पड़ेगा, और इससे फ़र्क भी पड़ता है। कई बार आपकी आपकी मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है आपके बात करने से, आपके बैठने से। कई बार ऐसा भी है कि श्योरिटी होती है कि अरे उधर से डील नहीं मिलेगी, लेकिन आपका बात करने का तरीका है जी नहीं, ये फ़र्क तो पड़ता होगा, मैं इस बात को मानता हूँ। बाकी रॉयल नाम लिखा हुआ है, मैं नाम तो नहीं देख पा रहा हूँ इनका क्या है, लेकिन लिखा है सलाम वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, कैसे हैं, क्या हाल है, आप बताएं आपका क्या हाल चाल है। दरभंगा ऊपर लिखा है भाई ने, और बाकी डिटेल में कुछ नहीं लिखा है। साबुन की चिप्पी से कपड़े भी धोते हैं और नहाते भी हैं, सही है फजील। हाँ मैं ये कर रहा हूँ भाई, अरे हटाओ यार, कौन रोज रोज का झंझट वाले। मैं थोड़ा कोशिश कर लेता हूँ कि यू नो वैसे ही रहूँ, ज़्यादा खर्चे नहीं करूँ फालतू के। मैं महिलाओं का है भाई, कंडीशनर भी चाहिए, शैम्पू भी चाहिए। अच्छा पता है डबल कंडीशनर भी आ रहा है, कंडीशनर के ऊपर भी एक कंडीशनर है कि अरे वो परत लग जाती है ना तो इससे अच्छा हो जाता है। मेरा तो खून खोलने लगा कि ये सब क्या है भाई, ये फिजूल के खर्चे हैं यार। अब इन लोग को बताने लगो फिजूल के खर्चे तो ये लोग मान नहीं रही हैं। अब आया 6 है इनके पास कि सुनो वो जो 3 अबाया है ना, वो 3 अबाया वो उनके घर जाकर पहन चुके, सोया एक बार देख चुकी है हमें उस 3 अबाया, अब चौथा वाला अबाया पहनेंगे हम। नहीं नहीं फायजा के घर भी नहीं जाऊंगी मैं, ये वाला तो ड्रेस पहन चुकी हूँ ना, तो अब नया ड्रेस चाहिए, फलाना दावत में पहन लिया मैंने, अब नहीं पहनूंगी। अरे ऐसी आग बरसती है मेरे ऊपर। या हम मर्द समाज भाई क्या कर रहे हैं, वही कपड़ा सुबह पहन रहे शाम को भी वही पहन ले रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये सुबह चेंज करती शाम को भी कर रही है। वाह भाई वाह। खैर बाकी मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। डैश डैश डैश डैश शोएब भाई बस सवाल ही पूछ रहे हैं कई दिनों से, और शो से रिलेटेड कोई सवाल नहीं है। मैं इनको रिप्लाई कर देता हूँ। नहीं ठीक है, एक और मैसेज है मुबीन साहब का, और ऑडियो पे ऑडियो इन्होंने धरा हुआ है। ओके वीडियो है, सॉरी, असर होता है। सलाम हिशाम साहब, और हिशाम भाई ने कहा है असर तो होता है। कहते हैं आप क्यों करते हैं, आप तो माशाल्लाह से हैंडसम और इतने बड़े पब्लिक फिगर हैं, यू शुडंट डू दिस। अरे ये कोई बात हुई कि फजील भाई चपटे वाले साबुन से नहीं नहा सकते क्योंकि ये आरजे। अरे ऐसे कैसे, मेरा तो वो वाला हिसाब है कि नहीं भाई कोई भी चीज़ ख़राब नहीं, फेंकनी नहीं चाहिए किसी भी चीज़ को। मैं घर से कोशिश करता हूँ कोई भी चीज़ फेंके ना भाई, कपड़े फट जाते हैं तो मैं पोछे के लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैं नहीं फेंकता भाई, जितना हो सकता है इस्तेमाल कर ही लेता हूँ। आयुषु भाई ने आगे लिखा है आपको तो बहुत टिप टॉप और ग्रूमिंग के साथ होना चाहिए। देखो वीडियो होती तो मैं हो जाता हूँ। लेकिन स्टूडियो के अंदर इतना कोई जरूरत नहीं है ना भाई। बाकी हाँ ये होता है कि किसी दिन मीटिंग है कोई वो है तो अपन बन लेते हैं, और मेरे को लगता है अपना वाला हिसाब ऐसा है ना कि जब सामने लोगों के पड़ रहे ना, जब ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना है तभी अपन ठीक ठाक टिप टाप बनते हैं, बाकी फिजूल का नहीं। बाकी एक और मैसेज है, सलाम, और कहते हैं भाई बहुत फ़र्क पड़ता है, एक बार मेरे पास पैसे नहीं थे, ऑटो वाले से मैंने बात की मोहब्बत से और उसने मना कर दिया। क्या मना कर दिया? अच्छा पैसे लेने से मना कर दिया, आधी अधूरी बात छोड़ देते हैं, कहते हैं बाकी तुम समझो। हाँ ये भी ये किस्से होते हैं, और ये तो मेरे साथ भी कई बार हुआ है। मैं जानबूझकर भी कराए, चौथी या पांचवी क्लास में थे तो पैसे थे नहीं, मेरे को घर तक जाना था, अब्बा ने पैसे जो दिए थे उसको समोसे में उड़ा दिया मैंने। फिर अब्बा ने कहा कि बेटा आ जाओगे ना, 1 रुपया जाने का 1 रुपया आने का। मैंने कहा नहीं अब्बा अब तो समोसे खा लिए मैंने। अब उसमें हुआ ये, पैसे नहीं थे, ऑटो में बैठा, घर तक पहुंचा, और फिर जैसे ही ऑटो से उतरा तो मैं नाटक करने लगा, अरे भैया ये कहाँ चले गए, पैसे तो थे मेरे पास गिर गए। उनने ऊपर से नीचे तक देखा, उसको लगा शरीफ घर का है। उसने कहा कोई बात नहीं जाओ। अब मेरे को क्या कहा कि वो उस रूट पे शाम को भी मिल जाएगा, और अगले कुछ हफ्ते जो है उसी रूट पे वो चलाता रहता था ना, मेरा घर था भाई, वो एक दिन मिल गया मेरे से दुगना ले लिया उसने फिर एक ट्रिप का पिछला वाला भी मिला के तो ये हो जाता है कभी कभार आप शाणे बनते हैं लेकिन आपके साथ ही शाणापन हो जाता है। फिलहाल 6:28 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सवाल ये है कि क्या अच्छे बाल बनाने से ड्रेस सेंस अच्छे रखने से क्या किसी के फैसले में या आपकी लाइफ में उसके फायदे हैं या नहीं या बस ऐसा है कि नहीं यार कपड़े लोग पहनते हैं उसके कोई फायदे कोई बहुत अच्छे नहीं। आपको क्या लगता है क्या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ फ़ायदा हुआ हो अच्छे कपड़े पहनने से टिप टॉप बनने से। बाकी बताइएगा 6662107 है व्हाट्सएप का नंबर 6662107 राहुल जैन की आवाज़ में।

0: Why did you go away, away, away?
1: FM 107 पर हर गाना हिट,
2: हर गाना हिट,
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: देसी।
1: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर, हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से आरजे सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ, रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
0: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। और आप यकीन करेंगे कि हमारे कोड़े वाले भैया ने भी अभी मैसेज किया है कि ड्रेसिंग सेंस से इम्पोर्टेंस जो है वो आपकी बढ़ती और घटती तो ज़रूर है। मैं कहा कैसे, तो बाकायदा उन्होंने लिखा है, अरे भाई साहब हम जो है जेलर के ज़माने के जल्लाद हैं और काले कपड़े जो है वहाँ पर पहनाया करते थे लोग हमें, और फिर वहाँ लोग हमें देखकर ही डर जाया करते थे। तो ये बात तो काफ़ी हद तक सही भी है कि आप किसी भी जगह पर देखें, अच्छा इवन मूवीज़ में भी ड्रेस का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर काली ड्रेस है और हट्टे कट्टे लोग हैं, है ना, बहुत ही ख़तरनाक लुक है, थोड़ा कटा पटा है भाई, बाल एकदम बिखरे हुए हैं, तो गुंडा तो है ये उसको गुंडा बनाया हुआ है भाई। ये बात तो अभी मुझे समझ में, और एक कोड़े वाले भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप देखें कि ड्रेसिंग सेंस से इम्पोर्टेंस आपकी चेंज हो जाती है। आप जो है खुद मर्द समाज भी ये करके देख ही चुका है, और मर्द समाज तो सोशल मीडिया पे देख ही रहा है। आप अच्छे कपड़े पहने, टिप टॉप, बढ़िया, आपके ग्रूमिंग वगैरह हो रखी है, आपने दाढ़ी वाड़ी अच्छी बनाई है, बाल अच्छे हैं, आप किसी से सलाम करें वो सलाम का जवाब देगा। लेकिन ऐसे ही आप जो है एकदम ही बेकार बने हुए हो, कुर्ता पैजामा पठानी पहना हो, एकदम ही ख़तरनाक वाले लुक लग रहा हो, बाल एकदम आपने छोड़ा हुआ हो, और शूज़ भी एकदम ऐसे जल्लाद फटे वटे पहना हो, आप किसी महिला को सलाम करके देखो उन्होंने कहा आपकी अपनी बीवी सलाम नहीं करेगी कि इसको दूर हटाओ। और ये काफ़ी हद तक बात सही भी है, और कई लोगों ने लिखा भी है यार कि यार फ़र्क तो पड़ रहा है यार, ऐसा नहीं है। एक मैसेज है, फजील भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप बहुत अच्छे होंगे तो आप बताइए आपका क्या सवाल है। मैंने अभी जस्ट रेडियो ऑन किया है, मैं बहुत अच्छा हूँ। सवाल बड़ा सिंपल सा था भाई, सवाल ये था कि क्या ड्रेसिंग सेंस है और आपके बाल वगैरह आप टिप टॉप ग्रूमिंग रखते हैं, एकदम ताज़े अच्छे दिखते हैं, तो क्या असल में कोई फ़ायदा होता है उसका या नहीं होता है ये, या फिर ऐसा है कि बस समाज में सोसाइटी में सिर्फ बेहतर दिखने के लिए ही लोग जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, क्या इसके फ़ायदे हो रहे हैं या फिर फ़ायदे आदि कुछ नहीं है, आप बता सकते हैं। नंबर 8662107। एक और ये मैसेज है, नाम नहीं लिखा, लेडीज़ का मेकअप, उनके कपड़े हम मर्दजात के ऊपर, ये टॉर्चर है भाई अब्दुल्ला साहब, मैं ये कौन कह रहा है आपसे कि पहनना है हाँ ये है कि हर कुछ दिनों में उनके बदलते हैं और हमें लाने पड़ते हैं, वो एक टॉर्चर है भाई। आप देखें ये एक टेंशन भरा काम है कि भाई वो दो बार पहन लिया, तीसरी बार दावत में नहीं पहन सकते। और अच्छा ये भी है कि एक बार अगर आपने एक दावत में पहना है और वहां पर वो लोग आए हैं जो आपके जानने वाले हैं, आपने एक ड्रेस पहनी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लग रही कि हाँ इसको तो पहनना है, लेकिन आप 10 दिन बाद उसी कपड़े को नहीं पहनती, क्यों? क्योंकि दूसरे दावत में सेम लोग आ रहे हैं। अरे और ऐसा भी नहीं कि सेम लोग, सारे सेम लोग आ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं। महिलाओं का ये है कि एक दावत में मैं वो कपड़ा पहन चुकी, वहां पर जो 20 लोग आए थे उन्होंने देख लिया मुझे, लेकिन जो दूसरी दावत में मैं आ रही हूँ उसमें 4 लोग पुराने आ रहे हैं, तो आई एम सॉरी नहीं पहन सकती वही वाला मैं, क्यों भाई ऐसे तो साल में 8-10 दावतें होती हैं, तो इसके हिसाब

0: आप से अलग से मतलब ये फिर तो डेटा बनाना शीट बनानी पड़ेगी यार कि नहीं नहीं उस दिन जो दो साल पहले आई थी ना वो तो दो साल अभी वापस से मैं वो ड्रेस नहीं पहन सकती क्योंकि दो साल पहले उन्होंने ये ड्रेस देख ली वो सोचेंगे कि हाँ दो साल पहले पुराना वाला ड्रेस पहन रही ओफो इसके पास बेचारी के पास नहीं अरे यार ये अलग टेंशन है भाई मैं अब्दुल्ला भाई आपकी बात समझ रहा हूँ ये टेंशन से भरा हुआ है फजी भाई ये डैश डैश का किरदार कौन करता है अरे यार छोड़ो यार अभी जिस जब आएंगी तो आएंगी वो काकी के बारे में पूछ रहे मेरा भाई जब आना होगा बिलाल साहब वो आ जाएंगी बाकी देखा जाएगा फिर एक और मैसेज है 107 पर पठानी शलवार अरे पठानी शलवार मेरे पास है यार क्या लाजवाब लगती है कैसी बात कर रहे हो जबरदस्ती की कहानी है भाई जब से आपने कार की केयर करने लगा हूं तो अच्छी वाली वाइब आती है खुद से आपकी केयर करने लगा अपने आप की सॉरी सॉरी हाँ ये बहुत ही उम्दा बात अशफाक मियां ने भी लिखी है कि जब से आप अपनी केयर करने लगे ना तो आपको अच्छी फीलिंग आती है और मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी की केयर किसी की रिस्पेक्ट किसी का ख्याल रखना ये तभी कर पाएंगे जब पहले अपने आप से ईमानदार होंगे उसके बाद ही आप कर पाएंगे फिर एक और मैसेज है फजील भाई मैं आपकी बात से सहमत हूँ मैं हर महीने अपने बालों का लुक चेंज करता हूँ अच्छा दिखने के लिए और हर महीने एक नया टी शर्ट लेकर आता हूँ पहनता हूँ अच्छा दिखने के लिए क्योंकि मुझे लगता है अपने कपड़े अपने लुक से लोग इम्प्रेस होते हैं और ये बहुत ही उम्दा बात है भाई आसिफ भाई मैं आपसे आपके जैसा बनना चाहता हूँ ऐसा हो नहीं पा रहा है ऐसा या तो ऐसा हो गया कि 30 की उम्र के बाद इंसान ऐसा पागल हो जाता है भाई मैंने बहुत लंबे वक्त से कपड़े नहीं खरीदे यार अब मेरे को आज ये बात सुनने के बाद आसिफ भाई की बात सुनने के बाद मेरे को खरीदने बड़े वाले क्यों ऐसा होता है मेरे साथ यार कुछ ऐसी हरकतें हो गई जो मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा यार वरना कपड़े वपड़े को लेकर टिप टॉप होने को लेकर यार एक रौला था एक जमाने में क्या मेरी उम्र हो चुकी है मान लेना चाहिए या फिर घर पे खर्चा करने वाली बढ़ गई है इसलिए मुझे लग रहा है कि और खर्चा नहीं होना चाहिए वो तो अच्छा है कि अभी काम वगैरह होगा अगर पता चला उनने सुन लिया तो उनके गुस्से में एक और शूट दिलाना पड़ जाएगा मेरे को फिलहाल 6:42 एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आज कोई आपको खत नहीं लिखना है लेकिन वो खत लिखना भी है ऐसे कि एक छोटी सी बात आपका फेवरेट कलर होगा या आपका कोई तो ऐसा ड्रेस होगा ऐसा कपड़ा होगा जो बहुत ही लाजवाब होगा ठीक है क्योंकि हर शख्स के पास एक ऐसी ड्रेस होती है या एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कलर का जो उस पर परफेक्ट लगता है और लोगों ने कभी ना कभी तारीफ की होगी जो फिट भी आता है आपको कंफर्ट भी देता है कलर भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है तो आप लोगों को कौन से कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बताना चाहेंगे वो बताइए मिसाल के तौर पे मेरे साथ ये है कि मैं अगर यू नो स्काई ब्लू और ब्लैक कलर पहनूं तो मुझे अच्छा लगता है मेरे हिसाब से ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है मेरे लिए आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है स्काई ब्लू शर्ट या ब्लैक शर्ट व्हाइट पैंट एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताइए जो आप पर परफेक्ट लगता है और आप लोगों को बताना चाहते हैं नंबर है 666-22107 जल्दी से बताइए और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपके मैसेज की तरफ हम बढ़ेंगे सुनते रहे FM 107 दिल से देसी
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
2: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी
3: कंसिस्टेंसी इज द की ये तो सुना ही होगा आपने और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया तो क्यों समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया सो सस्टेन द फ्यूचर हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से आरजे सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी देसी
4: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे सो नो फोमो एवर अगेन सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ रहिए अपडेटेड

0: हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। मेरा नाम है फजील और अब फजील बताने की जरूरत नहीं थी ये तो शुरू में बताता हूँ। ओके, तो अब वक्त आ गया है कि जल्दी से लोगों के मैसेज ले क्योंकि फिर कुछ ही देर में अजान का वक्त हो जाएगा। भाई, कलर का मैचिंग मेरे ख्याल से इंसान के कलर के ऊपर डिपेंड करता। ये तो बहुत ही गलत बात कर दी जैसे कि मैं थोड़ा सावला रंग का हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ वाइट ब्लैक लाइट ब्राउन। अच्छा, ये कलर है अलग अलग, मुझे ये कलर बहुत पसंद आते हैं। अगर आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, अरे यार कुछ भी है। और तो मैंने आपको देखा है डीपी में, आपके ऊपर ब्लू अच्छा लगा है और वाइट आपके ऊपर मुझे बहुत पसंद आएगा। वाइट यार मेरे को नहीं अच्छा लगता, मुझे लगता है कि मैं अजीब लग जाता हूँ थोड़ा। क्या होता है ना, कैरी करने का भी हुनर होता है कुछ लोगों में, मैं कैरी नहीं अच्छा कर पाता वाइट कलर, तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी ठीक है, मैं ये क्योंकि मेरे पास एक ज़माने में वाइट था, मैं बहुत पहनता था। फिर क्रिकेट खेलते खेलते जो है मेरा कलर जो है बहुत ही कलरफुल हो गया, तो इसलिए बाकी एक और भाई का मैसेज है, लिखा है आपको तो ब्लैक और वाइट में अच्छा लगेगा, दूसरा कलर में --। ये एक बहुत गलत लाइन लिखी है, मैं पढ़ना नहीं चाहता। मोहम्मद साहब कहते हैं, सुना है आपकी बेटी हुई है, मुबारक मबरूक। हाँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई। फिर एक और मैसेज है, येलो के साथ ब्लैक बहुत सही लगेगा। ब्लैक और येलो, मतलब मैंने येलो पहना लेकिन ब्लैक नीचे, तो जीन्स जो है वो कुछ और ही कलर की है, वो हल्की वाइटिश टाइप की है। देखिए भाई, आपके ऊपर अच्छा लगता है, ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक और जल्दी से मैसेज है कि भाई स्काई ब्लू और क्रीम पैंट, प्लेन टी शर्ट, ओके हाँ प्लेन मैं मान सकता हूँ, बहुत अच्छी लगती है, गजब की लगती है भाई। शर्ट कोई भी हो, बस इन होनी चाहिए, शर्ट इन करके भी इंसान बेहतरीन लगता है। फिलहाल इसी के साथ अब हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:47 और अजान का वक्त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल एफएम 107 पे शाम 6 बजे। सुनते रहे एफएम 107, दिल से देसी।
2: उर्दू रेडियो एफएम 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अजान का वक्त हो गया है।
3: अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।

0: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर थर्सडे रात 9 बजे से RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
1: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है, तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, मेरे यानी सरवर मिर्ज़ा के साथ आइए जानते हैं वज़ारत दाखला से वीकली अपडेट।
3: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं RJ सरवर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। वज़ारत दाखला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आप और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सरवर।
2: वजीर मुमलकत बराए उमूर दाखला शेख अब्दुलाजीज बिन फैसल बिन मोहम्मद अल्सानी ने तंजानिया के वजीर दाखला पेट्रोबास पास्कल कतांबी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबे में तआवुन और उन्हें मजीद फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद वजीर मुमलकत बराए उमूर दाखला शेख अब्दुल अजीज बिन फैसल बिन मोहम्मद अल्सानी और तंजानिया के वजीर दाखला पेट्रोबास पास्कल कतांबी ने दोनों ममालिक की वजारत दाखला के दरमियान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर भी दस्तखत किए। इस MOU का मकसद आग बुझाने, रेस्क्यू और एम्बुलेंस सर्विसेज के शोबे में तआवुन को मजबूत बनाने और माहिराना तजुर्बात का तबादला करना है। सामाइन, मैत्राश ऐप के जरिए अब आप चंद आसान कदम में किसी दूसरे शख्स को अपनी तरफ से मुआमलात और खिदमात मुकम्मल करने का इख्तियार दे सकते हैं। इसके लिए मैत्राश ऐप के होम पेज पर डेलीगेशन पर क्लिक करें, फिर पर्सनल डेलीगेशन को सिलेक्ट करें। इसके बाद उस शख्स का QID नंबर दर्ज करें जिसे आप डेलीगेट बनाना चाहते हैं और फिर एड पर टैप करें। फिर वो सर्विस मुंतखब करें जिसका इख्तियार देना चाहते हैं। डेलीगेशन की तारीखें चुनें और नेक्स्ट पर टैप करके दरख्वास्त का जायजा लें और उसे सबमिट कर दें। वजारत दाखला आपकी खिदमत के लिए हमेशा हाजिर है। वजीर दाखला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर और पुलिस अकेडमी की सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल्सानी की सरपरस्ती और वजीर मुमलिकत बराए उमूर दाखला शेख अब्दुल अजीज बिन फैसल बिन मोहम्मद अल्सानी की मौजूदगी में दो रोजा इल्मी फोरम एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सिक्योरिटी फील्ड्स का आगाज हुआ। ये फोरम पुलिस अकेडमी के सिक्योरिटी रिसर्च एंड स्टडीज सेंटर की जानिब से नाइफ अरब यूनिवर्सिटी फॉर सिक्योरिटी साइंसेज के तामुन से मुनक्किद हुई। इफ्तिताही तकरीब में वजारत दाखला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कई सीनियर अहदेदारान, मुतालिका इदारों के नुमाइंदे और मकामी, इदारी, इलाकाई और बैनुल अक्वामी इदारों से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन और मुतखस्सिसीन ने शिरकत की। फोरम का मकसद स्मार्ट टेक्नोलॉजीज के किरदार का जायजा लेना है जो सिक्योरिटी को मजबूत बनाने और जुर्म से मुकाबले में मददगार साबित हो सकती हैं। इस सिलसिले में मुतअद्दिद तखस्सुसी इजलासों का एहतमाम किया गया जहां सिक्योरिटी एप्लीकेशंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक अहम चैलेंजेस पर बहस की गई। सामईन, वजारत दाखला ने असलाह रखने या साथ रखने के लाइसेंस रखने वाले शहरियों को तंबीह की है कि वो अपना असलाह

किसी भी दूसरे शख्स को, चाहे उसका लाइसेंस होल्डर से कितना ही करीबी रिश्ता क्यों ना हो, ना उधार दें, ना हवाले करें और ना ही उसे अपने कब्जे में रखने की इजाजत दें। वजारत ने वाजे किया है कि असलह लाइसेंस जाती नौइयत का होता है और कानून सिर्फ लाइसेंस होल्डर तक महदूद होता है। किसी दूसरे शख्स को असलाह देना, उधार देना या बिना लाइसेंस रखने की इजाजत देना कानून नंबर 14 बराए असलाह गोला बारूद और धमाका खेज मवाद 1999 जिसमें बाद में तरमीम भी की गई, इसकी सरीह खिलाफ वर्जी है। वजारत ने बताया कि इस किस्म की किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में लाइसेंस होल्डर और बिना लाइसेंस असलाह रखने वाले शख्स दोनों फौजदारी जिम्मेदारी के मुस्तहक होंगे और उनके खिलाफ कानून में मुकर्रर कैद और जुर्माने की सजाएं लागू होंगी। इसके अलावा असलाह लाइसेंस मंसूख कर दिया जाएगा और असलाह जब्त कर लिया जाएगा। लाइसेंस होल्डर को मुस्तकबिल में किसी भी किस्म का असलाह लाइसेंस हासिल करने से भी महरूम कर दिया जाएगा। वजारत दाखिला ने अपने इस अज़्म को दोहराया है कि इस हवाले से मुअस्सर कवानीन और हिदायत की खिलाफ अर्जी करने वालों के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी ताकि मुआशरे के अमनो इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। दोस्तों, रोड मार्किंग्स यानी सड़क पे जो निशानात होते हैं वो सड़क की जुबान होते हैं। इन पर अमल करना ट्रैफिक की हिफाजत को बढ़ाता है और लोगों को महफूज रखने के लिए बहुत अहम है। ट्रैफिक साइंस और मार्किंग्स पर अमल कीजिए। याद रखिए कि एक दूसरे का ख्याल रखते हुए हम सब मिलकर इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर सकते हैं। और हाँ, ट्रैफिक के कानून की तामील करने से हम अपनी और रोड पर अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी को महफूज कर सकते हैं। वजारत दाखिला ने जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी और मुतालिका इदारों के ताबुन से ऐलान किया है कि ड्रोन्स यानी अननेम्ड एरियल व्हीकल्स को मुकर्रर करदा इलाकों में उड़ाने की इजाजत होगी। इन इलाकों की मालूमात मैतराश ऐप के जरिए हासिल की जा सकती है। ड्रोन उड़ाने की इजाजत रोजाना दो औकात में होगी। पहला वक्त सूरज तुलू होने से सुबह 9 बजे तक और दूसरा वक्त दोपहर 2 बजे से सूरज गुरूब होने तक होगा। वजारत दाखिला ने तमाम यूजर्स पर जोर दिया है कि वो मुकर्रर करदा इलाकों और इजाजत शुदा औकात की पाबंदी करें और ड्रोन्स को मंजूर शुदा इलाकों के बाहर या लाइसेंस में दर्ज मकासद के अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल न करें। यूजर्स को हिदायत दी गई है कि वो तमाम मंजूर शुदा जरूरी शराइत और मुकर्रर ऑपरेटिंग जोन्स की पाबंदी भी यकीनी बनाएं। वजारत ने तस्दीक की है कि कवानीन और ज़ाब्तों की खिलाफ अर्जी करने वालों के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सामईन, समंदरी और सिक्योरिटी के शोबों में तआवुन और तजुर्बात के तबादले को मजबूत बनाने की कोशिशों के ज़ेर साया डायरेक्टर जनरल कोस्ट एंड बॉर्डर सिक्योरिटी स्टाफ कर्नल नेवी हसन अहमद अल सुलेती ने कमांडर मोहम्मद बिन गानिम अल गानिम, मैरीटाइम अकेडमी स्टाफ ब्रिगेडियर नेवी जारल्ला हमद अल नाबिद और अकेडमी के कई अफसरान का इस्तकबाल किया। मुलाकात में कोस्ट एंड बॉर्डर सिक्योरिटी डायरेक्टरेट के मुतअद्दिद अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान दो तरफा बाहमी तआवुन को मजीद फरोग देने और तजुर्बात के तबादले के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। वफ्द को डायरेक्टोरेट की सहूलियात का तारुफी दौरा भी करवाया गया जहां उन्हें समंदरी सिक्योरिटी और सलामती के मैदान में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के किरदार, ऑपरेशनल प्रोसीजर्स और जिम्मेदारियों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस चैंपियनशिप में 20 टीम्स ने शिरकत की जो वजारत दाखिला, इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया, कतर आर्म्ड फोर्सेज और कई मैदानी इदारों की नुमाइंदगी कर रही थी। इख्तितामी तकरीब में प्रेसिडेंट कतर पुलिस स्पोर्ट्स फेडरेशन मेजर जनरल खालिद बिन हमद अल अतिया, कतर आर्म्ड फोर्सेज के स्टाफ लेफ्टिनेंट कर्नल मुबारक यूसुफ अल मुहैजा और मुतअद्दिद अफसरान ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर चैंपियनशिप में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाली टीम्स और खिलाड़ियों को इनामात और शील्ड्स पेश की गयी। और वजारत दाखिला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर और पुलिस अकेडमी की सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल थानी ने वजारत दाखिला के हेडक्वार्टर्स में सेकंड लाइन लीडरशिप प्रोग्राम के दूसरे बैच की ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत की जिसमें 22 अफसरान ने प्रोग्राम मुकम्मल किया। तकरीब के दौरान शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल थानी ने ग्रेजुएट्स में असनाद तकसीम की। इस मौके पर रियासत के सिक्योरिटी और फौजी इदारों के सरबराहान और मुतअद्दिद सीनियर अहदेदारान ने भी शिरकत की।

इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर FM 107 से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वीकली बुलेटिन का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचता है। प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और मुझे सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: बन जाती हैं और वो बिनाइन होती हैं जिसको सिस्ट बोलते हैं. कभी कभी उनमें पानी जमा हो जाता है तो वो भी आपको प्रेजेंट कर सकता है एज अ गुटली. तो हर गुटली जो है वो कैंसर नहीं होती है. नंदलेस कभी भी ऐसी कोई शिकायत आए या इस एज ग्रुप में आए, पर्टिकुलरली कोई भी हमारी माँ बहन बेटी जो 40 से ऊपर है, तो इसको ज़रूर ज़रूर जाके खुद भी एग्जामिन करें और उसके बाद तश्वीश लगे तो जाके अपनी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में अपनी डॉक्टर से रुजू करें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं.
1: ठीक ठीक जी लिसन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ऐसी खौफजदा जिसे गुठली समझ ली जाती है और ये खौफ भी है कैंसर का, जब नाम खुदा नखास्ता आ जाता है, तो इसलिए ये मैंने क्वेश्चन किया कि क्या हर एक जो गुठली है जो महसूस हो तो वो कैंसर नहीं होती, इसलिए डरने की भी ज़रूरत नहीं है, मगर इन्वेस्टिगेट करना बहुत
0: बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी. और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने सामने को ये बताऊँगी कि कैंसर अब मौत का दूसरा नाम नहीं है. कैंसर को अब वर्ल्ड ओवर जो है इसकी डेफिनेशन बदल के क्रॉनिक डिजीजेज में शामिल किया गया है. तो जिस तरह से आपका ब्लड प्रेशर है, आपका डायबिटीज़ है, आपका हार्ट डिजीजेज हैं और उनके लिए तवील इलाज की ज़रूरत पड़ती है, अब कैंसर को भी उसी कैटेगरी में लाया जा रहा है. और चूँकि इलाजात अब इतने ज़्यादा हैं कि आपकी लाइफ प्रोलॉन्ग हो रही है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो रही है और स्क्रीनिंग और इससे जो है इब्तदाई स्टेज में पकड़ जाए तो आपकी ज़िंदगी बेहतरीन गुजर सकती है. तो इसलिए कैंसर मौत नहीं है, इंशाल्लाह खैर है, लेकिन ये है कि तश्वीश हो तो ज़रूर रुजू करें डॉक्टर से.
1: इसमें लोकसभा जैसे डायग्नोसिस किसी भी हम बीमारी की बात करते हैं, ख़ास तौर पर जब से कैंसर की बात की जाती है, तो उसमें डायग्नोसिस को बहुत अहमियत दी जाती है कि उसकी तश्वीश क्या है, क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी.
0: देखिए डायग्नोसिस तो वही बात है, अगर आपकी आंखें किसी चीज़ को नहीं देखती तो आप उसके बारे में नहीं सोचते हैं उसके बाद. और बाज़ अवकात चूँकि हमारे माशरे में जो है बहुत टैबू है, स्पेशली औरतों के बीच में, कि अपने मामलात नहीं बयान करती हैं, छुपा के रखती हैं. लेकिन मैं यही बताना चाहती हूँ सबसे कि ये छुपाने वाली कोई बात नहीं है. आपका जिस्म आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितने बाकी अज़ा हैं, और छाती भी जो है ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है, एक औरत की जिस्म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, जिसको भी निगलेक्ट ना करें आप. ठीक है. और डायग्नोसिस जो है, जहाँ तक डायग्नोसिस, सबसे पहला डायग्नोसिस से पहले जो चीज़ ज़रूरी होती है कि वो है आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन. हर औरत, हर बच्ची, हर माँ, सबको मालूम होना चाहिए पहले कि अपना नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है आपका. अगर आपको नॉर्मल पता होगा तो आप एबनॉर्मलिटी देख सकेंगे. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो हैं उनको पता हो कि अपनी जो है हर महीने जो है अपनी माहवारी के हफ्ते बाद अपनी छाती का एक सेल्फ एग्ज़ाम करें. वो जब नहा रहे हों शीशे के सामने खड़े हो के देखें कि कोई चेंज तो नहीं है, ब्रेस्ट की शेप में तो कोई चेंज नहीं है, कोई गुटली तो नहीं है, कोई रंगत में कोई बदलाव तो नहीं है, या बगल के अंदर कोई लंप तो नहीं महसूस हो रहा है. तो वो सबसे पहला स्टेप होता है. अगर आपको कभी भी ऐसी कुछ तशवीशनाक अलामतें नज़र आएँ तो फिर आप डॉक्टर को रुजू करते हैं. फिर डॉक्टर जो है अपना सेल्फ एग्ज़ामिनेशन करके अपने हाथ से वो पहले कन्फर्म करता है कि आपकी जो फाइंडिंग है वो सही है कि नहीं है. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो जिस तरह से आप बाकी अज़ा का एक्सरे करते हैं, इसी तरह का छाती के लिए भी एक एक्सरे होता है जिसमें 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं. वो छाती का एक्सरे किया जाता है और उससे जो है अगर अलामत
1: कोई भी
0: इजहार हो, इन्फेक्शन हो, कुछ हो, लेकिन ये है कि चूंकि ये कैंसर है, अगर आप रेगुलर मैमोग्राम कर रहे हों तो यही एक फ़ायदा होता है कि रेगुलर मैमोग्राम वाला जो है 1 सेंटीमीटर से भी कम, यानी इब्तदाई स्टेज में भी अगर कैंसर नमूदार हो रहा है तो वो पकड़ में आ सकता है, बजाय इसके कि जब तक आपको फील हो कोई लंप वो उस वक्त ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर हो चुका होता है और इजहार हो जाता है स्किन के बाहर. तो ये इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है. फिर उसके बाद डॉक्टर्स जो हैं अल्ट्रासाउंड करवाते हैं छाती का कंफर्म करने के लिए, और ज़रूरत पड़े अभी बाज़ुकात हमारी माओं बहनों बेटियों की ब्रेस्ट अगर बहुत डेंस हो, उनके अंदर फैट बहुत ज़्यादा होता है तो बाज़ुकात पिकअप नहीं हो सकती है, लेकिन आपको फिर भी तशवीश है तो आप MRI करवा सकते हैं उस स्टेज में, और अगर लगे और कन्फर्म हो जाए तो फिर बायोप्सी हो जाती है.
1: जी डॉक्टर साहब, इस तरह के बहुत सारे केसेस जो कि मैमोग्राम में जो हैं वो पता चल जाते हैं, खासतौर पर स्क्रीनिंग की अहमियत तो ज़रूर आपसे पूछूंगी कि क्यों, मगर ये कि आपके पास भी जैसे केसेस होंगे जो कि बिल्कुल स्टार्ट में less than 1 centimeter आप उसे डायग्नोज कर लेते हैं तो उसका फिर पूरा एक साइकिल जो है वो डिफरेंट होता है. बिल्कुल, वो जो आपको अब फील होने से पहले
0: बिल्कुल देखिए ना, ये ऐसी चीज़ है कि उस टाइम में आपके पास अलामत तो कोई नहीं
1: जी,
0: आपको नज़र तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आप स्क्रीन करें तो हम उस एक्सरे से पकड़ लेते हैं. उस एक्सरे से पकड़ के जब हम आइन बाकी टेस्ट करना शुरू हो जाते हैं और हमें कन्फर्म हो जाता है ये, तो देखिए अब छोटा सा कोई भी डिजीज़ हो रही हो जहाँ पर अभी वो बहुत ही इब्तदाई

0: स्टेज में है तो आप उसको उस लंप को रिमूव कर दें, सर्जरी कर दीजिए और यू आर गुड टू गो, ठीक है ना। तो यानी आपने उसको रिमूव कर दिया और आप आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं बगैर किसी परेशानी के।
1: जी लिसनर्स, जैसे मैं आप अपने हमारी जो ख़वातीन हैं वो अपने इस प्रोग्राम में आ सकती हैं, आज का खसूसी प्रोग्राम जो है वो रखा है हमने हेल्थ गाइड का, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 666-221-07, इसके अलावा कॉल कर सकती हैं आप 4434-4377 पर, और अगर QMC नाउ ऐप आपने डाउनलोड किया है तो फिर आप हमारे साथ साथ होंगी। जेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से और अवेयरनेस, मकसद हमारा यही है, और अक्टूबर ख़ास तौर पर जैसे कि पूरा महीना जो है वो डेडिकेट कर दिया गया है अवेयरनेस के लिए, मालूमात जो हैं वो फ्राहम की जाएं, और हमारा भी मकसद यही है। अजय डॉक्टर साहब, जैसे आप बात कर रहे हैं कि जो डायग्नोसिस है वो इम्पॉर्टेंट है, उसमें आपने कहा कि इसमें जो एक्सरे है या ब्लड मैमोग्राम जो है वो जो किया जाता है, और इसकी इम्पॉर्टेंस भी बता दीजिए। आपने बताई तो है मगर ये और थोड़ा डिटेल में पूछना चाहूँगी कि क्यों ज़्यादा जोर दिया जाता है कि आप जैसे ही कोई अलामत आपको नज़र आती है तो आपने कंसल्ट करना है डॉक्टर से, तो क्यों ऐसा क्यों है?
0: नहीं, इसमें अलामत के बगैर भी जैसे मैंने आपसे कहा ना कि वर्ल्ड वाइड जो है अब ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है,
1: हाँ जी, लेकिन यहाँ पर कतर में
0: जी, जैसे जी, जी तो डायग्नोसिस का सबसे, जैसे हमने पहले भी बयान किया कि अर्ली डायग्नोसिस आपका ट्रीटमेंट डिफरेंट रहता है, ठीक है। सो यू कैन निप द बड इन द इन द इन द इनिशियल स्टेज ओनली, सो दैट मींस आपको और कोई इलाजात ज़्यादा लेने की ज़रूरत ना पड़े, सारी सर्जरी करें आप, लंप को रिमूव कर दें और फिर उसकी तहकीक के बाद देखा जाता है उस इजाफी इलाज की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन जब आपका डिजीज़ जो है प्रोग्रेस कर जाती है और मेटास्टाइज कर जाती है या स्टेज फोर पर चली जाती है, तो फिर आपके इलाजात भी बढ़ जाते हैं, यानी आपको फिर सर्जरी भी करने की ज़रूरत हो सकती है, कीमोथेरेपी लेने की ज़रूरत हो सकती है, फिर उन इलाजात से भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो इस तरह जो है आपकी मॉर्बिडिटी और मोर्टैलिटी यानी जो आपकी ज़िंदगी ऊपर असरात होते हैं इलाजात के भी, वो भी उनका भी खतरात बढ़ जाते हैं और आपकी ज़िंदगी को भी ख़तरे बढ़ जाते हैं यानी आपकी ज़िंदगी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अर्ली डायग्नोसिस करें और हम बेहतरीन प्रोग्नोसिस लेके आगे ज़िंदगी को जो है बेहतरीन अंदाज से गुजार सकें।
1: इसमें एक और कॉन्सेप्ट आपसे पूछना चाहूँगी कि आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि जितने यंग उसमें डायग्नोज हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर तो उनके वो ज़्यादा डेंजरस होता है, क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है?
0: नहीं, ऐसा तो कॉन्सेप्ट ये नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि अभी जो देखा गया है कि हमारी पहले, जैसे हमने बताया था कि पहली हमारी जो माएँ बहनें बेटियाँ होती थी अच्छी फ़िज़ा में रहती थी, साफ़ सुथरा ग़िज़ा खाती थी और अपना घरों के काम करती थी, बाहर के काम भी करती थी, तो उनकी लाइफ स्टाइल जो थी वो बड़ी एक्टिव थी, तो उसकी वजह से जो है बहुत डिलेड, अगर पता भी चलता था डिजीज़ बहुत डिलेड होती थी तो, लेकिन अभी जो नई जनरेशन में चूंकि हमने आपको बताया लाइफस्टाइल का एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है और जो एडिटिव्स जो हम लोग अपनी ग़िज़ा में ले रहे हैं और जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी वजह से जो क्या हो गया है कि अब बहुत यंग पेशेंट्स जो हैं उनको डायग्नोसिस होना शुरू हो गया है, और ये हमारी भी नज़र में आया है कि जो यंग पेशेंट्स होते हैं जिनमें कैंसर होता है बाज़ूकत उनके कैंसर जो होते हैं दे आर मोर एग्रेसिव, तो ये जो फितरी तौर पे जो एग्रेसिवनेस आ गई है दिस इज एट्रिब्यूटेड टू द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड टू वेरियस अदर फैक्टर्स व्हिच हैव कम इन।
1: ठीक, इसमें जैसे आपने कहा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर जो हैं वो होते हैं, जैसे अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो जैसे टेस्ट किए जाते हैं जैसे मेमोग्राम जो है वो किया जाता है, या अगर कोई गुठली है तो आप उसमें बायोप्सी भी करते हैं, तो उस पे डिपेंड करता है कि क्या टाइप है जो अग्रेसिव ज़्यादा अग्रेसिव नेचर का।
0: जी जी बिल्कुल, अग्रेसिव नेचर तो इस बात से भी पता चल सकता है कि आपका जो डिजीज़ आपने कब देखी और कितने अरसे में वो बढ़ रही है, कितना बढ़ गया है। सो ठीक है, अगर उसका डबलिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और जैसे, तो उसमें जब हम बायोप्सी कर लेते हैं तो बायोप्सी से हमें टाइप्स हैं ब्रेस्ट कैंसर की भी टाइप्स हैं, मुख्तलिफ टाइप्स हैं, उसमें एक टाइप है हार्मोनी है, एक है जिसमें आपके रिसेप्टर कुछ होते हैं वो पाए जाते हैं, अगर वो रिसेप्टर, एक तीसरा किस्म ये है जिसमें ना रिसेप्टर होते हैं ना हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं ना ही दूसरे टारगेटेड रिसेप्टर्स होते हैं, तो उनको हम ट्रिपल नेगेटिव बोलते हैं। हार्मोन पॉजिटिव होता है एक, हार्मोन विद HER2 रिसेप्टर पॉजिटिव होता है

0: सकता है और एक आइसोलेटेड हर टू रिसेप्टर पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर ट्रिपल नेगेटिव जिसमें ये कुछ चीज़ें नहीं होती. तो इन सब में से जो है पहले जो है हर टू पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बहुत बुरा माना जाता था या मतलब इलाज के थे क्योंकि इलाजात नहीं थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछली दो सदियों से हमारे पास इतने बेहतरीन इलाज आ गए कि उससे हमारा अब लाइफ प्रोलोंगेशन भी बहुत हो रही है, ओवरऑल सर्वाइवल भी बढ़ गए हैं. लेकिन ट्रिपल नेगेटिव जो है अभी तक की जो है जो अगर हम ये तशवीश रखें कि बदतरीन में ट्रीटमेंट के हिसाब से चल रहा है तो उसमें ज़रा है कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं और उसका जो आउटकम है वो थोड़ा डिसमल होता है, बट नंदलेस उसमें भी अब माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बेहतरीन इलाज आ गए हैं. वी कैन प्रोलॉन्ग
1: जी ये थोड़ी सी जो डॉक्टर साहब जी मेडिकल टर्म्स हैं इनको उर्दू में ट्रांसलेट करना मुश्किल है थोड़ा, मगर ये है कि उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि ज़्यादा डेंजरस होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे जो टेस्ट किए जाते हैं वो देखने के बाद खसूसी टेस्ट होते हैं तो उसमें फिर ये देखा जाता है कि कौन सा जो खुदा न खास्ता जो कैंसर है वो ज़्यादा अग्रेसिव है क्या है इस तरह से
0: उसकी किस्म जो होती है उसमें कुछ पांच छह चीज़ें देखी जाती हैं कि उसमें प्रोलिफिकेशन फैक्टर्स क्या हैं, कितनी परसेंटेज है, क्या उसका किस्म है, ग्रेड क्या है ट्यूमर का, और आपके जो ये लिम्फ नोड्स होते हैं कितने लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हों, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि वो अग्रेसिव है या नॉन अग्रेसिव.
1: डॉक्टर साहब इसमें हम स्क्रीनिंग की बात करें जैसे तो वो आपने कहा कि ज़रा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उससे जो डायग्नोसिस है उसमें बहुत हेल्प मिलती है कि अर्ली डायग्नोसिस जब हम करते हैं या अर्ली डिटेक्शन की बात करते हैं और उसी पर ही सारा ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है. तो यहाँ पर जैसे कतर के हवाले से थोड़ी मैं बात ज़रूर करना चाहूँगी, जैसे कि जो न्यू केसेस होते हैं आपके पास यहाँ पे क्या रेट है, जैसे हम वैसे तो बात कर रहे हैं ग्लोबली कि 8 ख़वातीन में से जो एक जो खातून है वो उससे मुतासर है, तो कतर में क्या हालात
0: जी? एक्चुअली कतर के भी जो आप परसेंटेजेस हैं दिस इज़ ऑलमोस्ट गोइंग ऑन वर्ल्ड ओवर जो है ग्लोबली मीट कर रहा है. ऑलमोस्ट 13% जो है न्यू केसेस जो हमारे हैं दैट इज़ डेडिकेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर केसेस ओनली. और उसमें भी ये देखा गया है कि जो इंसिडेंस है वो एज के साथ बढ़ रहा है, लेकिन अब यंगर पॉपुलेशन में भी देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हम चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि अब हमने यहाँ पे जैसे कतर के हवाले से भी इन्होंने भी अब नेशनल प्रोग्राम्स शुरू कर दिए हैं स्क्रीनिंग के. और जैसे वर्ल्ड ओवर गाइडलाइंस हैं आपकी कि कोई भी औरत जो है 40 साल की उम्र से ऊपर जो है, और कतर में 45 इन्होंने कट ऑफ रखा हुआ है और वर्ल्ड ओवर जो है 40-45 के बीच में रखा हुआ है कि कोई भी औरत जो 40 या 45 साल की उम्र में पहुँच जाए तो उसे अपना मैमोग्राम रेगुलरली एवरी ईयर करवाना चाहिए.
1: ठीक है
0: जी. और अगर एक बार नेगेटिव आया है तो फिर देन यू कैन स्विच ओवर टू एवरी 3 ईयर्स एंड देन सम प्लेसेस इन द वेस्टर्न दे से दैट यू शुड कीप ऑन डूइंग इट टिल यू आर हेल्दी और अनलेस यू फाइंड एनी फाइंडिंग इज देयर. नॉनदलेस अदरवाइज जो है अगर आपकी फैमिली में रिस्क फैक्टर्स हैं आपकी वालदा को आपकी खाला को या आपके, तो आप में चांसेस जो हैं कैंसर होने के बढ़ जाते हैं 25%. उसका मतलब ये नहीं कि कैंसर होगा ही होगा लेकिन आपको चांसेस बढ़ जाते हैं. तो उसमें कोशिश ये होती है कि आप जो भी स्क्रीनिंग है वो 2 साल पहले करेंगे, यानी कोई भी जिनके यहाँ ब्रैका की हिस्ट्री हो या फैमिली ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री हो तो वहाँ पे बच्चियों को 25 साल की उम्र से ही अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट करवाना शुरू कर देना चाहिए जब तक कि वो 40 पहुँच जाएँ, फिर 40 पे उनको मैमोग्राम करवाना शुरू कर देना चाहिए. और इसके अलावा जो है अपना मंथली ब्रेस्ट एग्जामिनेशंस करना जो है बहुत जरूरी
2: है. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक ओनली ऑन FM 107 दिल से
1: देसी. आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में और मकसद यही है कि अवेयरनेस जो है वो दी जा सके. जैसे अक्टूबर है और उसे पूरे महीने को डेडिकेट कर दिया गया है और इसमें मुख्तलिफ इवेंट्स के थ्रू या कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है वो आप बताते हैं. जैसे डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ डॉक्टर रिफत जहान और NCCR में HMC में और ख़ास तौर पर इनकी स्पेशलिटी जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है. तो डॉक्टर साहब आप छोटे क्या कुछ कुछ टारगेट्स देते हैं, कुछ इवेंट्स, मतलब हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ
0: यूजुअली तो जो आपको मालूम है कि अक्टूबर मंथ कहा ही जाता है पिंक मंथ, तो हर तरफ जो है जितने भी बड़े बड़े शर्कें हैं जो अब चूंकि अवेयरनेस हो रही है तो हर कोई शामिल होने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे कतर में जो है कतर मिनिस्ट्री की तरफ से तीन प्रोग्राम्स हैं एक्चुअली। एक प्रोग्राम है नेशनल कैंसर प्रोग्राम है जो MOPH

0: या आपकी जो नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री है जो, उसकी तरफ से चलता है, तो वो भी कोशिश करते हैं पूरा साल ही उनके प्रोग्राम्स और स्क्रीनिंग होती है, लेकिन ये मंथ जो है खसूसी स्क्रीनिंग का होता है, लेकिन ये है कि स्क्रीनिंग आपके पूरे साल की होती है, सो इट इज़ फ्री ऑल ओवर खतर इन ऑल द जी एक तो ये आपका जो नेशनल प्रोग्राम है, दूसरा जो है आपकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में स्क्रीनिंग जो है अबाउट द एज ऑफ 40 फ्री है फॉर एनीवन, किसी को भी तशवीश महसूस हो तो प्लीज़ जाएं अपने वहाँ जनरल फिजिशियन से मिलें और उनको बताएं कि उन्हें ऐसे तशवीश महसूस हो रही है, तो दे कैन बी स्क्रीन फॉर मैमोग्राम एंड दे विल बी स्क्रीन फॉर ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद जो है हमारा नेशनल कैंसर सेंटर जो है ये खसूसी है फॉर तो इनके अपने प्रोग्राम्स रहते हैं और हमारे पास जब भी कहीं भी पेरिफ्री से या हमारे सर्जिकल कम्युनिटी से या हमारे नेशनल प्रोग्राम कहीं पे भी जहाँ पे प्रोग्राम्स या सर्वेलेंस या ये हो रही होती है तो वहाँ से केसेस इकट्ठे किए जाते हैं और फिर रजू किए जाते हैं टुवर्ड्स हमारे जनरल सर्जरी और नेशनल कैंसर सेंटर की तरफ। उसके अलावा कैंसर सोसाइटी ऑफ कतर जो है वो भी बहुत बढ़ चढ़ के प्रोग्राम्स करते हैं अवेयरनेस के और सर्वेलेंस के, तो सबसे अहम चीज़ ये है कि सर्वेलेंस जो है या स्क्रीनिंग मामोग्राम फ्री है, तो हिचकिचाएं ना, कभी भी ऐसी तशवीश महसूस हो तो प्लीज़ अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जाएं, अपने डॉक्टर से रुजू करें और इंशाल्लाह ताला वो आपका मैमोग्राम करा के आपकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और इस तरह से जैसे पूरी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, लिसंस आप भी सुन रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि अर्ली डिटेक्शन यानी सबसे पहले उसकी तशखीस, उसकी डायग्नोसिस होनी बहुत ज़रूरी है, और ये भी डरने की बात नहीं है कि हर जो गुठली है, हर जो लंप है वो कैंसर हो सकता है। उसमें जैसे बताया डॉक्टर साहब ने कि कुछ टेस्ट ख़ासतौर पर मैमोग्राम वगैरह किया जाता है, तो वो डॉक्टर साहब इसमें फिर दोबारा हम डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग की बात है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहीं से जो है वो शुरू होता है कि हम अपना कैसे ख्याल रख सकते हैं। तो इसमें किस हद तक आप समझती हैं कि जो स्क्रीनिंग है वो आगे चलकर किसी भी डायग्नोसिस में बहुत अहम है, या उसकी अहमियत क्या हो सकती है?
0: अहमियत के हवाले से मैं यही कहूँगी कि स्क्रीनिंग का मकसद ही यही है कि आप जड़ से काबू करें
1: जी,
0: यानी जब आपकी डिज़ीज़ स्टार्ट या इनिशियल फेज़ में ही है, इब्तदाई मरहले में ही है, तो आप उसको पकड़ कर सकें। जब ज़ाहरी बात है कि आपकी जो डिज़ीज़ जब बढ़ती है उसी से फिर आपकी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उसी से आपकी डेथ और मोर्टैलिटी होती है, ठीक है? तो आप उसको जब पहले ही जड़ में ख़त्म कर देंगे तो यानी आप एक खुश आइन दौर देखना चाहते हैं, यानी आप एक हेल्थ को जो है एक खूबसूरत मंजर की तरफ ले जा रहे हैं, यानी तो आप जिंदगियां बचाने की बात कर रहे हैं, ठीक है? और इसी हवाले से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक कहावत अंग्रेजी में कही थी कि अ पिंच ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन अ पाउंड ऑफ क्योर, ठीक है? तो ये बहुत मशहूर है कि यानी अगर आप एहतियात अव्वल मरहले में ही लेंगे, एहतियात ले लेंगे, तो हो सकता है कि आप उस मरहले तक पहुंचे ना कि आपको इलाज की ज़रूरत पड़ी। तो यही अहमियत है स्क्रीनिंग की, यही अहमियत है कि हम जल्द अज जल्द पकड़ में लाएं डिजीज़ को। और कभी क्या हमारे माशरे का मसला ये है डॉक्टर साहबा कि हमारे 80-85% डायग्नोसिस जब हमारे पास आते हैं तो वो ऑलरेडी या तो फैल गए होते हैं या स्टेज 3 या स्टेज 4 में होते हैं, जब फिर इलाज की नवीयत भी बदल जाती है, इलाज भी मुश्किल हो जाता है, इलाज के तरीके मुश्किल हैं, फिर सर्जरी है, कीमो है, रेडिएशन है, फिर उनका फॉलो अप है। लेकिन अगर आप इब्तदाई स्टेज में हैं तो ये वही बात है ना कि आप जड़ से निकाल के फेंक रहे हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो इट मेक्स अ डिफरेंस इन योर लाइफ।
1: ठीक जी लिसनर्स, ये स्क्रीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इस हवाले से भी डॉक्टर साहब से बार बार ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि यहाँ पर स्पेशली हम कतर की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ब्रेस्ट स्क्रीनिंग जो है वो है, कोलन स्क्रीनिंग जो है, और उन्हें जो लेडीज़ को स्पेशली अपॉइंटमेंट दी जाती है, उन्हें कॉल की जाती हैं अगर उनकी एज जो है वो 45 तक है, मगर फिर भी इग्नोर कर दिए जाते हैं कि अच्छा ठीक है हम बाद में करवा लेंगे। इस बात पर आपके थ्रू में अपनी लेडीज़ को सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि स्क्रीनिंग जैसे ही आपको कॉल आती है, और वो ज़रूर करते हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह पूरा, जैसे आप तो फ्रंट लाइन पर हैं
0: जी, बहुत सिस्टम बहुत विजिल है
1: जी।
0: और ये मैं आपको बता दूँ कि जूँ ही किसी भी केस में उनको तशवीश या शक हो जाता है कि ये केस जो है डायग्नोस्ड है, तो विद इन 2 वीक्स जो है उसको वो एस्केलेट करते हैं। यानी अगर आप किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे गए और आपने मैमोग्राम कराया और वहाँ

0: डॉक्टर ने देख लिया कि इसमें गिल्टी है या वहां पे उन्हें नजर आ गई कि कैंसर की कोई अलामत है तो वो फौरन जो है विदिन दे हैव अ टाइम फ्रेम यानी विदिन 2 वीक्स दिस केस शुड बी रेफर्ड टू अ स्पेशलिटी सर्जन स्पेशलिटी जहां जाके और टेस्ट आपके होंगे अल्ट्रासाउंड होगा बायोप्सी होगी कंफर्मेशन होगी और उसके बाद जो है फिर आपको रुजू किया जाएगा NCCR की तरफ जहां पे आपको फिर इलाज दिया जाएगा तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है अपने आप को नजरअंदाज ना करें अपनी सेहत को नज़रअंदाज ना करें और मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में जिस दौर में हम चल रहे हैं अब बातें छुपाने से या ताखीर करने से कोई फ़ायदा होता है तो यहाँ पे इस जो मैंने आपको मिसाल दी कि जो प्रिवेंशन है इट इज़ बेटर देन क्योर ऑलवेज
1: बिल्कुल
0: तो लेट्स जस्ट फॉलो दैट
1: जी रुक सब बायोप्सी की आपने बात की और बायोप्सी का भी एक बड़ा मिस कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही बायोप्सी की जाती है खौफनाक भी है और ये भी है कि फैल जाता है जैसे आप इस पर आप हमें बताइए कि क्या है ये
0: जी ये मिस इन्फॉर्मेशन है खराफात है ऐसा कोई बात नहीं है बायोप्सी की तरीके हैं बायोप्सी के अक्साम हैं तीन तरह की बायोप्सीज होती हैं एक नीडल बायोप्सी होती है जिसमें बिल्कुल छोटी सी नीडल जैसे सिरिंज होती है वैसी एक नीडल जो है आपको एक लोकल एनेस्थीजिया दिया जाता है जहां आपका लंप हो और वहां पे नीडल डाली जाती है और उससे जो है वहां का गुद्दा निकाल के उसको टेस्ट के लिए भेजा जाता है दैट्स नीडल बायोप्सी देन अगर आपको लगे कि नहीं नीडल से ज़्यादा की ज़रूरत होती है तो हम कोर बायोप्सी करते हैं जिसमें थोड़ा सा सुई का जो साइज होता है उसमें पीस लिया जाता है उसमें सुई का साइज थोड़ा सा बड़ा रहता है और बाज़ औक़ात ये होता है कि स्किन में बहुत चेंजेस अगर हों किसी की तो फिर मुश्किल है इन दोनों तरीकों से बायोप्सी जो है उसमें फॉल्स रिजल्ट्स आने का खतरा रहता है या डायग्नोसिस ना होने का खतरा रहता है तो उन केसेस में बड़े बहुत कम हो चुका है वो अब चूंकि अब इतनी प्रेसिजन हो रही है तो वो बहुत कम होता है लेकिन फिर हम ओपन बायोप्सी करते हैं या हम सर्जन्स के हवाले करते हैं उनको तो वो वहाँ पर फिर एक निक दे के या एक चीरा दे के वहाँ से टिश्यू निकाल के और उसको जो है टेस्ट करवाते हैं
1: तो इसमें यह कि इसमें डरने की कोई
0: डरने की बात नहीं होती है ये बहुत लोकल एनेस्थीजिया के अंदर होता है एक सुई का प्रिक लगता है और उसके बाद आपको पता नहीं चलता और आधे
1: घंटे में इसके इम्पोर्टेंस पूछना चाहूँगी कि क्यों बायोप्सी की जाती है क्या आप देखते हैं उसमें
0: बायोप्सी से हमें जो है एक तो पहली बात है कि पता चलता है कैंसर है या नहीं है
1: अच्छा,
0: जैसे हमने कहा कि गुठलियाँ ज़रूरी नहीं कैंसर हो सकती है तो इन्फेक्शन हो सकता है बाज़ूकात फैट हो सकता है बाज़ूकात पानी हो सकता है काली तो ये एक तो ये आपको वाजे हो जाएगा कि कैंसर है या नहीं अगर तो कैंसर है फिर कैंसर में हमने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर की अकसाम है कौन सा वाला कैंसर है और किस मरहले का कैंसर है तो वो जो है जो बेसिक बायोप्सी पे हम टिश्यू से टेस्ट करते हैं उससे हमें पता चलता है कि इसकी ग्रेड क्या है ग्रेड 1 है ग्रेड 2 है ग्रेड 3 है फिर इसमें हम देखते हैं कि इसमें रिसेप्टर स्टडीज़ करते हैं कि ये किस्म जो है ये हार्मोनी है तो उसमें हो सकता है हमें खाली हार्मोन ही देने की ज़रूरत पड़े मेडिसिन से यानी गोलियां खाने से ही फ़र्क पड़ जाएगा या उसमें रिसेप्टर्स भी हैं कुछ जिनके लिए कीमो देना ज़रूरी है या हम बायोलॉजिकल एजेंट्स बोलते हैं उनको वो कीमो भी नहीं होती वो बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं वो देने की ज़रूरत पड़ती है
1: या तो टाइप्स की
0: जी टाइप्स
1: अगर हम बात करें ये मेडिसिन
0: डिफरेंट डिफरेंट इलाज उनका बता सकते हैं और उसकी जो जो जो किस्म है ब्रेस्ट कैंसर की वो कौन सी है तो वो बायोप्सी से पता चलता है
1: ठीक है इसमें डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं ग्रेडिंग का पूछना चाहूँगी जैसे कि अलामतें आपने बता दी हैं गुठलियों का भी बताया मगर अगर हम कहें जैसे आम जुबान में कहा जाता है ये स्टेज 1 है और स्टेज 2 है जैसे अभी आपने बात की कि ज़्यादातर जो केसेस हैं वो 3 तक वही आते हैं डायग्नोसिस जो है लेट हो जाता है और उसकी वजह भी आपने बताई तो ये क्या है
0: जी जब हम ये स्टेजेस की बात करते हैं तो ये हम बताते हैं कि जब आपकी गुठली बन रही है या जो ये लंप बन रहा है और उसके अंदर जो है किस तेज़ी से कैंसर फैल रहा है या वो बढ़ रहा है तो वो जो उसका उसकी उसकी जो एक पैथोलॉजी होती है वो हमें ग्रेड से पता चलती है बाजू का जो है जैसे हार्मोनल किस्म के जो कैंसर्स होते हैं ये बड़े स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी आपके पास कोई माँ बहन आएगी कि ये गिटली तो मुझे 10 साल पहले महसूस हुई थी अब जाके थोड़ा बढ़ना शुरू हुई तो ये मोस्टली हार्मोनल टाइप के जो कैंसर्स होते हैं वो बाजू का बहुत आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं और उनकी ग्रेड जो है वो लो होती है यानी ग्रेड 1 होंगे या ایسے ہوں گے, لیکن کچھ کینسرز جو ہوتے ہیں وہ بہت ریپڈلی پروگرس کرتے ہیں, جن میں ہم نے ٹرپل نیگیٹو آپ کو بولا, نہ تو ان میں ہارمون موجود ہوتا ہے نہ تو ان میں ریسیپٹرز ہوتے ہیں جیسے ہر ٹو ریسیپٹر ہے, تو ایسے کینسر جو ہوتے ہیں یہ بڑے تیزی سے پھیلتے ہیں. تو ڈاکٹر آپ کے پاس مریض آئے گا اور کہے گا کہ میں نے ایک مہینہ پہلے دیکھا کہ مجھے چھوٹی سی گٹھلی تھی اور اب یہ اچانک بڑھنا شروع ہو گئی ہے اور بغل میں بھی جو ہے مجھے گٹھلیاں فیل ہو رہی ہیں, تو یہ جو ہے

0: ये चीजें जो हैं ये आपको बताती हैं कि रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसमें मोस्टली जो ग्रेड होगी वो हायर होगी, ग्रेड 3 होते हैं ये ट्यूमर्स मोस्टली, और जो है इनकी रैपिडिटी जो है बता रही होती है कि ये तश्वीशनाक है, हमें जल्द अज जल्द जो है रुजू करना है डॉक्टर से और इलाज की शुरुआत करनी है।
1: ठीक,
0: मरहले हैं यानी
1: जी, ये मुख्तलिफ जो मरहले हैं वो, और लिसनर्स मेरा मकसद ये है कि ये हमें किसी तरह से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ख़ासतौर पर जो अवेयरनेस दे रहे हैं इसका मकसद भी यही है।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107, दिल से देसी। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: प्रोग्राम हेल्थ गाइड, और आज खसूसी प्रोग्राम पेश किया जा रहा है ख़ासतौर पर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, यही सिलसिले की सिलसिला है ताकि आप तक मुख्तलिफ चीज़ें जो है पहुँच सकें। अब हम पूछेंगे डॉक्टर साहिबा से, मेरा ख्याल है थोड़ी अलामतों में ये रह गया कि जो गुठली है क्या वो पेनफुल होती है या पेनलेस होती है, और इसमें क्या जो है हमें ज़्यादा महसूस होता है खवातीन को?
0: दोनों तरह से पेश हो सकते हैं गुठलियाँ। मोस्ट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर जो होते हैं वो पेनलेस होते हैं, स्पेशली अगर एग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं बहुत लेट स्टेज में जाके, जब वो स्किन को पेनिट्रेट करें या स्किन से बाहर आ जाएं या गुठली इस कदर बढ़ जाए कि अंदर उसकी जगह जो है वो सख्त हो जाए, तंग हो जाए, तो उस वक्त जो है उसमें पेन महसूस होती है। तो इसीलिए अक्सर हमारी जो बच्चियाँ होती हैं बाज़ औक़ात वो तशवीशनाक सिम्टम्स लेके आ जाती हैं, क्योंकि हमने देखा कि महावारी के दौरान या महावारी से पहले जो है हार्मोन्स का एक इफेक्ट रहता है छाती में, तो उस वक्त भी आपको छाती में दर्द महसूस होने लगता है, और बहुत बहनें आती हैं कहती हैं कि ऐसे छाती में दर्द होता है, तो डॉक्टर साहब कोई तशवीशनाक बात तो नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो टाइम है वो बिनाइन होता है। तो आपका पेनफुल लंप तभी बन जाता है या तो जब डिजीज प्रोग्रेस हो जाती है या एग्रेसिव ट्यूमर हो जो बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, या फिर अगर उसमें फंगल या इन्फेक्शन या उसमें अल्सरेशन हो जाए, तो उस वक्त जो है वो आपके दर्द की अलामत निकल आती है।
1: ठीक, जी हाँ, क्योंकि ये भी
0: एक रीज़न है कि पेनलेस होने की वजह से बहुत बार आप निगलेक्ट करते हैं कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि पेन नहीं है तो कुछ नहीं है, खाली गुठली महसूस हो रही है, लेकिन नहीं, अगर आप 40 की उम्र में हैं और आपको गुठली महसूस हो रही है तो प्लीज़ जाके डॉक्टर से रुजू करें। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो 40 से कम भी हैं तब भी जाके अपने डॉक्टर से रुजू करें।
1: जैसे आपने स्क्रीनिंग की बात की कि अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आपको 25 की एज से ही स्टार्ट, या ऐसी एज अगर कोई केस जो है जो ब्रेस्ट कैंसर का किसी भी फैमिली में हो तो हम किस तरह अंदाज़ा लगाएंगे, अगर उसकी एज से किस एज में उन्हें हुआ उससे आप लेते हैं या डायरेक्टली आप ले लेते हैं कि 25 इयर्स पे आप?
0: नहीं, ये तो यूनिवर्सल गाइडलाइंस जो दी गई हैं, ये मैं आपको गाइडलाइंस की बात कर रही हूँ, लेकिन ये बात ये है कि हमने, चूँकि मैंने खुद अपने तजुर्बे में देखा, मैंने पेशेंट एज यंग एज 19 ईयर्स भी देखी है एंड एज ओल्ड एज 80 ईयर्स भी देखी है, तो ये बहुत एक्सट्रीम्स हैं हमारी सोसाइटी में और हमारे माशरे में, क्योंकि वेस्ट में आपको इस कम एज में नहीं कैंसर दिखते हैं, ठीक है, चूँकि वहाँ अर्ली स्क्रीनिंग है और लोग पकड़ में आ जाते हैं पहले ही कैंसर, तो वहाँ पे यूजुअली आपको जो है लोकली एडवांस डिजीज मिलती है जो स्टेज 3 होती है, जब वो नुमा हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं या फिर आपके लिम्फावी सिस्टम को इन्वॉल्व कर देते हैं तो आप पकड़ में आते हैं। लेकिन हमारे माशरे में हमने देखा कि यहाँ बहुत यंग पेशेंट, स्पेशली इस बरसगीर में जहाँ पे थोड़ा सा कयास लगाया जाता है कि असरात थे, चूँकि जंगें यहाँ बहुत हुई हैं, केमिकल एक्सपोजर हुए हैं, रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है, वो एक वजूहात बताई जाती हैं, जिसपे अभी तक प्रूफ तो नहीं हो पाया है, लेकिन चूंकि दे आर वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स तो हम इसलिए इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं।
1: ठीक, तो इसमें जब रिस्क फैक्टर्स की बात की या हम कॉजेज की बात करें तो एक ये भी हो सकती है, इसके अलावा तो यही है कि फैमिली हिस्ट्री है या आपने सारा लाइफस्टाइल चेंजेस और ये बता दी। इसमें जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो उसका भी बहुत अहम रोल
0: है। बहुत अहम रोल है, हम बताना चाहते हैं कि आजकल बच्चियां इस चीज़ से ज़रा पीछे हटती हैं और ये कहती हैं कि नंदलेस ब्रेस्ट कैंसर अवॉइड नहीं हो सकता, यानी अगर आपने ब्रेस्ट फीड किया हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता, लेकिन डेफिनेटली जो है ब्रेस्ट फीडिंग जो है इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स विच इज़ कंसिडर्ड टू

की फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, तो वो भी किसी ना किसी हवाले से ये अवेयरनेस उन तक पहुंच पाए जी। और इसके साथ ही प्रोग्राम हेल्थ गाइड, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका और हमारे जी और लिसनर्स, इसके साथ ही प्रोग्राम हेल्थ गाइड से डॉक्टर रिफत जहान, फौजे शफीक और हमारे साथ रहे असली भंडारा। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Hello and welcome to our segment called Smart Money. मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया. आज दोस्तों इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी फंड, यानी मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा आपका सहारा. वैसे तो अल्लाह ही है, लेकिन हाँ, फाइनेंशियली अगर सहारा देखा ढूंढा जाए तो ये वही फंड है. आज हम एक ऐसे फाइनेंशियल टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो शायद

इमरजेंसी फंड। जिंदगी में बहुत सी चीजों की प्लानिंग की जा सकती है, लेकिन हर चीज को प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है। अभी कुछ भी अचानक हो सकता है, गाड़ी खराब हो गई, जॉब चली गई या कोई और सिचुएशन। उसका सामना करने के लिए क्या हम तैयार हैं? ऐसे वक्त में वैसे तो तैयारी होती ही होगी, लेकिन एक जो बड़ी तैयारी है वो है पैसों का इंतजाम। अब ये सवाल जो है, इसका जवाब हमें ढूंढना है इमरजेंसी फंड्स के थ्रू। देखिए, इमरजेंसी फंड्स होते क्या है? इमरजेंसी फंड वो पैसा होता है जो खास तौर पर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए अलग रखा जाता है। ये पैसा आपके वेकेशन, शॉपिंग या अननेसेसरी एक्सपीरियंसेस के लिए या अननेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए नहीं होते। ये सिर्फ उन सिचुएशंस के लिए होते हैं जब जिंदगी अचानक कोई चैलेंज सामने ले आए। इसलिए आप फाइनेंशियल फर्स्ट एड बॉक्स भी कह सकते हैं। जिस तरह घर में इमरजेंसी मेडिसिंस रखी जाती है, उसी तरह फाइनेंशियल इमरजेंसीज के लिए इमरजेंसी फंड रखे जाते हैं। अब इमरजेंसी फंड्स की अहमियत पे बात करते हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस को ये कम कर देता है। जब अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस सामने आए और आपके पास रिजर्व पैसा मौजूद हो, तो आप पैनिक और टेंशन कम करते हैं या कम होती है। बहुत से लोग आपने देखा है कि इमरजेंसी की सूरत में लोन लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड्स पर डिपेंड करते हैं। इससे फाइनेंशियल प्रेशर और बढ़ सकता है, लेकिन इमरजेंसी फंड आपको इसकी ज़रूरत से बचाते हैं या आपको फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस देते हैं। आज की दुनिया में जॉब्स और इंडस्ट्रीज तेजी से चेंज हो रही हैं। कभी कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग करती है, कभी रोल चेंज हो जाता है, कभी इंसान खुद बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए ट्रांजिशन करता है। ऐसे वक्त में इमरजेंसी फंड एक सेफ्टी कुशन का काम करता है। यह आपको वक्त देता है कि आप बेहतरीन डिसीशंस ले सकें, सिर्फ मजबूरी की बुनियाद पर नहीं। वहीं इमरजेंसी फंड सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि पूरी फैमिली के लिए सिक्योरिटी का सोर्स होते हैं। अगर घर में किसी को हेल्थ इश्यू हो या कोई ज़रूरी एक्सपेंस आ जाए, तो फाइनेंशियल प्रिपरेशन फैमिली को बहुत सी परेशानियों से बचा सकती है। जो लोग सेविंग की आदत बना लेते हैं, वो धीरे धीरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। बस आखिर में दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगी कि जिंदगी में हम हर कोई चैलेंजेस जो है उनका सामना करते हैं। वो चैलेंजेस सामने आते हैं और हम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन उसके लिए खुद को तैयार जरूर कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड हमें ये यकीन दिलाते हैं कि अगर कोई कल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हमारे सामने आ जाए, तो हम घबराने की बजाय उसका सामना करें। लग्जरी चीज़ें हमें खुशी दे सकती हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स हमें ग्रोथ देती हैं। इन्वेस्टमेंट्स हमें सिक्योरिटी देती हैं, और अक्सर जिंदगी में सिक्योरिटी वो बुनियाद है जिस पर कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी और कामयाबी की इमारत खड़ी होती है। तो बस जाते जाते आपसे यही कहूँगी कि इमरजेंसी फंड अमीर बनने के लिए नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में मजबूती से खड़े रहने के लिए है। जब आपके पास फाइनेंशियल बैकअप होता है, तो आप सिर्फ पैसे नहीं बचाते, बल्कि अपने पीस ऑफ माइंड को भी महफूज करते हैं। बस मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अल्लाह ना करे हम में से किसी को भी इस तरह की अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का सामना करना पड़े, लेकिन फिर भी तैयारी तो हमें करनी चाहिए। बाकी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज नहीं, कल करेंगे। अभी के लिए मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107।

अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू टेक अपडेट। आज बहुत काम की चीज है, हर रोज होती है। आप बोलेंगे हर रोज आता ही बोलता है, आज भी आई डोंट नो व्हाट टू से स्टार्टिंग में। यही है ना, मैं बता तो रहा हूँ, वो काम का बंदा है यार कबीर। चलिए मैं आपको तीनों वेबसाइट जल्दी से बता देता हूँ। तो ये तीनों वेबसाइट्स आपके काम आएंगी, कुछ फॉर फन है और कुछ बड़ी काम की है। लेट्स बिगिन। सो नंबर वन वेबसाइट ऑन द लिस्ट, इसका नाम है MrFreeTools.com। मिस्टर FreeTools.com। आप इस पे जाइए, आपको वेबसाइट्स भी मिलेंगी, AI टूल्स भी मिलेंगी, वो वाले टूल्स जो आपको स्पेसिफिकली काम बताएंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे मार्केटिंग, तो मार्केटिंग टूल आ जाएगा। सोशल मीडिया वाले टूल बताएंगे, फिर उन टूल की तरफ आपको ले जाएंगे। वो सारे टूल्स आप यूज भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत बहुत काम का है। और नाम में क्या है, MyFreeTools.com। तो आपको जितने भी टूल्स मिलेंगे ये सारे के सारे एकदम फ्री हैं। तो आप अगर सीरियस है कंटेंट जनरेशन को लेकर, इफ यू आर प्लानिंग समथिंग आउट और आपको AI लगता है यार ये महीने का और खर्चा हो जाएगा, तो ये आपके काम आ सकता है और बहुत बहुत कमाल का है। सो गो फॉर इट एंड आई थिंक इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू। अब बढ़ते हैं जरा आगे। देखिए, लैंग्वेज सीखने के लिए मैंने पिछली बार भी आपको एक वेबसाइट बताई थी, और अब एक और नई वेबसाइट बताना चाहता हूँ जो आपको कोई भी नई लैंग्वेज सीखने में मदद कर सकती है। वेबसाइट का नाम है learn101.org। learn LEARN फिर 101, न्यूमेरिकली लिखना है 101.org। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे और उसके बाद आपसे पूछेगा भाई आपको कौन सी भाषा आती है, आप बताएंगे ये आती है, अच्छा ठीक है, कौन सी सीखनी है, ये वाली सीखनी है, और फिर आपको हर तरीके से ये सिखाने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं कि बस पढ़ के बोल दो, नहीं, इमर्सिव तरीके हैं, थ्रू साउंड इफेक्ट्स, फोनिक्स, थ्रू वीडियोस एंड स्मॉल गेम्स, स्कोरिंग कर सकते हैं आपको। बहुत कमाल की चीज़ है यार। या लैंग्वेजेस वैसे भी सीखनी चाहिए। मतलब मैं अभी स्पेनिश का मेरा कोर्स चल रहा है इस पर, धीरे धीरे कोमोएस्टास से मुझे भी आगे बढ़ना है, एंड ऑफकोर्स अरेबिक। तो टारगेट बनाइए अपना, एंड आई थिंक आई नो बोलने वाले लोग चाहिए होते हैं आसपास, बट अगर नहीं है तो AI है ना, बात करो बिंदास उससे भाई, बोलो मेरे से आज तुम अरबी में बात करो, समझ रहे हैं आप, एंड यू कैन स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन। कुछ तो दिमाग में आएगा, पर कर सकते हैं आप। आज का जमाना इस चीज को लेके कम से कम फ्री है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, थर्ड वेबसाइट, है nomorecopyright.com। nomorecopyright.com। खैर, ये इससे पहले आप अजम्पशन लगाएं इसमें क्या है, ये इमेजेस के लिए, स्टॉक इमेजेस। कई मरतब आप देखते हैं ना इमेजेस, आप स्टॉक इमेजेस यूज करना चाह रहे होते हैं, उसके ऊपर वाटरमार्क होता है या फ्री नहीं होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो स्टॉक इमेज जो आपको अच्छी लग रही है वो आप इस वेबसाइट पर डालिए nomorecopyright.com पे, और ये उसी इमेज का एक अलग बहुत ही रिफाइंड वर्जन आपको दे देगा। तो जितने लोग स्टॉक इमेजेस में काम करते हैं, जिन्हें जरूरत पड़ती रहती है, उनके ये बहुत काम आएगा। Definitely a very good thought behind it, जिसने भी ये वेबसाइट सोची है, तो काम की तो है भाई, ठीक है, गो फॉर इट। अब जरा बढ़ते हैं एक नॉट एग्जैक्टली डिस्कवरी मगर एक ट्रेंड की तरफ जो अभी डिस्कवर हुआ है, कुछ लोगों ने अभी किया, कुछ लोग पहले भी कर चुके थे। तो आपको याद है 3D प्रिंटर जब पहली बार देखा था तो क्या रिएक्शन था, मेरा रिएक्शन था है ये ऐसा भी होता है। तो 3D प्रिंटर्स का क्रेज तो रहा है, लेकिन बहुत महंगे हुआ करते थे। राइट नाउ मैं नहीं कहूंगा घर बिल्कुल ही सस्ते हो गए, तो अब तो धूल के बराबर है, नहीं, पर अभी आफ्टर लाइक 10-15 ईयर्स जब से क्रेज चालू हुआ था, आज की तारीख में जो एंट्री लेवल 3D प्रिंटर्स हैं वो एक्चुअली में अफोर्डेबल हैं। $200, $400, ये रेंज बढ़ती चली जाती है। मिड टियर मॉडल्स हैं $750, और फिर आगे चला जाता है मामला। और कुछ लोग इसी वजह से यूरोपियन कंट्रीज में स्पेशली सोच रहे हैं कि भाई ये ही ले लिया जाए, क्योंकि ये होम प्रिंटिंग टूल ऐसा है जो आपको थोड़ी छोटी मोटी चीजें, छोटे मोटे टूल्स बनाने में मदद कर सकता है। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन योर बजट एंड एवरीथिंग, बट आई थिंक 3D प्रिंटर्स आर हेयर टू स्टे। ये डाई आउट नहीं होने वाले। आपका क्या कहना है बता दीजिएगा, अगली अपडेट में मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now।

अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे हड्डियों और जॉइंट्स के बारे में। हम अपनी हड्डियों को अक्सर उस वक्त याद करते हैं जब कमर में दर्द हो, घुटने में तकलीफ हो या कोई इंजरी हो जाए, लेकिन हड्डियों की सेहत का ख्याल बहुत पहले से हमें रखना चाहिए। और हमारा मकसद भी यही है कि हम किस तरह से अपनी हड्डियों को ज़्यादा मजबूत बना सकेंगे। हमारी बोन्स सिर्फ जिस्म को सहारा नहीं देती बल्कि एक पूरा स्ट्रक्चर देती हैं और हमारी जो भी मूवमेंट है, चलना फिरना है, उसमें मदद करती हैं। जिस्म के अहम हिस्सों की हिफाजत करती हैं। उम्र ज़्यादा होने के साथ साथ बोन्स की स्ट्रेंथ में तब्दीली आ सकती है, इसलिए शुरू से अच्छी आदत रखना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। कैल्शियम जो कि बहुत अहम है, वो कहाँ से मिलता है? और ये बहुत ही अहम न्यूट्रिएंट है और ये दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा बस दूसरे फूड से भी हासिल हो सकता है, जैसे कुछ सब्जियां हैं, बीन्स हैं या कैल्शियम फोर्टिफाइड जो फूड्स हैं वो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम जो है वो ही काफ़ी नहीं होता, उसमें विटामिन डी बहुत अहम किरदार अदा करती है। विटामिन डी बहुत अहम है कि वो किस तरह से हमारा जिस्म जो है वो कैल्शियम इस्तेमाल करता है और उसके हुसूल के तरीके और ज़रूरत हर शख्स में मुख्तलिफ हो सकती है। ख़ास तौर पर अगर किसी को विटामिन डी डेफिशिएंसी का ख़तरा हो या बिला ज़रूरत सप्लीमेंट लेने के बजाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मशवरा ज़रूर कीजिए, यानी अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए कि वो क्या आपको कहते हैं। और ये भी कि एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ वज़न के लिए नहीं होती, ये हमारी फिजिकल जो एक्टिविटी है यानी मसल्स के लिए और बोन्स के लिए बहुत अहम है। चॉइस बहुत से अफराद के लिए अच्छी जो वेट बेरिंग एक्टिविटी है जैसे वॉकिंग है उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, इसीलिए ओवरऑल फिजिकल जो फंक्शन है और मसल्स भी स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेस के मुताबिक कीजिए। फिजिकल कंडीशंस हमेशा अपनी उम्र और जो एक्सरसाइज है वो भी उसी के मुताबिक कीजिए। ख्वातीन के लिए जो है वो ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। ख्वातीन में उम्र के साथ हार्मोनल चेंजेस की वजह से बोन हेल्थ पर ख़ास तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है, ख़ास तौर पर मेनोपॉज के बाद। डॉक्टर से बोन हेल्थ के बारे में बात करना बाज़ ख्वातीन के लिए बहुत अहम और ज़रूरी हो सकता है। बुज़ुर्ग अफराद में उम्र बढ़ने के साथ साथ गिरने का ख़तरा बढ़ सकता है। घर में फर्श साफ और रास्ते आप खुले रखिए, मुनासिब रोशनी रखिए और अगर ज़रूरत हो तो बाथरूम में सेफ्टी अरेंजमेंट ज़रूर कीजिए। इसी तरह से जो मुनासिब जूते हैं वो पहनना बहुत अहम है। अब ये कि जोड़ों में दर्द होता है और जॉइंट पेन है तो उसको हम कैसे देखें? हर जो जॉइंट पेन है वो आर्थराइटिस नहीं होता, कभी इंजरी है, कभी ओवर यूज़ है या फिर दूसरी वजूहत।

0: आंखों से देखकर कंफर्म भी करें कि क्या वो एकेडमी सच में वहां ऑपरेट कर भी रही है या नहीं, वहां बच्चे सच में खेलते भी हैं या नहीं। तो दोस्तों उसके अलावा जब भी आपसे कोई पेमेंट के लिए कहे तो आप उनके वेरीफाइड बैंक अकाउंट में डालें जो कि उसी शहर का हो। उसके अलावा आप लोकेशन पे उनके करीब उनके पास पहुंचे, उनसे बात करें और पूछें कि क्या आप ही बात कर रहे हैं। फिर अगर पेमेंट के लिए वो कहे तो कैश पेमेंट दीजिए और रिसीट भी लीजिए। आप जब स्पोर्ट्स एकेडमी में हो वहां पर लोगों से बात करिए, तब आपको ज्यादा सही तरीके से अंदाजा होगा कि ये लोग सही हैं या गलत हैं। चेक करें एकेडमी लीगली रजिस्टर्ड है भी या नहीं। कई बार लोकेशन पे जाने के बाद आपको ये पता चलता है कि ये लीगली रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आप जब देखते हैं लोग बच्चे वहां पर खेल रहे हैं तो आप पेमेंट कर देते हैं। लीगली अगर रजिस्टर्ड वो एकेडमी नहीं है तो भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन एडवांस पेमेंट, रजिस्ट्रेशन का पेमेंट और बगैर मुलाकात किए वायर ट्रांसफर करना बिल्कुल गलत है। इस तरह के फेक और स्कैम से जरूर बचिए। फिलहाल ये था आज का शो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि इस 5 मिनट में आपको सॉल्यूशन भी मिल गया और पता भी चल गया कि इस जमाने में किस तरह के फ्रॉड आजकल हो रहे हैं। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूर हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिने किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस हलके में आप सबका खैर मकदम है। दिल की गहराइयों से आप सबको खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम तहफीमुल कुरान। इस प्रोग्राम में सामने कराम हम कुरान मजीद को समझने की कोशिश करते हैं। इफ़हाम व तफहीम का ये मरहला बहुत ही अहम है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इल्म हासिल करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। आप सब जानते हैं कि अब तो तमाम तर लेक्चर और ये सब दस्तरस में है। मालूमात के एक वसी समंदर हमारे सामने हर वक्त मौजूद है, लेकिन एक अहम सवाल ये है कि क्या हर मालूमात इल्म होती है और क्या हर इल्म इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। चलें अब रुख करते हैं कुरान की तरफ और देखते हैं कि कुरान हमें सिलसिले में क्या रहनुमाई करता है। कुरान करीम बार बार हमें दावत देता है कि ज़मीन में गौर करो, आसमानों पर नज़र डालो, अपनी ज़ात में फ़िक्र करो और फिर इस मारिफत के ज़रिए अपने रब को पहचानो। अल्लाह फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, यानी अल्लाह से हकीकी खशियत रखने वाले वो हैं जो मारिफत और इल्म रखते हैं। वह इल्म की सबसे बड़ी अलामत यह है कि उसके अंदर अल्लाह की खशियत हो। आज की गुफ्तगु में हम बहुत ही एक अहम हकीकत पर गौर करेंगे। वो ये कि अक्सर लोग समझते हैं कि बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ी डॉक्टरी या कोई अच्छे सर्टिफिकेट्स हो तो वो बहुत इल्म वाला है, लेकिन कुरान और सुन्नत हमें बताता है कि इंसान की असल कदर उसके दिल, उसके अखलाक और उसकी नीयत से होती है। कितने ही ऐसे लोग गुजरे हैं जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, मगर अल्लाह के नज़दीक उनका मकाम बहुत बुलंद था क्योंकि उनके दिल ईमान से भरे हुए थे, उनके अखलाक बेहतरीन थे और उनके अंदर मखलूक खुदा के लिए मोहब्बत थी। दूसरी तरफ ऐसा भी होता है कि किसी के पास बहुत इल्म होता है, लेकिन अगर उस इल्म के साथ इखलास ना हो तो वह इल्म इंसान के लिए वबाल भी बन सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहायत अहम तंबीह फरमाई कि क़यामत की निशानियों में से एक ये भी है कि लोग इल्म अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं बल्कि दुनिया हासिल करने के लिए सीखेंगे। तो हमें सामने किराम जब हम कुरान पढ़ते हैं, जब हम दीन के मुख्तलिफ उमूर शोबों पर अमल करते हैं, तो हमें ये सवाल अपने आप से करना होगा कि हम कुरान क्यों पढ़ रहे हैं, हम दीन क्यों सीखते हैं, हम लिखते क्यों हैं, दावत क्यों देते हैं। तो अगर मकसद सिर्फ शोहरत, तारीफ़ या दुनियावी मकाम हो तो इल्म की रूह ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर मकसद अल्लाह की रज़ा, लोगों की इस्लाह और हक की खिदमत हो तो यही इल्म इबादत बन जाता है। सामिन इकराम, इस्लाम की खूबसूरती ये भी है

0: नेकी की राह में रुकावट है। लेकिन इस्लाम में रिवायत का मतलब ये नहीं कि इंसान सोचना छोड़ दे, बल्कि रिवायत का मतलब है कि सदियों की इल्मी मेहनत, तजुर्बे और हिकमत को समझकर आगे बढ़ना। हमारे उलमा ने हमेशा इख्तिलाफ किया, बहस की, तहकीक की, इश्तिहाद किया। इसीलिए हर दौर के मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अपने ज़माने के मसाइल को कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझे, न कि सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर फैसला करे। समय कराम, कुरान बार बार बताता है कि ज़िंदगी में मुश्किलात भी आती है, आसानी भी। मुश्किलात भी अल्लाह की हिकमत का हिस्सा है। हम अक्सर मुसीबत से घबरा जाते हैं, लेकिन कितने मरतबा ऐसा हुआ कि एक मुश्किल ने हमें अल्लाह के करीब कर दिया, एक बीमारी ने हमें दुआ से खा दी, एक नुकसान ने हमें सब्र से खा दिया, एक नाकामी ने हमें आजिज़ी से खा दी। इसीलिए कुरान फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम, हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे। लेकिन इसी के साथ अल्लाह सब्र करने वालों को खुशखबरी भी देता है। इस्लाम की एक अजीम तालीम रहमत और हमदर्दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। समझे कराम, ये पूरा माशरती निज़ाम है इस जुमले में कि अगर मैं दूसरों के दर्द को महसूस करूं, मैं जुल्म नहीं करूंगा, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं किसी का हक नहीं मारूंगा, क्योंकि मुझे मालूम होगा कि जिस तकलीफ़ को मैं अपने लिए पसंद नहीं करता वो किसी और के लिए भी पसंद नहीं करनी चाहिए। समय कराम, इंसान की सबसे बड़ी बीमारी दिल का सख्त हो जाना है। जब इंसान दूसरों की तकलीफ़ महसूस करना छोड़ दे, जुल्म उसे मामूली लगने लगे, खून बहाना आसान महसूस होने लगे, तब मुआशरा तबाह होने लगता है। कुरान हमें उसके बरक्स दिल की नरमी सिखाता है, रहमत सिखाता है, अदल सिखाता है, एहसान सिखाता है, और यही अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत थी। तो समझने के राम, प्रोग्राम में अब तक हमारी जितनी गुफ्तगू हुई है इससे हमें चंद बुनियादी असबाक मिलते हैं। वो ये कि इस्लाम के हवाले से इस्लाम के मुख्तलिफ अहकाम पर जो शकूक और शुबहात के नारे लगाए जाते हैं, ये सवालात नए नहीं, कुरान ने हर दौर में उनका जवाब दिया है। इल्म के साथ अखलाक भी ज़रूरी है। मज़ीद हमने ये भी बताया कि मुश्किलात इंसान की तरबियत का ज़रिया बनती हैं, दूसरों का दर्द महसूस करना ईमान की निशानी है, और सबसे बढ़कर एक मुसलमान का किरदार रहमत, शुक्र और ज़िम्मेदारी का आहना होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें ऐसा इल्म अता फरमाए जो हमारे दिलों को नरम करे, हमारे अखलाक को संवारे, और हमें कुरान की रोशनी में दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। समरी कराम, प्रोग्राम के इस मरहले में रुख करते हैं एक छोटे से वक्फे की तरफ। फासिल व नवासिल, मुलाकात होती है ब्रेक के उस पार, जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
0: वेलकम सामीन, एक मतलब फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम तफ़ीमुल कुरान के आज के सिलसिले में, जहां हमारी गुफ्तगू चल रही थी शुरू से कि इल्म किस तरह इंसान को अल्लाह की मारिफत तक पहुंचाता है, और ये भी बताया हमने कि दीन का असल हुसन सिर्फ मालूमात में नहीं बल्कि अखलाक, रहम और एहसास ज़िम्मेदारी में है। अब प्रोग्राम के इस मरहले में एक नहायत ही अहम सवाल आपकी खिदमत में पेश करते हैं, वो ये कि आखिर इंसान इस दुनिया में आया क्यों है। तो ये सवाल बहुत कॉमन है, लेकिन इसके जवाब में काफ़ी गहराई है, اور کافی مرتبہ جب ہم اسے سنیں گے تو شاید اس کی حقیقت

0: मॉडर्न लाइफ फास्ट है लेकिन साथ ही है जहनों में एंडलेस क्वेश्चंस। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं फेथ और मॉडर्न लाइफ को, तो सुनिए ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, जो आपको दिखाएगा इस्लामिक गाइडेंस आज के दौर के हिसाब से। सुनना ना भूले शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न जिंदगी का बैलेंस सिर्फ इसी शो में। हर थर्सडे सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आरजे महवेश खान के साथ, ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर, शो है ये इस्लामिक मॉडर्न लाइफ और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे महवेश खान। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। इस्लामिक मॉडर्न लाइफ में आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी के हर हिस्से को टच करता है। मैं बात कर रही हूँ मनी की, पैसे कमाना, उसे स्पेंड करना, इन्फ्लेशन का प्रेशर, बिल्स पे करना और फ्यूचर सिक्योर करने की फिक्र। ये सब आज के दौर की कॉमन रियलिटीज हैं। हर शख्स किसी ना किसी लेवल पर फाइनेंशियल स्ट्रेस फील करता है। इस मॉडर्न एज में डेट कल्चर, क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स और लाइफ स्टाइल कंपैरिजन ने पैसे को सुकून के बजाय एंजाइटी का सबब बना दिया है। हम ज्यादा कमाने की रेस में हैं, मगर फिर भी दिल मुतमईन नहीं होता। तो सवाल ये है, क्या पैसा वाकई सुकून देता है या फिर सुकून का रास्ता कहीं और से गुजरता है? इस्लाम हमें पैसे के साथ एक बहुत बैलेंस्ड और इथिकल अप्रोच सिखाता है। दीन के मुताबिक वेल्थ सिर्फ एक रिसोर्स नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से दी गई एक अमाना है। जब अर्निंग हलाल हो, स्पेंडिंग में एहतियात हो और नीयत सही हो, तो वही पैसा बरकत बरका का जरिया बन जाता है, ना कि परेशानी का। इंशाल्लाह आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी अर्निंग, स्पेंडिंग, सेविंग और गिविंग को इस्लामिक वैल्यूज के साथ अलाइन कर सकते हैं, ताकि पैसा हमारी जिंदगी का हिस्सा रहे मगर हमारी जिंदगी का मास्टर ना बन जाए। आज का टॉपिक इथिकल मनी मैनेजमेंट आज के दौर में एक बहुत अहम और जरूरी टॉपिक बन चुका है। मॉडर्न दुनिया में जहां पैसा इंसानी जिंदगी का मरकज बनता जा रहा है, वहां इथिकल वैल्यूज धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं। कैपिटलिज्म, कंज्यूमरिज्म और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट, इन सब ने इंसान को सिर्फ अपने फायदे तक महदूद कर दिया है। इस सूरत हाल में इस्लाम का दिया हुआ फाइनेंशियल और इथिकल सिस्टम एक रहनुमा उसूल की हैसियत रखता है। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जो सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू को कवर करता है, चाहे वो इबादत हो, माशरत हो, मईशत हो, सियासत हो। इस्लाम ऐसे को एक नेमत और अमानत करार देता है, ना कि जिंदगी का मकसद। इस्लामिक पर्सपेक्टिव्स के मुताबिक पैसा इंसान के हाथ में एक टेस्ट है। अगर वो इसे हलाल तरीके से कमाए और हलाल और नेक मकासद के लिए खर्च करे, तो ये उसके लिए कामयाबी का जरिया बनता है, वरना यही पैसा उसके लिए फितना और अजाब का सबब बन जाता है। इथिकल मनी मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ बजट

फाइनेंशियल सिस्टम का सबसे बुनियादी और अहम उसूल रिबा इंटरेस्ट की मुकम्मल मनाही है। कुरान करीम में रिबा के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम सूद से बाज ना आए तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जंग का ऐलान समझ लो। ये आयत इस बात का वाज़ह सबूत है कि सूद इस्लाम में कितना बड़ा गुनाह है। रिबा का निज़ाम गरीब को मजीद गरीब और अमीर को मजीद अमीर बनाता है। इसमें रिस्क सिर्फ एक पार्टी उठाती है जो कि जुल्म है। इस्लाम रिबा के मुकाबले में रिस्क शेयरिंग और प्रॉफिट लॉस शेयरिंग का कॉन्सेप्ट देता है। इस्लामिक फाइनेंस के मॉडल्स जैसे मुदाराबा, मुशराका, इजारा और मुराबाहा इसी प्रिंसिपल पर मबनी हैं। इस्लामिक बैंकिंग एक ऐसा सिस्टम है जो शरिया प्रिंसिपल्स के मुताबिक काम करता है। इसमें इंटरेस्ट की जगह प्रॉफिट शेयरिंग और एसेट बैक्ड फाइनेंसिंग होती है। इस्लामिक बैंकिंग का मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कायम करना है। इस्लामिक फाइनेंस स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग से भी मना करती है। ये तमाम चीज़ें फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और क्राइसिस का सबब बनती हैं, जैसे कि हम मॉडर्न दुनिया में देख रहे हैं। इस्लाम खर्च में बैलेंस और मॉडरेशन पर बहुत जोर देता है। कुरान में फरमाया गया, और खर्च करते वक्त ना तो इसराफ करो और ना बुखल, बल्कि दरमियानी रास्ता इख्तियार करो। इसराफ का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना है, जबकि बुखल का मतलब ज़रूरत के बावजूद खर्च ना करना है। दोनों ही रिवायात इस्लाम में नापसंदीदा हैं। आज के दौर में कंज्यूमर कल्चर और सोशल मीडिया ने लोगों को शो ऑफ और कंपैरिजन की रेस में डाल दिया है। इस्लाम इंसान को सिखाता है कि खर्च सिर्फ ज़रूरत और फ़ायदे के लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए। इस्लाम सेविंग्स के खिलाफ नहीं लेकिन होडिंग और कंजूसी के खिलाफ है। फाइनेंशियल प्लानिंग इस्लाम में जायज़ है जब तक वो हलाल तरीकों पर मबनी हो। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान में फाइनेंशियल प्लानिंग की एक बेहतरीन मिसाल है, जहां उन्होंने कहत के लिए पहले से प्लानिंग की थी। इस्लाम फ्यूचर प्लानिंग और एमरजेंसी फंड्स की इजाज़त देता है, लेकिन पैसे को सिर्फ जमा करके रखना और सोसाइटी के हुकूक अदा ना करना गलत है। ज़कात इस्लाम का तीसरा बुनियादी रुकन है और इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। ज़कात सिर्फ चैरिटी नहीं बल्कि कंपलसरी रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है। ज़कात का मकसद गुरबत का खात्मा, वेल्थ सर्कुलेशन, सोशल जस्टिस, अमीर और गरीब के दरमियान फासले को कम करना है। ज़कात ना देना सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि माशरे के लिए नुकसानदेह है। कुरान में ज़कात ना देने वालों के लिए सख्त वार्निंग्स दी गई हैं। ज़कात के अलावा इस्लाम वॉलंटरी चैरिटी पर भी बहुत जोर देता है। सदका, इन्फाक फी सबीलिल्लाह और वक्फ जैसे कॉन्सेप्ट्स इस्लामिक वेलफेयर सिस्टम का हिस्सा है। सदका सिर्फ पैसे तक महदूद नहीं बल्कि मुस्कुराहट, मदद और अच्छी बात भी सदका है। वक्फ का निज़ाम इस्लाम की तारीख में एजुकेशन, हेल्थ और सोशल सर्विसेज का बुनियादी जरिया रहा है। इस्लाम पैसे जमा करके रखने और सर्कुलेशन से रोकने से मना करता है। कुरान फरमाता है, जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दो। होर्डिंग से इकोनॉमिक इम्बैलेंस पैदा होता है और मार्केट में आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी पैदा होती है। इस्लाम पैसे के फ्लो को बरकरार रखना चाहता है। इस्लामिक एथिकल मनी मैनेजमेंट का एक

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियाँ, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियाँ, उनकी मेहनत, उनके इम्तहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
0: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

قل الله

मगर उनके दरमियान पूरे इंसाफ से फैसला किया जाएगा, कोई जुल्म उन पर न होगा। सुनो, आसमानों और जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है। सुन रखो, अल्लाह का वादा सच्चा है, मगर अक्सर इंसान जानते नहीं हैं। वही जिंदगी बख्शता है और वही मौत देता है, और उसी की तरफ तुम सबको पलटना है। लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई है। ये वो चीज है जो दिलों के अमराज की शिफा है, और जो इसे कबूल कर लें उनके लिए रहनुमाई और रहमत है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो कि ये अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी है कि ये चीज उसने भेजी, इस पर तो लोगों को खुशी मनानी चाहिए। ये उन सब चीजों से बेहतर है जिन्हें लोग समेट रहे हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, तुम लोगों ने कभी ये भी सोचा है कि जो रिज्क अल्लाह ने तुम्हारे लिए उतारा था, उसमें से तुमने खुद ही किसी को हराम और किसी को हलाल ठहरा लिया। इनसे पूछो, अल्लाह ने तुमको इसकी इजाजत दी थी या तुम अल्लाह पर इफ्तिरा कर रहे हो? जो लोग अल्लाह पर ये झूठा इफ्तिरा बांधते हैं, उनका क्या गुमान है कि कयामत के रोज उनसे क्या मामला होगा? अल्लाह तो लोगों पर मेहरबानी की नजर रखता है, मगर अक्सर इंसान ऐसे हैं जो शुक्र नहीं करते।